नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सभी तरह के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026

0: 2020 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में सहायता करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में होगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के इस सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों के संचालक तथा क्षेत्रीय कमांडर भाग लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्री हितों की रक्षा में नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। श्री गोयल अन्य सदस्य देशों के व्यापार और उद्योग मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। श्री गोयल अमेरिका के वाणिज्य मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसमें भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने तथा अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना DDPA की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा बढ़ाने को भारत का रुख स्पष्ट किया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत जिन मतदाताओं को त्रुटियों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। इसका उद्देश्य मतदाताओं के लिए सुनवाई प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इस बीच SIR के अंतर्गत आज से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई है। सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक गतिविधि का विस्तार जारी है। जुलाई की IIP वृद्धि दर पहले के 6.7% के अनुमान से बढ़कर 7.4% हो गई है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल 45 पदक प्रतियोगिता में जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। समय हो चुका है खेती की बातें कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं समेकित कीट प्रबंधन पर जानकारी दे रही हैं प्रतिमा वर्मा। भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें की आज की इस कड़ी में बातें समेकित कीट प्रबंधन की। जी हाँ किसान भाइयों, अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत किस्मों और आधुनिक तौर तरीकों को अपनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी भरपूर व्यवहार किया जा रहा है। जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे पर्यावरण का दूषित होना, खाद्य पदार्थों में रासायनिक कीटनाशी का अवशेष पाए जाना और गौण कीटों का प्रमुख कीड़ों का रूप लेना। किसान भाइयों, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि रासायनिक कीटनाशी के अंधाधुंध प्रयोग से अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं, फलतः पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है और किसानों को हानि उठाना पड़ रहा है। इसलिए टिकाऊ खेती के लिए ऐसी तकनीक की आवश्यकता है जिनसे पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक लाभ भी बना रहे, और इसके लिए समेकित कीट प्रबंधन कर आर्थिक लाभ को बनाए रखा जा सकता है। समेकित कीट प्रबंधन के अंतर्गत अंगीकृत की जाने वाली जो उन्नत तकनीक है वो हम आपको बता दें। सबसे पहला कृषि कार्यगत नियंत्रण की हम बात करते हैं। इस पद्धति में किसानों द्वारा किए जाने वाले कृषि कार्यों जैसे खेतों की गहरी जुताई, खरपतवार को नष्ट करना, खेतों में सड़ा हुआ गोबर, कंपोस्ट एवं करंज की खली का व्यवहार करना, अम्लीय मिट्टी में चूना का प्रयोग करना, समेकित उर्वरक का प्रयोग करना, स्वस्थ एवं उपचारित बीजों का व्यवहार करना, सिंचाई का प्रबंध करना, फसलों की उचित समय पर बुआई और कटाई, इन तरीकों को अपनाने से लागत में किसी तरह से वृद्धि भी नहीं होती है। इसलिए किसानों को समेकित कीट प्रबंधन से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। इसके बाद जैविक नियंत्रण की बात करते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणाली में कीड़ों का नियंत्रण उनके प्राकृतिक शत्रुओं के द्वारा स्वतः ही होते रहते हैं, पर विकट परिस्थिति में कीड़ों की संख्या अधिक होने पर परजीवी और परभक्षी कीड़ों की संख्या को भी बढ़ाना पड़ता है ताकि दुश्मन कीड़ों की संख्या को कम किया जा सके। इसलिए जैविक नियंत्रण कार्यक्रम में परजीवी और परभक्षी कीड़ों के संरक्षण और संवर्धन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बिल्कुल किसान भाइयों, अब बातें घरेलू कीटनाशकों के प्रयोग की। घर में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग कर कीड़ों की संख्या को आप कम कर सकते हैं। इनके प्रयोग से लागत में कमी होती है और पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। नीम की पत्तियों से कीटनाशक बनाने के तरीके में आप एक बाल्टी लें और नीम की पत्तियों से उसे भर दें और उसको पानी में डुबोकर 4 दिन के लिए छोड़ दें। 5वें दिन नीम की पत्तियों को छांटकर मिश्रण तैयार कर लें और घोल को छानकर थोड़ा सा साबुन का घोल मिलाएं, उसके बाद छिड़काव करें। इसके कारण बहुत सी कीड़ों की संख्या कम हो जाती है। नीम के बीज से कीटनाशी बनाने के लिए आप 1 किलोग्राम नीम के बीज को धूल में परिवर्तित कर लें। धूल को 20 लीटर पानी में मिलाकर रात भर फूलने के लिए छोड़ दें। सुबह अच्छी तरह मिलाकर छान लें। छानने के बाद घोल में 30 ग्राम साबुन का घोल मिलाकर फसलों पर छिड़काव करें। नीम के बीज से निर्मित कीटनाशी अधिक प्रभावशाली होता है और अनेक प्रकार के कीड़ों के नियंत्रण में सक्षम भी होता है। हरा तीता मिर्चा और लहसुन की कीटनाशी भी आप बना सकते हैं। इसमें आप 3 किलोग्राम हरा तीता मिर्चा ले लें। मिर्चों के डंठल को हटाकर पीसकर 10 लीटर पानी में डुबोकर रात भर के लिए छोड़ दें। दूसरे बर्तन में 0.5 किलोग्राम लहसुन को कूचकर 250 मिलीलीटर किरासन तेल में डुबोकर रात भर छोड़ दें। सुबह में दोनों घोल को अच्छी तरह मिलाकर छान लें। 1 लीटर पानी में 75 ग्राम साबुन का घोल बनाकर घोल को एक साथ मिला दें। 2-2.5 घंटा स्थिर होने के बाद घोल को आप फिर छान लें। इस घोल में 70 लीटर पानी मिलाने के बाद फसलों पर छिड़काव करें। यह कीटनाशी गोभी की कीड़ों के अलावा अन्य फसलों में लगने वाले पिल्लू को भी नियंत्रित करता है। कीटनाशक रसायनों का प्रयोग अगर करना हो किसान भाइयों, तो आवश्यकता होने पर ही सुरक्षित कीटनाशक का व्यवहार उचित समय और उचित मात्रा में करें। प्रचलित कीटनाशक रसायनों के नियंत्रण के मुकाबले समेकित कीट प्रबंधन से कई लाभ देखे गए हैं, जैसे यह एक टिकाऊ और प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधनों पर आश्रित होने का लाभदायक है। यह पर्यावरण को शुद्ध करने में मददगार होता है, मनुष्य और जानवरों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, कीड़ों में रसायन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को कम करने में सहायक होता है, मित्र कीट और लाभदायक जीवों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। वास्तव में किसान भाइयों, इस प्रकार समेकित कीट प्रबंधन अपनाकर हम अपनी भूमि की उपजाऊ क्षमता को बनाए रख सकते हैं, साथ ही गुणवत्ता वाली फसल को उत्पादित कर बेहतर आय प्राप्त

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। समय हो चुका है तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस गान का।
1: एपिसोड नंबर 282 282।

अशोक वाटिका में हनुमान उस वृक्ष की डालियों पत्तों में छिपे बैठे हैं जिसके नीचे सीता बैठी हैं। रावण सज धज कर नारियों के समूह के साथ वहां आता है। साम दाम दंड भेद सभी प्रकार से वो सीता को समझाता है कि हठ त्याग कर वे अपने को उसके सुपुर्द कर दें। वो मंदोदरी समेत सभी रानियों को उनकी दासी बनाकर रखेगा। किंतु जुगनुओं के प्रकाश से भला कमल खिल सकता है? सीता जी ये कहते उसकी भर्त्सना करती हैं कि वो रघुनाथ जी के वाणों से परिचित नहीं है और इसी कारण वो पापी निर्लज्ज उनका हरण कर लाया है। अपमानित रावण क्रोध में कांपता कृपाण लेकर उनकी ओर बढ़ा ही था कि पटरानी मंदोदरी ने नीति की दुहाई देते हुए उसका हाथ रोक दिया। सीता को सोच विचार करने के लिए एक माह का समय देकर रावण वहां से विदा हो जाता है। रावण की दासियों में एक थी त्रिजटा, जिसे श्रीराम के चरणों में अथोर प्रीति थी। वो अन्य राक्षसियों को अपना स्वप्न सुनाती है जिसमें उसने एक वानर को लंका दहन करते देखा था। ये भी देखा था कि रावण के दसों सिर मुड़े हुए, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं और वो गधे पर सवार है।

भारत की पावन भूमि पर कई संत महात्मा अवतरित हुए हैं, जिन्होंने धर्म से विमुख सामान्य मनुष्य में आध्यात्म की चेतना जागृत कर उसका नाता ईश्वरीय मार्ग से जोड़ा है। ऐसे ही एक अलौकिक अवतार गुरु नानक देव जी हैं। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी का आगमन ऐसे युग में हुआ जो इस देश के इतिहास के सबसे अंधेरे युगों में था। उनका जन्म 1469 में लाहौर से 30 मील दूर दक्षिण पश्चिम में तलवंडी रायभोर नामक स्थान पर हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। बाद में गुरुजी के सम्मान में इस स्थान का नाम नानकाना साहिब रखा गया। श्री गुरु नानक देव संत, कवि और समाज सुधारक थे। धर्म काफी समय से थोथी रस्मों और रीति रिवाजों का नाम बनकर रह गया था। उत्तरी भारत के लिए यह कुशासन और अफरा तफरी का समय था। सामाजिक जीवन में भारी भ्रष्टाचार था और धार्मिक क्षेत्र में द्वेष और कश्मकश का दौर था। न केवल हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में ही, बल्कि बड़े धर्मों के भिन्न भिन्न संप्रदायों के बीच भी। इन कारणों से भिन्न भिन्न संप्रदायों में और भी कट्टरता और बैर विरोध की भावना पैदा हो चुकी थी। उस वक्त समाज की हालत बहुत बदतर थी। ब्राह्मणवाद ने अपना एकाधिकार बना रखा था। उसका परिणाम यह था कि जाति का भेदभाव बहुत अधिक था। निम्न जाति के लोगों को पढ़ना लिखना बिल्कुल वर्जित था। इस ऊंच नीच का गुरु नानक देव जी पर बहुत असर हुआ। वे कहते हैं, ईश्वर की निगाह में सब समान हैं। ऊंच नीच का विरोध करते हुए गुरु नानक देव जी अपनी मुखवाणी जपुजी साहिब में कहते हैं कि नानक उत्तम नीच न कोई, जिसका भावार्थ है कि ईश्वर की निगाह में छोटा बड़ा कोई नहीं है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति किसी को छोटा समझता है तो यह बिल्कुल गलत है। जब व्यक्ति ईश्वर के नाम द्वारा अपना अहंकार दूर कर लेता है, तभी वह ईश्वर की निगाह में सबसे बड़ा है, उसके समान कोई नहीं। नानक देव की वाणी में नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अति नीच, नानक तिनके संगी साथ, वडियां सिउ किया रीस। समाज में समानता का नारा देने के लिए नानक देव ने कहा कि ईश्वर हमारा पिता है और हम सब उसके बच्चे हैं, और पिता की निगाह में छोटा बड़ा कोई नहीं होता। वही हमें पैदा करता है और हमारे पेट भरने के लिए खाना भेजता है। नानक जंत उपाय के संभाले सब नाह, जिन करते कर ना किया चिंता भी करनी ताहर। जब हम एक पिता एकस के हम वारिक बन जाते हैं तो पिता की निगाह में जात पात का सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरु नानक जात पात का विरोध करते हैं। उन्होंने समाज को बताया कि मानव जाति तो एक ही है, फिर यह जाति के कारण ऊंच नीच क्यों? गुरु नानक देव ने कहा है कि मनुष्य की जाति न पूछो। जब व्यक्ति ईश्वर की दरगाह में जाएगा तो वहाँ जाति नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ आपके कर्म ही देखे जाएंगे। गुरु नानक देव ने पितर पूजा, तंत्र मंत्र और छुआछूत की भी आलोचना की। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु नानक साहिब हिंदू और मुसलमानों में एक सेतु के समान हैं। हिंदू उन्हें गुरु एवं मुसलमान उन्हें पीर के रूप में मानते हैं। हमेशा ऊंच नीच और जाति पाति का विरोध करने वाले नानक ने सबको समान समझकर गुरु का लंगर शुरू किया, जो एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने की प्रथा है। गुरु नानक जी की गुरुवाणी। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पूरक अकाल मूरत अजूनी सैभम, गुरु प्रसाद जप आड़ सच जुगाड़ सच, है भी सच नानक हो से भी सच, सोच सोच न होवे जो सोची लाख वार, छुपे छुपे न होवे जे लाई हर लखता, रोखिया पुख न उतरी जे बनिया पुरिया पार, सहास्या पा लाख वह है ता एक न चले नाल, केवे सच यारा होइए केवे कूड़े टूटते पाल, हुकुम रजाई चलना नानक लिखिए नाल।

0: भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम आराधना के तहत अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण को। और अब समय हो चुका है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर हेमंत नारायण रांची से ली गई भेंट वार्ता, हृदय रोग कारण एवं निदान। भेंट करता है संजय कुमार मिश्रा।
1: श्रोताओं, आपके स्वास्थ्य संबंधी
2: श्रोताओं, आज कार्डियोलॉजी पे बात करेंगे। कार्डियोलॉजी मतलब हृदय रोग से संबंधित जो जानकारियां हैं आज हम आपको दिलवाएंगे। हमारे झारखंड प्रदेश का गौरव रिम्स अस्पताल और वहाँ के विभागाध्यक्ष हृदय रोग के और प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत नारायण। डॉक्टर साहब, हमारे आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार।
3: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब। हमारे तमाम श्रोता अपने प्रदेश के एक वरिष्ठ क्या रिनाउंड डॉक्टर की बात सुन रहे हैं, तो बड़े ध्यान से आपकी पूरी बात वो सुनेंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि ये हृदय रोग क्या है, कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो हृदय रोग से संबंधित हैं, जुड़ी हुई हैं।
3: देखिए, हृदय को हम समझें तो ये एक पंप है, मसल से बना हुआ पंप, जिसका काम है पूरे शरीर को रक्त पहुँचाना और रक्त के माध्यम से खाना और ऑक्सीजन पहुँचाना। अब इस पंप को खुद भी खून की रक्त की आवश्यकता होती है ताकि इसे ऑक्सीजन मिल सके, इसे अपना खाना पीना मिल सके। तो जो रक्त की वाहिकाएं या खून की नलियां जो हृदय को खुद को रक्त पहुंचाती हैं, उनमें रुकावट आ जाए तो चलने फिरने में सीने में दर्द हो सकता है, जिसको एंजाइना कहते हैं, या सीने में तेज दर्द और हार्ट के एक हिस्से का मर जाना, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, हो सकता है। दूसरी प्रकार की बीमारियां होती हैं जिसमें जो हार्ट के मसल्स हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं, रक्त की सप्लाई नॉर्मल भी हो सकती है और रक्त की सप्लाई में रुकावट हो सकती है और ये मसल जो है ये कमज़ोर है, इसको हम कहते हैं कार्डियोमायोपैथी या हार्ट फेलियर का सिचुएशन। तीसरी जो समस्या है वो है कि इस पंप को काम करने के लिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई की ज़रूरत होती है। अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई में कहीं ब्लॉकेज आ गया तो हार्ट ब्लॉक, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो सकता है, जिसमें हमें पेसमेकर वगैरह लगाने की आवश्यकता हो जाती है। ब्लड प्रेशर अगर हाई होगा तो हार्ट मोटा हो जाएगा, इस मसल को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ये मोटे हो जाएंगे और अल्टीमेटली अगर इसको समय रहते ना ट्रीट किया गया तो फिर हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर की तरफ ले जाता है। हार्ट के बनावट में अगर कहीं गड़बड़ी आ गई पैदाइशी, तो इसे हम कंजेंटल हार्ट डिजीज कहते हैं, जिसमें हार्ट में जहां छेद नहीं होना चाहिए वहां छेद है, जहां होना चाहिए ब्लड को फ्लो करने के लिए रास्ता वहां रुकावट है। तो इस तरह की समस्याओं को हम कंजेंटल हार्ट डिजीज कहते हैं। तो कुल मिला के देखें तो खून के प्रवाह से संबंधित बीमारियां जिसे कॉर्नी आर्टरी डिजीज कहते हैं, हार्ट फेलियर की समस्या, इलेक्ट्रिकल ब्लॉक्स की समस्या, हाइपरटेंशन से रिलेटेड समस्या, बनावट से संबंधित समस्या जिसे हम कंजेंटल हार्ट डिजीज कहते हैं, ये कुछ प्रकार हैं हृदय की बीमारियों के।
2: जी डॉक्टर साहब, बगैर हृदय के तो हम कभी नहीं थे, लेकिन हृदय की बीमारियां अब हमें दबोच रही हैं कह सकते हैं, और हम बड़ी तेजी से उसके करीब जा रहे हैं। अब बीमारियाँ इस तरह हावी हो रही हैं कि हमारे परिवार समाज का बहुत नुकसान हो रहा है। तो आखिर वजह क्या हो रही है कि इतनी तेजी से बीमारियां फैल रही हैं और लोग परेशान हो रहे हैं, पूरा घर तबाह हो रहा है?
3: देखिए, पहले जब देश विकसित नहीं था तो जो इन्फेक्शियस डिजीजेस थे, कॉलरा, टाइफॉइड, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, इनका बोलबाला था। इन बीमारियों की वजह से कम उम्र में ही लोगों का देहांत हो जाता था। तो एक तो अब लोग ज़्यादा दिनों तक जीवित रह रहे हैं और इसलिए ये जो कम्युनिकेबल डिजीजेज से हटकर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जैसे हार्ट की बीमारियां, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन से रिलेटेड समस्याएं, कैंसर्स, ये उभर के आ रही हैं। ये एक ज़्यादा इनका बोलबाला हो रहा है तुलना में, अगर इनकी तुलना करें जो इन्फेक्शन से रिलेटेड बीमारियां हैं उनसे। दूसरी बात, लोगों की जीवन शैली ऐसी हो गई है जिसमें खान पान बिगड़ चुका है, हरी साग सब्जियां, फल हमारे प्लेट से गायब हैं, डीप फ्राइड फूड, जंक फूड हमारे खाने में भरमार में हैं, लोग कम उम्र में स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, हाइपरटेंशन हो जा रहा है, लोग सो नहीं रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, इनकी वजह से जब डायबिटीज़ होता है, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये सब मिलके कम उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक से ग्रसित कर दे रहे हैं या हार्ट के खून की नलियों में रुकावट से ग्रसित कर दे रहे हैं। और देखिएगा आपकी 40 की उम्र में, 35 की उम्र में लोग हार्ट अटैक से डेथ हो जा रहा है, और जो स्मोकिंग करते हैं उनमें तो देखिएगा 24-25 की उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक हो जा रहा है।
2: डॉक्टर साहब, ये बीमारी होने की कोई एक खास उम्र है या किसी भी उम्र में इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, या कोई खास उम्र के बाद ज्यादा प्रभावी हो सकती हैं, ज्यादा परेशान कर सकती हैं, जानलेवा हो सकती हैं?
3: देखिए, जो पैदाइशी हृदय रोग है वो तो खैर पैदाइश से ही है, जो हार्ट के खून की नलियों से के ब्लॉकेज की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं, जिसे एंजाइना है या हार्ट अटैक है, अगर आप स्मोक करते हैं तब तो आपको 20 की उम्र में भी हार्ट अटैक हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। 25 की उम्र में, 26 की उम्र में, 30 की उम्र में हार्ट अटैक हो जाता है स्मोकर्स को। अगर आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, आप में दूसरे कुछ कारक हैं जैसे डायबिटीज़ है या फैमिली हिस्ट्री है, तो आप समझिए कि 30 के बाद आप वल्नरेबल हो जाते हैं। 35 की उम्र में मैंने देखा है जिनको डायबिटीज़ है उनको हार्ट अटैक होते हुए कई लोगों को देखा है। फैमिली हिस्ट्री अगर आपको है, आपके परिवार में किसी को, महिला को 55 से कम की उम्र में हार्ट अटैक हो गया, या पुरुष को 65 से कम की उम्र में हार्ट अटैक हो गया है, या एंजाइना हो गया, या बाईपास या एंजियोप्लास्टी हुई है, तो आप माने कि आप वंशानुगत तरीके से हार्ट के खून में के नलियों में ब्लॉकेज के लिए प्रीडिस्पोज्ड हैं, वल्नरेबल हैं। तो जो जिनके परिवार में इस प्रकार की बीमारी है हार्ट अटैक की या एंजियोप्लास्टी होने की कम उम्र में, तो उनको समझिए कि 40 के बाद कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, एंजियोप्लास्टी बाईपास की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आप में ये कारक नहीं है, आप स्मोक नहीं करते हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, तो भी आप समझिए 50-55 के बाद तो हार्ट के खून की नलियों में किसी को भी ब्लॉकेज हो सकता है बिना किसी प्रीडिस्पोजिशन के भी। तो मैं ये कहूंगा कि अगर कोई कारक है, स्मोकिंग करते हैं तब तो छोड़ दीजिए, तब तो आपको 20 की उम्र में भी हार्ट अटैक हो सकता है। अगर डायबिटीज है, फैमिली हिस्ट्री है, तो 30 साल के बाद हर साल कम से कम एक बार अपना ECG और TMT करवाएं, एक डॉक्टर से एक सलाह ले लें, कुछ बेसिक टेस्ट करा लें, ताकि समय रहते बीमारी का पता चल जाए और हार्ट अटैक हो जाए, जान का खतरा हो जाए, उससे पहले कोई कदम आपकी सुरक्षा में उठाया जा सके।
2: डॉक्टर हेमंत नारायण जी, कभी कभी लोगों से ये सुनने को मिलता है कि इनके वाल्व में ब्लॉकेज पाया गया, ये वाल्व में ब्लॉकेज क्या है?
3: देखिए, जो हार्ट, मैंने बताया कि मसल है, तो ये पंप करता है ब्लड को आगे की तरफ। अब ये जो खून है, ये रिस्क के फिर पीछे ना आ जाए, इसके लिए वॉल्व्स हैं। वॉल्व्स ब्लड को, खून को आगे बढ़ने देते हैं, वापस पीछे नहीं आने देते हैं। ये फाटक हैं, फाटक खुलेगा, लेकिन जब खून वापस आने की कोशिश करेगा तो फाटक बंद हो जाएगा। लेकिन ये फाटक या वॉल्व्स जब पूरी तरह से खुल नहीं पाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, रास्ता संकरा हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं वॉल्व सिकुड़ गया है या स्टेनोसिस हो गया है। वॉल्व लीक भी कर सकते हैं, जिसको हम रीगर्जिटेशन कहते हैं। तो अगर वॉल्व जब खून पीछे आने की कोशिश करता है तो ये फाटक बंद हो जाना चाहिए, जब ये बंद
0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम था, तभी आप सुन रहे थे हृदय रोग कारण निदान विषय पर डॉक्टर हेमंत नारायण रांची से ली गई भेंट वार्ता। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। आइए समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी में

0: न्यूयॉर्क नगरे आयोजितायाः संयुक्त राष्ट्र महासभायाः एकाशीति तम सत्रस्य उच्चस्तरीय उपवेशने भारतेन रंगभेदस्य प्रजातीय विभेदस्य परदेशी द्वेषस्य तथा तत्सम्बद्धानाम् असहिष्णुतानाम् उन्मूलनार्थं स्वकीया असन्दिग्धा प्रतिबद्धता पुनः प्रकटिता। डीडीपीए इति दुर्बन घोषणा तथा कार्ययोजनायाः अंगीकरणस्य 25तम वार्षिकस्य स्मरणावसरे भारतस्य आधिकारिकं वक्तव्यं वितरता विदेश कार्य मंत्रालयस्य सचिवेन सीबी जॉर्ज इत्यनेन जागतिक समतायाः मानव प्रतिष्ठायाः च संवर्धनार्थं भारतस्य पक्षः प्रकटीकृतः। विदेश कार्य मंत्रालयस्य प्रवक्त्रा रणधीर जयसवालेन उक्तं यत् सचिवेन सर्वेषां कृते समानतायाः गौरवस्य च संरक्षणार्थं अमोघ संकल्पः पुनः संप्रख्यापितः। ओएनजीसी इत्यायोगस्य अन्वेषण निदेशकः ओम प्रकाश सिंहा सम्प्राह यत् E20 एथनॉल मिश्रित पेट्रोल इंधनम् वैदेशिक तैल आयातम् अधिक मात्रायां घटयित्वा देशस्य आत्मनिर्भरतां वर्धयिष्यति। अहमदाबादे भारत ऊर्जा सप्ताह 20-27 इत्यस्य पूर्वालोकन प्रसंगे भाषमाणः सः अवोचत् यत् E20 इंधनम् एकं समाह्वानम् अस्ति, किन्तु आधुनिक प्रविधिना अस्य परिहारो भविष्यति। सः स्पष्टं न्यगादीत् यत् पश्चिमैशिया युद्धस्य कारणात् जगति देशैः वैदेशिक निर्भरता न्यूनीक्रियते। अस्मिन् काले भारतस्य वर्धमानाम् ऊर्जा आवश्यकताम् विचार्य भारत ऊर्जा सप्ताहः एका प्रमुखा पीठिका वर्तते। भारतीय रेल विभागेन पूर्वोत्तर रेल विभागस्य वाराणसी मण्डले 14.6 शताधिक किलोमीटर परिमित क्षेत्रे कवच 4.0 इति प्रणाल्याः स्थापनायै 23.2 कोटि रूप्यकाणि अनुमोदितानि। अनुमोदितया परियोजनया वाराणसी मण्डलस्य चिह्नितेषु अवशिष्टेषु खण्डेषु कवच 4.0 इति प्रणाल्याः विस्तारो भविष्यति, येन रेल परिचालनाय उपलब्धं सुरक्षातन्त्रं सुदृढं भविष्यति। उपक्रमोयम् अधिक सुरक्षितं विश्वसनीयं च रेल परिचालनं सुनिश्चेतुं तथा सम्पूर्णे भारतीय रेलजाले स्वदेशीय कवच प्रौद्योगिक्याः विस्ताराय क्रियमाणानां प्रयासानां समर्थनं करिष्यति। भारतेन स्वीय वस्तूनां सेवानां च आहत्य निर्यातस्य परिमाणं 63.8 बिलियन डॉलर परिमित धनात् वर्धयित्वा 1 ट्रिलियन डॉलर परिमितं विधातुं उच्च लक्ष्यं विनिर्धारितम्। ह्यः मुम्बय्यां संजातस्य भारत संयुक्त अरब अमीरात निवेश संबंधी उच्चस्तरीय संयुक्त कार्यबलस्य 14 उपवेशनानन्तरं अस्य ऐतिहासिक लक्ष्यस्य घोषणाकारी। वाणिज्योद्योग मन्त्रिणा पीयूष गोयलेन प्रोदीरितं यत् जागतिक संकटेषु सत्यपि प्रवृत्तस्य वित्तीय वर्षस्य प्रथम षट् मासेषु पण्य निर्याते 15% अधिकं वृद्धिः समवापि। जापान देशस्य आइची नागोया नगरे आयोज्यमानासु एशिया क्रीडासु भारतस्य पदक प्राप्ति क्रमः ह्यः अपि अनुवर्तितः। लक्ष्यवेद क्रीडा क्रिकेट कुराश मुष्टियुद्धम् इत्यादिषु क्रीडासु भारतीय क्रीडकैः पदकानि प्राप्तानि। भारतेन पदक संख्यायाम् 8 पदकानि अधिकानि योजितानि। भारतीय पुरुष क्रिकेट दलं च उपान्त्य चक्रे प्रविष्टम्। पुरुषाणां कुन्तक्षेप स्पर्धायां भारतस्य 2 पदके प्राप्ते। यशवीर सिंहेन रजत पदकं तथा रोहित यादवेन कांस्य पदकम् अवाप्तम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्र हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय समुद्र हितों और भारतीय नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण को और मजबूत करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इस बुधवार से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से अलग श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा होगी। इस यात्रा से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। श्री गोयल विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तु, कृषि कारोबार, खुदरा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। वे कारोबारियों, स्टार्टअप और नवोन्मेषी कंपनियों के साथ परिचर्चा में भी हिस्सा लेंगे। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि UAE ने भारत में अब तक करीब 25 अरब डॉलर का निवेश किया है और जल्द ही 25 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश भी करने जा रहा है। हमारा दीर्घकालिक निवेश का लक्ष्य 100 अरब डॉलर है। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना DDPA की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव CV जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से अगले वर्ष 31 जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाली तोड़फोड़ गतिविधियों और बाहरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये फैसला केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बीच हुई बैठक में लिया गया। कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के 500 पेट्रोल पंप पर PUC प्रमाण पत्र नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में और पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को 2 पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत पदक जीता जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद में श्रीशंकर मुरली ने रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत, 21 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Union Home Minister Amit Shah inaugurated the conference on Prahar National City Policy and Strategy in New Delhi yesterday. The conference deliberated upon the seven pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts and recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said, "The government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism." He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shehzad Bhatti network involved in cross-border smuggling of weapons, explosives and narcotics were busted.

अब से कुछ ही पलों के बाद 7:15 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। आप सुनेंगे गायन पंडित सी आर व्यास से राग भैरव बहार में। और 7:45 पर हम आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता, हृदय के ब्लॉकेज और मोटापा के परिणाम और निदान। भेंट वार्ताकार होंगे डॉक्टर रोहित पांडे, फिजिशियन पलामू। सुबह के 8 का समय निर्धारित है समाचार प्रभात के लिए। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज दिल्ली केंद्र से, 8:30 रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। 8:45 पर पुराने फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा।

गीत गुंजन सुबह के 9 बजे आप सुनेंगे जो हर पल अमूक कार्यक्रम। इसके तहत सुविचार, आज के इतिहास की जानकारी, खेल की दुनिया की बातें और स्वास्थ्य संबंधी सुझाव आपको दिए जाएंगे। साथ ही स्वाति सहाय की वार्ता भी होगी, दिल को रखें सेहतमंद। 9:30 बजे का समय है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। सुबह के 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से जारी होंगे। दिन के 1 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार जारी होंगे। 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर रांची केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

दिन के 2 बजे दिल्ली के अंदर से अंग्रेजी में समाचार, 2:15 पर हिंदी समाचार और 2:30 मुंबई के अंदर से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। 2:55 पर दिल्ली के अंदर रांची के अंदर से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 3 बजे मुंबई के अंदर से विविध भारती के कार्यक्रमों के तहत आप सुनेंगे सखी सहेली। 4 बजे रांची के अंदर से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 4:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे। शाम 5:02 पर विविध भारती के कार्यक्रमों के तहत आप सुनेंगे छाया गीत। 5:30 कार्यक्रम विवरण हमारे स्टूडियो से होगा और 5:35 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। चर्चा होगी स्वस्थ खान पान से स्वस्थ हृदय विश्व हृदय दिवस के अवसर पर और युवा अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें। आकृति उत्तम की वार्ता होगी शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार। 6:00 रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 6:02 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। 6:30 पर ग्रामीण सभा कार्यक्रम आप सुनेंगे। 7:00 रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल। 7:15 पर फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा एक रंग। 7:45 पर आप सुनेंगे खुला आकाश कार्यक्रम के तहत काव्य पाठ। 8:00 विशेष भेंट वार्ता होगी दिल को कैसे रखें स्वस्थ, जाने एक्सपर्ट की राय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सचिदानंद हृदय रोग विशेषज्ञ, भेंट करता होंगे संतोष कुमार। 8:15 आप सुनेंगे फिल्म गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से। 8:30 देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा देशगान। 8:45 पर दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और 9:00 अंग्रेजी में समाचार रिले होंगे। 9:30 पर मुंबई के अंदर से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। 10:00 स्पेशल प्रोग्राम होगा 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 दिल्ली हाइलाइट्स कैप्सूल। 10:20 पर फिल्म गीतों का कार्यक्रम हमारे स्टूडियो से होगा रजनीगंधा। 11:00 दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले होंगे। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 11:10 पर होगी हमारी सभा की समाप्ति।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। समय हो चुका है शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग का। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं गायन पंडित सी आर व्यास जी राग भैरव बहार में।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम राग रंग। समय हो चुका है एक भेंट वार्ता का। ये सुनते हैं हृदय में ब्लॉकेज और मोटापा के परिणाम और निदान विषय पर डॉक्टर रोहित पांडे से ली गई भेंट वार्ता।
1: श्रोताओं, आपके स्वास्थ्य संबंधी तमाम जिज्ञासाओं के निदान के लिए और विभिन्न रोगों के बारे में हम आप बात करते हैं विशेषज्ञों से, जिसमें कारण, लक्षण और निदान की जानकारी आपको दी जाती है। आज हम बातें करेंगे हृदय रोग की। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिल रहता है। युवा हो या बुजुर्ग, दिल की देखभाल हर उम्र में होनी चाहिए। स्वस्थ आदतें ही आपके शरीर को हृदय संबंधी बीमारियों से बचा सकती हैं। अपने दिल को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपको अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान देना होगा। बहुत से व्यंजनों को देखकर आपका खुद पर नियंत्रण मुश्किल होता होगा और आपका दिल कहता होगा कि दिल है कि मानता नहीं। पर आपको अपने दिल को स्वस्थ रखना है तो स्वाद से समझौता करना ही होगा। और भी कई बातें हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने हृदय को, अपने दिल को सदा स्वस्थ रख सकते हैं। इसी सिलसिले में आइए आज बातें करते हैं जाने माने चिकित्सक डॉक्टर रोहित पांडे सर से। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
2: जी नमस्कार, और हमारे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार।
1: सर, दिल की बीमारी यानी हृदय रोग के कारण क्या है?
2: देखिए, हृदय रोग का कारण मोस्ट कॉमन है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। ये क्या होता है कि ब्लड की जो वेसल होती है जिसमें हमारा ब्लड दौड़ता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जम के ब्लड वेसल हार्ड हो जाती है। तो ब्लड का प्रेशर हाई हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमते जमते हार्ट ब्लड वेसल की ब्लॉकेज हो जाती है।
1: जी सर, क्या क्या लक्षण है, कैसे कोई व्यक्ति जाने कि वह हृदय रोग की ओर बढ़ रहा है?
2: देखिए, इनिशियल में तो कोई साइन सिम्टम नहीं होता है, जैसे स्लो डिपॉजिट जो कोलेस्ट्रॉल का होता है या बीपी जब हल्का हल्का बढ़ता है तो उसकी साइन सिम्टम नहीं है। साइन सिम्टम तभी आती है जब वो एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे अगर बीपी अगर बढ़ता है तो चक्कर आना या गर्दन के ऊपर भारीपन फील होना, या अगर ब्लॉकेज एक लेवल से ज्यादा हो गया है तो चेस्ट पेन होना। आप एक्सर्शन करते हैं या तेज चाल से चलते हैं या सीढ़ी चढ़ते हैं तो चेस्ट बीच में चेस्ट या बाएं साइड के चेस्ट में पेन होना जो रेडिएट करता है आपको बाएं साइड के हाथ में, कंधे में, गर्दन में, इवन बैक में। ये भी बोला गया है कि अगर आपको नॉन स्पेसिफिक पेन जो चेस्ट पे ना भी हो और बैक में हो और चेस्ट में भारीपन लगे तो भी ये साइन हार्ट डिजीज की हो सकती है।
1: सर, हृदय रोग की जटिलताएं क्या हैं?
2: देखिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीमारी होती है। जैसे एक बार स्टार्ट होता है तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसको स्लो हम लोग कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल से। तो हार्ट का ब्लॉकेज एक बहुत बड़ा है जिसको हम लोग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। सेकंड, अगर ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज है तो जो हमारे हृदय को इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहा है उसको हार्ट ब्लॉक बोलते हैं हम लोग। जो इलेक्ट्रिक करंट हमारे हृदय को चालू रखने के लिए इम्पोर्टेंट होता है उस कंडक्शन फाइबर में भी दिक्कत आती है, जिसको हम लोग 1 degree, 2 degree, 3 degree हार्ट ब्लॉक के नाम से जानते हैं।
1: सर, पहले बातें होती थी अक्सर कि पहला अटैक है, दूसरा अटैक है, तीसरा अटैक है, और जितना हमें जानकारी थी हम समझते थे कि तीसरा अटैक यानी कि व्यक्ति बहुत ही गंभीर है और वह मौत के मुंह में है, लेकिन अब वैसी बातें नहीं होती। साइलेंट अटैक होता है, एक ही बार अटैक होता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कैसे यह बदलाव आया है सर, और क्यों आया है बदलाव?
2: देखिए, ये तो आम भाषा में लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है कि ये आपका पहला अटैक है, ये माइनर अटैक है। लेकिन इम्पोर्टेंट हर समय वो है कि आपका जो ब्लड वेसल्स, जो हार्ट का अपना ब्लड वेसल्स है, हार्ट ऑर्गन की अपनी ब्लड वेसल्स में कितनी ब्लॉकेज है। अगर वो ब्लॉकेज फंक्शनल है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन ब्लड फ्लो में नहीं है, तो आपको हल्का हल्का हार्ट का सिम्टम जैसे धड़कन तेज हो जाना, दर्द होना, भारीपन लगना, सांस का कष्ट होना, तो उसमें प्राइमरी स्टेज पे हम जब ECG करते हैं तो उसमें चेंजेस पाए जाते हैं। तो इस चेंजेस पाए जाने के हम घर वालों को एक्सप्लेन करते हैं डराने के लिए कि आपका हार्ट में ब्लॉकेज स्टार्ट हो गया तो ये पहला अटैक था। अगर ब्लॉकेज सही में है तो एक्यूट पेन होता है, बहुत तेज दर्द होती है या पेशेंट चक्कर खा के बेहोश भी हो सकता है, बीपी गिर जाती है, तो वो ब्लॉक बहुत सीवियर हो गया। तो अगर किसी ब्लड वेसल्स में कंप्लीट ब्लॉक हो गया जो या जो प्राइमरी ब्लड वेसल जो अपने हार्ट को सप्लाई करता है उसमें 90% ऊपर ब्लॉक हो गया तो हार्ट अकस्मात काम करना बंद भी कर सकता है।
1: जी, तो वैसे में एक ही अटैक में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।
2: हाँ, ये हो सकती है, वो डिपेंड करता है कितना ब्लॉक है आपने, कितने हार्ट के ब्लड वेसल ब्लॉक होता है।
1: जी सर, क्या मोटापा और डायबिटीज दिल की बीमारी के लिए घातक है?
2: जी हाँ, देखिए, मोटापा से क्या होता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल जो फैट डिपॉजिट जो हमारे जो बॉडी में होता है वो इनडायरेक्टली ये शो करता है कि हमारे ब्लड वेसल्स में भी चर्बी बढ़ गई है। अब ऐसा समझना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो मोटे हैं उन्हीं के ब्लड वेसल में चर्बी जमेगी, पतले लोग में ब्लड वेसल्स में चर्बी जमना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं विसरल फैट। और उसको बोलते हैं, आप बहुत लोग को आप भी वो सुने होंगे कि फिट था, हेल्दी था, लेकिन हार्ट अटैक हो गया। तो इसके कारण ये होता है कि आपके बाहर शरीर में मतलब चर्बी नहीं है, लेकिन ब्लड वेसल्स में धारा में आपके कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट होना शुरू हो गया है। डायबिटीज भी एक तरह का रिस्क फैक्टर है, जो ब्लड वेसल्स में अगर खून में शुगर ज्यादा हो तो ये कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट को इंक्रीज करता है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो थ्रू आउट हर सिस्टम को खराब करना शुरू कर देती है, या ब्लड हो, या ब्रेन हो, या किडनी हो, या लीवर, या आंख।
1: जी सर, किस उम्र के लोगों को ज्यादा खतरा होता है दिल की बीमारी का?
2: पहले तो कहा जाता है कि 40 प्लस के लोगों में स्क्रीनिंग करनी चाहिए, लेकिन अब जितने भी हैं 30 प्लस के लोगों में भी स्क्रीनिंग करनी बहुत बहुत जरूरी है, या जिसके जिसका लाइफस्टाइल खराब है, जिनका हैबिट्स खराब है, जो बहुत मोटे हैं, जिनको शुगर बीपी अर्ली एज में हो जाती है, तो 25 प्लस से ही आपको हार्ट की स्क्रीनिंग करनी जरूरी होती है।
1: सर, हमने सुना है कि पुरुषों को हृदय रोग का खतरा अधिक होता है, कितनी सच्चाई है इसमें?
2: देखिए, पुरुषों को हृदय रोग का खतरा इसलिए वो स्टडी में पाया गया है क्योंकि महिलाओं में एस्ट्रोजन पाया जाता है, और एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड वेसल को रिलैक्स और ब्लड फ्लो अच्छा रखता है। तो और जो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होते हैं, तो ये थोड़ा मेल और फीमेल क्रोमोसोमल चेंजेस के कारण और उसके हार्मोन्स कैसा शरीर में बिहेव करता है उसके कारण ये पाया गया है।
1: सर, क्या कोई उम्र की भी इसमें बात है कि इतने उम्र के बाद खतरनाक हो जाता है हृदय का रोग, और कम उम्र के लोगों में उतना खतरा नहीं होता? किस उम्र से परहेज शुरू कर देना चाहिए लोगों को?
2: जैसे मैंने पहले बताया कि पहले कहा जाता है कि 40 प्लस के लोगों को ध्यान देना चाहिए, लेकिन अभी ये बोला जा रहा है कि 30 प्लस के लोगों में ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। आप कई बार ये भी सुनेंगे कि इंसान की उम्र 20 साल, 18 साल, 22 साल है और अकस्मात हार्ट अटैक आ जाता है, तो ये कुछ वर्ग के लोग वैसे हैं जिनको हार्ट की जो चेंबर है वो मोटी होती है, उसको HOCM बोलते हैं, उससे अकस्मात हार्ट का फंक्शन बंद हो सकता है। जैसे कई बार एथलीट आपने देखते हुए कि कोई जो एथलीट है, फिट है, दौड़ते दौड़ते वो तुरंत कोलैप्स कर गए। तो इस टाइप के जो वर्ग के लोग हैं वो बहुत स्मॉल ग्रुप हैं जिनको अर्ली एज में हार्ट डिजीज होता है। कुछ ऐसे जेनेटिक बीमारियां हैं जिसमें हार्ट में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना जल्दी एज से शुरू हो जाता है।
1: सर, धूम्रपान या पारिवारिक इतिहास अगर किसी व्यक्ति को अपने घर में रहा हो तो इस बीमारी के लिए कितने जिम्मेदार हैं धूम्रपान और पारिवारिक इतिहास?
2: धूम्रपान तो एक क्रॉनिक स्टेज समझिए कि जो लंबे समय से जो स्मोक करते आ रहे हैं और जो अच्छे खासे अमाउंट पे स्मोक कर रहे हैं उनका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है देन नॉर्मल पीपल पे। तो ये स्टडी में पाया गया है जो लंबे अवधि से स्मोक करते आ रहे हैं, जो आपको पर डे 10 सिगरेट से ज्यादा स्मोक करते आ रहे हैं, उनका 5 years डाउन, जैसे अभी से 5 साल का स्टडी किया जाए विद कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल में, उनमें ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज होना या कोलेस्ट्रॉल का जमना या चर्बी का जमना ज्यादा पाया जाता है। तो ये लोग ज्यादा रिस्क पे हैं। प्लस जो स्मोकिंग से जो निकोटीन होती है वो ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो प्रेशर बढ़ाती है। तो कोई भी जो हमारे ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करे, प्रेशर बढ़ाए, वो एक घातक होता है शरीर के लिए। हेरिडिटी में क्या है कि ये चीज पाया गया है कि जिसके परिवार में, पापा में, मम्मी में, भाई में जिसको हार्ट की बीमारियां हैं वो जेनेटिक कॉज से उनके शरीर में भी हो सकता है।
1: जी सर, तनाव का क्या असर होता है दिल पर?
2: देखिए, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे आप ज्यादा स्ट्रेस में कोई आदमी रहता है तो उनकी बीपी हाई रहती है, और स्ट्रेस होने से जो हमारे शरीर का जो हार्मोन से एड्रेनल ग्लैंड से जो हार्मोन पैदा होता है स्टेरॉइड बोलते हैं वो भी बढ़ जाता है। तो ये सारा कुछ ब्लड प्रेशर को हल्के हल्के रूप में बढ़ाना शुरू कर देता है। तो ये क्रॉनिक है, तो जो लंबे समय पर तनाव में रहते हैं उनको वैसा पेन होना या हार्ट की साइन सिम्टम्स आना शुरू हो जाती है।
1: सर, क्या अनियमित खान पान और स्वच्छता न रखना इस बीमारी को दावत देते हैं?
2: अनियमित खान पान तो है, स्वच्छता का हार्ट की बीमारी या ब्लड वेसल की बीमारी से कोई ऐसा संपर्क नहीं पाया गया है। अनियमित खान पान, जैसे अगर आप ज्यादा फैटी फूड खाते हैं या ट्रांस फैटी फूड्स खाते हैं, इसका मतलब जो तला हुआ समोसा हो गया या मतलब कचौड़ी हो गई,
1: इसमें ज्यादा पसंद करते हैं ना।
2: हाँ, बाहर का नहीं, इसमें ये पाया गया कि जो तेली पदार्थ है, जो ऑयल का खाना वो ज्यादा यूज करते हैं, और खासकर वो ऑयल जो जम जाता है घी। हम घर में बहुत सारे हमारे घर में सबके घर में घी यूज होता है, तो एक मात्रा से ज्यादा घी खाने से भी हार्ट के ब्लड वेसल्स में या शरीर के ब्लड वेसल्स में चर्बी जमा होना शुरू हो जाता है।
1: जी सर, कैसी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए ताकि हृदय रोग हो ही नहीं?
2: लाइफ स्टाइल में कम से कम 40 मिनट्स का मिनिमम वॉक तो आपको हफ्ते में 5 दिन करना ही चाहिए
0: जी
2: जो आपके डेली एक्टिविटी में हो। साथ ही साथ आप कुछ कार्डियो वाला एक्सरसाइज, माइल्ड जॉगिंग हो गया, या जिनको जिम जाने का शौक है वो ट्रेडमिल पे जरूर जाएं, क्योंकि इससे ब्लड वेसल का बहाव और ब्लड में चर्बी जमना कम होता है।
1: सर, एक एज के बाद यानी 30+ लोगों को आप क्या राय देंगे, कौन कौन सी जांच और कब कब उन्हें करानी चाहिए जिससे हृदय रोग की जानकारी उन्हें मिल जाए और प्राइमरी स्टेज में ही उसका इलाज भी हो जाए।
2: सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि एक्सरसाइज और योगा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
1: जी
2: ये आपको बीमारी होने से रोकता है। सेकंड, साल में कम से कम एक बार जनरल चेकअप होनी चाहिए, जैसे कोलेस्ट्रॉल कितनी है, शुगर कितनी है, थायराइड का लेवल कितना है, एक ईसीजी, एक ये बहुत बेसिक सी जांच है जो हर जगह पूरे भारतवर्ष में होती है।
1: जी सर, क्या यह जांच पलामू जिले में या हमारे शहर में उपलब्ध है?
2: जी हाँ, है हमारे सदर अस्पताल में, है हमारे हर प्राइवेट हॉस्पिटल में, हमारे हर गवर्नमेंट सेंटर पे है, इवन हमारे हर PHC में भी है, जो
1: जी
2: प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है वहां भी यहाँ भी है सुविधा उपलब्ध है।
1: जी अगर किसी व्यक्ति को यह डिटेक्ट होता है कि उसे हृदय रोग है तो कितने दिनों के बाद यानी कितना समय लगता है उसे कंट्रोल करने में और उसे खतरे से बाहर लाने में उस मरीज को?
2: अगर वो मरीज अपने लाइफस्टाइल को स्ट्रिक्टली सुधार लेते हैं और अपने ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखते हैं, तो वो बहुत कम ही समय में आपका जितना वाइटल पैरामीटर है वो अंडर नॉर्मल हो जाता है।
1: सर
2: तो ये
1: अगर
2: इम्पोर्टेंट है।
1: अगर रोजमर्रा के जीवन में या हम कहीं जा रहे हैं रास्ते में किसी व्यक्ति को अटैक आ गया, हम बस में हैं, ट्रेन में हैं या घर में या आसपास कहीं भी, अगर हमें लगा कि उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया तो तुरंत हमें क्या कदम उठाना चाहिए?
2: देखिए, हार्ट अटैक अगर पेशेंट बेहोश हो गया है और अगर धड़कन रुक गई है तो हम लोग BLS बोलते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट, जो
1: जी
2: चेस्ट कंप्रेशन और माउथ टू माउथ जो एयर देने वाला होता है, वो अगर तभी करना है जब आपका पल्स बंद हो गया है। अगर सिर्फ चेस्ट पेन है तो हर छोटे छोटे दवा दुकान में सॉर्बिटेट नाम की दवाई आती है
1: जी
2: जो ब्लड वेसल को डायलेट करती है। अगर आपको शक भी है तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इससे हार्म नहीं है। अगर वो हार्ट अटैक की बीमारी है तो

0: ये जानलेवा चीजों को रोक सकती है, लाइफ सेविंग ड्रग है ये।
1: समय कितना महत्वपूर्ण है सर, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है और डॉक्टर के
0: समय
1: पास पहुंचने में कितनी देर खतरनाक है और कितनी जल्दी पहुंचना उसके लिए फायदेमंद है?
0: समय कैसा है कि समय बहुत इम्पोर्टेंट है। 4 घंटे के अंदर अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर या हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो आपका जो हार्ट जो इस्कीमिया मतलब कम रक्त बहाव के कारण जो हार्ट डैमेज हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं दवा के थ्रू। या अगर 12 घंटे के अंदर आप ऐसे जगह पहुंचते हैं यहाँ पे स्टेंटिंग की सुविधा है जिसमें एंजियोग्राफी हो सकता है या स्टेंट लगाया सकता है, वहां आपको स्टेंट के थ्रू हार्ट का रीसिंक्रोनाइजेशन या रीवैस्कुलराइजेशन किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो ब्लॉक हो गया है उसके बदले लोग स्टेंट लगा के नॉर्मल ब्लड बहाव हार्ट में करवा सकते हैं। उस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग सोचते हैं कि कल जाएंगे और एक दो दिन देख लेते हैं, उसमें हार्ट परमानेंट डैमेज होता है, वो पार्ट जिसमें इस्कीमिया हुआ है या जिसमें ब्लड का बहाव रुक गया है वो परमानेंट डैमेज हो जाता है।
1: जी जी हाँ श्रोताओं, आपको खासा सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि यह दिल का मामला है, यानी दिल का मामला है जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है अगर आपने जरा सी भी लापरवाही की। जान है तो जहान है हम कहते आए हैं, लेकिन जान आपकी तभी सलामत है जब आपका दिल सुरक्षित है। तो हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब की इस जानकारी से आप लाभ उठाएंगे और हृदय रोग से अपने आप को बचाए रखेंगे। हृदय रोग पर भी जानकारी दे रहे थे डॉक्टर रोहित पांडे सर। सर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की हमारे श्रोताओं के साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: विश्व हृदय दिवस के अवसर पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रोहित पांडे से ली गई भेंट वार्ता, हृदय में ब्लॉकेज एवं मोटापा के परिणाम और निदान। भेंट करता थी शर्मिला वर्मा। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। वक्त हो चुका है समाचारों का। आइए हम दिल्ली केंद्र से जुड़ते हैं जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज 8:30 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। अभी दिल्ली केंद्र से आइए सुनते हैं समाचार।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष CBSE की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की। अमेरिका ने भारत और उन अन्य देशों से आयातित विशेष दवाओं पर टैरिफ हटाया और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के मौजूदा सत्र में कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कक्षा 7 के विद्यार्थियों की तरह त्रिभाषा नीति से छूट देने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ ने केंद्र सरकार तथा CBSE की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भी वही छूट दें जो कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों को दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को CBSE से कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए 2027 से शुरू होने वाले अगले शैक्षणिक सत्र से भारतीय मूल की दो भाषाओं सहित तीन

0: परीक्षाओं के अनिवार्य अध्ययन वाली अपनी नीति को लागू करने पर विचार करने को कहा था। ये विवाद सीबीएसई के अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के अनुरूप बनाने के निर्णय से संबंधित है। इस रूपरेखा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया यातायात के ई चालान की राशि को बिजली बिलों से जोड़ने पर विचार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि प्रभावी वसूली की व्यवस्था में इस पहल से सुधार किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि लंबित चालान का भुगतान होने तक वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, फिटनेस और पीयूसी प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि तीन दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्र हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से यह सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय समुद्र हितों और भारतीय नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण को सुदृढ़ करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक में अब उठाए गए कदमों और सर्दियों के मौसम से पहले उसके दौरान जरूरी उपाय की समीक्षा की गई।
1: कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर पीयूसीसी नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए जागरूकता अभियान और नियमों का पालन सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत पहले नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण कार्य में तेजी लाई जाएगी और मलबा ऐप पर पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। सर्दियों की कार्य योजना के तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 और परिवर्तन योजना को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण अभियान और जन भागीदारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 37 चिन्हित प्रदूषण स्थलों पर 10 अक्टूबर तक जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने और संबंधित पक्षों को शामिल करने पर बल दिया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि निर्णयों तथा चिन्हित कार्रवाई बिंदुओं का धरातल पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नीतिका गुप्ता के साथ ऋषि जसपाल, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम नजर डालेंगे कि कैसे मिशन लाइफ की सहायता से इस सोच को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
2: देश का 40% खनिज संसाधन समेटने वाले झारखंड में औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने युवाओं को पर्यावरण अनुकूल आदतें सिखाने के लिए अपने सभी कॉलेजों में स्नातक स्तर पर 2 क्रेडिट और 10 सप्ताह का अनिवार्य कोर्स शुरू किया है। इस आंदोलन के मूल विजन को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
3: हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से जितना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट का।
2: प्रधानमंत्री के इसी विजन को कोडरमा जिले की जगह पंचायत ने सच कर दिखाया है। यहाँ के कझाटान गाँव की कभी बंजर रही भूमि को जल योद्धा पार्वती देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सामूहिक भागीदारी से हरा भरा कर दिया है। पार्वती देवी को इसके लिए राष्ट्रपति से सम्मान भी मिल चुका है।
4: पहले बारिश के पानी सीधे जंगल चल जाता था, कुछ नहीं होता था यहाँ पे। अभी जिसके घर जाइएगा सब सारा अनाज मिलेगा, बहुत ही अच्छा फसल होता है बारिश के पानी जब से रुका है।
2: साहिबगंज के आदिवासी इलाकों में इस साल 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर जल जंगल और वन्य जीवों को नया जीवन दिया गया है। इससे स्थानीय आदिम जनजातियों को गांव में ही रोजगार और पत्तों और बांस से अतिरिक्त आय मिल रही है।
5: नाम है चुन्ना हल्दा। इस जंगल में हम लोग आम भी लगवाए हैं और सेंध भी है, फल उल दर है। उससे हम लोग गाँव वालों को भी यहाँ उस बेच उच करके हमका सुविधा होगा।
2: ये बदलाव सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है। झुमरी तिलैया जैसे शहरी क्षेत्रों में भी 10,000 से अधिक घरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में गठित इको क्लब्स बच्चों को बचपन से ही ऊर्जा और पानी की बचत सिखा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा और साहिबगंज से अनंत ओझा के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
0: सरकार ने कहा है कि देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर इस वर्ष मार्च में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। इसमें करीब 61% की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों के तेजी से विस्तार से संपर्क सुविधाएं मजबूत हुई है और बाजारों तक भी पहुंच बेहतर हुई है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित बनाने का काम ग्रीन हाईवेज नीति 2015 के तहत किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इस कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से अलग श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा की जाएगी। इस यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस से सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन 32 गुना और एक्सपोर्ट 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
7: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में भारत और 19 अन्य देशों से आयात होने वाली दुर्लभ बीमारियों के इलाज के में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विशेष दवाओं और उनके संबंधित घटकों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने इन देशों की सूची फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित की है। अमेरिका 29 सितंबर से कुछ पेटेंट दवाओं और उनके संबंधित घटकों के आयात पर 100% शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ है सरफिरोजी। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में और पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को दो पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत पदक जीता जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद में श्री शंकर मुरली ने रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस बीच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। पदक तालिका में भारत कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है जिनमें 4 स्वर्ण 20 रजत और 21 कांस्य पदक है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज मध्य महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश केरलम माही कोंकण गोवा और ओडिशा में भी आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मुकेश कुमार बल।
8: धन्यवाद जया। महिला सुरक्षा पर शीर्ष अदालत द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान की खबर को आज सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है किशोरियों से गैंगरेप पूरे तंत्र की विफलता, रेप मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कई निर्देश जारी, स्थिति रिपोर्ट तलब, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। आम लोगों से जुड़े चार और मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। जनसत्ता ने यूपीआई भुगतान से जुड़े फैसले को प्रमुखता से दिया है। सुप्रीम कोर्ट का एमडीआर पर रोक लगाने से इंकार, केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब। बवाल के बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 10 दिन के लिए बंद, पंजाब केसरी की खबर है। नवभारत टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट का सुझाव लिखा है ट्रैफिक चालान ना भरें तो बिजली बिल में जोड़ दें, बच्चों की सोशल मीडिया पहुंच को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी सुरक्षा तंत्र तैयार करे केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट का बयान अमर उजाला में है। हिंदुस्तान ने विश्व हृदय दिवस पर भारत समेत एशिया प्रशांत क्षेत्र के 39 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण दिया है। प्रदूषण दिन के मर्ज को जानलेवा बना रहा, हर साल 17 लाख लोगों की हार्ट अटैक से होती है मौत। लोकसत्ता ने मौसम का मिजाज शीर्षक से लिखा है सितंबर की बारिश ने तोड़ा 57 साल का रिकॉर्ड, फिर भी 11.8% कम वर्षा। एशियाई खेलों में विथ्या रामराज के नए रिकॉर्ड को भी अखबारों ने सचित्र दिया है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष सीबीएसई की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: Supreme Court asked Center to consider exempting Class 6 students from CBSE's three-language policy this year. Indian Navy to host second edition of Commanders Conference 2026 in New Delhi from today till Thursday. Delhi government prepares tougher action plan to control air pollution in the national capital during winter season. US waives tariff on specialty drugs imported from India and 19 other countries. An Indian men's cricket team advanced to the semi-finals at the Asian Games in Japan. The Supreme Court has directed the Centre and the Central Board of Secondary Education, CBSE, to consider extending to the current Class 6 students the exemption from the three-language framework that has been granted to students of Class 7. We have more from a correspondent.
1: A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justices Choimalya Bakshi and V. Mohana asked Solicitor General Tushar Mehta and Additional Solicitor General Aishwarya Bharti appearing for the centre and the CBSE to grant the same relaxation granted to students of classes 7, 8 and 9 to students of class 6 this year. On September 17, the top court had asked the CBSE to consider implementing its policy mandating the study of three languages, including two native Indian languages for class 6 students from the next academic session starting 2027. According to CBSE statement, the current batches studying classes 7, 8 and 9

0: semifinals without taking the field. Their quarterfinal against Afghanistan was abandoned due to inclement weather in the Aichi Nagoya. Meanwhile, India continued its impressive medal-winning run at the Asian Games in Aichi Nagoya, Japan, with athletes and shooters adding several medals to the country's tally. In athletics, India secured a double podium finish in the men's javelin throw. Yashveer Singh won the silver medal with a personal best effort of 85.72 meters, while Rohit Yadav claimed bronze with a throw of 84.35 meters. In the men's long jump, Sri Shankar Murli secured the silver medal with a best effort of 8.07 meters. Gulveer Singh also added the silver to his tally after finishing runner-up in the men's 1500 meters. He had earlier won silver in the men's 10,000 meters. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Abhishek. Ensure automated counter-terrorism response, Amit Shah tells top cops leads the Statesman. Where worth listing, Knowles submits Tata Sons revamp plan to Reserve Bank of India, reports the Times of India. Be selective in what you consume online, Nitin Nabin tells youth in Kolkata, reports the Tribune. How can children have social media accounts, asks Supreme Court, notes the Hindu. Government to pause 15.8 million unused Russian cards, states Hindustan Times. And finally, Taylor Swift becomes most awarded artist in MTV Video Music Awards history, writes the Indian Express. Adding that the pop powerhouse dedicated her award to the ultimate showgirl, late Dolly Parton. And with that, it's back to Abhishek.
0: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court asked Centre to consider exempting Class 6 students from CBSE's three-language policy this year. Indian Navy to host second edition of Commanders Conference 2026 in New Delhi from today till Thursday. Delhi government prepares tough action plan to control air pollution in the national capital during the winter season. US waives tariff on specialty drugs imported from India and 19 other countries. An Indian men's cricket team advanced to semi-finals at the Asian Games in Japan. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and news on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, पहले ये संदेश।
3: दीदी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है बच्चे के जन्म को लेकर।
4: चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना, सब बहुत अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई।
5: पर खर्चा?
4: बच्चे का जन्म और दो रात अस्पताल में, माँ और बच्चे दोनों की देखभाल।
5: वो तो ठीक है, पर खर्चा?
4: अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना?
6: चांस क्यों लेना है? चांस क्यों लेना?
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
8: डॉक्टर दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहू का पसाव अच्छे से हो गया, क्या आप जच्चा बच्चा को घर ले जाएं?
9: अभी माँ बहुत कमजोर है, उसे दो दिन यहीं रहने दें। प्रसव के तुरंत बाद जच्चा बच्चा को संक्रमण और रोग का खतरा ज्यादा रहता है। सही देखभाल और संक्रमण से बचने के लिए माँ और बच्चे को प्रसव के बाद दो दिन अस्पताल में ही रहने दें। यह सुविधा सभी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
10: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और सीबीएसई को कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कक्षा 7 के विद्यार्थियों की तरह तीन भाषा नीति से छूट देने पर विचार करने का दिया निर्देश। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने की दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा। संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनाती और भीड़ नियंत्रण के दिए निर्देश। पर्यटकों के लिए खुलेगा 1 अक्टूबर से बेतला नेशनल पार्क, पलामू किले में टाइगर सफारी की तैयारी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, झारखंड में 4 अक्टूबर तक जारी रहेगा बारिश का दौर, रांची में हल्की बारिश की संभावना। और भारत वेस्टइंडीज दूसरे टी20 मैच का रांची में 9 अक्टूबर को, टिकटों के दाम जारी, 1600 से 18000 रुपए तक रहेगी कीमत। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को कक्षा 6 के इस वर्ष विद्यार्थियों को कक्षा 7 के विद्यार्थियों की तरह 3 भाषा नीति से छूट देने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य

0: अधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार तथा सीबीएसई की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भी वही छूट दें जो कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों को दी गई है। झारखंड में पुलिस महानिदेशक डीजीपी की नियुक्ति और इससे जुड़े नियमों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने की संभावना है। मामले में डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया और संबंधित नियमों को लेकर दायर याचिका पर शीर्ष अदालत विचार कर सकती है। झारखंड हाईकोर्ट ने प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में लागू नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बीआईटी मेसरा को विशेषज्ञ समिति गठित कर फॉर्मूले की जांच करने का निर्देश दिया है। समिति को फॉर्मूला सही है या नहीं इस पर विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। उल्लेखनीय है कि 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति में जीएसएससी ने नॉर्मलाइजेशन लागू किया था। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तर्की ने कांके स्थित बेकन फैक्ट्री का निरीक्षण किया। उन्होंने हैदराबाद के नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों और इंजीनियरों के साथ तकनीकी स्थिति, आवश्यक सुधार और आधुनिक सुविधाओं पर चर्चा की। मंत्री ने कहा कि बेकन फैक्ट्री झारखंड के कृषि और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विरासत है।
1: ज्यादा स्तर पे इसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई है। हाँ, ऐसे सब्जियों में थोड़ा सा नुकसान देखा जा रहा है, मगर पैडी के लिए अभी तक ये बारिश एक सुखद ही रहा है और आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या रिपोर्ट्स पूरे जिलों से निकल के आती है, उसके बाद ही हम इसमें।
0: रांची में विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल के सभागार में राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रेबीज की रोकथाम और बचाव को लेकर जागरूकता पर जोर दिया गया। राज्य महामारी रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण कर्ण ने बताया कि 22 से 28 सितंबर तक विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया गया है।
2: रेबीज एक जानलेवा बीमारी है, तो इसीलिए हम लोग केवल एक ही नहीं, एक सप्ताह से जागरूकता दिवस मना रहे हैं। तो इस जागरूकता सप्ताह दिन प्रबंध मिक्स से हम लोग कर रहे हैं, तो किस तरह से लोग को जागरूक कर रहे हैं, कैपेसिटी में ह्यूमन डैमेज व्हीकल जो है वो पहुंचे और एंटी डैमेज क्लिनिक जो मेरे स्वास्थ्य केंद्र में बने हुए हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो वहाँ पे वैक्सीन लगाए।
0: डीजीपी तदाशा मिश्रा ने दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए समीक्षा बैठक कर विधि व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, यातायात और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने, रूट डायवर्जन और ट्रैफिक प्लान लागू करने तथा पूजा पंडालों में सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी के निर्देश दिए। रांची ट्रैफिक पुलिस ने 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक 7 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान सुरक्षित सफर सुरक्षित कल शुरू किया है। अभियान के पहले दिन तिलता चौक पर पुलिस अधिकारियों ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी। दोपहिया चालकों को हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक किया गया और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज चाईबासा में कुल्हान विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित होगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार विद्यार्थियों को उपाधियां और पदक प्रदान करेंगे। समारोह में 224 उपाधियां और 26 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। इस अवसर पर विश्वविद्यालय QR कोड युक्त नई सुरक्षित डिग्री की शुरुआत भी करेगा। पलामू का बेतला नेशनल पार्क 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। गाइडलाइन के अनुसार 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पार्क बंद रहता है। इस वर्ष पलामू किले के इलाके में भी पहली बार टाइगर सफारी शुरू करने की तैयारी है। पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक ब्रजेश कांत जिन्ना ने बताया कि पर्यटकों को आदिवासी और पारंपरिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्थानों पर स्टॉल लगाए जाएंगे।
3: पहले के नाते जो सुविधाएं उपलब्ध थी वैसे रहेंगी, उसके

0: अलावा हम लोगों ने इस बार किला कवलदा सर्किट हम लोग वाइल्ड लाइफ सफारी की तरह शुरुआत कर रहे हैं। इसके अलावा बेटर सिक्योरिटी फैसिलिटी हम लोग इस बार इंश्योर कर रहे हैं, जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरास और जो हमारे पार्क के प्रोटेक्शन स्टाफ हैं उनको भी हम लोगों ने डिप्लॉय किया है।
1: डालसा की ओर से रांची के महुआजारी पंचायत भवन और कानीजाड़ी गांव में युवाओं को उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों और उपलब्ध निःशुल्क विधिक सेवाओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस 60 दिवसीय मेगा जागरूकता अभियान के तहत डालसा टीम ने डोर टू डोर जाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और पीएम आवास, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड व लेबर कार्ड से संबंधित आवेदन लिए। धनबाद के भूली ओपी क्षेत्र में साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रभारी साइबर डीएसपी प्रदीप कुमार साव ने बताया कि पांडरपाला दास बस्ती में छापेमारी के दौरान पकड़े गए आरोपी के पास से दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। मोबाइल की जांच में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर देश के विभिन्न हिस्सों से साइबर धोखाधड़ी की 53 शिकायतें दर्ज मिली हैं।
2: इनके पास से दो मोबाइल मिले हैं जिसमें सिम लगे हुए हैं, उन सिम पे कुल 53 एनसीआरबी कंप्लेंट देश भर में दर्ज किए गए हैं। इनका जो आपराधिक कार्य शैली था, फर्जी बैंक मैनेजर बनकर ई केवाईसी के नाम पर ये धोखाधड़ी करते थे, इसके अलावा एपीके के माध्यम से भी ये फ्रॉड करते।
1: और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज से सितम्बर से 4 अक्टूबर तक राज्य में छिटपुट बारिश का अनुमान जताया है। हालांकि 29 और 30 सितंबर को भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। राजधानी रांची में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 21 से 22 और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 9 अक्टूबर को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के टिकटों की कीमतें जारी कर दी गई है। जेएससीए के अनुसार सबसे कम कीमत का टिकट 1600 रुपए और सबसे महंगा टिकट 18000 रुपए का है। हील एरिया के टिकट की कीमत 1600 रुपए रखी गई है, जबकि प्रेसिडेंट इनक्लोजर का टिकट 18000 रुपए का है। पिछले वर्ष 30 नवंबर को रांची में हुए मुकाबले की तुलना में इस बार अधिकांश श्रेणियों के टिकटों के दाम बढ़ाए गए हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले सभी प्रमुख अखबारों ने सुप्रीम कोर्ट में यूपीए और सीबीएसई को लेकर हुई सुनवाई की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का एमडी आरके फैसले पर स्टे से इनकार। प्रभात खबर की सुर्खी है, मैच का टिकट 6000 तक हुआ महंगा, सबसे सस्ता 1600 और सबसे महंगा 18000। दैनिक जागरण ने लिखा है, बीआईटी के जिम्मे सहायक आचार्य नियुक्ति मामले की जांच। और हिंदुस्तान की लीड है, सीईसी पर कांग्रेस झामुमो में बवाल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और सीबीएसई को कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कक्षा 7 के विद्यार्थियों की तरह 3 भाषा नीति से छूट देने पर विचार करने का दिया निर्देश। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने की दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा, संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनाती और भीड़ नियंत्रण के दिए निर्देश। पर्यटकों के लिए 1 अक्टूबर से खुलेगा बेतला नेशनल पार्क, पलामू किले में टाइगर सफारी की तैयारी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, झारखंड में 4 अक्टूबर तक जारी रहेगा बारिश का दौर, रांची में हल्की बारिश की संभावना। और भारत वेस्टइंडीज दूसरे टी20 मैच में रांची में 9 अक्टूबर को टिकटों के दाम जारी, 1600 से 18000 रुपए तक रहेगी कीमत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: एक घंटे के भीतर पिलाएं माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध।
4: माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध यानी कोलेस्ट्रम या खिरसा दूध
3: नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा और पौष्टिक आहार है।
4: ये बच्चे को अनेक गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद करता है
3: और बच्चे की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
4: जन्म से लेकर 6 महीने तक पिलाएं सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध,
3: पानी भी नहीं।
4: बच्चा दिन रात में जितनी बार जितनी देर तक चाहे माँ उसे स्तनपान कराए।
3: माँ का दूध सर्वोत्तम आहार,
4: स्वस्थ बच्चा खुशियां अपार।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: अली अली ली मुन्ना, कैसे हो रितु? तुम्हें तो दस्त हो रहा था, अभी ORS और जिंक की गोली से बिल्कुल स्वस्थ है।
5: दस्त होने से बच्चे के शरीर में पानी और जरूरी तत्वों की कमी हो जाती है।
3: 5 ग्लास साफ पानी में 1 पैकेट ORS का घोल बनाएं।
5: 24 घंटे के बाद नया घोल बनाएं।
3: थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे

0: को पिलाएं।
1: साथ ही हर दिन एक जिंक की गोली बच्चे को दें।
0: याद रखें, दस्त बंद होने पर ORS बंद कर दें।
1: पर जिंक की गोली 14 दिनों तक देते रहें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।
2: हमारे दिल्ली और रांची केंद्र से आप सुन रहे थे समाचार। समाचारों के बाद स्वागत है आपका। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे एक ही फिल्म मैं हूँ ना के गीत। मैं हूँ ना 2004 में फराह खान द्वारा निर्देशित एक ब्लॉकबस्टर एक्शन कॉमेडी और मसाला फिल्म है जो 30 अप्रैल 2004 को रिलीज हुई थी। मुख्य कलाकार शाहरुख खान, इन्होंने निभाई थी मेजर राम प्रसाद शर्मा की भूमिका जो एक देशभक्त सेनाधिकारी हैं। सुष्मिता सेन ने निभाई चांदनी चोपड़ा की भूमिका जो कॉलेज में केमिस्ट्री की अध्यापिका हैं। सुनील शेट्टी ने निभाई राघवन दत्ता का किरदार जो फिल्म में मुख्य खलनायक हैं। अमृता राव ने निभाई संजना बख्शी की भूमिका जो जनरल की बेटी हैं। जावेद खान ने निभाया लक्ष्मण प्रसाद शर्मा लकी का किरदार जो राम के सौतेले भाई हैं। नसरुद्दीन शाह ने निभाया ब्रिगेडियर शेखर शर्मा का किरदार जो राम के पिता हैं। बोमन ईरानी ने निभाई प्रिंसिपल की भूमिका। आइए लुत्फ उठाते हैं मैं हूं ना फिल्म के गीतों का।

0: मैं हूं ना फिल्म के गीत, अभी आप सुन रहे थे गीत गुंजन कार्यक्रम के तहत। गायक कलाकार थे सोनू निगम, श्रेया घोषाल और अभिजीत। इन गीतों को आपने सुना हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम था गीत गुंजन। हमारा अगला कार्यक्रम है जोहार पलामू।
1: पलामू जोहार पलामू।

जोहार पलामू कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारा नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम की शुरुआत आज के सुविचार से। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जी हाँ दोस्तों, सारी कहानी आपके सोच की है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो सब कुछ अच्छा होता है, और अगर आपने निगेटिव सोचना शुरू किया तो आप असफल होते जाते हैं। इसलिए हर हाल में पॉजिटिव रहिए। और बात करें मौसम की, तो आजकल मौसम भी बड़ा ही खुशगवार है, जो हमारे दिलो दिमाग को पॉजिटिव रखता है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। और कल यानी कि 30 सितंबर को अधिकतम 31 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे आज एक वार्ता स्वाति सहाय की, दिल को कैसे रखें सेहतमंद। बात आज करेंगे हम दिल की, हृदय की, क्योंकि आज है विश्व हृदय दिवस।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम जोहार पलामू और मैं हूं आपकी दोस्त शर्मिला। कहते हैं दिल है तो जिंदगी है। दिल सिर्फ हमारे शरीर का एक अंग नहीं बल्कि हमारे जीवन की धड़कन है। किसी की मुस्कान देखकर दिल खुश हो जाता है, किसी अपने की आवाज़ सुनकर दिल को सुकून मिलता है और कभी कभी किसी की याद में यही दिल बेकरार हो जाता है। लेकिन आज बात सिर्फ उस दिल की नहीं जो भावनाओं को महसूस करता है, आज बात उस दिल की है जो हर पल हर मिनट बिना रुके हमारे लिए धड़कता है, क्योंकि आज है 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस।

आज है 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस। इस दिन का मकसद है लोगों को हृदय रोगों के प्रति जागरूक करना और यह याद दिलाना कि अपने दिल का ख्याल रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। दिल की बात हो और गीत न हो, ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों। हमारा दिल एक मिनट में कई बार धड़कता है और दिन रात लगातार हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक रक्त और ऑक्सीजन पहुंचाता है। हम सो रहे हों या जाग रहे हों, खुश हों या परेशान, दिल अपना काम लगातार करता रहता है। तो जरा सोचिए, हम अपने दिल के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम रोज थोड़ा समय व्यायाम के लिए निकालते हैं? क्या हमारे खाने में नमक, तेल और अत्यधिक फैट की मात्रा कम है? क्या हम तनाव को कम करने की कोशिश करते हैं? और सबसे जरूरी है, क्या हम अपनी नियमित स्वास्थ्य जांच कराते हैं? तो इन चीज़ों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपका दिल सिर्फ आपका दिल नहीं है, बल्कि एक मंदिर भी है।

0: सचमुच दिल एक मंदिर है जिसे साफ सुथरा रखना और सेहतमंद रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी जीवन शैली में तेजी से बदलाव आ रहा है। घंटों एक जगह बैठना, शारीरिक गतिविधि कम होना, असंतुलित खानपान, धूम्रपान, अत्यधिक तनाव और नींद की कमी, यह सभी हमारे हृदय के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। और आज हम यह बातें कर रहे हैं विश्व हृदय दिवस के अवसर पर। तो बात अब एक वार्ता की, जिस वार्ता में दिल को कैसे सेहतमंद रखना है इसकी जानकारी दे रही हैं हमारी वार्ताकार स्वाति है।
1: श्रोता मित्रों नमस्कार। हर साल विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। स्वस्थ हृदय की जागरूकता के लिए यह दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए आपको सही जीवन शैली को अपनाने की जरूरत है। एक बेहतर जीवन शैली और स्वस्थ आहार के जरिए आप अपने हृदय को सेहतमंद रख सकते हैं। साथ ही आपको हृदय की सेहत के लिए अपने परिवार एवं परिजनों को भी सतर्क करना चाहिए। एक अच्छा दिल एक ऐसी चीज है जिससे लोग आकर्षित होते हैं, इसलिए अपने दिल को सेहतमंद रखें। विश्व हृदय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबों को। स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए एक सेहतमंद हृदय का होना बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ जीवन शैली की मदद से आप अपनी जान और परिवार का भविष्य बचा सकते हैं। अपने दिल को सेहतमंद रखने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाना सबसे जरूरी है। दिल को सेहतमंद और मजबूत बनाए रखने के लिए आपको अपनी जीवन शैली और खान पान में कुछ खास बदलाव करने होंगे। आज के समय में खराब लाइफस्टाइल के कारण दिल से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। अगर कुछ नियम का हम पालन करें तो हम अपने दिल के स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। जैसे कि हृदय अनुकूल आहार लें। आपका दिल वैसे ही व्यवहार करता है जैसा आप खाते हैं। अपनी डाइट में पौष्टिक आहार को शामिल करें। साबुत अनाज और फाइबर जैसे कि ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस और साबुत गेहूं का आटा खाएं। यह शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। हरी सब्जियां और फल, पालक, ब्रोकली, टमाटर और बेरीज जैसे ब्लूबेरी का सेवन करें। इनमें मौजूद पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखते हैं। हेल्दी फैट्स, बादाम, अखरोट, अलसी और चिया के बीज खाएं। खाना पकाने के लिए रिफाइंड तेल की जगह सरसों का तेल या जैतून का तेल का इस्तेमाल करें। लहसुन सुबह खाली पेट की एक कली खाने से धमनियों में ब्लॉकेज का खतरा कम होता है और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है। इन चीज़ों से सख्त परहेज करें, जैसे कि नमक और चीनी। खाने में नमक, सोडियम की मात्रा कम करें क्योंकि ज़्यादा नमक हाई ब्लड प्रेशर का मुख्य कारण बनती। जंक और प्रोसेस्ड फूड जैसे कि समोसे, पिज्ज़ा, पैकेट बंद सूप और अत्यधिक तले भुने खाने से बचें, यह धमनियों को ब्लॉक कर सकते हैं। नियमित शारीरिक गतिविधि अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे कि रोजाना कम से कम 30 मिनट तक तेज चलना, साइकिल चलाना, तैरना या योग करना दिल की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। व्यायाम करने से आपका ब्लड प्रेशर, वजन और कोलेस्ट्रॉल तीनों नियंत्रित रहते हैं। साथ ही तनाव और नींद का प्रबंधन, लगातार रहने वाले मानसिक तनाव दिल पर सीधा और बुरा असर डालते हैं। तनाव को कम करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने वाले प्राणायाम करें। हर रात 7 से 8 घंटे की गहरी और पर्याप्त नींद लें क्योंकि नींद की कमी सीधे ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कनों को प्रभावित करती है। बुरी आदतों को छोड़ें। धूम्रपान और तंबाकू का सेवन पूरी तरह बंद कर दें। निकोटीन और सिगरेट का धुआं रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देता है जिससे हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। शराब के सेवन से दूरी बनाएं। एक और चीज जैसे कि नियमित हेल्थ चेकअप भी आपके हृदय को स्वस्थ रखने में काफ़ी मदद कर सकता है। समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर, डायबिटीज की जांच करवाते रहें। अगर ये तीनों नियंत्रण में रहेंगे तो आपका दिल लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। दूसरों से अपनी तुलना करना और उनका मानसिक एवं शारीरिक प्रभाव हमारे स्वास्थ्य को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। जब आप हर बात को दिल से लगा लेते हैं या लगातार अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करते हैं तो इसका सीधा असर आपके दिल की सेहत और मानसिक शांति पर पड़ता है। मनोवैज्ञानिक संदर्भ से अगर हम देखें तो खुद को दूसरों से कंपेयर करना और दिल पर लेना हमारे दिल के लिए अच्छा नहीं है। जब हम सोशल मीडिया या असल जिंदगी में दूसरों की सफलता, पैसे या खुशी को देखकर अपने जीवन की तुलना करने लगते हैं तो दिमाग में नकारात्मक विचार पैदा हो, असुरक्षा और तनाव। दूसरों से तुलना करने पर मन में ईर्ष्या, उदासी या हीन भावना आती है, जिससे हम दिल पर लेना कहते हैं। भावनाओं का बोझ, हर बात को दिल पर लगाने से व्यक्ति मानसिक रूप से थक जाता है और उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है। शारीरिक संदर्भ में अगर हम इसे देखें तो तुलना का सीधा असर दिल पर होता है। लगातार मानसिक तुलना की आदत अगर आपके अंदर या हमारे अंदर है तो यह शरीर पर एक बुरा प्रभाव छोड़ती है। क्या समस्याएं आ सकती हैं इन वजह से, जैसे कि दिल की धड़कन बढ़ना। अगर आपका अत्यधिक चिंता और तनाव में दिन बीतता है तो इसके कारण अचानक दिल की धड़कन तेज महसूस होने भी लग सकती है। ब्लड प्रेशर का बढ़ना, लंबे समय तक तनाव में रहने से रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ता है और बीपी बढ़ जाती है, ऐसा महसूस होता है कई बार और बीपी बढ़ने लगे। हृदय रोगों का खतरा, लगातार मानसिक अशांति दिल की बीमारियों का जोखिम भी बढ़ा सकती है। तो आइए जानते हैं इन आदतों से हम कैसे बच सकते हैं। खुद की प्रगति पर ध्यान, अपनी तुलना केवल अपने बीते हुए कल से करें, ना कि किसी व्यक्ति विशेष से। सोशल मीडिया से दूरी, दूसरों की परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी से कभी प्रभावित ना हो। कृतज्ञता, जो आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करें। ध्यान और व्यायाम, तनाव कम करने के लिए डीप ब्रीदिंग या योगा का सहारा लें। श्रोता मित्रों, अगर आपका दिल स्वस्थ है तो आप एक सुखी और सुंदर जीवन जी सकते हैं। जीवन बहुत सुंदर लगता है जब आपका दिल स्वस्थ होता है और सही तरीके से धड़कता है। अपने दिल की धड़कनों का अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि वो ही आपका जीवन है। एक बार फिर से विश्व हृदय दिवस की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं।
0: बहुत ही रोचक जानकारी दी स्वाति सहाय ने अपनी वार्ता के जरिए और आपको बताया कि दिल को कैसे रखें सेहतमंद। जी हाँ श्रोताओं, आज मैं भी एक वादा लेना चाहती हूँ आप सभी से कि आप विश्व हृदय दिवस पर एक छोटा सा संकल्प लें, अपने दिल को समय देंगे, अपने शरीर को सक्रिय रखेंगे, खान पान पर ध्यान देंगे, तनाव को कम करने की कोशिश करेंगे और स्वास्थ्य संबंधी किसी भी परेशानी को कभी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। और कमबख्त दिल का क्या कहना, दिल की एक बीमारी है जिसे कहते हैं प्यार।

दोस्तों, दिल की बीमारी को लेकर एक जरूरी बात और। सीने में दर्द या दबाव, सांस लेने में परेशानी, अचानक पसीना आना, चक्कर, असामान्य कमजोरी या दर्द का बाएं की तरफ बढ़ना, पीठ या जबड़े तक जाना, ऐसे लक्षणों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें और अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। और याद रखिए, स्वास्थ्य के मामले में कभी भी कल देखेंगे कभी कभी भारी पड़ सकता है, इसलिए कल पर कभी न छोड़ें और स्वास्थ्य संबंधी किसी भी परेशानी को गंभीरता से लें। और विश्व हृदय दिवस पर अपने दिल से एक वादा कीजिए कि मैं अपने दिल का ख्याल रखूंगी, क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत धुन मेरे दिल की धड़कन है। अपने परिवार को भी स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करें। सुबह की थोड़ी सी सैर अगर हो सके तो करें। खाने में थोड़ी सी सावधानी हो, तनाव में थोड़ी सी कमी हो और अपनों के साथ थोड़ी सी मुस्कान हो, तो यही छोटी छोटी बातें जीवन को बेहतर बना सकती हैं।

अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और सबसे बढ़कर अपने दिल का ख्याल रखिए, क्योंकि दिल धड़कता रहे तो जिंदगी मुस्कुराती है। मैं शर्मिला इस कार्यक्रम में थी आपके साथ। विश्व हृदय दिवस की पुनः आपको शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और दिल से जीते रहिए।

अभी आप सुन रहे थे जो हर पलामू कार्यक्रम के तहत विश्व हृदय दिवस पर विशेष कार्यक्रम। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। प्रस्तुति थी शर्मिला वर्मा की, संयोजन प्रशांत गौरव की, और अब समय हो चुका है प्रायोजित कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, कड़ी संख्या 1381।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, हमेशा की तरह करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका और अंजलि जंघेल जी ने।
2: लिखते हैं, शिक्षा वो प्रकाश है जो ज्ञान के अंधकार को दूर कर जीवन को सही दिशा देता है।
1: आपका बहुत बहुत आभार इस सुंदर संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का, और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल दिवांगन जी ने लिखा है। अजीत जी, विमलेश जी, सादर नमस्कार।
2: 1 सितंबर के उमंग कार्यक्रम में बालक बाजी राउत के साहस, संघर्ष और बलिदान के बारे में सुनकर मन भावुक हो गया। इतनी कम उम्र में देश की आजादी के लिए अंग्रेजों का विरोध करते हुए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बाजी राउत की शहादत हमें सिखाती है कि देशभक्ति उम्र नहीं जज्बे की मोहताज है। ऐसे वीर बाल शहीद को शत शत नमन।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, नरेंद्र कुमार तिवारी और कृष्ण कुमार यादव जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है सहजपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू और सतीबाई साहू जी का।
1: और वो लिखते हैं, प्रिय उद्घोषक जी, मन ला राम राम जय जोहर पहुँचे। उमंग कार्यक्रम प्रसारित होते एमा बहुत सुंदर ज्ञान वर्धक बात लगत है। शहर में गंदगी से कैसे बचे और सावधान रहे ये सब बात बताते, हमरा बहुत सुंदर लगत। एक हर बार बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं, विमलेश जी और अजीत जी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे।
2: हमें दिनांक 28 अगस्त 2000

0: 26 का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद आया, जिसमें आपने एक कहानी सुनाई। वो कहानी थी बुद्धिमान किसान। हमें बेहद अच्छी लगी। इस कहानी के जरिए हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हर चीज का बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए। ये सुनवाने के लिए मैं NCERT उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, उमंग कार्यक्रम मुख्य रूप से विद्यार्थियों का शैक्षिक कार्यक्रम है।
0: जी।
1: इस क्रम में हम मुख्य रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं एक नई श्रृंखला, भारत के बहादुर बच्चे।
0: जी हाँ श्रोताओं, इस श्रृंखला के दो एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मेघालय राज्य के दो ऐसे बच्चों की जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया।
1: तो आज सुनिए श्रोताओं एक ऐसे बालक की कहानी जिसकी उम्र तो केवल 13 वर्ष थी, लेकिन उसके साहस ने उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया।
0: श्रोता, उस बहादुर बालक का नाम था मेघराज। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना पड़ा। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था।
1: मित्रों, ये घटना है 12 मई 1997 की। मेघराज अपने 6 मित्रों के साथ शिलोंग के प्रसिद्ध एलिफेंट फॉल्स में गया था। बच्चे वहाँ खेल रहे थे कि तभी एक दुर्घटना हो गई।
0: ओ, क्या हुआ था?
1: हुआ ये कि मेघराज के 11 वर्षीय मित्र किशन सिंह का पैर फिसल गया और वो पानी में जा गिरा। किशन तैरना नहीं जानता था, वो पानी में डूबने लगा।
0: श्रोताओं, मेघराज तैरना जानता था। उसने एक पल भी अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ा। उसे मालूम था किशन तैर नहीं सकता है। मेघराज तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया।
1: लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न है मेरे मन में
0: जी,
1: क्या उसे अपनी जान का डर नहीं लगा?
0: अजी जी, स्वाभाविक तो है, थोड़ा डर तो जरूर लगा होगा, लेकिन उस क्षण उसके सामने अपनी सुरक्षा से बड़ी प्राथमिकता थी अपने मित्र को बचाना।
1: तो विमलेश जी, क्या मेघराज अपने मित्र किशन सिंह को बचा पाया?
0: जी, वो बचा पाया। पानी में डूबते किशन सिंह को बचाने के लिए मेघराज को बहुत संघर्ष करना पड़ा और अंत में उसने अपने मित्र किशन को पानी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। किशन की जान बच गई।
1: तो फिर मेघराज भी बाहर आ गया होगा?
0: नहीं अजीत जी, यही मेघराज की कहानी का सबसे दुखद और हृदय को छू लेने वाला भाग है। मेघराज ने किशन को तो बचा लिया, लेकिन बचाते समय मेघराज का पैर चट्टानों के बीच में फंस गया।
1: ओह।
0: वो स्वयं पानी से बाहर नहीं निकल पाया और उसकी मृत्यु हो गई।
1: जी हाँ श्रोताओ, मेघराज ने अपने मित्र की जान तो बचा ली, लेकिन अपनी जान दे दी।
0: एक 13 वर्ष के बालक ने मित्रता की ऐसी मिसाल कायम की जिसे लोग आज भी याद करते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, मेघराज को उसकी बहादुरी के लिए 1997 का नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मरणोपरांत प्रदान किया गया।
0: जी।
1: गणतंत्र दिवस के अवसर पर 22 जनवरी 1998 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने उनकी माता को यह पुरस्कार प्रदान किया।
0: जी।
1: आइए श्रोताओं, अब विचार करते हैं कि इस कहानी से हमें क्या क्या संदेश या सीख मिलती है।
0: जी, तो सबसे पहली सीख हमें मिलती है, सच्ची मित्रता संकट के समय ही दिखाई देती है। कहावत है ना, सच्चे मित्र की पहचान जरूरत और संकट के समय ही होती है।
1: श्रोताओं, मेघराज की कहानी केवल बहादुरी की नहीं बल्कि मित्रता और जिम्मेदारी की कहानी भी है।
0: बिल्कुल सही कहा जीत जी। बालक मेघराज ने हमें दिखाया कि किसी दूसरे के जीवन को बचाने की भावना कितनी महान हो सकती है।
1: जी, कुछ जीवन लंबे नहीं होते, लेकिन उनके कर्म उन्हें अमर बना देते हैं। बालक मेघराज केवल 13 वर्ष जिया, लेकिन उसने अपने छोटे से जीवन में ऐसा काम किया जिसे लोग पीढ़ियों तक याद रखेंगे।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी साहसी बालक मेघराज के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: आज का प्रश्न है, बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया?
1: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: जी,
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बीरबल की खिचड़ी।
2: अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति कह रहा था,
3: मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ।
2: अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा,
4: यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा।
2: वह मान गया। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा,
4: हैं? तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे?
2: उसने नम्रता से उत्तर दिया,
5: महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था, मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा।
2: बादशाह ने कहा,
4: तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा।
2: वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा, इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर वे बोले,
4: चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं।
2: जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा, एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा,
4: बीरबल, भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है।
2: बीरबल ने उत्तर दिया,
6: हुजूर, अगर वो व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती?
2: अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम बीरबल की खिचड़ी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेजर शैतान सिंह।
0: इस कार्यक्रम में भारत और चीन के युद्ध के दौरान असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले मेजर शैतान सिंह की जीवन गाथा प्रस्तुत की गई है और बताया गया है कि युद्ध के दौरान उन्होंने किस प्रकार अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

भारत और चीन का युद्ध अपने चरम पर था। वो दिन था 18 नवंबर 1962 का। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, साए साए करती बर्फीली हवा और लद्दाख क्षेत्र की हड्डियां जमा देने वाली ठंड। रात भर भीषण गोलाबारी के बाद अभी कुछ देर के लिए वातावरण शांत हुआ था। सुबह होने ही वाली थी और भारतीय सैनिक समुद्र तल से

0: लगभग 17,000 फीट यानी 5,000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर अपनी चौकी पर पूरी मुस्तैदी से डटे हुए थे।
1: ये 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी थी, जिसे लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात किया गया था। बटालियन में कुल 120 जवान थे, जिनके पास ना तो इस भयंकर ठंड से जूझने के लिए पर्याप्त कपड़े थे और ना ही उन्हें बर्फीली जगहों पर युद्ध करने का अनुभव था। और तो और, उनके पास हथियारों के नाम पर पुरानी 303 राइफलें थीं, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बेकार घोषित कर दी गई थीं।
0: अचानक बर्फीली सुबह की धुंध में उन सैनिकों को कुछ दिखाई दिया।
2: राम सिंह?
3: हाँ।
2: वो सामने तुम कुछ देख रहे हो?
3: हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मन मशाले लेकर इधर आ रहा है।
2: लेकिन लड़ाई के मैदान में कोई मशाल लेकर भला क्यों आएगा?
3: ये बात तो तुम ठीक कहते हो, ऐसा जोखिम कोई क्यों उठाएगा?
2: हाँ।
3: अरे देखो, रोशनी के ये गोले अब तो और पास आ रहे हैं।
2: हाँ।
3: हमें तुरंत कमांडर को इसकी सूचना देनी चाहिए।
2: हाँ। चलो जल्दी चलो।
3: हाँ
2: चलो चला देते।
3: हाँ। जय हिंद सर।
4: जय हिंद राम सिंह।
3: सर पहाड़ की पूर्वी घाटी से लगता है कुछ चीनी सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं।
4: क्या कहा? सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहीं ये दुश्मन की कोई चाल तो नहीं है? समझा। सुनो।
3: जी सर।
4: फौरन मोर्चा संभालो और फायरिंग शुरू करो।
3: जी सर।
4: लेकिन ध्यान रहे, हमारे पास गोलियां कम है, इसलिए हमें गोलियां बचा कर रखनी है। बस कुछ एक गोलियां ही चलाना।
3: जी सर।
4: जय हिंद।
3: जय हिंद सर।

0: और सैनिकों ने मोर्चा बांधकर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन आश्चर्य, वो मशालें रुकी नहीं, वो आगे बढ़ती रही। जब वो बिल्कुल पास आ गई तो साफ साफ दिखाई देने लगा। पता चला कि वो मशाले नहीं थी, लालटेन थी, जिन्हें चीनी सैनिकों ने स्थानीय याक पशुओं के गले में बांधकर भारतीय सेना की ओर भेजा था।
1: 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर राजस्थान में एक सैनिक परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम शैतान सिंह भाटी था। उनके पिता आर्मी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी थे। बचपन में उनकी बाल सुलभ शरारतों के कारण संभवतः उनका नाम शैतान रख दिया गया हो, लेकिन निजी जिंदगी में वो बेहद विनम्र और सौम्य व्यक्ति थे।
0: शैतान सिंह ने जोधपुर स्थित राजपूत उच्च विद्यालय से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। सन 1943 में स्कूल की पढ़ाई के बाद वो सिंह जसवंत सिंह कॉलेज गए और स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 1 अगस्त 1949 को वो एक सेना अधिकारी के रूप में जोधपुर रियासत की सेना में शामिल हो गए। अपने सैन्य जीवन में विनम्रता और कार्य कुशलता के कारण वो अफसरों और सैनिकों के बीच बहुत लोकप्रिय थे।
1: तो आइए एक बार फिर से चलते हैं उसी युद्ध के मैदान में, जहां 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात थी। ये जगह थी रेजांग लाह की घाटी। सामरिक दृष्टि से भारत कमजोर स्थिति में था। चीनी सैनिक सैकड़ों की संख्या में पूरी तैयारी के साथ बेहतर हथियारों से लैस थे और उन्हें बर्फीले क्षेत्र में युद्ध करने का भी खासा अनुभव था। जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या उस चौकी पर मात्र 120 थी।
0: ऐसे में चीनी सेना से युद्ध में मुकाबला करना भी आत्महत्या करने के समान था। और आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। 18 नवंबर 1962 की सुबह चीनी सेना ने हल्की मशीन गनों द्वारा भारतीय पोस्ट पर हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह सतर्क हो गए और अपने साथियों को मोर्चा बंदी करने का आदेश दिया। और जैसे ही चीनी सैनिक निकट आए, भारतीय सैनिकों ने उन पर लाइट मशीन गन, राइफल्स, मोर्टार और ग्रेनेड से हमला कर दिया और कई चीनी सैनिक मार गिराए।
2: जवानों, हमारे पास दो ही विकल्प हैं, मरो या मारो। तुम सब भारत माता के बहादुर सिपाही हो। तुमने अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने की शपथ ली है, तो आगे बढ़ो। हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। फायर!
3: आगे बढ़ो।
4: साहब, साहब वो देखिए, घाटी के दूसरे रास्ते से दुश्मन के बहुत से सैनिक इधर ही आ रहे हैं।
5: फतेह सिंह, अभी उन्हें और पास आने दो। जब पास आ जाएं, तो हथगोलों का इस्तेमाल करो।
4: जी साहब।
0: चीनी सेना के सिपाही भारतीय सेना के प्रचंड प्रहार के सामने टिक नहीं सके और पीछे हटने लगे। उनके बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन शीघ्र ही चीनी सेना ने रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने घाटी में ऊंचे स्थानों पर बनी चौकियों से भारतीय चौकी पर जबरदस्त बमबारी की।
1: भारतीय सैनिकों के बंकर नष्ट हो गए। उनके पुराने हथियार चीनी सैनिकों के नए हथियारों के मुकाबले बेकार साबित हो रहे थे। भारी संख्या में भारतीय सैनिक मारे जा चुके थे। चीनी सैनिक घोड़ों और याक पर और अधिक हथियार लाद कर ले आए और आक्रमण जारी रखा।
0: लेकिन मेजर शैतान सिंह भला हार कहां मानने वाले थे। उन्होंने इस दुर्गम परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया।
3: जितना असला है पूरा इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें और बक्सा लाके देता हूं असले का। फायर! हुकम सिंह
4: जी सर,
3: एलएम जी सवाल ना छोड़, फायर कर, राइट साइड पे फायर कर।
1: वो उनका साहस बंधाते और उन्हें लड़ने मरने के लिए प्रेरित करते। गोलियां कम थीं, ठंड की वजह से उनके शरीर जवाब दे रहे थे। अपनी मशीन गनों और बंदूकों के ट्रिगर पर भीषण ठंड के कारण उनकी उंगलियां काम नहीं कर रही थीं। चीनी सैनिकों से ये बचे हुए जवान लड़ते रहे। 10-10 चीनी सैनिकों से एक एक जवान ने लोहा लिया। उस दिन चीन की प्लाटून के बहुत से सैनिक मारे गए।
0: मेजर शैतान सिंह को भी कई गोलियां लगी थी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए थे।
6: अरे साहब, आप तो बहुत घायल हो गए हैं, कितना खून बह रहा है, आपके आपके दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं।
5: राम सिंह, मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। मेरे लिए एक मशीन गन लाओ। मशीन गन लाओ?
6: जी साहब, अभी लाया। अरे हुकुम भाई, जरा साहब के लिए एक मशीन गन ले आना।
4: अच्छा, सर यही मशीन गन।
5: हुकुम सिंह, एक काम करो
4: जी,
5: गन के ट्रिगर को एक रस्सी से बांध दो।
4: जी सर।
5: मैं छोड़ूंगा नहीं दुश्मन को, जल्दी करो।
4: जी सर।
5: बांध दिया सर, ठीक से बंध गई रस्सी ट्रिगर के साथ।
4: हाँ सर, बांध।
5: इस रस्सी को मेरे बाएं पैर के साथ बांधो, जल्दी। टाइट करके, खींच करके, खींच के इस तरफ लेके, हील नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल।
4: जी सर।
5: ठीक है। भारत माता की जय।

0: भारत माता की जय।
1: कहते हैं कि मेजर शैतान सिंह ने मशीन गन को दुश्मन के आने की दिशा में निशाना लगाकर जमीन पर जमा दिया और रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन लगातार खून बहने से मेजर शैतान सिंह अब अर्धमूर्छित अवस्था में आ गए थे। कुछ सैनिक घायल मेजर शैतान सिंह को एक बड़ी चट्टान के पीछे ले गए।
2: संभल कर, संभल कर।
3: सब यहाँ सर टिका लीजिए।
2: सर ऐसे
4: कालिका माता की जय।
5: वो नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में उनके प्रिय कमांडर मेजर शैतान सिंह चीनी सैनिकों के हाथ लगें। मेजर शैतान सिंह को कभी कभी होश आ जाता था।
4: छोड़ना नहीं, आखिरी सांस। फायर, फायर।
5: सैनिक बारी बारी से मेजर शैतान सिंह को अपनी पीठ पर लादे हुए उबड़ खाबड़ बर्फीले रास्तों पर चल रहे थे कि तभी चीनी सैनिकों की एक और टुकड़ी दिखाई दी जो उनकी ओर आ रही थी। मेजर समझ गए थे कि अब उनका सफर यहीं तक है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया।
4: साथी, हाँ, हमें चीनी सैनिकों ने देख लिया है और वो इधर ही आ रहे हैं। मेरी चिंता मत करो, मुझे यहीं छोड़ दो।
3: साहब,
4: तुम लोग आगे निकलो।
2: साहब, ये आप क्या कह रहे हैं साहब? ऐसा नहीं हो सकता साहब, हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे।
4: नहीं, नहीं, बात को समझो। अगर मुझे लेकर चलोगे तो पकड़ लिए जाओगे। अपनी जान बचाओ।
2: नहीं साहब।
4: क्या मालूम चीनी सैनिक तुम लोगों से कैसा सलूक करे। मुझे यही मेरे हाल पर छोड़ दो।
2: नहीं साहब, नहीं, आदेश।
4: इट्स एन ऑर्डर
2: सर।
4: जाओ, अलविदा, अलविदा दोस्तों, अलविदा भारत माता की।
1: भारी मन से सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह को वहीं छोड़ दिया और आगे चल दिए। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। 1963 के फरवरी महीने में भारत चीन युद्ध समाप्त हो गया। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली और चरवाहों का एक दल भेड़ों के झुंड के साथ चुशुल में रेजांग ला घाटी से गुजर रहा था तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। चारों तरफ भारतीय सैनिकों के मृत शरीर बिखरे पड़े थे। उनके हाथों में हथियार थे, चेहरे विकृत थे और आंखें आसमान की तरफ ताक रही थी।
5: उन चरवाहों ने तुरंत भारतीय पोस्ट पर अधिकारियों को सूचना दी।
6: साहब, मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है।
5: भारतीय सेना ने तुरंत कार्यवाही की। सेना के जवानों के साथ वहां रेड क्रॉस सोसाइटी भी थी। उन्हीं दिनों एक और चरवाहे ने सूचना दी कि एक चट्टान के नीचे कोई दिखाई दे रहा है। खोजी दल उस चट्टान के पास पहुंचा। वहां किसी और का नहीं, मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। बर्फ की वजह से उनका शरीर जम गया था।
1: उनके पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके गृह नगर जोधपुर लाया गया और पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

0: युद्ध के शहीदों की स्मृति में रेजांगला घाटी में एक स्मारक बनाया गया है। आज भी बर्फीले पर्वतों के जंगली घोड़े कियांग और नीली भेड़ों के झुंड उस स्मारक के आसपास घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो वो सैनिकों की याद में बने इस स्मारक की प्रेम से रखवाली कर रहे हैं।
1: कई बार बर्फीले पर्वतों पर साए साए चलने वाली हवाएं कहीं दूर से बुरांश के फूलों को लाकर उस स्मारक पर डाल देती हैं, जैसे श्रद्धांजलि दे रही हूं।
0: हालांकि भारत युद्ध हार गया था, लेकिन बाद में पता चला कि चीन की सेना का सबसे ज्यादा नुकसान रेजांगला पर ही हुआ था। चीन के करीब 1,800 सैनिक इस जगह मारे गए थे। ये एकमात्र जगह थी जहां भारतीय सेना ने चीनी सेना को घुसने नहीं दिया था, और ये संभव हुआ था मेजर शैतान सिंह के असाधारण शौर्य के कारण।
1: परमवीर चक्र से सम्मानित।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। समाचारों के लिए आइए हम जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कक्षा 7 के विद्यार्थियों की तरह त्रिभाषा नीति से छूट देने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ ने केंद्र सरकार तथा CBSE की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भी वही छूट दें जो कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों को दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया यातायात ई चालान की राशि को बिजली बिलों से जोड़ने पर विचार करने को भी कहा है। न्यायालय ने कहा कि प्रभावी वसूली की व्यवस्था में इस पहल से सुधार किया जा सकता है। न्यायालय ने सुझाव दिया कि लंबित चालान का भुगतान होने तक वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, फिटनेस और PUC प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के अन्वेषण निदेशक ओम प्रकाश सिन्हा ने कहा है कि E20 पेट्रोल पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को काफी हद तक कम करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद कर सकता है। श्री सिन्हा अहमदाबाद में ONGC जलाशय अध्ययन संस्थान में आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह 2027 के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि E20 पेट्रोल एक चुनौती है, लेकिन प्रौद्योगिकी के साथ इसका समाधान भी निकलेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमरीका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है।
1: व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को 4 साल हो गए हैं। हमने इस द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 100 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया है और मैंने 2032 तक इसे दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। संयुक्त अरब अमीरात को भारत पर भरोसा है। उन्होंने पहले ही 25 अरब डॉलर का निवेश किया है और वे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 7वें सबसे बड़े स्रोत हैं। आने वाले वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात से निवेश को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। $100 billion in the years to come।
0: भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना के आधिकारिक एक्सहैंडल ADGPI पर पोस्ट में इस मुलाकात की जानकारी दी गई है। ADGPI ने पोस्ट करते हुए लिखा, इंडिया US फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाना। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीमों को लगाया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने आज महिलाओं के ट्रैप टीम इवेंट में रजत पदक अपने नाम कर लिया है। इससे शूटिंग में देश के मेडलों की संख्या 13 हो गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The Supreme Court has directed the Centre and the Central Board of Secondary Education or CBSE to consider extending to the current Class 6 students the exemption from the three-language framework that has been granted to students of Class 7. A bench comprising Chief Justice Suryakant, Justices Joy Malia Bakshi and V. Mohana asked Solicitor General Tushar Mehta and Additional Solicitor General Aishwarya Bhatti, appearing for the Centre and the CBSE, to grant the same relaxation granted to students of Classes 7, 8 and 9 to students of Class 6 this year. On September 17th, the top court had asked the CBSE to consider implementing its policy mandating the study of three languages, including two native Indian languages, for Class 6 students from the next academic session starting 2027. According to CBSE's statement, the current batches studying in Classes 7, 8 and 9 would not be required to give board examination in third language when they progress to Class 10th. Indian Navy will host second edition of Commanders Conference 2026 in New Delhi from today till Thursday. The three-day conference will provide an avenue for senior naval leadership, including outstation, operational and area commanders. The conference will be pivotal in underscoring Indian Navy's contribution towards safeguarding India's maritime interests, including security of energy, amidst the ongoing conflicts in West Asia. Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav chaired a high-level meeting with Delhi Chief Minister Rekha Gupta to review the Air Pollution Mitigation Action Plan in the national capital. The meeting held yesterday reviewed the measures already undertaken, progress achieved on the ground and additional interventions required before and during the winter session. Under the action plan, no PUCC, no fuel will be implemented at all automatic number plate recognition enabled fuel stations through awareness and enforcement. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will be on a visit to US from today till 5th of next month. During the visit, Mr. Goyal will participate in the two-day G20 trade ministers meeting, which will commence tomorrow. On the sidelines of the meeting, Mr. Goyal will hold bilateral meetings with his counterparts. The engagements will focus on expanding opportunities for farmers, fishermen, women entrepreneurs, startups, MSMEs and other enterprises. The government has said that the country's national highway network has grown by nearly 61% to over 1,46,000 kilometres in March this year from over 91,000 kilometres in 2014. This rapid development has strengthened connectivity, improved access

0: डॉक्टर साहिबा, हम जब बात कर रहे थे आपसे, आपने कहा कि पीसीओडी की समस्या भी आजकल बहुत सुनने में आती है
1: जी।
0: तो हमारी वो महिलाएं जो नहीं जानती हैं कि पीसीओडी क्या है और इसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं
1: जी,
0: उन्हें आप बताइए कि क्या है पीसीओडी।
1: ओके, तो पीसीओडी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी एक हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण एक प्रॉब्लम शुरू होती है और उसमें लक्षण ये होते हैं कि लेडीज जो औरतें हैं जिनकी महावारी रेगुलर होनी चाहिए 28 या 30 दिन में, उसके बदले में महावारी डीले हो जाना, जैसे 35 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन या उससे भी ज्यादा, यानी पीरियड्स लेट होना, या पीरियड जब आता है तो नॉर्मली जो 5 दिन 8 दिन रहता है उसके बदले में 15 दिन 20 दिन कंटिन्यूस ब्लीडिंग होता है
0: जी,
1: तो ये भी एक उसका लक्षण है। अच्छा, पीसीओडी में एक्सेसिव वेट गेन भी हो सकता है, एक्ने यानी पिंपल्स, मुंह पे पिंपल्स आना, ये हो पिंपल्स निकलना, बाल झड़ना, अच्छा दाढ़ी आना। मेरे दो पेशेंट्स हैं जो इनको रोज शेविंग करनी पड़ती है।
0: अच्छा,
1: यस, तो सिवियर पीसीओ पेशेंट्स में सर के बाल निकल जाते हैं लेकिन दाढ़ी के बाल उगने लगते हैं, तो वो एक
0: लक्षण है
1: जी। तो अगर आपका वेट ज्यादा बढ़ रहा है या पीरियड्स इरेगुलर हैं तो मे भी आपको पीसीओ हो सकता है।
0: हो सकता है, तो इस पीसीओडी की समस्या को नियंत्रित कैसे रखा जाए?
1: तो उसके लिए एक्चुअली ये समझना जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है पीसीओडी। तो पीसीओडी जो है वो लास्ट 10-15 साल में एक एपिडेमिक जो हो चुका है कि ऑलमोस्ट एवरी अदर गर्ल उसको पीसीओ है। बहुत कॉमन है, अगर आप 10 लड़कियों को एक रूम में रखेंगे तो शायद से 5 लड़कियों या 6 लड़कियों को तो पीसी होगा, इतना अभी कॉमन हो गया है ये पीसीओ। तो ये द एग्जैक्ट कॉज वी कैनॉट पिन पॉइंट, बट जेनेटिक एक कॉज हो सकता है कि अगर मदर को पीसीओ है तो डॉटर को हो सकता है। बट अभी की जो लाइफस्टाइल है जहाँ पे लैक ऑफ एक्सरसाइज है, अपना जो खान पान जो है, जो रेडी फूड, जो घर का खाना नहीं खाते हैं और बाहर का पैकेट खोल के खाना, ये जो रिफाइंड ऑयल वगैरह ज्यादा उसका सेवन करना, होल ग्रेन्स नहीं खा के मैदा और ये सब ज्यादा खाना, ब्रेड है ये, और स्ट्रेस, अभी सब लड़कियां पढ़ रही हैं तो वो स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज, एंड सोशलाइजेशन बहुत कम हो गया है, तो आपका स्ट्रेस, आप मतलब आप किसी से बांट नहीं सकते हो, तो सोशल आइसोलेशन हो गया है थैंक्स टू द मोबाइल। तो ये सब के कारण से ये जो पीसीओ का प्रॉब्लम काफी बढ़ चुका है
0: जी। तो इसके लिए जाहिर है कि हमें डॉक्टर के संपर्क में जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और इस समस्या का निराकरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके फिर साइड इफेक्ट्स हमारे सामने
1: जी आते। और ये भी मैं मेंशन करना चाहूंगी कि पीसीओ पेशेंट्स जो लड़कियां हैं, जरूरी नहीं कि उनका वजन ज्यादा हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज थिन लीन पीसीओ, यानी वो बहुत पतली है बट फिर भी वो पीसीओ है। तो पीसीओ का क्राइटेरिया, बेसिकली मेन क्राइटेरिया ये है कि एक तो पीरियड की इरेगुलरिटी होना, सेकेंड क्राइटेरिया है कि मेल हॉर्मोन्स जो ज्यादा होते हैं, तो जिसके कारण मैंने बताया कि बॉल्डिंग होना, दाढ़ी उगना, पिंपल आना ये, एंड थर्ड सोनोग्राफी पे ओवरीज में बहुत सारे अंडे दिखना, ये एक मतलब क्राइटेरिया है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि पीसीओ में जो हर महीने अंडा फूटना चाहिए वो उनका फूटता नहीं है, यानी अंडा बड़ा होता है फिर फूटता नहीं है, फिर थोड़ा टाइम के बाद दूसरा अंडा बड़ा होता है फिर फूटता नहीं है, फिर वैसे करके 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद जब फूटता है, एक कोई अंडा फूट गया तो फिर तभी पीरियड आता है, लेकिन वो पीरियड बहुत लंबे समय तक चालू रहता है, तो ब्लीडिंग ज्यादा होने के कारण पेशेंट अनीमिक भी हो जाती है, क्योंकि ये इंप्रेशन है लोगों को कि पीरियड में वो जो ब्लड है वो निकलना चाहिए, वो खराब ब्लड है। तो ये मैं एक्चुअली बताना चाहूंगी सबको कि ये वो खराब ब्लड नहीं है, वही ब्लड आपके हार्ट में, लंग्स में, किडनीज में है, तो जो नॉर्मल जाना चाहिए वो ठीक है, बट उससे ज्यादा अगर जा रहा है तो उसको ट्रीट करना बहुत ही
0: जरूरी है। बिल्कुल, एक आम धारणा है या ग्रामीण तबकों में तो खास तौर से कि गंदा खून है जो बाहर निकल रहा है।
1: जी जी,
0: बहुत अच्छी जानकारी दी कि ये गंदा खून नहीं है, ये हमारे पूरे शरीर में है और एक उचित मात्रा में निकलना चाहिए महावारी के दौरान, लेकिन उससे ज्यादा निकलते ही दूसरी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। डॉक्टर साहिब, आप पीसीओडी के साथ अक्सर हम पीसीओएस की भी चर्चा आजकल कर रहे हैं, तो क्या पीसीओडी और पीसीओएस ये दोनों एक ही हैं या दोनों में कोई बेसिक अंतर है?
1: एक ही है एक्चुअली, अभी जो नया टर्मिनोलॉजी आया है, अभी पीसीओडी या पीसीओएस PCOS नहीं बोलते हैं, हम PMOS बोलते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, यानी ये जो लड़कियां जिनको पीरियड इरेगुलर आ रहे हैं या बाल झड़ रहे हैं या स्किन में पिंपल्स आ रहे हैं या वजन बढ़ रहा है या इनफर्टिलिटी है उसके कारण या जो भी सिम्टम है पीसीओडी का, उसके साथ साथ उनको डायबिटीज के होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स यानी हार्ट अटैक्स होने के, उनका लिपिड प्रोफाइल जो है, जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह ट्राइग्लिसराइड्स वो चेंज होता है और कार्डियक रिस्क उनका बढ़ जाता है। तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और इसमें पीसीओडी में कैंसर्स के भी रिस्क बढ़ जाते हैं। तो ये सिर्फ पीरियड रिलेटेड या स्किन रिलेटेड नहीं है एक्चुअली, इसके बहुत सारे और भी मल्टी डायमेंशंस हैं जो हमको देखने चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि ये भी मुझे हो सकता है।
0: बिल्कुल, यानी कि एक समस्या के चलते कितनी सारी समस्याओं से महिला को
1: रिलेटेड है, ये सब रिलेटेड,
0: उससे रिलेटेड समस्याएं हैं जिसका अंदाजा हमें लगता नहीं
1: जी,
0: है
1: जी।
0: और समय हो जाने पर या बीत जाने पर फिर उसके दूसरे परिणाम हमारे सामने आते हैं। आपने बहुत अच्छी बात ये कही थी कि पीसीओडी की समस्या जब है तो ये नहीं है कि वो महिला या लड़की बहुत फैटी होगी, दुबली पतली लड़की को भी ये समस्या हो सकती है, इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। तो क्या हम ऐसा माने डॉक्टर साहिबा, आपने कहा कि पीसीओडी पीसीओएस, इसका अर्थ ये माने कि महिला माँ नहीं बन सकती, ऐसी कोई धारणा?
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो बेसिकली पीसीओ में जो मैंने जो बताया कि अंडे नहीं फूटते हैं रेगुलरली, जो 28 या 30 दिन में एक अंडा नॉर्मली फूटता है, जब वो नहीं फूटता है, जिसको हम ओवुलेटरी डिसफंक्शन बोलते हैं, तो वो हम बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं मेडिसिन से। इनफैक्ट एक्चुअली इवन बिफोर मेडिसिन हम उनको बोलते हैं आप लाइफस्टाइल अपना चेंज करो, यानी आप अपना रेगुलर एक्सरसाइज करो, अपनी डाइट पे ध्यान रखो, योग करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, होल ग्रेन्स इंक्लूड करो, फ्रूट्स एंड नट्स इंक्लूड करो अपनी डाइट में। तो थोड़ा भी इवन 5% ऑफ वेट लॉस अगर होता है एक पीसीओ पेशेंट जो, मतलब जिसका वेट ज्यादा है, तो वो जो अंडा जो रेगुलरली नहीं फूटता है वो फूटने लगता है। यानी सिंपल लाइफस्टाइल चेंज से भी काफी हद तक पीसीओडी या पीएमओएस के हम सिम्टम्स रिवर्स कर सकते हैं, ये परमानेंट नहीं है अगर हम अपनी लाइफस्टाइल और ये डाइट एक्सरसाइज को
0: बदलते हैं।
1: यस, तो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, अभी आजकल जो मैं सुनती हूँ लड़कियां 1, 2, 3 बजे के पहले सोती नहीं है, 8, 9, 10 बजे के पहले उठती नहीं है, तो ये चेंज होना बहुत जरूरी है। बिकॉज मैं ये बताना चाहूंगी कि हम जब सोते हैं तो एक हार्मोन होता है जिसके कारण हम गहरी नींद सोते हैं, जो हार्मोन है मेलाटोनिन।
0: बिल्कुल।
1: और मेलाटोनिन ये हार्मोन का पीक राइज इज अराउंड 9, 9:30, 10।
0: अच्छा
1: जी,
0: उस वक्त तो हम लोग खाना खाना पसंद करते हैं या टीवी देखना पसंद करते हैं।
1: यस, तो जब ये उसका पीक निकल जाता है
0: हाँ।
1: तो नींद आती है लेकिन इतनी गहरी या क्वालिटी स्लीप नहीं रहती
0: नहीं
1: है। और दूसरी बात ये है कि जब आप लेट सोते हो जैसे 12, 1, तो जब बॉडी जग रही है तो ब्रेन ये इंटरप्रेट कर रही है कि ये कुछ स्ट्रेस है, तो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, वो सिक्रेट होने लगता है, जिसके कारण स्ट्रेस रिस्पॉन्स यानी वजन बढ़ना, नींद, क्वालिटी नींद नहीं आना, स्पेशली अराउंड द बेली कॉर्टिसोल के कारण वेट पुट ऑन होता है, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है बॉडी का इन्फ्लेमेशन, तो ये सब पीसीओ के सिम्टम्स और भी खराब कर देता है।
0: अच्छा।
1: इसलिए टाइम पे सोना और टाइम पे उठना, उसके लिए टाइम पे डिनर लेना यानी अर्ली डिनर, जैसे 7, 7:30, 8 o'clock, यानी सोने से 2 घंटे पहले डिनर लेना बहुत जरूरी है। और अगर मैं बोलती हूँ कि आपको 10, 10:30 बजे तक सो जाना चाहिए, बिकॉज मेलाटोनिन पीक तभी होता है और तभी आपको इतनी गहरी नींद आती है कि क्वालिटी स्लीप, कि जहाँ पे बॉडी प्रोसेसेस सब हीलिंग होने लगता है, बॉडी का प्रोसेसेस सब स्लो डाउन हो जाते हैं और टॉक्सिन्स निकलने लगते हैं, तो लेकिन जब आप वो टाइम पे नहीं सोते हैं तो फिर वो जो डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए प्रोसेस वो नहीं होता,
0: नहीं
1: है,
0: होता है,
1: इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, तो ये चेंज भी लाना बहुत जरूरी है। और जल्दी उठते हैं जब आप नेचर के साथ रहते हैं, आप जल्दी उठते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपने स्ट्रेस को भी प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने डॉक्टर साहिबा, कि हम किस तरह से खुद को हमने बीमार कर रखा है, देर रात तक जगना, सुबह लेट तक उठना और कभी भी खाना खा लेना, जब भूख लगेगी खा लेंगे, इस तरह की अनियमित जो दिनचर्या हमारी है वही बहुत बड़ा कारण है इन बीमारियों का।
1: एब्सोल्युटली,
0: है ना? और अगर हम इनमें थोड़ा सा भी बदलाव ले आते हैं तो हम धीरे धीरे सुधार महसूस कर सकते हैं।
1: 100%
0: डॉक्टर साहिबा, चलिए यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, ठीक है? सुनते हैं आपकी पसंद का एक गीत।
1: आज फिर जीने की तमन्ना।

0: डॉक्टर साहब, किस समय एक महिला को या किशोरी को सुबह का खाना, दोपहर का खाना और शाम का खाना आपने कहा 7:30 to 8 o'clock तक खा लेना चाहिए, तो सुबह का और दिन का भी किस तरह का होना चाहिए टाइम, आप थोड़ा सा बताइए।
1: ऐसा है कि उठने के बाद एक तो आई रेकमेंड कि आप वार्म वाटर लें उठने के बाद, उसमें आप लेमन डाल के, नींबू डाल के ले सकें तो एक बॉडी एनर्जाइज, मतलब उसको हाइड्रेशन चाहिए क्योंकि पूरी रात हाइड्रेशन नहीं मिला,
0: मिला नहीं है।
1: तो बॉडी की जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाती है। मे बी थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट लेके या कोई नट्स लेके आप थोड़ा एक्सरसाइज करें, योग करें, मेडिटेशन करें, एम्प्टी स्टमक करें तो भी चले। और उसके बाद आप जो आपका ब्रेकफास्ट है वो होलसम ब्रेकफास्ट होना चाहिए जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी और चावल, ये इसमें ज़्यादा कार्ब्स रहते हैं उस टाइप का, यानी हम जो पराठे खा लेते हैं वो कम खा के जैसे प्रोटीन्स उसमें इंक्लूड करें। आप खा सकते हैं जो इंडियन ब्रेकफास्ट है उसमें पोहा है, उपमा है, पराठे हैं। तो अब हमको ये सोचना है मदर्स को या विमेन को कि मैं इसमें प्रोटीन की मात्रा कैसे बढ़ाऊं।
0: ठीक है,
1: तो जब आप प्रोटीन ज्यादा लेते हैं, कार्ब्स कम, तो फिर वो इंसुलिन स्पाइक जो होता है वो कम होता है। प्रोटीन्स प्रिवेंट इंसुलिन स्पाइक, जो मैंने बोला ना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और जब स्पाइक होता है उससे वेट गेन होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण या इंसुलिन स्पाइक के कारण वेट गेन होता है। तो जब हम प्योर ओनली कार्ब्स जब हम खाते हैं तो इंसुलिन स्पाइक ज्यादा होती है, तो हमको थोड़ा मिक्स एंड मैच करके प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा करनी चाहिए। जो हम पहले जो खाते थे, जो हमारे जो पूर्वज थे वो खेती बाड़ी करते थे, उनके फिजिकल लेबर कितना था, अभी हम वो तो करते नहीं है। वी कैन नॉट हैव दैट सेम फूड, उनकी जो क्वांटिटी है वो भी उतनी हम यूज नहीं कर पाएंगे, और जो कार्ब्स उनको एनर्जी के लिए चाहिए, वो फिजिकल वर्क के लिए, वो भी हम यूज नहीं करते। तो ये थोड़ा चेंज लाना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में भी कोई हाई प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट, जैसे आप पनीर ले लो या टोफू ले लो सोयाबीन्स का, बॉइल्ड एग या स्प्राउट्स, वैसे ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए।
0: ठीक है,
1: मिड मॉर्निंग कोई फ्रूट ले लिया अलॉन्ग विथ नट्स एंड सीड्स, वैसे कर सकते हैं। लंच में सैलेड, यानी फाइबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइबर ऑल्सो प्रिवेंट्स इंसुलिन स्पाइक। तो प्रोटीन्स, फाइबर्स, ये आपके डाइट में, हर डाइट में होने चाहिए, ताकि जो इंसुलिन स्पाइक, जो मेन क्रिमिनल

0: मतलब जो प्रॉब्लम का कारण है वो ना हो, तो उसके लिए लंच में आप सैलेड के साथ प्रोटीन और जो कार्ब्स की मात्रा है वो कम
1: कम
0: करें।
1: करें।
0: सिमिलरली मिड आफ्टरनून या मिड इवनिंग आप ग्रीन टी ले सकते हैं आपके मेटाबॉलिज्म को हाई रखने के लिए।

0: भोजन या अपनी दिनचर्या फिक्स करनी चाहिए। लेकिन हम उन औरतों को भी ध्यान में रखना चाहते हैं जो श्रमिक वर्ग की हैं, बहुत मेहनत करती हैं, खेती बाड़ी करती हैं, गांवों में रहती हैं, उन्हें नहीं पता होता किस तरह से ग्रीन टी पी जाए या किस तरह से प्रोटीन खाया जाए, उनके लिए आप किस तरह की डाइट का सुझाव देंगी?
1: जैसे इनफैक्ट अगर खेती बाड़ी कर रहे हैं तो इतनी फिजिकल एक्टिविटी कर रही है तो मुझे नहीं लगता है उनको पीसीओ होगा भी, बट अगर होता है तो फिर दालचीनी पानी, दालचीनी इज एन इंसुलिन सेंसिटाइजर है, मेथी इंसुलिन सेंसिटाइजर है, जीरा इंसुलिन सेंसिटाइजर है, तो मेथी, जीरा, दालचीनी पानी ये सब इसका सेवन ये दिन में एक बार दो बार ऐसे, और सोते समय भी दालचीनी का पानी लेके सोए तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया।
0: अच्छा, यानी दालचीनी को पानी में भिगो देना है और छान के
1: बॉइल करके उसको छान के ले सकते हैं।
0: अच्छा,
1: तो ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है आपकी, कोई भी टाइम पे खा लेना। चलो कभी कभी वो हम स्ट्रेस में खा लेते हैं, हमको भूख नहीं लगी होती है लेकिन हम खा लेते हैं तो वो कम कर देता है। और प्रोटीन्स जो जब आप ज्यादा लेते हो, जैसे आपने खिचड़ी ले ली, खिचड़ी में आपने दाल की मात्रा ज्यादा ले ली तो प्रोटीन्स आपको मिल जाते हैं। कोई भी प्रोटीन अगर आप ज्यादा लेते हो ना तो आपका जो सटाइटी, यानी आपको लगता है कि नहीं अब पेट भर गया है, अब भूख नहीं है, तो वो भूख कम लगेगी, वो भी है। तो आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा जो खाना आप खाते हो, कैलोरीज लेते हो, वो कम हो जाए,
0: नहीं खाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि इस तरह से अगर हम अपना डाइट प्लान करते हैं तो बहुत हद तक बहुत सी समस्याओं से हम अपने आप को बचा सकते हैं।
1: डेफिनेटली, मतलब, और उसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि योग, मेडिटेशन, प्राणायाम और फिजिकल एक्टिविटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी। मतलब आज कल जो हम डिप्रेशन वगैरह इतना सब सुनते हैं, इतना स्ट्रेस के कारण, तो वो भी विद एक्सरसाइज काफी हद तक कम हो जाता है,
0: कम हो जाता है। और गीत संगीत सुनने से भी काफी हद तक हमें
1: 100%
0: तो एक गीत हो जाए आपकी पसंद का,
1: मैं सुनना चाहूंगी जूली फिल्म का माय हार्ट इज बीटिंग।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना है, प्रीति सागर की आवाज में हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: डॉक्टर साहब, हमारा सवाल यह है कि एक सामान्य जो मासिक चक्र है वो कैसा होता है या कैसा होना चाहिए?
1: ओके, तो जो पीरियड्स जो हैं वो नॉर्मली हर 28 से 30 दिन में पीरियड्स आते हैं, जिसको हम माहवारी बोलते हैं। तो ये एक अंदर जो हॉर्मोन्स के चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिसके कारण नॉर्मली हर महीने एक अंडा बढ़ता है, जो पीरियड के सेकेंड थर्ड डे से मतलब बढ़ने लगता है, और फिर वो लगभग पीरियड के मे बी 11वें 12वें 14वें दिन फूटता है अंडा, जिसको हम ओवुलेशन बोलते हैं।
0: ठीक है।
1: जब अंडा फूटने के बाद अगर वो वुमन प्रेग्नेंट नहीं होती है तो वो उनका जो यूट्रस का जो लाइनिंग है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो शेड ऑफ हो जाता है। वो लाइनिंग जो है वो तैयारी मतलब गादी होती है कि प्रेगनेंसी अगर रुकती है तो उसकी गादी मतलब वो तैयार होती है, और जब प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तो वो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो शेड ऑफ होती है, तो जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। तो जब रेगुलर ओवुलेशन यानी हर महीने जब अंडा फूटता है और जब प्रेग्नेंट नहीं होते हैं और जो पीरियड आता है, दैट इज व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन।
0: यानी 28 से लेकर 30 दिन का ये चक्र होता है।
1: यस, कई गर्ल्स में 21 दिन में भी पीरियड आता है, दैट इज आल्सो नॉर्मल, वो उनका साइकिल है। कई बार 35 डेज साइकिल हो सकता है।
0: अच्छा। सो इट्स अलग अलग शैली में,
1: ऑन एन एवरेज 28 to 30 days
0: 30 होना चाहिए। अभी आप शुरू में बता रही थी कि इसका जो पहले रेशो था 12 से 15 वर्ष तक था कि वहां से पीरियड शुरू हो जाते थे, लेकिन अब आपने देखा है कि 7-8 साल की लड़कियों को भी पीरियड होने लगी है। क्या इसका कारण है? जल्दी उम्र में जब बच्चा समझ ही नहीं पाता कुछ भी।
1: जी, तो ये एग्जैक्ट रीजन तो शायद डिफिकल्ट है बताना, बट सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अभी आजकल के बच्चों को जो सोशल मीडिया एक्सपोजर है तो उनका जो मैच्योरिटी है
0: तो जल्दी
1: होने लगता है, तो जो हॉर्मोन्स का जो नॉर्मल जो चेंजेस आने चाहिए जो टाइम पे, वो शायद अब जल्दी होने लगे हैं, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा है।
0: तो ऐसी खास बच्चियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? माता पिता को क्या ध्यान रखना चाहिए जिन बच्चियों की 7 या 8 साल की उम्र में महावारी शुरू हो गई है?
1: तो बच्चियां बहुत छोटी हैं, सो इसलिए थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करना, कि वो तो डर जाती हैं कि ये क्या हो रहा है, तो एक तो कि ये नॉर्मल है, नथिंग टू वरी, एंड उनको अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी पैड यूज कर रहे हैं या जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, वो एरिया को साफ रखना, या अगर कपड़ा यूज कर रहे हैं तो कपड़ा अच्छा साफ धुला हुआ होना चाहिए, सनलाइट में सुखाया हुआ होना चाहिए, वो सब बच्चियों को समझाना। एंड सेकेंडली कि लड़कियां इस चीज को लेकर बहुत ही डरी हुई रहती हैं, मतलब कंप्लीटली वो उनको बोल देना कि ये टोटली नॉर्मल है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको ये भी बताना, ऑफकोर्स दे आर वेरी स्मॉल बट आजकल की लड़कियां बहुत स्मार्ट भी हैं, कि प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं जब पीरियड शुरू हो रहा है, दैट मींस अभी अंडा फूटने लगा है, तो दैट मींस देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये भी मतलब सेक्सुअल एजुकेशन भी
0: बहुत
1: जरूरी है, ये सोच के कि बच्ची है तो इसको क्या अभी बताए, लेकिन अभी जो एनवायरमेंट है तो उनको गुड टच बैड टच ये तो हम
0: बताते ही हैं,
1: लेकिन अभी उसमें ये भी ऐड करें कि अब प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है।
0: मतलब एक इतनी छोटी बच्ची को ये एजुकेशन देनी बहुत जरूरी है माँ की तरफ से।
1: हाँ, और ये भी मैं बताना चाहूंगी कि जनरली फर्स्ट 1 ईयर या 2 ईयर्स जब पीरियड स्टार्ट होता है तो उनका जो ओवुलेशन, जो मैंने बताया कि अंडा फूटना, कि वो प्रक्रिया जो रेगुलर नहीं होती है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियां का पीरियड जैसे आया फिर मे बी 5-6 महीने नहीं, या 2-3 महीने कंटिन्यूअसली ब्लीड हो रही है, तो अगर ऐसा हो रहा है उनको डॉक्टर के पास जाना है, बिकॉज यू कैन नॉट अलाउ कि वो बच्ची 15 दिन 20 दिन 25 दिन बस उसका ब्लीडिंग चालू है, बिकॉज वो डेफिनेटली अनिमिक हो जाएगी उसकी। और अगर लेट आया है पीरियड तो नॉट टू वरी कि फर्स्ट 1-2 साल ऐसे इरेगुलर ओवुलेशन होता है,
0: तो ये भी चिंता का विषय हो जाता है।
1: काफी बार मदर्स आती हैं
0: कि क्या बात है अगले महीने इसको समय पर पीरियड्स नहीं आए।
1: जी जी जी,
0: ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि 1-2 साल तक ये समस्या आ सकती है कि पीरियड्स टाइम टू टाइम नहीं आएंगे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो रही है महावारी तो उसके लिए पेरेंट्स को चिंता करनी।
1: यस, उनको डॉक्टर के पास डेफिनेटली लेके जाना है। और अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया है, एक मेरी पेशेंट आई थी जो बच्ची का हीमोग्लोबिन 7 ग्राम हो गया था, क्योंकि वो 20 दिन कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग विद क्लॉट्स था उसको, एंड उनको लगा कि ठीक है बंद हो जाएगा, लेकिन शी ऑलमोस्ट एक फेंट हो गई थी स्कूल में।
0: बच्चे के अंदर कितना डर बैठ जाता है जाता होगा जी, ना, जी, छोटी जी, बच्ची जी, को जी, कि जी, क्या हो रहा है मेरे बिल्कुल, साथ बिल्कुल, और फिर उसको ता उम्र से फेस करना है तो उसके लिए उसको मेंटली बहुत मैच्योर करना होगा एक माँ को। तो डॉक्टर साहिबा, जब आपने कहा कि पीरियड्स रेगुलर भी होते हैं, इरेगुलर्स भी हो सकते हैं, इस दौरान आपने देखा है बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा ऐंठन आती है, बच्चे तो खैर लड़के तो रोने भी लग जाते हैं, महिलाएं भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग से परेशान हो जाती हैं और कई कई महीनों तक पीरियड्स नहीं भी आता है, ऐसी समस्याओं से भी हम दो चार होते हैं, तो इनमें से किन स्थितियों को हम बिल्कुल नजरअंदाज कर सकते हैं या हमें नहीं करना चाहिए और कितना सावधान रहना चाहिए और इसको किस तरह से फेस करना चाहिए?
1: तो जो लड़की जिसका पीरियड रिसेंटली स्टार्ट होता है और एक्सपीरियंस करती है बहुत पेन, तो ये एक नॉर्मल सिम्टम है, तो इसके लिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई लड़कियों को बहुत ज्यादा पेन होता है, कई को बिल्कुल नहीं होता है, कईयों को थोड़ा मीडियम होता है, तो अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आप पेन किलर कोई भी पैरासिटामोल टाइप दे सकते हैं बच्चे को, ताकि वो कंफर्टेबल रहे, क्योंकि सबका पेन थ्रेशोल्ड जो है यानी पेन सहन करने की शक्ति भी अलग
0: अलग अलग होती है,
1: तो उसके लिए हाँ बिल्कुल मेडिसिन ले सकती है बच्ची, बट ज्यादा पेन किलर्स नहीं खाने, ये मुझे स्ट्रेस करना है, क्योंकि ज्यादा लेने से, उनका सेवन करने से कई बार किडनी पे असर आ सकता है, स्पेशली ड्रग लाइक डाइक्लोफेनेक जो पेन किलर्स में काफी टाइम होता है, तो आपके एक डॉक्टर को मिलके ही पेन किलर्स ले, अगर पैरासिटामोल काफी सेफ है तो वो ले सकते हैं। जो 15-20 साल के बाद की एज के, जो पहले पेन नहीं था और अभी बहुत सिवियर होने लगा है, तो डेफिनेटली देखना चाहिए कि क्यों ये हो रहा है, तो फाइब्रॉइड्स एक रीजन हो सकता है, और दूसरा एक अभी जो एंडोमेट्रियोसिस एक एंटिटी है, एटलीस्ट हमारे सिटीज में तो काफी बढ़ गई है।
0: तो डॉक्टर साहिबा, इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले एक गीत सुन लें आपकी पसंद का।
1: जी
0: बताइए।
1: दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा।
0: आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: कई बार क्या होता है, लड़कियां या महिलाएं पीरियड्स के दर्द को वर्षों तक एक सामान्य मानकर सहती रहती हैं, जैसा आपने कहा पैरासिटामोल खाई या वर्किंग वीमेन से चले गई जॉब में, लेकिन कब ये दर्द किसी बीमारी की ओर बढ़ जाएगा? तो आजकल जो एंड्रोमेट्रियोसिस जिसका जिक्र आप कर रही हैं, ये भी इस तरह की बीमारी भी देखने में आ रही है,
1: जी जी,
0: तो इसके बारे में भी आप हमें बताइए।
1: तो एंड्रोमेट्रियोसिस बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक साइंस अच्छी तरह से पता नहीं कर पाया है।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो इसके कारण भी हमारे टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं, मतलब एक कोई एक रीजन नहीं बताया कि मे भी ये हो सकता है, मे भी ये हो सकता है वैसे। तो उसमें से एक कारण शायद सब लोग समझ पाए, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यूट्रस के साइड पे दो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, जो ओवरीज में से जो अंडा निकलता है वो फेलोपियन ट्यूब्स पिकअप कर लेती हैं। तो जब वो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो वजाइना से बाहर आता है, वैसे ही थोड़ा बहुत ब्लड थ्रू द ट्यूब्स एब्डोमिन में चला जाता है, यानी ओवरी पे एंडोमेट्रियल टिश्यू, जो एंडोमेट्रियम जो बोलते हैं, वो एंडोमेट्रियल टिश्यू अगर ओवरी में है या यूट्रस के सरफेस पे है, तो ये जब हर महीने वो एंडोमेट्रियल टिश्यू ड्यूरिंग पीरियड्स वो ब्लीड होता है, तो फिर वो गांठ हो सकती है ओवरीज पे, जिसको हम चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं, या यूट्रस के सरफेस पे वो गांठ हो सकती है, यानी पीरियड्स में वो ब्लड जमा होने लगता है, जिसके कारण वो सिवियर पेन हो सकता है पेशेंट को, और उसके कारण

0: इनफर्टिलिटी भी हो सकती है. तो ये एंडोमेट्रियोसिस डेफिनेटली रूल आउट करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ अ सोनोग्राफी, समटाइम्स इवन अ एमआरआई. मतलब बहुत अगर पेन है तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करके एंडोमेट्रियोसिस रूल आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट
1: जरूरी है.
0: यस
1: इसे केवल एक साधारण दर्द समझकर उसे नजरअंदाज
0: नजरअंदाज
1: नहीं
0: नहीं,
1: करना
0: नहीं बिल्कुल नहीं.
1: चाहिए.
0: यस
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई. और इसके साथ ही डॉक्टर साहिबा, महिलाओं से जुड़ी एक और समस्या आती है ल्यूकोमिया, जिसे
0: जी
1: हम
0: जी
1: सफेद
0: वाइट
1: पानी
0: डिस्चार्ज.
1: है ना सामान्य भाषा में कहते
0: यस
1: हैं, या खुजली है उस स्थान
0: यस
1: पर, या
0: यस
1: जलन
0: यस
1: होना,
0: जी
1: या असामान्य स्राव, ज्यादा
0: जी
1: रक्त
0: जी
1: स्राव
0: जी
1: होता
0: जी
1: है. ऐसी समस्याओं को लेकर भी हमें डॉक्टर के पास जाकर बताने में बहुत झिझक महसूस होती है और हम इसे दबाते चले जाते हैं या
0: जी
1: इसको झेलते चले जाते
0: जी
1: हैं. तो कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है?
0: तो इसके लिए पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो वाइट डिस्चार्ज जो लुकोरिया बोलते हैं, टू सम सर्टेन एक्सटेंट ये नॉर्मल है पीरियड के पहले
1: अच्छा
0: और ओवुलेशन के टाइम पे. जो मैंने बोला ना कि पीरियड के 14वें दिन या 15वें दिन जब अंडा फूटता है उसके पहले थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज जाना, ये दोनों टाइम में नॉर्मल है. तो अगर वाइट डिस्चार्ज में अगर स्मेल नहीं है, इचिंग नहीं है, तो वो वरीसम नहीं है, स्पेशली अगर पीरियड के पहले या मिड पीरियड्स मतलब मिड साइकिल में है. बट अगर बहुत बहुत बास आ रही है या बहुत
1: बदबू आ रही
0: इची,
1: है.
0: यस यस बदबू आना या बहुत इचिंग होना यानी बहुत खुजली जैसा वहां पे आना, अगर ये हो रहा है तो फिर डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए.
1: तो ये जो समस्या हम जिसका जिक्र अभी कर रहे हैं, किसी भी उम्र की महिला में हो सकती है ये
0: जी
1: समस्या?
0: डेफिनेटली डेफिनेटली हो सकती है, कोई भी एज में, यंग एज से लेके मिडिल एज से लेके इवन पोस्ट मेनोपॉज हो सकती है.
1: बिल्कुल.
0: उसमें एक चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि ये एक कैंसर का भी लक्षण हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर.
1: अच्छा, जो
0: जी
1: एक आम समस्या है.
0: यस, इंडिया में ऑलमोस्ट 200 विमेन आर डाइंग ऑफ दिस कैंसर एवरी डे. मतलब ये सर्वाइकल कैंसर इतना कॉमन है खास करके विलेजेस में. तो
1: बिल्कुल.
0: अगर एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज जा रहा है स्पेशली मिक्स्ड विद ब्लड अगर,
1: अच्छा
0: हाँ,
1: जी,
0: तो इमिजिएटली आपको अपने डॉक्टर के पास जाना
1: जाना
0: है. और वो
1: चाहिए.
0: कोई भी एज में मतलब सेक्सुअल एक्सपोजर के बाद अगर ये समस्या आ रही है तो ये 100% आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर ये मिक्स्ड विद ब्लड है. जी
1: किसी तरह
0: जी
1: की झिझक या समस्या को लेकर हम बैठ जाते हैं,
0: जी
1: ये हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होता
0: जी
1: है.
0: बिल्कुल
1: एक गीत आपसे सुनेंगे, लेकिन चूंकि बात बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर चल रही है, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था फाइब्रॉइड का,
0: जी
1: कि महिलाओं के गर्भाशय में एक गांठ है जिसे
0: जी
1: हम फाइब्रॉइड कहते हैं,
0: जी
1: और ये भी एक आम समस्या की
0: या ये
1: है,
0: बहुत ही आम
1: आम
0: है.
1: समस्या है.
0: यस
1: तो ये एक सामान्य है या हमें सचेत हो जाना चाहिए, या कई बार ऐसा मानते हैं कि पीरियड्स में जो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है उसकी वजह से ये फाइब्रॉइड की समस्या सामने आती है?
0: नहीं, फाइब्रॉइड बेसिकली जो यूट्रस का जो मसल है इट्स अ फाइब्रोमस्कुलर ग्रोथ. ये एक नॉन कैंसरस यानी ये कैंसर नहीं है, ये ग्रोथ है, एक गांठ है. लेकिन जो बहुत रेयर है कैंसर होना यानी 1 लाख फाइब्रॉइड में एक कैंसर मतलब हो सकता है, तो मतलब प्रैक्टिकल पर्पज के लिए हम उसको नॉन कैंसरस ही बोलते हैं फाइब्रॉइड. तो जो मसल में जब ये जो गांठ बनने लगती है तो डिपेंडिंग ऑन जो गांठ कहाँ पे है, अगर यूट्राइन कैविटी के अंदर है यानी जहाँ एंडोमेट्रियम है जिसको हम सबम्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं, मसल के अंदर है तो उसको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड बोलते हैं, यूट्रस के बाहर है तो सब सीरोसल फाइब्रॉइड बोलते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन द साइज, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, पेशेंट्स को सिम्टम्स होते हैं फाइब्रॉइड्स के. तो फाइब्रॉइड्स के कॉमन सिम्टम्स ये होते हैं कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, एक्सेसिव पेन होना, एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज और बैकएक. अगर ये सिम्टम्स हैं तो फाइब्रॉइड हो सकता है पेशेंट को. तो डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड लोकेशन, कई बार बड़े फाइब्रॉइड्स यूट्रस के बाहर हैं तो इतना तकलीफ नहीं देते हैं,
1: अच्छा
0: कई बार बहुत छोटे फाइब्रॉइड्स हैं लेकिन यूट्रस के अंदर के साइड पे हैं, बहुत छोटे, मे बी इवन 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, वो बहुत तकलीफ दे सकते हैं. तो ये जरूरी नहीं है कि फाइब्रॉइड्स हैं तो उसको निकालना ही चाहिए. ये भी मेरे पास काफी पेशेंट्स आते हैं कि
1: हाँ
0: फाइब्रॉइड है तो मुझे थैली निकालने को बोला है. आई से नो,
1: हाँ
0: आपके सिम्टम्स क्या हैं, आपकी साइज क्या है फाइब्रॉइड्स
1: और
0: के,
1: कहाँ में है, कहाँ
0: कहाँ
1: पर
0: पे
1: है.
0: लोकेशन कहाँ है, वो सब देख के फिर डिसीजन लिया जाता है कि गांठ निकालनी जरूरी है या यूट्रस निकालना जरूरी है कि.
1: तो कई बार ऐसा भी होता है डॉक्टर साहिबा कि ऐसी स्थिति में बच्चा पैदा नहीं हो सकता है या स्त्री जो है गर्भ धारण नहीं कर पाती है, ये समस्या भी आती है?
0: मैंने जो बोला यूट्रस की लाइनिंग के अंदर जब होता है तो इट कैन एक्ट एज अ फॉरेन बॉडी. जैसे हम कॉपर्टी, जब बच्चा नहीं चाहिए तो कॉपर्टी डालते हैं, कॉपर्टी एक्ट एज अ फॉरेन बॉडी और बच्चे को इम्प्लांट मतलब एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने से प्रिवेंट करती है, यानी गर्भ निरोधक होता है. वैसे ही अगर फाइब्रॉइड जो है अगर यूट्रस के कैविटी के अंदर है, जिसको हम पॉलिप बोलते हैं या सबम्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं, तो उसके कारण बच्चा नहीं होने का कारण हो सकता है या रिकरेंट अबॉर्शन भी हो सकते हैं.

0: पहुंचेगा। इसलिए सचेत हो जाना चाहिए और जैसे ही हमें लक्षण मिलते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज हमें।
1: ये अबॉर्शन का भी कारण बन सकता है, यानी गर्भ नहीं रुकना या घड़ी घड़ी यू नो डेढ़ महीना दो महीने में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना, ये भी कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का।
0: जी, तो एक गंभीर समस्या बन सकती
1: है, बट प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए कैंसर नहीं है तो डरना नहीं है।
0: इलाज संभव है इसका।
1: यस, इलाज संभव है और जरूरी नहीं है कि सब फाइब्रॉइड्स को हमको ट्रीट ही करना है, हम बस उन पे नजर रखें, ऐसा भी कर सकते हैं।
0: जी, तो चलिए गीत सुन लेते हैं।
1: जी
0: बताइए।
1: आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे,
0: बहुत सुंदर गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है अनपढ़।

सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पीसीओडी और आईवीएफ। इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला मनीषा सिंह का, तकनीकी सहयोग दिया अनुश्री गुप्ता ने, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
2: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: करो वादा,
1: हाँ जी वादा।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
5: विविध भारती
0: रंग तरंग।
4: रंग तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। कार्यक्रम की शुरुआत बेगम अख्तर की आवाज से, शायर हैं तस्कीन कुरैशी।

0: मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।

0: ये आवाज़ें थी उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की, शायर नसीम रिफत, संगीत ललित का और एल्बम आगोश।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आंखों में तेरा ही चेहरा, ये एल्बम का नाम है। आवाज और गीत जय वालिया का, संगीत ललित का।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।

0: 다른
1: पिनाज मसानी की आवाज़ है, शायर हैं गालिब, संगीत मधुरानी का एल्बम आपकी बज़्म में।

लीजिए अब सुनिए साधना सरगम और उत्कर्ष शर्मा की आवाजें, लता विनोद नोवाल का लिखा हुआ गाना, संगीत है गोविंद बथरी का।

रंग तिरंग कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं जुबिन नौटियाल और पायल देव की आवाजों में। कुणाल वर्मा का लिखा हुआ गाना, पायल देव का संगीत, एल्बम का नाम है दिल लौटा दो।

फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत आपने सुना, दिल झूम झूम नाचे, इस एल्बम का गाना, गीत और संगीत ललित सेन का। इसी के साथ आज का रंग तरंग ये कार्यक्रम संपन्न होता है। रंग

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। जापान में एशियाई खेलों में नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किया। भारतीय टीम ने कुल 328 अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। चीन पहले और कुवैत तीसरे स्थान पर रहा। एशियाई खेलों में भारत कुल 47 पदकों के साथ 11वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें 5 स्वर्ण, 21 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ADGPI पर पोस्ट कर इस मुलाकात की जानकारी दी। अमरीकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा हालात पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सऊदी अरब भारत का भरोसेमंद और महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। उन्होंने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, संस्कृति और पारस्परिक आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने दोहा में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2026 वार्षिक बैठक के दौरान सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान से मुलाकात की। श्री जदान ने भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और बेहतर निवेश माहौल के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को बधाई दी। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं ने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत के सफल समापन का स्वागत भी किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पारादीप बंदरगाह दल के त्वरित संयुक्त बचाव के प्रयासों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत के बंदरगाह हर समय पूर्ण समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ओडिशा के पारादीप तट के पास जहाज लगभग 9000 मीट्रिक टन पाम ऑयल ले जा रहा था और उसमें 23 चालक दल के सदस्य सवार थे। रविवार सुबह मुख्य इंजन के फेल होने और गिट्टी टैंक में तेजी से पानी भरने के कारण जहाज एक तरफ झुक गया, जिसके बाद जहाज ने आपातकालीन संकट कॉल जारी की थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष

0: नवीन आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी पदाधिकारियों की ये पहली बैठक है। इसमें पार्टी की संगठनात्मक प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आज विश्व हृदय दिवस है। हृदय रोगों, उनकी रोकथाम और वैश्विक प्रभाव के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 257 अंक गिरकर 72,514 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे दिल हृदय दिल शब्द के गाने। आज विश्व हृदय दिवस है तो दिल शब्द के गाने। 24 घंटे इस फिल्म का ये पहला गाना आशा भोसले और तलत महमूद की आवाजों में, राजा मेहंदी अली खां के बोल हैं, संगीत है बिपिन बाबुल का।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गाना अब आपको सुनवाते हैं। शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम आह।

0: मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आज विश्व हृदय दिवस पर दिल शब्द के गाने आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में आईना फिल्म का ये गाना, समीर के बोल, दिलीप सेन समीर सेन का संगीत।

शकील बदायूनी का लिखा और सी रामचंद्र का संगीतबद्ध किया ये गाना महेंद्र कपूर की आवाज में, फिल्म का नाम जिंदगी और मौत।

ब्रेक के बाद अब यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं अमरदीप फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत को लिखा राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत बद्ध किया श्री रामचंद्र ने।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: महेंद्र कपूर की आवाज, हसन कमाल के बोल, रवि का संगीत, फिल्म आज की आवाज।

0: वाह प्रभात वाह, बहुत रिवित तालियां उनके लिए।
1: आकाश दीप फिल्म का गाना लीजिए अब सुनिए, लता मंगेशकर की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है चित्रगुप्त का।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: आंधी और तूफान इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, फारूक कैसर के बोल, संगीत है रॉबिन बनर्जी का।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब सुना जाए अलबेला फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और इसकी धुन बनाई सी रामचंद्र ने।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अब आपको सुनवाते हैं तलत महमूद की आवाज में आरजू फिल्म का ये गाना। इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई अनिल बिस्वास ने।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आस का पंछी। इस फिल्म से सुबीर सेन की आवाज, शैलेंद्र के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका में कल से शुरू होने वाली दो दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि तीन दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने तथा ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिक्की फ्रेम्स 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि कोई कहानी केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं होती, बल्कि वो किसी विषय, स्थान या मुद्दे के बारे में लोगों की सोच को प्रभावित कर सकती है और समाज को एक दूसरे को समझने के तरीके को आकार दे सकती है।
1: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूं कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। फिल्म शूटिंग और उसके साथ साथ में किसी एक लोकेशन को प्रमोट करने के लिए फिल्म का उपयोग, ये पर्यटन के लिए निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
0: फिक्की एम्बेसडर और अभिनेता आयुष्मान खुराना ने कहा कि भारत का मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र अब फिल्म, वेब सीरीज, टेलीविजन, गेमिंग, खेल, संगीत, कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक विस्तारित हो चुका है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपर सचिव प्रभात ने गलत सूचना, सिंथेटिक कंटेंट और तेजी से उत्पन्न हो रही AI जनित सामग्री से उत्पन्न चुनौतियों का जिक्र किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बारापुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये मयूर विहार फेज 1 और सराय काले खां के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करता है और पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। इस अवसर पर उन्होंने 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की कनेक्टिविटी परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें पार्टी की संगठनात्मक प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India's relationship with China is better today than it was last year. Speaking at an event organized by Asia Society in New York, Dr. Jaishankar said the relationship started improving once the border standoff was resolved. He said India has long been telling China that a dip in bilateral relationship does not help either country and a long standoff does not serve interests of any nation. Speaking about the India-US relationship and the trade deal negotiations, the External Affairs Minister said both nations have reached a situation where there is an understanding on the trade agreement. He pointed out that India is a society of small producers, small agriculture producers, and small factories. He added that apart from the per capita gap between India and the US, the nature of production and the nature of society are very different. He said a trade negotiation required a certain amount of patience and detailing to see it through. He admitted that tariffs did create a bump for the relationship last year. India and Saudi Arabia reviewed cooperation in defense, security, trade, investment, energy, technology, healthcare, and education during a meeting with Saudi Finance Minister Mohammed Al-Jadan on the sidelines of the AIIB annual meeting in Doha. Finance Minister Nirmala Sitharaman described Saudi Arabia as a trusted and valued strategic partner of India. They welcomed the successful conclusion of negotiations on the India-Saudi Arabia bilateral investment treaty aimed at providing a stronger and more predictable framework for investments. Ms. Sitharaman also met Switzerland's AIIB Governor, Ambassador Pietro Lazzeri, and discussed investment opportunities in India, including through NIIF and GIFT IFSC. The government has said the country's national highway network has grown by nearly 61% to over 1,46,000 kilometers in March this year from over 91,000 kilometers in 2014. This rapid development has strengthened connectivity, improved access to markets, and supported faster movement of people and goods. The greening of India's national highway network is guided by the Green Highways Plantation, Transplantation, Beautification and Maintenance Policy 2015. Five new sites and serial and transnational proposals have been included in India's UNESCO tentative list, increasing India's count to 78. The newly added sites include the Buddhist murals of Bhag, cave paintings, group of temples of the Chambal Valley, the Gupta era Udaygiri caves, the tribal legacy of Ginorgar, and the sites of Satyagraha. In a social media post, Union Minister of Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat said these additions reflect the extraordinary diversity of India's heritage. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated Parapula Phase 3 corridor, providing a signal-free link between Mayur Vihar Phase 1 and Sarai Kale Khan and improving connectivity between East and South Delhi. He also launched connectivity projects over 1,900 crore rupees. During the inaugural ceremony, Delhi Chief Minister Rekha Gupta, Public Works Department Pravesh Sahib Singh, Urban Development Minister Ashish Sood and other ministers were present. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will be on a visit to the US from today till the 5th of next month. During the visit, Mr. Goyal will participate in the two-day G20 trade ministers meeting, which will commence tomorrow. Mr. Goyal will also hold bilateral meetings with his counterparts on the sidelines of the G20 meeting. Neeru Tanda has made history by becoming the first Indian shooter to win a gold medal in the women's trap individual event in the Asian Games 2026. This was after she carried India to a silver medal in the women's trap team event with Ashima Ahlawat and Manisha Kher. In boxing, Parveen Huda and Ankush Bangal have stormed into the gold medal bouts of their respective weight categories with semi-final wins at Nishio today. In athletics, India secured a double podium finish in the men's javelin throw. Yashveer Singh won the silver medal while Rohit Yadav claimed bronze. President Draupadi Murmu has congratulated Neeru Tanda for winning India's first individual gold medal at the Asian

0: Games 2026. And with that, we end this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। बड़गाई जमीन मामले में हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, आरोप गठन रोकने की मांग की। झारखंड के पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र को मिला जीआई टैग, लोक संस्कृति को मिली नई मान्यता। कृषि भूमि के बढ़ते आवासीय उपयोग पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने उठाए सवाल। अनुसूचित क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की समीक्षा की मांग। विश्व हृदय दिवस पर राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में लगाए गए निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। और पश्चिमी सिंहभूम टी20 लीग का शुभारंभ, कोल्हान किंग ने जगन्नाथपुर टाइगर्स को हराकर जीता उद्घाटन मैच। और अब समाचार विस्तार से। बड़गाई जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में आरोप गठन और आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है। बता दें कि मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री की हस्तक्षेप याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद पीएमएलए की विशेष अदालत में आरोप गठन के लिए 30 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। झारखंड के पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र को जीआई टैग मिलने से इसके विशिष्ट भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान को कानूनी मान्यता मिली है। चेन्नई स्थित भारत सरकार की भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने मांदर ऑफ झारखंड को जीआई टैग प्रदान किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: झारखंड के पारंपरिक लोक वाद्य मांदर को जीआई टैग मिलने से इसकी विशिष्ट भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान को कानूनी मान्यता मिली है। चेन्नई स्थित भारत सरकार की भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने मांदर ऑफ झारखंड को जीआई टैग प्रदान किया है। मांदर का जीआई आवेदन 24 सितंबर 2021 को दाखिल किया गया था। मांदर को जीआई पहचान मिलने से पारंपरिक कारीगरों के उत्पादों को झारखंड की विशिष्ट पहचान मिलेगी और आधिकारिक जीआई दर्जे के साथ देश विदेश के बाजारों तक इसकी पहुंच बढ़ने का आधार तैयार होगा। मांदर सम्राट मनपूरन नायक ने इसे झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर बताते हुए कहा कि मांदर को जीआई टैग मिलना पुरखों और माटी का सम्मान है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने डोबो, कपाली सहित आसपास के अनुसूचित क्षेत्रों में कृषि भूमि के बदलते स्वरूप और बढ़ते निर्माण पर चिंता जताई है। जमशेदपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भूमि उपयोग से जुड़े फैसलों में संविधान की 5वीं अनुसूची, सीएनटी एक्ट और पेशा के प्रावधानों का पालन जरूरी है।
2: ये एरिया फरकाई और सोना रेखा का दोनों पानी मिलता है। अगर कोई भी डैम पानी छोड़ेगा तो उसका नुकसान और उसके बाद जो परिस्थिति यहाँ पर बन रही है वो यही है कि ऐसे जगहों में जो ट्राइबल लैंड है उसका अतिक्रमण और उसकी हत्या की जा रही है और एक संकट पैदा स्थानीय स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर का हो रहा है और संवैधानिक दृष्टि से ऐसे निरीह लोगों का अधिकार का हनन हो रहा है।
0: विश्व हृदय दिवस के अवसर पर निजी अस्पताल ने राजधानी रांची में निशुल्क स्वास्थ्य जांच अभियान शुरू किया है। अभियान का उद्देश्य लोगों को हृदय संबंधी बीमारियों और उनके प्रति जागरूकता के बारे में जानकारी देना है। राजधानी के विभिन्न स्थानों में कैंप लगाए गए हैं। वहीं जमशेदपुर सहित राज्य के कई इलाकों में विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए हैं। हृदय रोग विशेषज्ञों ने हार्ट अटैक के समय मरीजों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की सलाह दी है।
3: हार्ट का जो मसल है वो पंप होता है जो आपके पूरे बॉडी को ब्लड भेजता है। अगर आपका पंप ही खराब हो जाएगा तो आपका किडनी, बाकी ऑर्गन सब में धीरे धीरे दिक्कत आएगी। आप सो नहीं पाएंगे, सांस फूलेगा, चल नहीं पाएंगे, अपना रोजदिन का काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप टाइम से पहुंचते हैं और टाइम से हम लोग इंटरवीन करते हैं तो हम लोग हार्ट के मसल्स को बचा पाते हैं, उसके फंक्शन को बचा पाते हैं।
0: झारखंड डिजिटल हेल्थ कॉन्क्लेव 2026 के आयोजन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आज प्रेस को संबोधित करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय कक्ष रांची में आयोजित होगी जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार भी मौजूद रहेंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की 326 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने का आज अंतिम दिन है। झारखंड इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के तहत हेल्थ सुपरवाइजर

0: मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर समेत विभिन्न पदों पर भर्ती होगी। इनमें हेल्थ सुपरवाइजर के 137 और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के 62 पद शामिल हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया में सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम बनने वाला देश बन गया है।
1: सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक रिवॉल्यूशन बन चुका है। भारत आज दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है। 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है।
0: पाकुड़ में डिजिटल झारखंड से सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान हुई है। जाति, आवास, आय, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सहित कई सेवाएं अब लोगों को सुगम तरीके से उपलब्ध हो रही हैं। लाभुकों का कहना है कि डिजिटल सेवाओं से कार्यालयों के चक्कर कम हुए हैं और समय की बचत हो रही है।
2: पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पहाड़िया आदिवासी संताल समाज जो है अपने हक अधिकार के लिए प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय वगैरह वगैरह में जो है चक्कर काटना पड़ता था। आज इस डिजिटल क्रांति के माध्यम से जो है वो लोग आसानी से ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकते हैं।
3: पहले हम लोग हर काम के लिए थे, यहाँ वहाँ घूमते थे, यहाँ से वहाँ जाना पड़ता था। वो सेवा पंचायत में मिला है हम लोग को, तो हम लोग को कहीं जाना नहीं पड़ता।
0: साहिबगंज के बरहेट प्रखंड स्थित उत्क्रमित आदर्श कन्या उच्च विद्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बाल अधिकार और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक किया गया। झारखंड आंदोलनकारियों, किसानों, मजदूरों और विस्थापितों के अधिकार, सम्मान और स्वाभिमान की मांग को लेकर कल झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। बंद से पहले आज मशाल जुलूस निकाला जाएगा। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा सहित विभिन्न संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। दुमका में पारंपरिक वेशभूषा और तीर धनुष के साथ हूल क्रांति, जबकि दक्षिणी छोटा नागपुर में महिलाएं पारंपरिक पोशाक में उलगुलान का आगाज करेंगी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 257 अंक गिरकर 72,514 पर और निफ्टी 64 अंक गिरकर 22,716 पर कारोबार कर रहा था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,38,400 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,36,000 रुपए प्रति किलो है। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ की T20 लीग का सोमवार को चाईबासा में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन मैच में कोल्हान किंग ने जगन्नाथपुर टाइगर्स को 8 विकेट से हराया। बारिश के कारण मैच 10-10 ओवर का कराया गया। जगन्नाथपुर टाइगर्स ने 99 रन बनाए। जवाब में कोल्हान किंग ने 7 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट पर 104 रन बनाकर जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बड़गाई जमीन मामले में हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, आरोप गठन रोकने की मांग की। झारखंड के पारंपरिक लोक वाद्य मांदर को मिला GI टैग, लोक संस्कृति को मिली नई मान्यता। कृषि भूमि के बढ़ते आवासीय उपयोग पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने उठाए सवाल। अनुसूचित क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की समीक्षा की मांग। विश्व हृदय दिवस आज राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में लगाए गए निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और पश्चिमी सिंहभूम T20 लीग का शुभारंभ कोल्हान किंग ने जगन्नाथपुर टाइगर्स को हराकर जीता उद्घाटन मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। शरीर में जो कोई सबसे ज्यादा प्रामाणिक अवयव है वो हृदय है, जो अपनी जान की बाजी लगाकर भी हमारी रक्षा करता है। विमान में 4 इंजन लगाए जाते हैं, लेकिन भगवान ने हृदय में 6 गुना ज्यादा ताकतवर बनाया है। एक साथी लिख रही कि हंसिए और दिल को तंदुरुस्त रखिए, क्योंकि आज 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस है। लोग भूल गए हैं कि दिल को वेंटिलेटर की नहीं, सिर्फ थोड़ी सी खुली हंसी की जरूरत है। हंसने से फेफड़े तो फूलते ही हैं, साथ ही दिल को भी लगता है कि आप अभी जिंदा दिल हैं। इसलिए पार्क में जाकर कृत्रिम रूप से हा हा हा करने वाले लाफ्टर क्लब की जरूरत पड़े उससे पहले ही घर में बीवी के चुटकुलों पर या खुद के हालातों पर हंस लीजिए। जी हाँ, हंस लीजिए। हम आज अभिनेता महमूद को याद कर रहे हैं। उनके द्वारा जो एक हास्य कलाकार के रूप में उन्हें ज्यादा जाना जाता है, लेकिन उन्होंने और भी मतलब अभिनय के क्षेत्र में जो है उन्होंने अपना एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि दूसरी तरह की जो भूमिका है उन्हें भी उन्होंने बहुत संजीदगी से पूरा किया है या निभाया है। चलिए शबनम फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, जावेद अनवर के बोल हैं, संगीत है उषा खन्ना का।

0: शिखन।
1: बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि सबसे बड़ा धन तो अपना स्वास्थ्य होता है, हेल्थ इज वेल्थ। सेहत अच्छा है तो आप धन कमा सकते हैं, पर धन से आप सेहत नहीं खरीद सकते। ये बात हमारे एक साथी ने लिखी है जो हमने आपको पढ़ के सुनाए। एक साथी लिख रहे हैं कि आज सुबह सुबह गैस सिलेंडर खत्म हो गया। जब मैं सिलेंडर बदलने के लिए नया सिलेंडर लेने लगी तो पतिदेव ने पूछा कि क्या गैस खत्म हो गया है, तो मैंने कहा नहीं, इस वाले सिलेंडर को घुमाने ले जा रही हूँ। फिर दोनों ठहाके मारकर हंस पड़े और दिन बन गए। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अनिद्रा सबसे बड़ा कारण है दिल के लिए। जब भी रात को नींद ना आए तो लंबी लंबी सांस ले और श्वासासन में थोड़ी देर लेटे और मोबाइल से तो दूरी ही बना ले तो आपको लाभ अवश्य होगा। एक साथी लिख रहे हैं कि आज जो आपने टॉपिक लिया है बड़ा अच्छा है, हंसना मुस्कुराना और अपने दिल का ख्याल रखना, ये जिंदगी की बहुत बड़ी जरूरत हो गई है। सबसे बड़ा रुपया, इस गाने पर मुझे याद आ गया कि कॉलेज के एनुअल फंक्शन में हम लोगों ने 4-5 लड़कियों ने मिलकर इस गाने पर डांस किया था। वो फोटो आज भी देखती हूं तो अपने आप चेहरे पर हंसी आ जाती है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अब हृदय को पहले की तरह स्वस्थ नहीं रख सकते, हृदय क्योंकि हृदय ही क्यों बल्कि पूरे शरीर को ही नहीं रख सकते, क्योंकि अब वो चूल्हे की रोटी नहीं खा सकते। अब तो गैस आ गई है जिससे पेट में गैस बनना शुरू हो गई और पहले की तरह फिट रहना एक सपना है। यदि व्यक्ति गैस की पकी रोटियां खाना बंद कर दे तो स्वास्थ्य पुनः लौट आएगा, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है क्योंकि आजकल कोई कुछ करना नहीं चाहता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल की दुनिया में हंसी और चाहत का अपना ही रंग है। किसी की मुस्कुराहट दिल को सुकून देती है, किसी की सादगी मन को छू जाती है और किसी का माकपन दिल पर तीर सा असर कर जाता है। अपनों के साथ हंसी के ठहाके जीवन में खुशियों के रंग भर देते हैं, कभी अटपटे चटपटे पल भी चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। चलिए धन्यवाद आपका। इसी के साथ एक सवाल और मैं आपके हवाले करती हूं कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बात बात पर बहुत हंसता है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी मुस्कुराता नहीं है? चाहे कितनी ही हंसी की बात हो, वो न कभी हंसते हैं न मुस्कुराते हैं। तो ऐसे लोगों को जब आप देखते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में, बताइएगा। चलिए अगला गाना गुमनाम फिल्म से मोहम्मद रफी और महमूद की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, महमूद और हेलन पर फिल्माया गया ये गाना।

0: जय हंगामा, कहाँ भाग रही तुम्हें?
1: काले से डर गए क्या?
2: हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हमें काले हैं तो क्या हुआ?

ख्याला चंदाना ये सोला साला तंदाना है तेरे ख्याला चंदाना हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल

0: पाका नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी चाला जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी
1: गुमनाम फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि जो बिल्कुल हंसते नहीं, ऐसे लोग तो हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, हमारे परिवार में हम सब हंसते हंसाते रहते हैं। एक साथी ये लिख रहे हैं कि परिवार में है तो मैं रिश्ते की बात नहीं करूंगी, शायद रेडियो पर सुन ले तो संबंध खराब हो जाएगा, पर 40-42 सालों से मैंने कभी उन्हें ठहा के लगाकर हंसते हुए नहीं सुना। अगर वो कभी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं तो सोचती हूं कि आज निश्चित कुछ अजीब होने वाला है। परिवार के लोग उनके इस एटीट्यूड से वाकिफ है और पीछे से जो है उनके बारे में ये बात भी होती है। तो आज कुछ अच्छी बात हो तो 1-1.5 इंच वो मुस्कराएंगे जरूर। एक साथी ये लिख रहे हैं कि अक्सर बहुत से कॉमेडियन की असली जीवन जो है वो बहुत तनावपूर्ण रहता है, दूसरों को हंसाकर खुद अंदर से वो दुखी होते हैं। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि गुजराती मुहावरा है कि हंसे तेनू घर वसे, मतलब जो सदा हंसता मुस्कुराता रहता है उसका घर आसानी से बस जाता है। वैसे अच्छी तंदुरुस्ती यानी सेहत के लिए हंसना मुस्कुराना बहुत जरूरी है, भले ही वो अपने मित्र सगे संबंधी हो या कोई और हो। एक साथी ने ये बात लिखी कि महमूद अपने पूरे शरीर से अभिनय करते थे। एक समय ऐसा था कि वे पर्दे पर आते और हंसी का जो दौर दर्शकों के मन में चलता वो खत्म ही ना होता। एक जमाना तो ऐसा था महमूद अकेले अपने दम पर पर्दे तक दर्शकों को खींच कर ले आते थे। वैसे तो फिल्मी दुनिया के पिटारे में अनेक हास्य कलाकार आए और गए, मगर महमूद एक रत्न थे। वे उस अनमोल मोती की तरह थे जो हर फिल्म निर्माता अपनी अंगुली में पहनना चाहता था। ऐसे रत्न सदियों में एक बार ही जन्म लेते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए आरती फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, रोशन का संगीत। एक बार फिर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बात बात पर ठहाके लगाकर हंसते हैं और माहौल खुशनुमा हो जाता है? कोई ऐसे व्यक्ति जो चाहे कितनी भी हंसी की बात हो बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराते? चलिए गीत सुनिए।

गीत सुनते सुनते और आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं ये पढ़ते पढ़ते गीत कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला, और बहुत सारे कमेंट्स हमारे सामने हमें नजर आ रहे हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बिहार में कहते हैं कि हंसे तो फंसे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप हंसिए मत। किसी की नाकामियों पर, शारीरिक दुर्बलता पर मजाक उड़ाते हुए मत हंसी, ऐसी हंसी किस काम की। जी हाँ, किसी के ऊपर हंसने का ये मतलब नहीं है कि हम किसी की कमियों पर हंसे, हंसे हंसने वाली बातों पर हंसे, या अपनी ही किसी गलती पर हंसे, या कोई मूर्खतापूर्ण कार्य जब हम स्वयं कर लेते हैं तो हमें अपने आप पर हंसी आ जाती, हम उस हंसी की बात कर रहे हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ रखने का हंसने के अलावा एक और बहुत ही दिल के लिए लाभदायक बात है, वो है अपने हृदय में कोई भी बात दबाना नहीं चाहिए, कह डालना चाहिए, हृदय हल्का भी होगा और स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। साथ में विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम का आनंद भी हम ले सकते हैं। और एक साथी की ये बात है कि खुशी से खिला हुआ चेहरा सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि दिल, दिमाग और शरीर का हर अंग खिल जाता है। पता नहीं हम हंसने में भी कंजूसी क्यों कर देते हैं, पहले हम खुद मुस्कुराएं तभी तो हम दूसरों के होठों पर मुस्कान ला पाएंगे। एक साथी ये लिख रहे हैं कि एक वाक्य याद आ गया जो विविध भारती पर किसी प्रोग्राम में सुना था कि महमूद साहब के घर पर कोई पार्टी हो रही थी जिसमें जूनियर महमूद साहब को नहीं बुलाया, उन्हें पार्टी में जूनियर महमूद साहब बिना बुलाए पहुंच गए, वैसी टी शर्ट और ड्रेस पहनकर जैसी महमूद साहब ने पहन रखी थी। इस गीत में हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले, इस गीत में जो पहन रखी, और ये

गीत गाने लगे, बस फिर क्या था, महमूद साहब ने जूनियर महमूद को अपने गले से लगा लिया। और एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि हंसना केवल होठों का व्यापार नहीं, आत्मा की औषधि है। जो व्यक्ति हंसना जानता है वो दुखों में भी रास्ता निकाल लेता है, और जो हंसाना जानता है वो दूसरों के जीवन में दिया जला देता है। तनाव, बीमारी, अकेलेपन से भरी इस भागदौड़ भरे जीवन में एक सच्ची हंसी दिल हल्का कर देती है और रिश्तों में जमी धूल को साफ कर देती है। हंसने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता और हंसाने वाला व्यक्ति कभी भुलाया नहीं जाता। इसलिए हंसिए ताकि आपका मन स्वस्थ रहे, और हंसाइए ताकि आपका होना दूसरों के लिए उत्सव बन जाए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बचपन में जब छोटे थे तो कक्षा 8वीं में था, तो मेरे क्लास टीचर बहुत ही अच्छे थे। उनके चेहरे पर हमेशा हंसी ही दिखाई देती थी, चाहे वो हमें मारते भी थे लेकिन उस मार के पीछे भी एक हंसी छुपी रहती थी। और हमारे प्राचार्य थे, उनको कभी भी हमने हंसते हुए नहीं देखा था। तो ये बातें हमारे साथियों की है, और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसा गीत हम सुनने जा रहे हैं जिसके बारे में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। जितनी भी बार ये गीत सुनो चेहरे पर हंसी आए बिना नहीं रहती। सुनिए ये गाना।

पड़ोसन फिल्म का ये गाना अभी हमने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि हृदय प्रसन्न कर दिया आपने चतुरनार, ये गाना सुनवा के, जो कि पड़ोसन फिल्म से हमने सुना। और एक साथी लिख रहे हैं कि मैं तो हंसता हूँ अपने हालातों पर, क्योंकि लोग कहते हैं कि हंसने वाले लोग ज़्यादा जिंदा रहते हैं। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ रही है, एक पड़ोसी थे जो किसी को हंसते हंसाते या बच्चों को खेलते हुए देख करके बहुत भड़क जाते थे। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि मेरे जो पति हैं बहुत कम ठहाका लगाकर हंसते हैं, बहुत सीरियस वो रहते हैं। और एक ये भी लिखा है साथी ने कि पड़ोस में बहुत पहले एक परिवार आया था, उसमें उनकी जो श्रीमती थी बहुत हंसमुख थी, और जब भी मिलती थी तो ऐसा लगता था कि वो अभी हंस देंगी या जो है एक स्माइल एक दे देंगी, इस तरह की बात इन्होंने लिखी। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हंसना हंसाना एक कला है, किसी किसी को ये इसमें महारत हासिल होती है। कई कलाकार हैं जो दूसरों को आसानी से हंसा देते हैं, महमूद जी भी उनमें से एक हैं जिन्हें आज हम याद कर रहे हैं। हंसना सेहत के लिए ज़रूरी है, जिसमें शरीर में उत्पन्न तनाव को वो दूर करता है, आंतरिक खुशी मिलती है। और कुछ गानों का जिक्र उन्होंने किया है। चलिए अगला गाना बेटी बेटे इस फिल्म से।

एक साथी ने ये बात लिखी कि दिल में खुशी और सुकून हो तो चेहरे की मुस्कान और भी खूबसूरत हो जाती है, और बस यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए, आपके मुस्कान किसी के दिल में उजाला कर सकती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ हुई भारी बरसात से बिजली आपूर्ति 5 दिन से बाधित है, किसी तरह मोबाइल चार्ज कराकर विविध भारती के कार्यक्रमों को हम सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, आपका ये जो प्यार है, ये जो मोहब्बत है विविध भारती से, बस ये मोहब्बत हमारे दिल में घर कर जाती है, दिल तक पहुंचती है कि चाहे हालात कुछ भी हो, लेकिन आप कोशिश जरूर करते हैं कि हम किसी तरह विविध भारती के कार्यक्रम सुन सकें। धन्यवाद आपका इस प्रयास के लिए। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि मेरा ये जो अभी गाना हमने सुना ना पड़ोसन फिल्म का, एक चतुर नार बड़ी होशियार, इस गाने के बारे में उन्होंने लिखा है कि मेरा खुद का नाम चतुर है और इस गाने में गाने की वजह से मेरे दोस्त जो है वो हमेशा ये हम फरमाइश करते थे कि चतुर नार करके सिंगार ये गाना आप गुनगुना कर सुनाइए, और मैं उन्हें गुनगुना कर सुनाता हूँ, गाकर सुनाता हूँ, और मन ही मन बहुत खुश भी होता हूँ। चलिए, आपकी खुशी हमारे लिए बहुत अनमोल है, और अब हम आपको दो फूल इस फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, आशा भोसले और महमूद की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत आर डी बर्मन का।

एक साथी की ये बात है कि हृदय के स्पंदन को हृदयंगम कर हृदय हेतु हंसिए और हंसाइए। हृदय की अदला बदली सिर्फ प्रेम और साहित्य में होती है, भौतिकी नहीं। विश्व हृदय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिल आपके पास ही रहेगा, कोई और नहीं ले सकता, अतः उसकी सुरक्षा संरक्षण आपके ही हाथ।

बातों में है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अपने दिल का ख्याल रखना, अपने दिलों को जोड़ना, इसका ध्यान रखिए। चलिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, कुंवारा बाप इस फिल्म का गाना।

हंसते हंसाते रहिए और अपने हृदय के अपने दिल की सेहत का ख्याल रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: नायडू ने कहा, भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में आज बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से चीन से कहता रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हितों में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के हित में नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। उन्होंने कहा कि व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य और बारीकी से विचार विमर्श की जरूरत है। डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अमरीकी पक्ष की ओर से पर्याप्त समझ या संवेदनशीलता नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस, यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमरीका में कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से इतर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर भी चर्चा की। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। अमरीकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमांड के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया 2027 के बारे में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि भारत का लक्ष्य 2047 तक यात्रियों की संख्या मौजूदा लगभग 24 करोड़ से बढ़ाकर 130 करोड़ करना है। श्री नायडू ने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के बारे में श्री नायडू ने कहा कि इस योजना ने देश भर में हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अगले वर्ष 16 मार्च से नई दिल्ली के भारत मंडपम में रूट्स एशिया 2027 के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज बारापुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये सुविधा मयूर विहार फेज 1 और सराय कालेखां के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करेगी। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच आवागमन बेहतर होगा। श्री शाह ने मुखरबा चौक अंडरपास का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्री श्री शाह ने मोदी मिल, सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर तथा लोनी अंडरपास के निर्माण की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं की लागत 1900 करोड़ रुपए से अधिक रहेगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारत की विविध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, प्रलेखन, डिजिटलीकरण, अनुसंधान और संवर्धन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि ये साझेदारी मंत्रालय के जनजातीय अनुसंधान तंत्र और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के नेटवर्क को इस केंद्र की अकादमिक, अभिलेखीय और अनुसंधान तथा क्यूरेटोरियल विशेषज्ञता के साथ जोड़ेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज आंध्र प्रदेश वन विकास निगम को प्रथम प्रमाण से सम्मानित किया। प्रमाण राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विश्वसनीय और पारदर्शी ढांचा है, जो वनों, लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रमाणित वनों और कृषि वानिकी उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने नागरिकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने और नई तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। श्री नायडू ने आज विजयवाड़ा में क्षमता निर्माण आयोग द्वारा आयोजित मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत साधना श्रृंखला 2026 की दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि कैसे वक्फ संशोधन अधिनियम से बदलाव आया है।
3: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 एक ऐसा ऐतिहासिक विधायी कदम है जिसके माध्यम से सरकार ने सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद को दोनों सदनों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का पारित होना एक ऐतिहासिक क्षण है। दाऊदी बोरा समुदाय के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम समुदाय के अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के साथ हुए अन्याय का संज्ञान लेने और उसके समीक्षा करने के बाद बनाया गया है।
4: 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि हमें न्याय दो, वक्फ वालों ने हमारे साथ ये किया। उसमें ज्यादातर बहनें बेटियां, तब जाकर के मैंने कहा रियलिटी क्या है खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया है, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की सब। तो मुझे मालूम था कि बोरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब को और मुझे अहमदिया को और मुसीबत है, उनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया।
3: कोलकाता उच्च न्यायालय की वकील शिवली शाह ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को उनके संपत्ति की अधिकार प्राप्त हुए हैं।
5: इस अमेंडमेंट एक्ट में 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस है। महिला लोगों के लिए एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंटेशन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। नॉर्मली महिलाओं लोगों का वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये मास्ट कर दिया गया है कि वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए। चाहिए और वाकआउट काउंसिल में भी कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए।
3: आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कोल्लन लहा की रिपोर्ट।

0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आज राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी के इन पदाधिकारियों की ये पहली बैठक थी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, बसपा के रामजी और 6 अन्य नेताओं का कार्यकाल 25 नवम्बर को समाप्त हो रहा है। उत्तराखंड से नरेश बंसल का कार्यकाल भी इसी दिन समाप्त हो रहा है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए भी सूचना जारी की है। ये सीट तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मलिक के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई थी। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुंबई में फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूँ कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत की संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
0: असम के सोनितपुर जिले में सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में सोनाई रूपाई जंगल और हाथियों के लौटने का उल्लेख किया था।
2: हिमालय की तलहटी में स्थित सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य 220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4 सितंबर 1998 को इसे आधिकारिक रूप से वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। असम वन विभाग की 2024 की हाथी गणना के अनुसार इसकी सीमाओं के भीतर 140 हाथी दर्ज किए गए थे। यह अभयारण्य कभी सैकड़ों हाथियों का घर हुआ करता था, लेकिन बढ़ती मानवीय गतिविधियों और भूमि अतिक्रमण के कारण हाथियों ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया था। हालांकि अतिक्रमणकारियों को हटाने और वनीकरण के माध्यम से हरियाली बहाल करने के लिए किए गए विशेष प्रयासों ने जंगल के पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नतीजतन अब उन क्षेत्रों में भी हाथियों के झुंड देखे जा रहे हैं जहां वे कई वर्षों से दिखाई नहीं दिए थे। सोनितपुर से रजत भरद्वाज के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी न्यूज, गुवाहाटी।
0: और जापान एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
3: निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों 2026 में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिला दिया है। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीन ने रजत पदक हासिल किया। उधर मुक्केबाजी की बात की जाए तो नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना आंचल फिल्म से है। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें, प्रदीप का लिखा हुआ गाना, श्री रामचंद्र का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गाना है अनार बाला। इस फिल्म से सुमन कल्याणपुर और सुबीर सेन की आवाजें, आरसी पंड्या का लिखा हुआ गाना, बुलो सिरानी का संगीत।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अब सुनते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। इस फिल्म का गाना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में, कैफी आजमी के बोल हैं, संगीत है एसडी बर्मन का।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: ये है बाबर फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल है और संगीत है रोशन का।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। और अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं, राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, इकबाल कुरैशी का संगीतबद्ध किया ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम बिंदिया।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में अब आपको सुनवा रहे हैं कमर जलाल आबादी का लिखा हुआ गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, फिल्म का नाम छलिया।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। चाईबासा में आज कोल्हान विश्वविद्यालय का सातवां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल सह कुलाधिपति ने विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। इस समारोह में 224 उपाधियां और 26 मेधावियों को स्वर्ण पदक दिए गए। विश्वविद्यालय द्वारा इस बार QR कोड युक्त नई सुरक्षित डिग्री की शुरुआत की गई है। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल

0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा, दीक्षांत केवल उपाधि प्राप्त करना नहीं है बल्कि अपने ज्ञान के जरिए समाज के प्रति जिम्मेदारी लेने के संकल्प का अवसर है।
1: आज उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपके माता पिता, परिवारजन और शिक्षकों को भी बधाई, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन से आपकी ये शैक्षणिक यात्रा इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंची है। दीक्षांत केवल उपाधि प्राप्त करने का अवसर नहीं बल्कि अपने ज्ञान को समाज के प्रति जिम्मेदारी में बदलने का संकल्प लेने का अवसर भी है।
0: नई दिल्ली के पूसा में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2026 में झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य के किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में उन्होंने झारखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार केंद्रीय योजनाओं में विशेष लचीलापन देने की व्यावहारिक कठिनाइयों का हवाला देते हुए केंद्र से आग्रह किया कि बड़े पैमाने पर फार्मर आईडी बनने तक इसे पीएम किसान जैसी योजनाओं के लिए अनिवार्य शर्त न बनाया जाए। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज रांची स्थित निर्वाचन सदन में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बैठक में विशेष मतदाता पुनरीक्षण के तहत नो मैपिंग और विसंगतियों से जुड़ा बूथवार डेटा राजनीतिक दलों के साथ साझा किया गया। श्री कुमार ने बताया कि नोटिस जारी होने के बाद कई मतदाताओं ने सत्यापन के लिए दस्तावेज जमा करा दिए हैं, जबकि अनुपस्थित रहे मतदाताओं के लिए विशेष आउटरीच कैंप लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज आकाशवाणी रांची में स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया। उप महानिदेशक सह केंद्र प्रमुख डीसी हेम्ब्रम के नेतृत्व में अधिकारियों और कर्मचारियों ने आकाशवाणी परिसर और आवासीय परिसर में श्रमदान कर सफाई कार्य किया। समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार की खनन नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी ने राज्य सरकार पर खनिज संपदा के प्रबंधन में विफल रहने और केंद्र के MMDR संशोधन विधेयक को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है।
2: MMDR एक्ट जो है ये संशोधन बिल है। इस बिल में तो राज्यों के कर शक्ति को समाप्त नहीं किया और कर वसूलेंगे उसका एक लिमिट बांध दिया। तो केंद्र सरकार ने इस बिल के माध्यम से एक सीमा तय किया है कर का। कर तो राज्य सरकार ही लेगी। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ये शोर मचा रहे, ये लूट को छिपाने के लिए इस प्रकार का बेवजह बेबुनियाद ये विरोध कर रहे हैं।
0: धनबाद में अवैध खनन और कोयला चोरी रोकने के लिए CISF, BCCL प्रबंधन और पुलिस ने 14 संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन निगरानी के साथ विशेष अभियान चलाया है। इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान 3 टन से अधिक अवैध कोयला और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई, जबकि कठल घोड़ा बस्ती में मिले अवैध खनन स्थल को डोजरिंग कर समतल कराया गया। रामगढ़ में उपायुक्त ऋतु राज के निर्देश पर परिवहन विभाग ने NH 33 और NH 23 पर सड़क किनारे अवैध पार्किंग के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया है। इस औचक कार्रवाई के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले 6 वाहनों पर 71,950 रुपए का जुर्माना लगाया गया। राज्य पुलिस रांची के होटवार स्थित खेलगांव परिसर में 15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रही है। 22 से 26 अक्टूबर तक आयोजित इस 5 दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के पुलिस टीमों और केंद्रीय अर्धसैन्य बलों के तीरंदाज शामिल होंगे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंजू द्विवेदी
2: और मंजरी वर्मा का नमस्कार। बहुत दिनों बाद सखी सहेली के मंच पर आपके साथ वक्त मिला है कुछ बातें करने का, कुछ विषयों पर चर्चा करने का। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि समय कितना गुजर जाता है जब हमारा मिलना वैसे तो होता है, लेकिन हाँ इस मंच की देखिए अलग ही बात होती है ना। तो हमारे साथी भी इंतजार कर रहे होंगे कि आज तो भाई मंजू जी भी है और मंजरी भी है और ये लोग क्या दिल की बातें करते हैं ना।
1: बिल्कुल। और देखिए दिल की बातों की आपने बात की, तो जब भी मिलते जुलते हैं तो दिल की बातें करते हैं और कर ही लेना चाहिए।
2: बिल्कुल।
1: कहते हैं कि दिल की बातें कर लेने से मन जो है हल्का हो जाता है और हमें थोड़ा सुकून भी मिलता है कि हमारी सखी ने, हमारे साथी ने, हमारे दोस्त ने, हमारे मित्र ने हमारे दिल की बात सुन ली। हो सकता है वो कोई उस चीज का कोई सोल्यूशन दे सके, कोई उसका निर्णय निकल सके।
2: बिल्कुल।
1: और एक मन को तो सुकून मिलता ही है, साथ ही साथ हृदय की जो या दिल की जो सेहत है वो भी दुरुस्त रहती है।
2: बिल्कुल दुरुस्त रहती है और बातों का कोई राय का पहाड़ भी नहीं बना पाता है।
1: सही बात है। और आज के विषयों की बात कर ले हम सबसे पहले।
2: हमने तो बातों में आपने दिल की बात करी, उसमें अभी विषय आपने निकाल दिया, तो मैंने कहा भाई मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे दिल से, तो कोई राय का पहाड़ भी नहीं बना पाएगा।
1: तो तुमने भी
2: विषय की बात कर दी मुहावरों की दुनिया में, है ना।
1: बिल्कुल। तो आज का हमारे जो विषयों में सबसे पहला विषय होगा स्वस्थ दिल लंबा जीवन। क्योंकि आज विश्व हृदय दिवस है तो हम दिल की या हृदय की बात करेंगे। और इसके अलावा सखी विशेष के अंतर्गत हम बात करेंगे महिला उद्यमी अदिति बलबीर की।
2: जी। और इसके साथ हल्की फुल्की बातें में होगा कि अन्न का दाना व्यर्थ ना जाने दे। यानी ये जो सारी चीजें है ना आज कि दिल की बात है, फिर अन्न की बात है और राई के पहाड़ बनाने की बात है, तो ये सब चीजें एक दूसरे से मिली हुई है। क्योंकि दिल से अगर खाना खाएंगे, अन्न खाएंगे तो हम पूरा ठीक से खाएंगे, और दिल से नहीं खाएंगे तो हम थोड़ा थाली में छोड़ देंगे, है ना।
1: बिल्कुल
2: जी। तो इस तरह की बात
1: है। अन्न को व्यर्थ ना होने दे, जितना जरूरत हो उतना ही बनाए, और अगर बच जाए और किसी तरह आप अगले दिन उसका उपयोग कर सके तो अच्छी बात है। या जैसे किसी समारोह में अगर बच जाता है तो आपको किस तरह से दूसरों को वो दे देना चाहिए ताकि उसका उपयोग हो सके, इस के अंतर्गत हम यही बातें जो है करने वाले हैं। इसके अलावा मुहावरों की दुनिया में जैसा तुमने बता ही दिया है कि राई का पहाड़ बनाना, यानी छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना करके बता देना, जितनी बड़ी वो है भी नहीं बात।
2: बिल्कुल। तो, और मंजू जी राई को अगर हम चाहें भी कि एक पहाड़ की जैसे खड़े करने की सोचे, कल्पना भी करें, तो राई
1: नहीं
2: रुकेगी नहीं, वो भरभरा के गिरी जाएगी।
1: तो इसी तरह से जब छोटी सी बात को कोई बहुत बड़ा बना देता है तो जैसे राई भरभरा के गिर जाती है, उसी तरह वो बातें भी कभी न कभी सामने आकर के गिर जाती है।
2: बिल्कुल सही।
1: तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है। तो स्वस्थ दिल लंबा जीवन, दिल की बातें हम करते हैं तो दिल हमारे शरीर का इंजन है, और जब इंजन सही चलेगा तभी जिंदगी की गाड़ी लंबी और सुहानी चलेगी। तो प्रतिवर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे हम मनाते हैं ताकि हम सब इसकी अपनी इस धड़कन की कद्र करना सीखें।
2: बिल्कुल। और आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, खराब खान पान और लगातार बढ़ते तनाव का जो सबसे बड़ा असर होता है वो हमारे दिल पर ही पड़ता है। लेकिन अच्छी बात ये होती है मंजू जी कि अपने दिल को मजबूत और सेहतमंद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। रोजमर्रा की जीवन शैली में थोड़े से बदलाव करके हम बीमारियों से भी बच सकते हैं और अपने दिल को भी संभाल सकते हैं।
1: बिल्कुल। और दिल को सेहतमंद रखने के कई सारे ऐसे तरीके हैं जो आसान भी हैं और कारगर भी है। इस बारे में हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें हमें लिख करके भेजी है, तो उन आसान तरीकों के बारे में हम बताएंगे और श्रोताओं के कमेंट्स की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दिल को सही रखने का एक और तरीका है संगीत। कितना दिल को है ना खुशी से भर देता है, मन को खुशी से भर देता है, उससे भी तो हमारी सेहत अच्छी होती है।
2: बिल्कुल। आपका इशारा हम समझ गए।
1: चलिए सुनते गाना।

0: मंजर, ये गाना हमने सुना, दिल मेरा बस में नहीं, लेकिन दिल को बस में रखना पड़ता है,
1: बिल्कुल रखना
0: कई बार हालांकि हालात बड़े मुश्किल हो जाते हैं, नहीं रख पाते हैं, लेकिन दिल को बस में रखना या वश में रखना बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल, वो भी एक कला है मंजू जी।
0: हाँ,
1: कि हम अपने हर परिस्थिति में, चाहे वो खुशी के दिन हो, चाहे गम के दिन हो, दुखी वाले दिन हो, हर समय हमें अपने दिल को बहुत मजबूती से रखना पड़ता है, कि तभी हम सामने जो भी हमारी समस्याएं होती हैं, चाहे खुशियों के दिन, उनका सामना हम कर पाते हैं। और हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश लिखकर भेजे हैं।
0: एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल केवल हमारे शरीर का एक अंग नहीं बल्कि जीवन की धड़कन है। स्वस्थ दिल हो तो जीवन में ऊर्जा, उत्साह और खुशियों की रौनक बनी रहती है। इसलिए अपने दिल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अतः संतुलित भोजन, नियमित हल्की फुल्की कसरत, पर्याप्त नींद और तनाव को कम करना, ये छोटी छोटी आदतें दिल को स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन दिल की सेहत के साथ मन की सेहत भी उतनी ही जरूरी है। खुलकर हंसिए, अपनों के साथ समय बिताइए, छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए और मन में प्यार व सकारात्मकता बनाए रखिए, क्योंकि जब दिल स्वस्थ रहता है तो जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं होती बल्कि

0: कि वो अधिक सुंदर और खुशहाल बनती है। कितनी प्यारी बातें और सटीक बातें इन्होंने लिखी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और एक हमारे साथी ने छोटी सी बात लिखी है कि दोस्तों के साथ दिल खोलकर हंसिए, ऑपरेशन थिएटर में दिल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: बहुत क्या बात है, बात लिखी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो यही हमने कहा था ना कि जब हम सखियां मिलती है तो दिल की बात करती है, तो बस ऐसे ही अपने दोस्तों मित्रों से
1: गागर में सागर भरने वाली बात है ना। और एक साथी और लिखते हैं कि कोई माने या ना माने, पहले कभी हृदय को बीमार होते हुए सुना था, कभी ब्लड प्रेशर की कोई बात सुनी थी, कभी शुगर की कोई बीमारी सुनी थी, कभी किडनी की कोई इतनी बीमारी सुनी थी। इसकी सच्चाई सिर्फ इतनी है, हजारों सवालों का एक जवाब, जनसंख्या बहुत ज्यादा है इसलिए मौसम का नियंत्रित वातावरण हो रहा है, अनियंत्रित वातावरण हो रहा है। ईश्वर ने तो हमें ये, प्रकृति ने तो हमें 4 महीने का हर मौसम दिया था, मगर हमने अपनी स्वार्थ और कायरता से उस मौसम को बिल्कुल बदल दिया। ना गर्मी आएगी तो 7-8 महीने गर्मी पड़ेगी, ठंड जाए 4 महीने पड़नी थी, वहां 4-5 दिन में चली जाती है। यानी कि इनका कहने का मतलब यह है कि इतनी सारी पॉपुलेशन हो गई है कि समस्याएं होती जा रही है इंसान की जिंदगी में, चाहे वो भागा दौड़ी की हो कि कमाने धमाने की चिंता है या घर परिवार को पालने की चिंता है, तो और मौसम का भी उस पर असर पड़ता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें अब जल्दी ज्यादा सुनाई देने पड़ने की, तनाव की वजह से हो जाता है लोगों को, तो इस तरह की बीमारियां सुनाई देने लग गई हैं।
0: हाँ, इन्होंने ये लिखा कि पहले के जमाने में इन बीमारियों के बारे में हमने सुना ही नहीं था, लेकिन अब ये बहुत आम हो चुकी है। हाँ, ये तो सही बात है कि मौसम का बहुत असर हुआ है, हमारे खान पान का असर हुआ है, हमारी दिनचर्या का भी बहुत असर हुआ है। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग तो बहुत देर तक सोते नहीं है और सुबह बहुत देर तक सोते रहते हैं, जल्दी उठते नहीं है, और खान पान का असर तो हुआ ही है। जंक फूड खाते हैं हम, मसालेदार और तेज मिर्च वाले, और इसके अलावा तेल बहुत होता है उनमें, बहुत सारा बटर चीज वगैरह डाल करके इस तरह की चीजें जब हम खाते हैं तो इसका दिल पर असर तो होता ही है। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है ताकि हमारा दिल जो है वो स्वस्थ रहे। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि स्वस्थ दिल और लंबा जीवन पाने के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाना सबसे जरूरी है। स्वस्थ दिल और दीर्घायु के लिए मुख्य उपाय जो है वो भी इन्होंने लिखे हैं कि नियमित व्यायाम करें, हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता से व्यायाम करें, और उन व्यायाम में आप जो है तेज चलना, साइकिल चलाना या तैरना ये आप कर सकते हैं। संतुलित आहार, अपने खाने में हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और नट्स जैसे कि अखरोट, बादाम, ये शामिल कर सकते हैं। तनाव प्रबंधन कर सकते हैं, योग, ध्यान और मेडिटेशन से आप जो है तनाव को दूर कर सकते हैं, और धूम्रपान और शराब से दूरी बना सकते हैं। इसके अलावा पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है, रोज 7 से 9 घंटे की नींद लें, नियमित जांच कराएं, जैसे अगर रक्तचाप जैसी कोई बीमारी है या शुगर है या नहीं है, उसके कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं तो भी आप जो है जांच करवा सकते हैं, और इस तरह से जो है आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हंसिए और दिल को तंदुरुस्त रखिए, क्योंकि आज 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस है। लोग भूल गए हैं कि दिल को वेंटिलेटर की नहीं बल्कि सिर्फ थोड़ी सी खुली हंसी की जरूरत है। हंसने से फेफड़े तो फूलते ही हैं, साथ ही दिल को भी लगता है कि आप अभी जिंदा दिल हैं। इसीलिए पार्क में जाकर कृत्रिम रूप से हा हा हा करने वाले लॉफ्टर क्लब की जरूरत पड़े, और उससे पहले ही घर में बीवी के चुटकुलों पर या खुद के हालातों पर हंस लिया कीजिए। यानी कि अपने आसपास हंसी खुशी का माहौल रखेंगे तो ये समस्याएं आएंगी ही नहीं, और आपका दिल और आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे।
0: बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम की सेहत के लिए भी कुछ बातें बहुत जरूरी हो जाती है मंजरी, और इसमें एक बात है कि हमको समय समय पर छोटा सा एक ब्रेक लेना होता है। तो कार्यक्रम में इस वक्त समय हो चुका है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं।

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है, देखिए हम फिर से हाजिर हैं और हम दिल की बातें कर रहे थे। तो एक साथी ने बहुत दिल से ये बात लिखी कि दिल एक ऐसा इंजन है जो बिना किसी ब्रेक के जिंदगी भर लगातार चलता रहता है। हमने अभी कार्यक्रम में ब्रेक लिया लेकिन दिल की बात जब आती है तो वहां ब्रेक का कोई काम ही नहीं होता है। जब तक ये धड़कता है तब तक सांसें चलती है और जीवन मुस्कुराता है। इसलिए कहा भी जाता है रखेंगे जब दिल का ख्याल तभी जीवन बनेगा खुशहाल। एक मजबूत और सेहतमंद दिल सिर्फ हमें बीमारियों से बचाता नहीं है बल्कि हमारी उम्र को भी बढ़ाता है। दिल स्वस्थ होगा तभी जीवन का हर पल लंबा, ऊर्जावान और खुशनुमा बना रहेगा।
1: क्या बात है। और एक साथी लिखते हैं कि आजकल के व्यस्त रहन सहन के तौर तरीकों के कारण, खान पान, नींद में कमी के कारण बहुत से असाध्य रोग पैदा हो जाते हैं जिनमें डायबिटीज और हृदय रोग मुख्य हैं। इसके साथ ही एक साथी और लिखते हैं कि विश्व हृदय दिवस की सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। सालों साल तक दिल स्वस्थ और लंबा जीवन जीने के लिए

0: दिवस की सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। सालों साल तक दिल स्वस्थ और लंबा जीवन जीने के लिए मुख्य रूप से ताजा, संतुलित और पौधों पर आधारित आहार लेना चाहिए। दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोगों के खान पान और के सुझावों के अनुसार उनकी थाली में हर चीजों का
1: हम वर्षों से जो परंपरागत तौर तरीके जो हम अपना रहे हैं या खान पान जो अपना रहे हैं, बस उन्हीं को अगर हम अपनाते चलेंगे और समय से सोना, समय से उठना, थोड़ा व्यायाम करना, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन बातों पर अगर ध्यान दिया जाए तो स्वस्थ रहा जा सकता है।
0: हाँ, और हमारी मंजू जी बहुत ध्यान रखती हैं।
1: देखिए, रखना तो जरूरी है ही, क्योंकि हमें शरीर के साथ साथ अपनी आवाज का भी ख्याल रखना पड़ता है, और सेहत दुरुस्त रहेगी तभी तो हम अपने काम को समय से आ पाएंगे और जा पाएंगे।
0: और आपको से ही तो हम लोग प्रेरणा लेते हैं देखा जाए तो।
1: एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित आहार, नियमित रूप से व्यायाम और धूम्रपान जैसी आदतों से बचाव करना चाहिए। इसी तरह की बात हमारे एक साथी ने पहले भी लिखी है, तो जो हमने आपको पढ़ के सुनाई है। एक साथी और लिख रहे हैं कि स्वस्थ दिल लंबा जीवन का आधार है, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार लें और व्यायाम करें। और इसी तरह की और भी बातें हमारे साथियों ने लिखी।
0: एक लिखते हैं कि मंजू जी, कि मुस्कान और ठहाकों का सफर ही जिंदगी को खुशनुमा बनाता है, क्योंकि बिना हंसी के इंसान का दिल एक उदास और बंजर जमीन की तरह हो जाता है। किसी के चेहरे पर खुशी लाना एक जादुई हुनर है जो हर किसी के पास नहीं होता। जो लोग दिल के अमीर होते हैं वे दौलत और पैसों से नहीं, बल्कि किसी मासूमियत, उसकी तिरछी चितवन और दिलकश अदाओं से ही अपना सब कुछ हार बैठते हैं। जब कोई अपनी ही धुन में मगन होकर अजीबोगरीब हरकतें करता है तो महफिल में अपने आप हंसी के फव्वारे फूट पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते जब ऑटो रिक्शा या ट्रकों के पीछे लिखे वो मजेदार और तीखे डायलॉग्स नजर आते हैं तो इंसान चाह कर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाता है। बिल्कुल वो दृश्य उभर आया जब जाते हैं लंबे सफर पर।
1: तो एक हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि दिल दुरुस्त तो जिंदगी दुरुस्त, एक स्वस्थ हृदय लंबा और स्वस्थ जीवन बिताने में हमारा सहायक होता है। आप सभी को हृदय दिवस की शुभकामनाएं। और एक और साथी लिख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ और दुरुस्त रखने के लिए प्रतिदिन योग प्राणायाम अपनी दिनचर्या में शामिल करें, संतुलित आहार लें, सकारात्मक सोच रखें। तो आप सभी का धन्यवाद, और अब हम एक गीत सुनते हैं।

0: गीत हमने सुन लिया मंजरी, और
1: जी
0: अब हम बात करेंगे, एक हमारी सखी की बात करेंगे
1: बिल्कुल
0: जिन्होंने क्या किया है और किस तरह से उन्होंने जो है दुनिया को राह दिखाई है उसके बारे में बात करेंगे, अदिति बलबीर की बात करेंगे। हम कुछ अपनी तरफ से बात बोले उससे पहले हमारे जो श्रोता हैं
1: जी।
0: उन्होंने उनके बारे में कुछ बात लिखी है, तो पहले वही पढ़ के हम सुना देते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहावत एकदम सटीक बैठती है अदिति बलबीर पर, जो कि वीर रिसोर्ट्स के सीईओ और फाउंडर है। उनकी गिनती आज भारत की सबसे सफल बिजनेस वुमेन में होती है।
1: बिल्कुल सही बात इन्होंने लिखी है। और एक ने लिखा है कि बचपन से ही अदिति को घूमने का शौक था। अदिति इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद की एक पूर्व छात्र हैं। उन्हें बचपन से घूमने फिरने से प्यार था, जिसको उन्होंने अपने लिए करियर के में बदल लिया, जिसके बाद उन्होंने वी रिसोर्ट की शुरुआत की। अदिति 2014 में वी रिसोर्ट की सीईओ बनी। 5 साल से कम समय के भीतर ही अदिति ने भारत के 21 राज्यों में 120 से ज्यादा रिसोर्ट्स के लिए कंपनी के विस्तार का नेतृत्व किया। ये रिसोर्ट्स ऑफ बीच यात्रा श्रेणी में अपनी तरह का पहला ब्रांडेड रिसोर्ट बन गया है। बहुत अच्छी सी जानकारी भेजी हमारे साथियों ने।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि हमने कहा कि अदिति बलबीर जो है वो भारत की एक प्रमुख महिला उद्यमी और वी रिसोर्ट्स की संस्थापक है, और उन्होंने भारत में ऑफ बीट और इको टूरिज्म के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है। अदिति बलबीर का जन्म नई दिल्ली में हुआ। उन्होंने मुंबई के वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से फाइनेंस में PGDM यानी कि MBA की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद और ड्यूक यूनिवर्सिटी के फुकुआ स्कूल ऑफ बिजनेस से उच्च प्रबंधन शिक्षा प्राप्त की
1: जी,
0: है।
1: अदिति ने अपने करियर की शुरुआत फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर से की। उन्होंने बेरिंग प्राइवेट इक्विटी पार्टनर्स और बेडरॉक वेंचर्स जैसी प्रमुख प्राइवेट इक्विटी और वेंचर्स कैपिटल फर्मों में काम किया। इस दौरान उन्होंने रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्रों में बड़े निवेश का प्रबंधन किया, जिससे उन्हें इस उद्योग की बारीकियों, बाजार की कमियों और अवसरों की गहरी समझ मिली।
0: बिल्कुल। और वी रिसोर्ट्स की जो नींव है वो कैसे पड़ी इस बारे में भी हम आपको बता दें। प्राइवेट इक्विटी के काम करते समय अदिति ने देखा कि भारत में कई खूबसूरत और ऑफबीट यानी कि कम लोकप्रिय या प्राकृतिक ऐसी जगहें हैं जहां छोटे बुटिक रिसॉर्ट्स मौजूद हैं। हालांकि ये रिसॉर्ट्स असंगठित थे, इनके पास न तो उचित ब्रांडिंग थी और न ही मार्केटिंग और पहुंच और न ही पेशेवर प्रबंधन। इसी अंतर को खत्म करने के लिए 2014 में उन्होंने वी रिसॉर्ट्स की नींव रखी। उन्होंने एक ऐसा एसेट लाइट मॉडल तैयार किया जिसके तहत स्वतंत्र रिसॉर्ट मालिकों के साथ साझेदारी करके उन रिसॉर्ट्स का माननीकरण और प्रबंधन वीर रिसॉर्ट्स के बैनर तले किया जाने लगा।
1: बिल्कुल। और माइक्रो और ऑफ बीट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को शहर की भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के बीच अद्वितीय और प्रामाणिक अनुभव प्रदान करना है, और मानकीकरण दूर दराज के इलाकों में स्थित रिसॉर्ट्स में भी मेहमानों को उच्च गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षा और पेशेवर सेवाएं देना उनका एक मुख्य उद्देश्य है। और स्थानीय रोजगार और सशक्तिकरण के लिए उन्होंने रिसॉर्ट में 90% से अधिक कर्मचारी स्थानीय ग्रामीणों को नियुक्त कर उन्हें प्रशिक्षित करना, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, यानी कि उन्होंने आसपास के लोगों को ही इसमें आगे बढ़ाया।
0: हाँ, ताकि लोकल लोग जो है वहाँ के वो एक तो होता यह है कि उनको काम मिलता है, रोजगार मिलता है। दूसरा, जो वहाँ के लोग होते हैं उनको उस एरिया के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी होती है। दूसरा, जब उनका घर वही है तो वहाँ उन्हें काम करने में भी कोई मुश्किल नहीं होती है।
1: बिल्कुल,
0: वो अपने घर परिवार के साथ रहते हुए रोजगार भी मिल जाता है, काम मिलता है, पैसा मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है। और सतत पर्यटन, पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना और स्थानीय संस्कृति व व्यंजनों को पर्यटकों तक पहुँचाना, ये भी इस चीज का एक उद्देश्य रहा है। अब हम बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान की। तो पर्यटन और उद्यमिता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अदिति बलबीर को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनमें है फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस, ये अवार्ड उन्हें मिला है। दूसरा है द इकोनॉमिक टाइम्स, इनकी तरफ से वुमेन अहेड ट्रॉफी से इन्हें सम्मानित किया गया। और इसके अलावा CNBC TV18 यंग टर्क्स, इनकी तरफ से भारत की उभरती हुई दूरदर्शी उद्यमी के रूप में प्रदर्शित ये अवार्ड इन्हें दिया गया। डेल विमेंस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क की तरफ से वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली चुनिंदा महिला उद्यमियों में उन्हें शामिल किया गया और वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप उत्कृष्ट महिला उद्यमी और हॉस्पिटैलिटी लीडरशिप अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया।
1: इतना सारे उन्हें पुरस्कार मिले, ये सब उनकी मेहनत का ही और सोच का नतीजा है, जो जब उन्होंने इस चीज पर ध्यान दिया कि हमें इस तरह के सुविधाएं देनी चाहिए, इन पर काम करना चाहिए, तो उनके काम की तारीफ हुई और ये जो चीजें उन्हें मिली हैं सम्मान पुरस्कार वो उसका ही एक परिणाम है। तो ऐसी सोच सबकी अगर हो, अपने ही आसपास के चीजों को हम अच्छा करने के लिए सोचे तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम सभी।
0: बिल्कुल कर सकते हैं। होता क्या है ना कि हम बड़ी बड़ी चीजों की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, कोई बड़ी कंपनी है, कोई बड़ा काम है जिसका नाम है, हमें लगता है कि जब हम वहां काम करेंगे तो हमारी वैल्यू होगी
1: जी,
0: या फिर वहीं जाकर के हम पैसा कमा सकते हैं या अच्छा जीवन तो एक वहीं पर बिताया जा सकता है। लेकिन अगर हम आसपास नजर डालें या जो पढ़ाई हमने की है, या फिर ऐसा भी होता है कि जिस क्षेत्र में हमारी रुचि है
1: जी,
0: अगर उन क्षेत्रों की तरफ हम ध्यान दें और हमारी पढ़ाई का उपयोग उन चीजों को बढ़ावा देने में अगर हम करें, तो हो सकता है कि हमारे क्षेत्र में ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। इसमें ये कोई शर्म की बात नहीं है या ये कोई कमतरता आंकने की भी बात नहीं है कि अगर हम यहाँ ये छोटा सा काम करेंगे तो अरे हमको कौन पूछेगा, या हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, या पैसा हम कैसे कमा पाएंगे, या घर कैसे चला पाएंगे। लेकिन अगर आप इन बातों की तरफ नजर डालें, और कई बार क्या होता है जिससे कई महिलाओं को या पुरुषों को जिनको भी बहुत किसी क्षेत्र में रुचि होती है, जैसे किसी महिला की बात करें उसे कशीदाकारी बहुत पसंद है या उन्हें भोजन बनाना बहुत पसंद है,
1: किसी को अचार पापड़ इन सब का भी शौक होता है, तो भाई आप अपनी ही उस कला को आगे जाने दीजिए।
0: हाँ, तो ये बहुत सुनने में शायद हो सकता है या कहने में बहुत छोटी बात ये लगती हो, लेकिन अगर कोई महिला कोई व्यक्ति इस चीज को ठान ले कि नहीं मुझे इसी क्षेत्र में कुछ करना है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की जरूरत है और थोड़ा सा उस क्षेत्र में कुछ काम करने की जरूरत है। जैसे हम अदिति की बात कर रहे थे, ऐसा अगर इन्होंने नहीं सोचा होता तो क्या ये काम ये कर पाती, इन्हें पुरस्कार मिल पाती या आगे बढ़ पाती। तो ऐसा हम सब सोच सकते हैं और सब कर सकते हैं। और अब हम ये सोच रहे हैं कि कार्यक्रम में एक ब्रेक ले लें।

सबको भी।

0: तो मंजी, गीत हमने सुन लिया और अब कुछ हल्की फुल्की बातें करते
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो भी
0: हैं।
1: बहुत ज़रूरी होती है कि जब हम अच्छी सारी हल्की फुल्की बातें करते हैं तो मन भी थोड़ा सा प्रसन्न हो जाता है। और लेकिन जब बात हो भाई अन्न के दाने की, तो अन्न का नाम सुनते मन प्रसन्न होता है, लेकिन जब उसकी कोई कद्र नहीं करता है तब मन दुखी होता है ना।
0: बातें हल्की फुल्की है लेकिन ये जो विषय है ये बड़ा
1: जी
0: भारी है।
1: बिल्कुल
0: देखिए कि अन्न से हमारा वास्ता रोज पड़ता है, अन्न के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। कोई दिन
1: बिल्कुल
0: ऐसा नहीं जब हम अन्न के बिना रहते हों, कुछ तो हम
1: बिल्कुल
0: खाते ही हैं, पीते ही हैं। तो उसकी जो अहमियत है वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। अन्न केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन का आधार होता है। हमारे संस्कारों में भी अन्न को ईश्वर का रूप माना जाता है और हर साल 29 सितंबर को दुनिया भर में खाद्य हानि और बर्बादी के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट ये मनाया जाता है। इसका सबसे बड़ा जो मकसद होता है या उद्देश्य होता है वो ये याद दिलाना होता है कि अन्न का एक भी दाना व्यर्थ ना जाने
1: ना
0: दें।
1: जाने दे बिल्कुल। और आज एक तरफ लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ खेतों से लेकर हमारी थालियों तक ढेरों खाना बर्बाद हो जाता है। जब खाना बर्बाद होता है तो सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि उसे उगाने लगी उस व्यक्ति की मेहनत, यानी किसान की मेहनत, पानी, ईंधन और जमीन जैसे अनमोल संसाधन भी बर्बाद होते हैं। क्योंकि दिन
0: बिल्कुल
1: रात अपने खेत को सींच कर, बीज डालकर बोना, फसल को देखना पल पल बढ़ते हुए, फिर उसमें अन्य लगता हुआ, दाने लगते हुए देखना, उनकी जो कहते हैं बालियां लगती हैं, गेहूं की बालियां लग रही हैं, तो देख के वो कितने हर्षित होते हैं। और जब या तो प्राकृतिक गड़बड़ी हो तो अलग बात है, लेकिन जब हमारे पास तक वो खाना आ रहा, अन्न आ रहा है और हम उसको कदर नहीं कर रहे हैं, तो फिर मन खराब होता है कि नहीं एक गेहूं के दाने से हम कितना अन्न उपजा सकते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: किसान की मेहनत तो अपनी जगह है ही
1: जी
0: मंजरी, लेकिन उसके बाद हम भी तो उसे बाजार जाते हैं, खरीद कर
1: खरीद
0: लाते
1: के
0: हैं, पैसा
1: लाते हैं
0: खर्चा करते हैं, घर में लाते हैं। उसके बाद उसे बनाने का जो एक प्रोसेस है बहुत लंबा एक प्रोसेस होता है। उस तरीके से हम भोजन को पकाते हैं और उसके बाद जब हम खाते भी नहीं है उसे यूं ही फेंक देते हैं।
1: जी,
0: तो ये एक मतलब मुझे लगता है कि सही बात नहीं
1: सही
0: है।
1: बात नहीं
0: हमारे
1: है।
0: साथियों ने ये बात लिखी है कि अन्न केवल हमारी भूख नहीं मिटाता बल्कि ये किसान की महीनों की मेहनत, पानी, मिट्टी की उर्वरता और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। जब हम अपनी थाली में भोजन छोड़ते हैं तो हम केवल एक निवाला नहीं फेंकते बल्कि उस तक पहुंचने में लगे अनगिनत संसाधनों और प्रयासों को व्यर्थ कर देते हैं।
1: बिल्कुल।

0: और इसी तरह हमारे एक साथी और लिखते हैं कि व्रत लिखते कि हल्की फुल्की बात है, ना जाए व्यर्थ उनका एक भी दाना, अंक एक ही दाना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें ऐसा करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे किसान इस अंक को, इस मतलब अन्न को उगाने में कितनी मदद करते हैं। इसलिए अपनी थाली में जितना लेना है, जितना आपको खाना है, उतना ही आपको लेना चाहिए, जितना आप खा सकते हैं, और उतना ही आप थालियों में डालें। अगर आप शादी या पार्टियों में जैसे जाते हैं, देखते हैं वहां पर बहुत सारी चीजें आप ले लेते हैं, या गिलास भी उसमें लेके थाली भर के उसमें जूठा छोड़ देते हैं, मतलब लिया थाली में और जूठा छोड़ दिया, तो अनाज की जो होती है बर्बादी ही हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि आप बिल्कुल उसी हिसाब से ले जितना आप खा सकते हैं।
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि हम जब अपने गुरुओं के मंदिर की में जाते हैं, वहां की बात है कि इतनी अच्छी लगती है वहां की, उनकी बात की, वहां दो लोग सबकी थाली चेक करते हैं कि किसी ने खाना बचाया तो नहीं है, उसे वही पूरा खाना पड़ता है, तो अब सब लोग उतना ही लेते हैं जितना उन्हें खाना होता है। वैसे भी हम पहले थोड़ा कम लें और फिर चाहिए तो और ले लें। और
0: बिल्कुल
1: देखो जो भोजन व्यर्थ होता है ना, उसका एक कारण ये भी होता है, कोई भी जैसे समारोह हुआ, शादी समारोह या कोई भी ओकेजन होता है, तो वहाँ खाने में बहुत सारी वेराइटी बहुत होती, बहुत
0: बिल्कुल
1: तरह के व्यंजन बनते हैं, और व्यक्ति चाहता है कि मैं सारे व्यंजनों को चख तो लूँ कम से
0: कैसे
1: कम।
0: खा सकते हैं आप
1: हाँ,
0: सोचिए जरा।
1: जबकि उसके
0: जी
1: पेट में उतनी जगह होती नहीं है, लेकिन वो सब ले लेके चखना जरूर चाहता है, और उस चक्कर में जब कोई भी चीज थोड़ी सी भी उसको कम पसंद आती तो वो लेता है और छोड़ देता है। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी राय है, कि हम थोड़े अगर व्यंजनों की संख्या अगर कम रखेंगे तो शायद भोजन की बर्बादी कम हो, ऐसा मुझे
0: हाँ वो
1: लगता है।
0: तो खैर ये अपना सोचना, लेकिन आजकल लोग दिखावे के चक्कर में तरह तरह की चीजें रखते हैं, और सलाद के भी इतने सारे वैरायटी होती है, फ्रूट्स की भी होते हैं, स्टाल होते हैं कि सब तो नहीं खा सकता कोई। तो ठीक है, आप उन्होंने लगाया ये, आप उनको अपना अपने तरह से सबको स्वागत करना है, लेकिन हम अपने लिए अपनी थाली में अन्न का स्वागत हिसाब से करें वो ज्यादा सही है। और हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे मंदिर में जहाँ खाना होता है वहाँ दीवारों पर लिखा होता है, खाओ मन बचाओ नकन, और इतना ही लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। बहुत सुंदर सी बात है। इसी तरह एक साथी और लिखते हैं कि अन्न का दाना व्यर्थ ना जाए, इसके लिए घर या सामूहिक भोजन के वक्त ये बात ध्यान में रखें, इतना लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। सभी ने ऐसी बात लिखी है। और थाली में लिया हुआ खाना झूठा होकर या बचकर बर्बाद ना हो, शादी या पार्टियों में अक्सर देखा गया है कि बुफे सिस्टम में कुछ लोग थाली में इतना ज्यादा भोजन ले लेते हैं कि दूसरी बार लेने जाना ना पड़े। इस ना लेने जाने की मानसिकता से भरी आलस ही खाने की बर्बादी का कारण अक्सर बनती है। तो इन चीजों का
1: बिल्कुल।
0: भाई ध्यान रखें कि जिसने भी आपको बुलाया है स्वागत सत्कार में, आपके लिए भोज का इंतजाम
1: आयोजन
0: किया
1: किया
0: है,
1: है।
0: आयोजन किया है, तो उसके खाने की आप कद्र करें,
1: बिल्कुल।
0: उसको व्यर्थ ना जाने
1: एक
0: दें।
1: साथी हमारे लिख रहे हैं कि अन्न का एक एक दाना कीमती है और इसे व्यर्थ होने से बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जब हम भोजन बर्बाद करते हैं तो सिर्फ खाना बर्बाद नहीं होता बल्कि उसे उगाने में लगी किसान की मेहनत और भी जाती है, और यहाँ कुछ छोटी और व्यावहारिक आदतें दी गई हैं जिसके बारे में उन्होंने लिखा है कि थाली में उतना ही ले जितनी भूख हो, और बचे हुए भोजन का सही उपयोग, यदि खाना बच जाता है तो उसे फ्रिज में सुरक्षित रखें और अगले समय किसी नई रेसिपी बनाने में उसका उपयोग करें। और एक ये भी बात लिखी है कि जरूरतमंदों की मदद करें, यदि किसी पारिवारिक समारोह या पार्टी में भोजन अधिक मात्रा में बच जाए तो उसे फेंकने के बजाय पास के किसी शेल्टर होम या जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। खरीदारी की योजना जो है उसके बारे में बाजार जाने से पहले घर में मौजूद सामान की सूची बना लें ताकि जरूरत से ज्यादा सामान खरीद कर खराब ना हो। और लिखा है कि अन्न ही जीवन है, आइए मिलकर यह संकल्प लें कि हम न तो खुद भोजन बर्बाद करें और न ही दूसरों को करने दें।
0: और हम लोग पहले एक गीत सुन लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।

0: होश उड़ने की यहाँ पर बात हो रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम कई लोगों को देखते हैं बहुत सारा भोजन बनाते हैं, फेंक देते हैं, तो उनको जब फेंकते हुए हम देखते हैं ना,
1: जी
0: तब भी हमारे होश उड़ जाते हैं। हम ये
1: बिल्कुल
0: सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई इस भोजन को लाने में, बनाने में इतना पैसा खर्च, इतनी मेहनत खर्च, इतना इसके अंदर संसाधन लगते हैं, और जब फेंका जाता है तो कैसे लोग इतना आराम से फेंक देते हैं।
1: बिल्कुल
0: हमारा
1: नहीं,
0: दिल नहीं करता है फेंकने
1: बिल्कुल
0: का,
1: फेंकना
0: तो
1: बिल्कुल भी
0: तब
1: नहीं
0: हमारे
1: चाहिए
0: भी होश उड़ जाते
1: जी
0: हैं।
1: बिल्कुल सही आपने कहा है। और देखिए, हम लोग समय समय पर बताते भी रहते हैं अपने व्यंजन वाले में कि अगर कोई चीज़ है आपके पास घर में बची है, जैसे चावल बचा है, तो आप उसका चावल को भी दूसरी तरह से बना सकते हैं। चाहे उसको फ्राई कर लीजिए, चाहे आप चावल को पीस करके उसमें थोड़ी सूजी बेसन मिला करके आप
0: डोसा
1: उसमें
0: जैसा,
1: डोसा जैसा बना सकते हैं। चावल की भजिया भी बहुत अच्छी बनती है, कच्चे चावल की,
0: कटलेट
1: तो
0: भी बनते
1: हाँ,
0: हैं।
1: तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हैं। तो अन्न आप दिमाग लगाएंगे ना, तो आपका अन्न जो है बेकार नहीं जाएगा। और अगर आपको जैसे, और किसी को देना है, मंजू जी एक बात मुझे यहाँ पर याद आई कि अगर आपको खाना किसी को देना है, तो देने से पहले एक बार खाने को आप चेक जरूर कीजिए
0: हाँ
1: कि वो
0: बिल्कुल।
1: उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो गई, बासी तो नहीं, बासी में गंध तो नहीं आ रही है, वो खराब तो नहीं होने लगा है। अगर ऐसा खाना अगर आपके पास है और आप चाह रहे हैं नहीं इसको दे दें, नहीं वो काम बिल्कुल मत करिए। आप उस अन्न को आप मिट्टी में आप दबा दीजिए, जिससे वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाए, वो फिर भी ठीक है एक बार, लेकिन खाना कभी किसी को गलत मत दीजिए, है
0: बिल्कुल।
1: ना?
0: ऐसा ना सोचे कि चलो हम जो नहीं खा सकते तो
1: हाँ
0: दूसरों को दे दें। जो
1: बिल्कुल नहीं
0: भोजन आप खा सकते हैं, जो
1: जी
0: खाने लायक है, उसी को आपको दूसरों को देना है। ऐसा नहीं है कि
1: जी
0: जो खराब हो चुका है वो हम दे दें और वो खा करके बीमार हो जाए, ऐसा हमें नहीं
1: नहीं
0: करना
1: करना
0: है।
1: है
0: चलिए अब हम अपने दूसरी बात की तरफ चलते हैं। राई का पहाड़, ये एक कहावत है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि राई का पहाड़ बनना बड़ा ही अनूठा मुद्दा है। राई का पहाड़ बनना से तात्पर्य है कि छोटी छोटी बातों को एकदम लंबा बना देना। और एक और साथी यही लिख रहे हैं कि राई का पहाड़ बनाना यानी कि बात का बतंगड़ बना देना, जैसे किसी साधारण सी बात या छोटी सी समस्या को बेवजह तूल देना और उसे बड़ा मुद्दा बना देना, ये एक बात है। और इसी से संबंधित एक और एक ऐसी कहावत है कि गरम तेल में राई की तरह उछलना, ये भी इन्होंने
1: बिल्कुल
0: साथी ने हमारे लिखना
1: मतलब
0: शुरू
1: जैसे
0: किया।
1: कोई बात चल रही है और किसी ने थोड़ी सी बात शुरू करी और वो आपके मन के या लोगों के मन के खिलाफ है, लेकिन आप उसमें उसको थोड़ा सा और हवा दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो भाई तेल में जैसे राई चटकती ना वैसी चटकेगी। और कई बार ऐसा होता भी है कि साथ में सारी सहेलियां या सारे दोस्त खाना खा रहे हैं और एक कुर्सी की

0: जैसे आपस में हो जाए कि नहीं ये कुर्सी पे हम बैठेंगे उस पे हम बैठेंगे, तो ये भी राई के पहाड़ वाली जैसी हालत हो जाती है।
1: वैसे देखो मंजरी,
0: जी
1: अगर हम अपने आसपास नजर डालें तो इससे कई लोग हमें मिल जाते हैं जो राई का पहाड़ बनाना उन्हें बहुत पसंद
0: उन्हें और
1: होता है।
0: मजा आता है चटकारे लेके, उसमें किससे अपने डालेंगे उसकी बात को, कहते ना मुंह से बात निकली
1: हाँ
0: किसी ने कहीं कहीं तक कही, लेकिन दूसरा उसको मिर्च मसाला लगा के आगे तक बढ़ा देता है। और जैसे राई के उछलने वाली बात होती है, एक बार इसने कहा उससे कहा उससे कहा, हर समय बदलते हुए दूसरे रूप में वो सामने आ जाती है।
1: हाँ, जब एक ही बात अगर मतलब 5, 6, 10 लोगों तक पहुंचती है तो उसका स्वरूप थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बदलता जाता है, और जब वापस पहले व्यक्ति तक वो बात आती है तो उसमें बहुत कुछ बदलाव आ चुका रहता है। यानी जो बात उसने कही होती है और जो बात लोगों तक पहुंची है, इन दोनों बातों में बहुत अंतर हो जाता
0: तो
1: है।
0: बड़ी समस्या होती है ना मंजू जी की, अब वो जो हमने जो सच बोला है उसको हम कैसे साबित करें, वो बड़ी एक समस्या होती है। कि फिर या तो लगता है कि जिसने बात फैलाई है ना उसी को सामने बुलाओ और आमना सामना कर लो,
1: लेकिन ये
0: तो ही
1: संभव
0: ठीक है,
1: नहीं होता
0: नहीं
1: है।
0: हो पाता।
1: किसने
0: लेकिन
1: किससे कहा, क्या कहा, कैसे कहा, ये सब समझना। और दूसरी बात ये है कि ये सब करने में तो हमारा बहुत सारा समय भी चला जाएगा
0: बिल्कुल
1: और हमारी बहुत सारी ऊर्जा भी खर्च हो जाएगी।
0: बिल्कुल
1: हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, आप घर का काम करते हैं, आप बाहर का काम करते हैं, ऑफिस जाते
0: जी
1: हैं, तो उसके लिए समय की भी जरूरत होती है और ऊर्जा की। अगर हम यही सब करते रहेंगे तो फिर तो हम अपना काम ही
0: तो
1: नहीं कर
0: इससे अच्छा है
1: पाएंगे।
0: कि उन्हीं को छोड़ दो, तुम्हें फैलाने दो
1: तो
0: जिसको फैलाना
1: बिल्कुल
0: है।
1: सबसे बड़ी
0: जी
1: बात यह है कि आप इन जो जिन बातों पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत ना है उन बातों पर ध्यान ना दें। और जो लोग राई का पहाड़ बनाते हैं उनसे भी यही कहना चाहेंगे कि इन व्यर्थ बातों में अपनी ऊर्जा को खर्च ना करें, बल्कि जो आपके पास समय है, जो ऊर्जा है,
0: बिल्कुल
1: उसको किसी सकारात्मक कार्य में आप लगाएं। ये आपके लिए फायदेमंद होगा, और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी सेहत बनाने के लिए भी हम ये समय दे सकते
0: बिल्कुल
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: है
0: सही
1: ना।
0: बात
1: थोड़ा
0: आपने कही,
1: व्यायाम कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा ईश्वर भक्ति में अपना समय लगाइए,
0: बिल्कुल
1: और किसी और काम में जिससे आपको थोड़ा कुछ अर्जित हो सके, अगर
0: बिल्कुल
1: उसका उपयोग उसमें करें तो ज्यादा बेहतर होगा।
0: बिल्कुल सही बात। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि छोटी सी बात को इतना बड़ा ना बना दे कि रिश्तों में दूरी आ जाए। बात चाहे राई जितनी हो, समझदारी यही है कि उसे पहाड़ ना बनने दे। रिश्तों की बात जहां तक है मंजू जी, कि अगर आपके रिश्तों में ऐसे मनमुटाव हो गए आपको पता भी नहीं चला है कि किसने क्या किससे कह दिया, तो जब मिलें तो वो बात आप क्लियर जरूर कर लें जिससे कि ऐसी दूरियां ना बने। और एक लिखते हैं कि राई का पहाड़ कितना ही बड़ा हो पर खामोशी रूपी एक गोटी ही काफी है। बहुत सही बात कही है कि वो कितना भी राई का पहाड़ बना ले उसकी बातों को जवाब ही मत दे, खामोश हो जाए। तो मौन की तलवार जिसे कहते हैं ना वो बहुत तेज होती है। तो बड़ी अच्छी सी बात इन्होंने लिख करके भेजी है। तो कहना चाहिए कि राई, एक और लिखते हैं कि राई का पहाड़ बनाना यानी छोटी सी बात को लास्टिक की तरह खींच करके बड़ा करना है, जिससे दिल और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। और ये क्या कहते हैं कि जल्दी से ही, जिसे कहते हैं कि आप नॉर्मल होने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा आप खींचे मत, इलास्टिक की तरह मत खींचे बातों को, वहीं पर थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करें तो ज्यादा ठीक है। तो हम
1: बिल्कुल
0: लोग एक गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।

0: उम्र है
1: छोड़ो बहाना
0: ना ना ना।
2: देखिए हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि किसी की पहाड़ जैसी गलत बात को और किसी को बतानी हो तो उसे राई जैसा छोटा करके बताओ, क्या बात है। और अगर किसी की बात बहुत अच्छी है तो वो राई जितनी है तो उसे पहाड़ जैसा बनाकर बताओ ताकि हर कोई उससे कुछ सीख सके। बहुत सुंदर सी इन्होंने एक उदाहरण पेश किया है, तो ये बहुत मतलब सारगर्भित चीज इन्होंने लिखकर भेजी है।
3: एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मुहावरों की दुनिया भी गजब है। मेरे पास एक पुरानी किताब थी जिसमें वो कहानियां थी, जिस कारण वो मुहावरा बना। वो किताब कोई मांग कर ले गया और वापस नहीं दी। राइस से पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना होता है।
2: क्या बात है, तो किताब देनी चाहिए किसी की भी ले जाओ तो देनी चाहिए।
3: हाँ,
2: और
3: हाँ, पुस्तक जो कई बार है ना, होता क्या है ना, पुस्तकें किसी को बड़ी प्रिय होती है इसीलिए वो खरीदते हैं और वो संग्रह करके रखते हैं और आपको इतने उदार मन से वो पढ़ने के लिए देते हैं, और जब आप उनकी पुस्तक उन्हें नहीं लौटाते हैं। और कई बार तो क्या, जैसे किसी की आदत होती कि अब पुस्तक किसी ने मांगी दे दी और उसे याद भी नहीं कि मैंने कौन सी पुस्तक किसको दी, और इसी बात का लोग फायदा उठाते हैं और वापस नहीं देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। उन्होंने इतनी उदारता दिखाते हुए आपको कोई पुस्तक दी, उन्हें पढ़कर वापस लौटा दीजिए।
2: आप भी तो उदारता दिखाइए, उदारता
3: जब वो मांगने आए तो राई का पहाड़ मत बनाइए।
2: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके मन में अफसोस तो होगा, ग्लानी तो देखिए होगी कि आपके पास किताब है, आपको पता है कि आपके पास किताब है, आपने वापस नहीं करी, तो आप अपनी ग्लानी को क्यों बढ़ा रहे हैं। आप
3: बिल्कुल
2: सहृदय उन्हें उदारता के साथ वापस कीजिए। और देखिए बहुत सारे हमें कमेंट्स और भी मिले हैं, अलग अलग विषयों के मिल गए, तो हम उनको भी ले लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। कि ये लिखते हैं कि अन्य के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि मेरी नानी हमेशा हम लोगों को बोलती थी बार बार कि संत का एक क्षण भी और अन्य का एक भी कर्ण बर्बाद नहीं करना चाहिए। कभी तो हम लोगों को वो सब सिखाया गया, लेकिन इसलिए हम लोगों ने भी अपने बच्चों को सिखाया है कि जितना खाना हो उतना ही लें, अन्य का एक दाना भी थाली में ना छोड़ें, और ईश्वर की कृपा है कि बच्चे भी उतना ही लेते हैं जितना खाते हैं।

0: कभी मेरे घर में कोई खाना बर्बाद नहीं होता है। कितना सुंदर आपका घर का स्वरूप होगा, हम कल्पना कर सकते हैं कि आप एक भी दाना अन्न का वहाँ पे बर्बाद नहीं हो रहा है, तो बहुत अच्छी सी बात है।
1: एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि अन्न में ही ब्रह्मा ही नहीं अपितु इसमें अन्नपूर्णा देवी का वास भी माना गया है, और इस दृष्टिकोण से उसकी बर्बादी, वो भी आज के महंगाई वाले युग में। तो ये तो जान करके अज्ञानता का ही परिचायक है, फिर वैसे ही अन्य प्राण के दृष्टिकोण से अन्न की बर्बादी से बचते रहना ही श्रेयस्कर है।
0: बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि अन्न का हर दाना सिर्फ खाना नहीं, किसी के मेहनत, पसीने और उम्मीद का फल है। थाली में उतना ही ले जितना खा सके, क्योंकि अन्न का सम्मान मेहनत का सम्मान है। बहुत सुंदर सी बात है। मुझे तो लगता है ये वाला जो संदेश है ना, ये लिख करके अपने घरों में लगा लेना चाहिए।
1: एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान या अपने आते हैं और वो पूरा खाना फिनिश करते हैं, ये फिर उतना ही लेते हैं जितना वो खा सके, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। और जो भी झूठा खाना छोड़ते हैं, हम उन्हें जरूर कहते हैं कि आप ऐसा ना करें, उतना ही ले जितना आपको खाना है।
0: और एक हमारे साथी और देखते हैं कि भोजन करते समय थोड़ी देर के लिए सोचे कि ये भोजन जो हम लोगों को आसानी से मिला है और खा रहे हैं, उसको पैदा करने में किसानों ने कितना पसीना बहाया है, कितनी कठिनाइयों से होकर हमारी थाली में आया, तो अन्न का एक भी दाना नहीं फेंक
1: पाएंगे। चलिए अब हम अपनी बातों को थोड़ा विराम दे देते हैं, नहीं तो लोग हमें ये कहेंगे कि अरे आप तो छोटी बातों को राई का पहाड़ बना रहे हैं। तो अब घड़ी की तरफ हमने नजर डाली और समय हमें आज्ञा नहीं दे रहा है, तो अब हम श्रोताओं से आज्ञा लेते हैं, कार्यक्रम को विराम देते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी
0: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

0: केरकेट्टा। रांची स्थित झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जेयूटी के द्वितीय दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने छात्रों को उपाधियां प्रदान की। उन्होंने कहा कि बड़ी डिग्री नहीं बल्कि बड़ा उद्देश्य ही जीवन को महान बनाता है। राज्यपाल ने युवाओं से एआई जैसे आधुनिक तकनीकों का विवेकपूर्ण उपयोग करने और विकसित भारत के संकल्प में योगदान देने का आह्वान किया। सरायकेला खरसावां के चलियामा स्थित रूंगटा माइंस औद्योगिक क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने उपायुक्त संग बैठक की। हाईकोर्ट के निर्देश पर 18 माह में एकीकृत कार्ययोजना पूरी होगी। रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में असामाजिक तत्वों द्वारा राष्ट्रनायक की प्रतिमा पर कालिख पोतने और उसे क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। इसके विरोध में हटिया विधायक नवीन जायसवाल और पूर्व सांसद दीपक प्रकाश सहित भाजपा नेताओं ने अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। लोहरदगा में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा विश्व रेबीज जागरूकता सप्ताह के तहत सिविल सर्जन डॉ. राजू कच्छप की अध्यक्षता में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। सिविल सर्जन ने पशु द्वारा काटने पर तुरंत साबुन पानी से धोने और एंटी रेबीज वैक्सीन का पूरा कोर्स लेने की अपील की। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार।
2: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर आके बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि विविध भारती के साथ में काफी नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है।
3: जी जी जी, जब हम आ रहे थे और लाइब्रेरी के दौरान जब आप देख रहे थे, साथ में फोटोग्राफ्स देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा जुड़ाव तो है। हाँ। किस तरह का जुड़ाव है रेडियो से या विविध भारती से, वो हमारे साथ साझा कीजिए प्लीज।
2: हाँ, मतलब क्योंकि बचपन हमारा तो रेडियो पर ही पूरा गुजरा है और खासकर उस वक्त तो मतलब मैं आई एम एन 80s किड, तो उस वक्त तो ज्यादा रेडियो लोग ज्यादा सुना करते थे।
3: जी जी।
2: और शुरुआत ही विविध भारती के कार्यक्रम से होती थी सुबह की, जिसमें नए गाने आते थे और रात को जो है वो थोड़े पुराने गाने होते थे, वो बेला के फूल। और तो मैं सारे सुना करता था। मैंने कभी पुराने गाने जो है वो बैठ के कभी मैंने याद नहीं किया, वो रेडियो पे गाने सुन सुन के अपने आप याद हुए हैं, जो अब तक याद हैं सारे गाने, किशोरदा के, रफी साहब के, मुकेश जी के, जो भी गाने मैंने याद किए हैं, तो वो सब थैंक्स टू विविध भारती है।
3: जी जी, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे लगता है दिलचस्प बातें होगी और गीत भी हम आपसे सुनेंगे क्योंकि आप गाते भी बहुत अच्छा है।
2: हाँ, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन हाँ, शौकिया तौर पे।
3: जी हाँ जी हाँ, शुरुआत रेडियो की बातें से हुई, तो बचपन की यादें कुछ कैसा रहा परिवेश घर का? आपके पिता एक पत्रकार थे, जाने माने पत्रकार, तो क्या उनकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री में आपका एंट्री हुआ या किस तरीके से, या आपने खुद ही अपना ये रास्ता चुना?
2: चुना तो मैंने खुद ही रास्ता, लेकिन ये उनका जो प्रोफेशन था वो मतलब उसने मुझ पर बहुत असर छोड़ा था, तो उसी वजह से मैंने डिसाइड किया था कि मुझे भी इस फील्ड में आना है। उन्होंने मतलब मुझे, मैंने उनसे हेल्प भी नहीं मांगी थी कि मुझे कहीं पर लगवा दीजिए या कर दीजिए, तो वो मैंने अपने फ्रेंड के थ्रू कहीं पर मुझे एज एन असिस्टेंट के तौर पर जॉब मिला, एडी। तो हाँ, तो वैसे करियर की शुरुआत हुई थी, लेकिन मैंने उनसे कभी ये नहीं बोला था कि मुझे कहीं पर मतलब ये एज एन असिस्टेंट या कहीं कुछ काम दे।
3: पर फिल्मी हस्ती हुआ आपने देखा है अपने घर?
2: हाँ,
3: बचपन
2: वो देखा था, तो उस वजह से मतलब मेरा मतलब अगर मैं इस लाइन में हूँ तो वो मेरे डैड की बदौलत ही हूँ, उनकी वजह से हूँ।
3: जी जी जी, उस बारे में कुछ बताएं, बचपन की कुछ यादें, उस टाइम आप सेट पे जाते थे या किसी से मुलाकात हुई या उस वक्त किसी ने कहा कि हाँ आप इसी लाइन में जाएंगे, कुछ उस टाइम नजर आए?
2: उस टाइम एक्चुअली किसी ने मुझसे कहा नहीं। अब मैंने वैसे बचपन में एक सीरियल आता था आफ्टरनून ट्रांसमिशन में दूरदर्शन पे, कैसे बना मुहावरा कैसे बनी कहानी।
3: अच्छा।
2: तो उसके एक एपिसोड में मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया था, हमने SL स्टूडियो में शूट किया था उसको ट्रॉम्बे में, बहुत दूर, जब बचपन में तो बहुत ज्यादा दूर लगा था, अब और ज्यादा दूर हो गया ट्रैफिक की वजह से। तो हम वहां पर गए थे और मेरा मतलब मैं बांसुरी बजाते हुए घर में घुस रहा हूँ और मेरे डैड जो है बने हुए थे उसमें डांटते हैं और मैं डरता हूँ, मुझे मुझे मुझे डरने का वो रिएक्शन देना था। तो वो जब शूट हो रहा था तो उन्होंने जब मुझे डांटा मैं डरा, तो उनको लगा कि मैं सच में डर गया हूँ और वो अपने डायलॉग भूल गए। उनको लगा, मुझे लगा ये बच्चा सच में डर गया है, मतलब मुझे डरना ही था इसके लिए मैं डरा। तो तब लोगों ने बोला, अरे ये अच्छा एक्टर है, लेकिन वो स्कूल के टाइम पे किया हो गया और ऐसा कोई वो नहीं था। तब कि लेकिन वो टाइम मेरा बड़ा ये था कि बड़े होके तो मुझे एक्टर ही बनना है, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो वो उतना बड़ा हुआ नहीं तो उस वजह से तब मैंने सोचा था कि एक्टिंग मेरे लिए नहीं है, और क्योंकि मैंने पूरा बचपन ये सोचकर गुजारा कि बड़ा होऊंगा तो हीरो बनूंगा, अब हीरो वाली तो पर्सनैलिटी है नहीं और मुझे बाकी कुछ करना नहीं है
3: नहीं, आप जो हैं जिस भी पात्र में ढलते हैं हमें बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं। और जानना चाहेंगे आपके स्कूल और कॉलेज का वक्त, क्या आपने स्ट्रीम्स ली थी, क्या पढ़ाई की?
2: स्कूल तो नॉर्मल यहीं पर SSC बोर्ड में था, और उसके बाद में मैंने आर्ट्स में मतलब मैंने ग्रेजुएशन किया, BA किया, और 2 साल पहले मैंने कॉलेज के बाद इस्माइल यूसुफ में जूनियर कॉलेज किया, और बाद में 3 साल भवंस कॉलेज अंधेरी में था
3: जी।
2: तो वहां पर मतलब मेरी पूरी काया पलट हुई एकदम वहाँ काफी बहुत सारे दोस्तों से मिला, बहुत लोगों से मिला, इस्माइल यूसुफ में भी काफी शुरू हो गया था
3: जी। अच्छा, थिएटर और ड्रामा?
2: थिएटर ड्रामा तो पता नहीं मेरे नसीब में कुछ मुझे नाटक मुझे हुआ ही मिला ही नहीं ना, स्कूल में मैं कुछ कर पाया, इस्माइल यूसुफ में जब मैं गया वहां पर नाटक हुआ नहीं, एक प्ले की रिहर्सल शुरू हुई और वो प्ले बंद हो गया। कॉलेज मैंने चेंज किया इसी वजह से कि मुझे नाटक करने थे, मैं जिस साल भवंस कॉलेज में मैंने एंट्री ली वहां पर एक नए प्रिंसिपल उस साल मेरे साथ में उन्होंने भी एंट्री मारी थी और उन्होंने नाटक वाटक सब बैन करवा दिए थे पता नहीं क्यों तो मेरा मतलब

0: पूरा कॉलेज का जो टाइम था जब मैंने सोचा था कि यार मैं नाटक वाटक करूंगा, वो हुआ ही नहीं। फिर थिएटर कभी मैं कर ही नहीं पाया, थिएटर के साथ में मेरा जुड़ाव हो ही नहीं पाया।
1: जी।
0: फिल्में करने के बाद में मैंने नाटक किए।
1: जैसे कि अभी आप कर रहे हैं, उस बारे
0: हाँ
1: में भी हम बात
0: जी जी
1: करेंगे। फिलहाल हम अपने श्रोताओं को आपकी पसंद का कोई गीत सुनवाना चाहते हैं।
0: मेरी पसंद का कोई गीत, यार बहुत सारे गीत हैं मेरी पसंद के। आपकी याद आती रही रात भर अगर
1: अच्छा,
0: गमन से,
1: थोड़ा सा गुनगुना देंगे।
0: अरे वो तो बहुत।

0: क्या बात है,
1: थैंक
0: सुनवाते हैं गीत
1: अभी से मैं
0: अपने
1: ऐसे गाने बोलूंगा जो मैं अच्छे से गा सकूं।
0: नहीं, हर गीत पे
1: जैसे
0: हम
1: वो
0: नहीं
1: कहते हैं ना
0: गवाएंगे
1: कि
0: आपको
1: बच्चों
0: अगर आप
1: को,
0: ऐसा चाहेंगे तो।
1: हाँ कि बच्चों के बोलते हैं कि
0: जी
1: महाराष्ट्र कौन से स्टेट में रहते हो, तो मैं महाराष्ट्र उसकी स्पेलिंग बताओ। नहीं मैं गोवा में रहता हूँ।
0: नहीं, आप
1: तो
0: बेफिक्र रहिए।
1: अब मैं सिंपल वाले गाने बताऊंगा।

0: अच्छा, 1999 में हम तुम पे मरते हैं फिल्म में एज असिस्टेंट डायरेक्टर आपने काम किया, तो वहां से जुड़ाव कैसे हुआ? और आपने नौकरी भी कुछ की है, तो
1: हाँ
0: उससे
1: हाँ
0: पहले की बात है या उसके 99 के बाद की बात है?
1: नहीं, नौकरी बाद में हुई। पहले मैंने,
0: अच्छा,
1: मेरा पहला काम जो है
0: पहला
1: वो
0: काम
1: एज
0: जो
1: एन
0: था,
1: असिस्टेंट डायरेक्टर, वो भी नौकरी थी, तो
0: हाँ,
1: मेरी पहली नौकरी वो थी।
0: तो वो कैसे जुड़े, कैसे?
1: वो मेरे कॉलेज में मेरे एक दोस्त रहे हैं, अभी भी हैं, मतलब हम काफी क्लोज फ्रेंड हैं, राजुल मिश्रा। तो वो उस वक्त सूरज जी को असिस्ट करते थे, वो मेरे से कॉलेज में 2 साल सीनियर थे, और हम साथ में काफी गाने वाने गाया करते थे, और वो कॉलेज में मतलब ही वॉज अ स्टार सिंगर। तो उन्होंने बाद में राशि प्रोडक्शंस ज्वाइन किया, सूरज जी को वो असिस्ट कर रहे थे, और हमारी फिर मुलाकात फिर भी होती रहती थी, और उनके जरिए मुझे

0: उनके ही एक एक्स कलीग जो थे नव कुमार राजू जी, जो सूरज जी को पहले असिस्ट किया करते थे, तो वो एक फिल्म शुरू कर रहे थे और उन्होंने मुझे, राजुल ने मुझे उनसे मिलवाया और मेरा एक इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया। और इस तरीके से पहली फिल्म मिली हम तुम पे मरते हैं, जिसमें गोविंदा जी, उर्मिला जी, डिम्पल कपाड़िया मैम, बहुत बड़ी कास्ट थी, परेश
1: जी
0: रावल साहब थे, जॉनी लीवर जी थे, गुलशन ग्रोवर जी, तो बहुत मज़ा आया था। मेरा पहला काम था वो और काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा था वो, लाइफ का पहला एक्सपीरियंस ही बहुत कमाल था।
1: उसके बाद आपने दूसरी नौकरियां भी की है।
0: हाँ, उसके बाद मैंने एक और फिल्म में असिस्ट करना शुरू किया, लेकिन 20 दिन में मैंने वो फिल्म छोड़ दी थी। और उसके बाद फिर 1-1.5 साल तक फिर काफ़ी काम की तलाश चली और फिर फाइनली कुछ फ्रीलांस काम मिलने लगा एज अ राइटर, वो भी राजुल की बदौलत। मतलब राजुल मिश्रा का मेरे करियर में बहुत ही बड़ा
1: अच्छा
0: योगदान है। तो
1: जी,
0: उन्होंने मुझे असल में राइटिंग की तरफ झुकाव जो है वो
1: झुकाव,
0: उस तरफ
1: रुझान।
0: बढ़ाया, रुझान। तो वो, उन्हें पहले एक कोई डिस्कवरी के लिए कोई एक शो मिला था
1: जी
0: जिसको वो हिंदी में उनको ट्रांसलेट करना था। तो मैं उस वक्त मैं उनके ऑफिस में बैठा हुआ था, राजश्री प्रोडक्शंस में। वह हमेशा जब ऑफिस आवर्स ख़त्म होते थे तो मैं शाम को वहाँ पहुँचता था, हम गप्पे वप्पे मारते थे और काम वाम की बातें भी करते थे।
1: जी
0: तो उनको वो ट्रांसलेट करने के लिए मिला था, तो राजुल ने मुझे कहा कि यार एक बार तू भी ट्राई कर, तेरी भी भाषा तो ठीक ठाक ही है। तो मैंने जब एक पैराग्राफ लिखा तो वो, उन्हें बहुत पसंद आया तो, और बोला अरे यार तू तो मतलब सिर्फ ट्रांसलेट नहीं, तू तो मतलब अच्छे से उसे, मतलब तेरी लैंग्वेज पे काफ़ी अच्छी कमांड है।
1: कमांड है।
0: तो मुझे तो ये पता नहीं था ऐसा कि मतलब मैं कुछ लिख भी सकता हूँ। फिर उन्हें एक एक कॉमेडी टाइप थोड़ा सा, मतलब एमटीवी के लिए एक शो था जो रागेश्वरी होस्ट किया करती थी,
1: अच्छा।
0: उसमें उस वक्त वीजे थी वो, उस वक्त एमटीवी में। तो वो शो लिखना था, उनके एंकर लिंक्स, वीजे लिंक्स जो होते हैं
1: जी।
0: कि वो जो बोलते हैं फिर उसके बाद गाना आता है, तो वो लिखने के लिए दिया और वो मैंने लिखा, वो भी साथ में उनके, वो भी पसंद आया, उन्हें भी पसंद आया, रागेश्वरी को भी अच्छा लगा। तो फिर और शोज लिखने लगे, फिर एक शो से दूसरा शो, फिर ईटीसी। मैं, राजुल और हमारे एक और दोस्त है कॉलेज का, रेंजी वर्गिस, हम तीनों ने फिर मतलब लिखना शुरू किया काफ़ी। और धीरे धीरे कब मैं मतलब एकदम से राइटर बन गया मुझे खुद पता नहीं चला, साल 2 साल गुजर गए, राइटर का
1: जी
0: तमगा लग गया।
1: जी
0: फिर नौकरी की मैंने एमटीवी में 4 साल इन हाउस राइटर के तौर पे, और फिर 1 साल चैनल वी में था। तो ऐसे फिर शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, तो यही लाइफ हो गई थी। मुझे लगा कि अब ऐसे ही चलता रहेगा। अब बाद में मैं क्रिएटिव हेड बन गया एक दूसरे चैनल में, बॉलीवुड चैनल था वो, इमेजिन शोबिज।
1: जी
0: तो फिर मतलब ऐसे लाइफ शुरू हो गई। बट ये नौकरी के जो मेरे साल थे उसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने इंजॉय किया वो एमटीवी के जो 4 साल थे, वो मेरे लिए बेहद खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा मैंने वहाँ पर सीखा। बहुत अच्छे दोस्त बनाए, प्यारे दोस्त बनाए, जो अब तक जिनके मैं टच में हूँ, जिनके साथ,
1: जी
0: तो
1: जी
0: वो मेरे मतलब बहुत ही खूबसूरत 4 साल रहे हैं एमटीवी में।
1: बिल्कुल। यहाँ पर आपके गीत पसंद के, कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे, और हो सके अगर वो गीत अगर आप गाना चाहें तो गा सकते हैं।
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सावरिया, ओए होए। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सावरिया, ओए होए होए। ओ जाने सारी नगरिया, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए। ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए होए होए। ओ जाने सारी नगरिया।
1: आके सीधी क्या बात है, क्या बात है,
0: थैंक
1: बहुत खूब।
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया, ओए। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया, ओए होए। ओ तेरी तिरछी नजरिया, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए। ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए होए होए। ओ जाने सारी नगरिया,
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया।

0: गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूँ गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय रंगीले आवरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया हाय हाय
1: ले गई मेरा दिल तेरी तिरछी नजरिया ओ गुजरिया
2: हम बात कर रहे हैं शारिफ जी से और बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में और बैनर आपके फहरिस्त में हैं आपके खाते में शामिल हैं हम बात करते हैं अगर स्लम डॉग मिलेनियर की काफी चर्चित पॉपुलर फिल्म रही है उसके साथ कैसे जुड़ना हुआ
3: उस वक्त एक्चुअली मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है तब मैं चैनल वी में काम कर रहा था चार साल MTV में गुजारने के बाद मैंने चैनल वी ज्वाइन किया था और उस वक्त मेरे एक दोस्त मेरे MTV के ही एक मतलब एक्स कलीग जो है स्वप्निल कोरे तो वो उसमें असिस्ट कर रहे थे कास्टिंग में और उन्होंने मुझे एक रोल के लिए बुलाया रोल क्या वो तो मतलब एक सीन था जो मतलब अगर कोई हिंदी फिल्म होती तो वो किसी असिस्टेंट डायरेक्टर से या कोई जूनियर आर्टिस्ट से करवा देते बट मेरा उसके लिए बाकायदा ऑडिशन लिया गया और डैनी बॉयल साहब मेरे ऑडिशन में मौजूद थे वो मुझे क्यूज दे रहे थे दूसरे कैरेक्टर का तो मैं मतलब एकदम हक्का बक्का था कि यार इतना इन्वॉल्वमेंट किसी डायरेक्टर का मतलब मैं आकर चला भी जाऊंगा कुछ वो नहीं था उस ऐसे रोल के लिए डायरेक्टर कभी रहते भी नहीं है वो तो सेकेंडरी तक भी नहीं पहुंचते बट इतना उन्होंने मुझे उस वक्त अप्रिशिएट किया था मेरे काम को और इतनी तारीफ की थी और मतलब डैनी बॉयल साहब है वो
2: बिल्कुल
3: भी मतलब रत्ती भर भी मतलब उनमें कोई मतलब एयर नहीं था ना कोई ईगो था ना कोई ऐसे अहम था कुछ इतना प्यारा इंसान बहुत मतलब मेरे लिए स्लमडॉग मिलियनेयर में मेरा शूट एक ही दिन हुआ था
2: जी।
3: लेकिन उन्होंने दो दिन का रखा था बफर फर्स्ट डे जो है मैं शूट नहीं कर पाया था और नेक्स्ट डे शूट हुआ था तो फर्स्ट डे जब पूरा दिन मैं बैठने के बाद में उन्होंने बोला पैकअप हो गया तो पैकअप के वक्त डैनी साहब मुझे मिले और पहले उन्होंने माफी मांगी कि हम शूट नहीं कर पाए
2: अच्छा।
3: उनको कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने ना मुझसे मिलने की जरूरत थी बट उसके बावजूद वो आए और मैंने ऑडिशन के टाइम एक लाइन ऐसी इम्प्रोवाइज की थी कुछ तो वो उन्होंने स्क्रिप्ट में डाली थी वो लाइन उन्होंने स्क्रिप्ट में ऐड कर दी थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि डिड यू गो थ्रू द स्क्रिप्ट वी एडेड योर लाइन यू आर इवन पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट नाउ मतलब मैं कभी जिंदगी भी नहीं भूल सकता कि इतने बड़े आदमी ने मतलब इतने प्यार से और इतनी रिस्पेक्ट दी मुझे जो मैं मतलब हमेशा याद रखूंगा मैं 50 बार ये किस्सा मैं 1000 लोगों को सुनाता हूँ
2: और जब तक है जहाँ उससे भी आप रिलेट किए उससे कैसे जुड़ना हुआ
3: उसमें मैं असल में जब मैंने डिसाइड किया 2008 एंड मतलब 2009 के आसपास में मैंने नौकरी छोड़ छाड़ के एक्टिंग करने का डिसीजन लिया था और फिर 3 साल तक बहुत सारे ऑडिशन हुए सैकड़ों और सिर्फ रिजेक्शन मिले एक ऐड किया था एक शॉर्ट फिल्म की थी उसके अलावा और कुछ नहीं मिला था
2: जी।
3: तो फिर से मुझे क्योंकि कर्जे चढ़ गए थे बहुत ज्यादा तो मुझे दोबारा नौकरी करनी पड़ी एक चैनल था UTV बिंदास वहां पर मैंने ज्वाइन किया एज AVP प्रोग्रामिंग और वहां कुछ 3 महीने ही हुए थे कि मुझे शानू शर्मा जी का फोन आया
2: अच्छा।
3: जो YRF में कास्टिंग डायरेक्टर हैं बहुत बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो तो उन्होंने मेरी जो शॉर्ट फिल्म मैंने की थी वो YouTube पर देखी और वो देखकर फिर उन्होंने मुझे जब तक है जान के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया तो शुरुआत में 3 राउंड जो हुआ उसमें सिर्फ मैंने रब ने बना दी जोड़ी में जो विनय पाठक साहब का जो कैरेक्टर था उनके सीन्स के साथ ऑडिशन दिया फिर वो हुआ उसके बाद मुझे जब वो पड़ाव पार हो गया उसके बाद मुझे जो जैन के जो मैं प्ले करने वाला था उसके सीन्स दिए और फिर उसके 3 राउंड हुए और मेरा सबसे पहला ऑडिशन भूमि पेडनेकर ने लिया था
2: अच्छा।
3: उस वक्त वो शानू की असिस्टेंट थी
2: हा, हा, हा।
3: तो बहुत मतलब मेरे लिए तो ये चीजें जो मेरे साथ में हो रही थी और उस वक्त मैं नौकरी कर रहा था और थैंकफुली जो मेरी इमीडिएट बॉस जो थी वो ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी तो मैं

0: आराम से, मतलब
1: मौका
0: कल्टी
1: मिल गया
0: मौका
1: आपको
0: मिलते ही मतलब मैं मतलब ऑफिस से चला जाता
1: जी।
0: था और ऑडिशन देके आ जाता था। तो फिर एक दिन रात को 12 बजे मुझे इन्होंने फ़ोन किया, शानू ने, कि यार नहीं हो पा रहा है और किसी और एक्टर को कास्ट कर लिया है। तो मुझे लगा ठीक है, अब इतने सारे रिजेक्शन हुए हैं, मैं वैसे भी मतलब मैंने सोचा था कि ये भी रिजेक्ट ही होने वाला हूँ। तो मैंने फिर एक और थोड़ा सा उदास हुआ और फिर काम पे लग गया अपने, क्योंकि नौकरी थी एटलीस्ट। बट एक हफ्ते बाद फिर से मुझे फ़ोन आया और इस बार यशराज के ऑफिस से आया था, और अक्षत कपिल जो उस वक्त यश जी के चीफ थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि आप एक बार और ऑडिशन दे सकते हैं क्या। तो मैंने बोला ठीक है, एक बार और ले लो। तो मैं ऑफिस गया उनके YRF में और वहाँ पर एक बार फिर से ऑडिशन दिया और मैं फिर वापस अपने ऑफिस आ गया। तो ऑफिस पहुंचा ही था मैं कि आधे घंटे में फ़ोन आया कि आप सेलेक्ट हो गए, 4 दिन बाद शूट है, दो
1: अच्छा,
0: दिन बाद
1: उसी
0: या
1: के लिए जिसमें पहले नहीं हुआ था।
0: हाँ, सेम रोल का ही
1: अच्छा,
0: मैंने इतनी बार
1: हाँ हाँ
0: ऑडिशन
1: हाँ
0: लिया
1: हाँ
0: और वो फिर फाइनली मतलब हो गया, क्योंकि शायद वो उसके पहले जिसको कास्ट किया था वो भी थोड़ा हैंडसम और गुड लुकिंग टाइप था, तो दोनों हैंडसम और गुड लुकिंग दोनों, शाहरुख खान साहब भी हैंडसम तो ये भी हैंडसम, तो उन्हें शायद कुछ कॉन्ट्रास्ट चाहिए
1: हाँ,
0: था
1: वो कुछ
0: और
1: अलग
0: मैं
1: क्लिक
0: उस
1: कर
0: वक्त एकदम ऐसा था,
1: गया
0: 90 किलो का।
1: तो
0: तो
1: हमेशा ये जो मूवीज का जो प्रोसेस है, ये ऑडिशंस, क्या इतना लंबा होता है या अलग अलग प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है? बार
0: अलग
1: बार
0: अलग
1: राउंड्स देने
0: प्रोजेक्ट पे,
1: पड़ते हैं?
0: हाँ जितनी बड़ी फिल्म होती है उतने ज़्यादा राउंड्स होते हैं फिल्म
1: अच्छा।
0: में ऑडिशंस के। अभी तो मैं वो ऑडिशन प्रोसेस तो अब नहीं रहा, लेकिन हाँ अगर कभी कोई ऐसी फिल्म होती है जिसके लिए ऑडिशन की बहुत ज़रूरत हो तो वो भी मैं करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो मतलब जो वो फर्स्ट 3 साल जो मैंने ऑडिशंस दिए थे उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। ऑडिशन मेरा रियाज था एक्चुअली, क्योंकि मेरी कोई फिल्म में या एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ना मैंने थिएटर किया था, ना कोई एक्सपीरियंस था एक्टिंग करने का। सिर्फ मैं MTV में मैंने मतलब काफ़ी जो हम स्केच कॉमेडीज करते थे वो उसमें मैं कुछ कुछ कभी एक्टिंग कर लेता था, बकरा, MTV बकरा करता था, अदरवाइज मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। तो वो उन ऑडिशंस में मैंने बहुत कुछ सीखा उसके दौरान और उसके जरिए मेरा रियाज हुआ एक्टिंग
1: बिल्कुल
0: का।
1: बिल्कुल। लेकिन ये ऑडिशंस में, जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़े बड़े बैनर्स के साथ आप जुड़े, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट से रिजेक्शन भी मिला कहीं ना
0: बहुत
1: कहीं,
0: सारे,
1: बहुत
0: हाँ
1: सारे। तो कैसा महसूस हुआ, या वो हिम्मत कहाँ से आती है, मोटिवेटेड कहाँ से रहते हैं आपकी, नहीं अभी चलते जाना है आगे, कोई बात नहीं, रिजेक्ट हुआ कोई बात नहीं, आगे और कोशिश
0: वो
1: करेंगे? कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं छोड़ देते हैं, अभी मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ होगा?
0: नहीं, मैं वो एक तो अब मैंने अच्छी खासी नौकरी छोड़ के ये सब इसीलिए किया था क्योंकि मुझे इस प्रोफेशन से प्यार है बहुत। और अगर वो मतलब वो लव फॉर द जॉब जो है ना वो मतलब छोड़ने नहीं देता, और मैं थोड़ा बचपन से ही काफ़ी पॉजिटिव रहा हूँ और मेरे आसपास भी काफ़ी एनकरेजिंग फ्रेंड्स और फैमिली, खासकर मेरी बेगम, तो
1: बिल्कुल।
0: वो बहुत हमेशा सपोर्टिव रही और उनकी ही बदौलत एक्चुअली मैं कंटिन्यू कर पाया। वरना एक दो बार ऐसा आता था मौका कि मतलब मन करता था कि यार बेकार में मैं सबको परेशान कर रहा हूँ इसके चक्कर में, बट उन्होंने बोला कि ये सिर्फ तुम्हारी अकेले की मतलब वो नहीं है, हम सब
1: हम सब
0: इसमें
1: साथ
0: तुम्हारे
1: में
0: साथ
1: हैं।
0: में हैं। तो वही, और खुद पे भरोसा था कि यार टैलेंट तो अपने में है, कूट कूट के भरा है, तो बस
1: बिल्कुल।
0: जनता तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग रहा है, वो हो जाएगा।
1: वो जो कूट कूट के भरा है टैलेंट, वो नजर आया फिल्मिस्तान फिल्म
0: जी
1: में, तो
0: हाँ
1: वहां पर ऐसा लगा कि बस आप तो एंटरटेनमेंट के लिए बने। उसमें डायलॉग भी है
0: हाँ
1: ये
0: हाँ
1: कि
0: उसके
1: मेरा
0: डायलॉग
1: जन्म
0: मैंने
1: ही,
0: लिखे हैं फिल्म
1: हाँ वो आप ही ने लिखे हैं
0: के।
1: कि मेरा जन्म ही एंटरटेनमेंट के लिए
0: यस
1: हुआ है।
0: यस,
1: तो ये कैसे इसके साथ जुड़ा हुआ, कैसे लिखे, इसके बारे में
0: फिल्मिस्तान,
1: थोड़ा सा।
0: मैं असल में जब मैं तब ये UTV मंद्रास में ही नौकरी मेरी चल रही थी, उसी दौरान जब जब तक है जान के ऑडिशंस में दे रहा था, तो वो जब जो मेरे वहाँ पे 3-4 महीने जो मैंने वहाँ पर गुजारे थे उस वक्त नितिन ने उस पर काम करना शुरू किया था स्क्रिप्ट पर फिल्मिस्तान की। तो मैं ऑफिस ख़त्म होने के बाद मैं नितिन के घर जाता था और जो भी उन्होंने लिखा होता था वो मुझे सुनाते थे, और मैं आई वुड वर्क एज अ बाउंस बोर्ड, मैं कहता था हाँ ये अच्छा है, ये बहुत सही है, ज़्यादातर वो सब अच्छा ही होता था। नितिन बहुत ब्रिलियंट राइटर है, बहुत कमाल जब भी वो लिखता है। फिर हमने साथ में थोड़ा थोड़ा और वो करना शुरू किया, और नितिन को भी जब मैं जब तक ये जान में सेलेक्ट हुआ उसी दौरान नितिन को एक प्रोड्यूसर मिल गए, और जब हम लिख रहे थे तब नितिन बोलता था कि ये जो रोल है ये मतलब तेरे लिए एकदम करेक्ट है, अब मैं सोचता था कि कहाँ वो मुझे कास्ट करेगा अपनी पहली फिल्म में, मेन लीड में वो भी। बट जब उन्हें प्रोड्यूसर मिला, उन्होंने मुझे ऑडिशन करवाया सनी अरोड़ा के किरदार के लिए, और मैं उसमें भी सिलेक्ट हो गया। तो वो

0: एक जब मैंने मतलब सब छोड़ छाड़ के 3 साल नौकरी पे मैं जब ज्वाइन किया, और 3 महीने में मुझे जब तक है जान मिल गई, और उसी दौरान फिल्मिस्तान भी आया,
1: फिल्मिस्तान
0: तो वो मैं मतलब बड़ा अचंभित था कि मतलब जिस तितली के पीछे इतने साल दौड़ा और उसको पकड़ने की कोशिश की, वो मेरे हाथ ही नहीं आई। जब थक हार के कहीं बैठ गया तो अपने आप मेरे कांधे पे आके मतलब जो है वो बैठ
1: बिल्कुल,
0: गई।
1: कहते हैं ना जिसे आप चेज करते हैं वो मिलता नहीं है, जब आप छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो मिल
0: वो
1: जाता है,
0: मिल जाता है, तो वही
1: ऐसे
0: हुआ
1: ही कुछ
0: मेरे
1: हुआ।
0: साथ में। और इस तरीके से फिल्मिस्तान भी हुई, और फिल्मिस्तान ने फिर मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल दी एकदम।
1: बिल्कुल। यहाँ पर आपकी पसंद का गीत,
0: जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब मेरे ख्याल से मैंने कहीं पढ़ा भी था, जावेद अख्तर साहब के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि फिल्मों में मतलब आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ सबसे फेवरेट गाना उनका कौन सा है, तो उन्होंने बोला था जिंदगी के सफर में, और मुझे भी ये गाना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है।
1: बिल्कुल, ये सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को।

0: हम बात कर रहे हैं आज शारिब हाशमी जी से। तो फिल्मिस्तान की जब बात चली है तो उसका सुर कैसे पकड़ा और कितना करीब है सनी शारिब से?
1: सनी और शारिब वैसे तो काफी, मतलब बहुत, मैंने जितने भी किरदार निभाए हैं उसमें सनी अरोड़ा मतलब मेरे सबसे ज्यादा नजदीक है, और उसी लिए मुझे उसे परफॉर्म करते वक्त मुझे लगा रही ये तो बहुत आसान होगा, यही सब मिमिक्री करना है, डांस करना है, नाचना गाना है और मस्ती
0: उसके
1: करनी
0: डायलॉग
1: है।
0: भी आपने लिखे हैं।
1: उसके डायलॉग मैंने लिखे हैं हाँ, तो मुझे लगा ये तो बहुत ही आसान होगा, बट जब हमने शूट करना शुरू किया तब सिंपल चीज़ें भी, क्योंकि पहली बार एक तो मैं मेन लीड कर रहा था, वो एक प्रेशर भी था, और मैं कर रहा हूँ तो वो लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे उसका एक प्रेशर था, और नितिन का जो मुझ पे भरोसा था, मैं उससे मतलब उस भरोसे पे पूरा उतरूंगा नहीं उतरूंगा, मैं बहुत उस तरीके से उस वक्त पता नहीं थोड़ा एक प्रेशर था, और वो शायद फिर परफॉर्मेंस में नज़र आने लगा, और नितिन मुझे बार बार कह रहा था कि थोड़ा शांत हो जा, थोड़ा ठंडा हो जा थोड़ा, तो मुझे एक दो दिन लगे थोड़ा अपना सुर समझने में, अपने किरदार में मतलब पूरी तरह से थोड़ा ढलने में, और सही तरीके से मतलब जो रिक्वायरमेंट थी किरदार की वो
0: रंग
1: परफॉर्म
0: पेश
1: करने
0: करने
1: में
0: में।
1: जो है मुझे थोड़ा दो दिन लगा सेम पेज पे आने में नितिन के साथ
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जब मैं आया तो फिर, और जब नितिन कुछ अच्छा बोलता था तो मेरा पूरा ऐसे मैं बच्चों की तरह
0: जो कि
1: नाचता
0: हमने उसमें भी देखा, परफॉर्मेंस भी देखा, बिल्कुल दिल खोल के, जिसे बोलते हैं ना कि बस यही मेरी, यही सब कुछ है, उस तरह से आपने सब कुछ उसमें डाल दिया था,
1: जी
0: पूरा
1: थैंक
0: एंटरटेनमेंट। और वो
1: यू।
0: डायलॉग भी है उसमें कि
1: हाँ मुझे तो ऐसा लगता है।

0: करना इजी भी होता है और
1: बहुत।
0: कैसा यह
1: हाँ,
0: अनुभव है?
1: नितिन के साथ तो मेरा अलग कंफर्ट लेवल ही अलग है। हमारी हम बहुत गहरे दोस्त भी हैं, और साथ में मैंने राइटिंग का काम तो सिवाय नितिन के और किसी के साथ किया ही नहीं है, फिल्म राइटिंग। तो मैंने उनके लिए और मित्रों, एक फिल्म है उसके लिए भी डायलॉग्स
0: हाँ
1: लिखे हैं,
0: जी
1: नोटबुक के लिए भी डायलॉग्स लिखे हैं, और राम सिंह चाली तो हमने तकरीबन साथ में लिखी है। बट मेजर काम हमेशा राइटिंग में नितिन का ही होता है। वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ब्रिलियंट माइंड है। हमने सबसे पहली बार मुझे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में नितिन ने मुझे बताया था जब हम बुसान फिल्म फेस्टिवल में गए थे फिल्मिस्तान को लेकर। वहाँ पर फिल्मिस्तान का वर्ल्ड प्रीमियर था, और तब नितिन ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बोला था कि एक चार्ली चैपलिन के इम्पर्सोनेटर की अगर कोई कहानी हो और उसको अगर हम लोग कुछ करें तो कैसा रहेगा। और मैं तो सुन के ही बहुत खुश हो गया था, यार ये तो कमाल होगा। और फिर हमने धीरे धीरे, नितिन ने थोड़ा उसको डेवलप करना शुरू किया, फिर हम साथ में बैठ के उस पर काम करने लगे, और करते करते करते राम सिंह चार्ली की स्क्रिप्ट तैयार हो गई और हम बहुत खुश थे स्क्रिप्ट के साथ। और पिच करना शुरू किया तो कोई तैयार नहीं हो रहा था प्रोड्यूस करने के लिए, या कोई कह रहा था कि कोई नाम लेकर आओ, कोई बड़ा एक्टर लेकर आओ। फिर हमने डिसाइड किया कि यार जब हमको इस चीज़ पे इतना भरोसा है तो हम खुद ही क्यों ना प्रोड्यूस करें। और हमने फिर, मैंने, नितिन ने और हमारे एक और पार्टनर है उमेश पवार, हम तीनों ने मिलके अपने पैसे लगाकर हमने फिल्म प्रोड्यूस की, और कुमुज्जी को हमने टाइटल रोल में कास्ट किया, दिव्या दत्ता, फर्रुख सियार, और बहुत अच्छी कास्ट जमा की, आकर्ष खुराना, और बहुत कमाल एक्सपीरियंस रहा वो फिल्म बनाने का। एक ही फिल्म प्रोड्यूस की है मैंने, और आगे शायद पता नहीं कब करूँगा या करूँगा भी, यानी वो भी नहीं पता। लेकिन अगर सिर्फ जिंदगी में सिर्फ एक ही फिल्म मैंने प्रोड्यूस की तो वो भी मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि यस, मैंने राम सिंह चार्ली प्रोड्यूस की है।
0: मैं प्रोड्यूसर
1: मैं प्रोड्यूसर हूँ तो राम
0: हूँ
1: सिंह चार्ली का हूँ। ये
0: जी
1: एक खूबसूरत फिल्म है, और
0: बिल्कुल।
1: यस।
0: तो जब हम बात करते हैं आपकी नोटबुक राम सिंह चार्ली की 47 डिग्री की, तो कहीं ना कहीं बहुत ही सिंपल और सहज मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ी फिल्में हैं ज्यादातर, तो ये कहीं ना कहीं कहाँ से आता है? ये शायद आपने अनुभव किया हुआ है, या ज्यादातर आपकी शॉर्ट फिल्म्स या कहानियां या लेखनी जो है कहीं ना कहीं इसी तर्ज पर है?
1: मे बी शायद मैंने वही लाइफ जी है, मिडिल क्लास से ही बिलोंग करता हूँ मैं,
0: जी,
1: वही रचा
0: और हम
1: बसा है
0: उससे
1: अंदर।
0: काफी रिलेट कर पाते
1: हाँ,
0: हैं।
1: टोटली रिलेट कर पाते हैं। और मैं, क्योंकि आप कितने भी अच्छे एक्टर हो या कितना भी कुछ भी हो, आपको काम तो वैसे ही मिलेगा जैसे आप दिखते हैं। तो मैं, मेरे ख्याल से वही मिडिल क्लास वाला, मतलब चेहरा भी वही है आम आदमी वाला, तो वैसे किरदार भी मुझे मिलते हैं। इसीलिए फिल्मिस्तान का सनी अरोरा, या तरला का नलिन दलाल, या जो भी मैंने ज्यादातर किरदार निभाए हैं उस हिसाब से, जो शॉर्ट फिल्म्स में भी मैंने, अगर महरूनी में जो
0: हाँ,
1: किया है,
0: महरूनी की बात करता है। हाँ
1: हाँ,
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो वो सब वैसे ही है। इट्स ओनली 47 डिग्रीज में भी वैसा ही एक ट्रैफिक हवलदार का एक किरदार है।
0: जी।
1: तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैसे तो हम जितने अलग किस्म के किरदार निभाएं उतना अच्छा होता है, और थैंकफुली मुझे मिलते भी हैं डिफरेंट किस्म के किरदार निभाने को। बट ज्यादातर जो है वो एक, वो हाँ, मिडिल क्लास वाला क्या
0: और
1: कहेंगे
0: दर्शकों
1: उसको,
0: से भी वो कहीं ना कहीं
1: इमेज
0: जुड़ाव
1: तो
0: आ
1: है।
0: जाता है।
1: हाँ,
0: यहां पर आपकी पसंद का कोई गीत?
1: ये मिडिल क्लास से मुझे याद आया, मतलब
0: हाँ।
1: काफी, एक तो जो अमोल पालेकर साहब की जो फिल्में होती थी ना उस वक्त की, वो मुझे बहुत, खासकर छोटी सी बात मेरी बहुत ही पसंदीदा फिल्म है, और घरौंदा, घरौंदा में जो एक गाना है वो मुझे बहुत पसंद है। वो प्लीज, तुम्हें हो ना हो मुझको तो
0: बिल्कुल,
1: इतना यकीन, वो
0: वो
1: मुझे
0: सुनवा देते हैं, वो गीत
1: प्लीज।
0: हम जरूर सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को।

0: बात तरला की जैसे आपने की, बहुत ही सपोर्टिंग हस्बैंड के रूप में वो किरदार है, तो कहीं ना कहीं निजी जिंदगी में भी काफी सपोर्टिंग रहे हैं आप कहीं ना कहीं। और जब आप एक चुनौती भरा वो फेज से गुजर रहे थे, वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, तो आपकी वाइफ जो है नसरीन जी आपके साथ रही हैं, कैसे उस दौर से आप निकले हैं? अगर आप अपने निजी कुछ अनुभव बताना चाहें तो कैसे वो आपकी सपोर्ट रही हैं?
1: वो तो मतलब जब मैं ऑडिशन देना शुरू किया था और तब अच्छी खासी एक नौकरी कर रहा था मैं, एक लाइफस्टाइल थी, अब उसको बच्चा भी हो चुका था, तो उसके हिसाब से जो है उसको मेंटेन करने के चक्कर में और साथ में दाल रोटी के लिए और स्ट्रगल भी कंटिन्यू रखना है, तो वक्त गुजरता जा रहा था, पैसे कम होते जा रहे थे, कम क्या ख़त्म हो गए एक पॉइंट के बाद, और जो सेविंग्स थी सारी उड़ गई, जेवर भी मैंने मतलब उनसे मांगने शुरू कर दिए और उन्होंने कभी उफ तक नहीं की, घर जो खरीदा था नौकरी के दौरान वो भी बेच दिया, बट उन्होंने एक बार भी ऐसे नहीं कहा कि ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो मतलब मेरे पैशन को और मेरे ड्रीम को और मेरे टैलेंट पर उनको काफ़ी भरोसा था, उनको ये था कि यार कुछ ना कुछ तो इसका होने वाला है इस बंदे का, और जितना मुझे खुद पे भरोसा था शायद उससे कहीं ज़्यादा उनको मेरे काम पर यकीन था, लेकिन उस वक्त जब गुजर रही थी तब मुझे पता है कि कैसे उन्होंने उसको हैंडल किया, कैसे घर मैनेज किया, कैसे मुझको हैंडल किया और कैसे हमने वो मुश्किल दौर गुजारा है साथ में, वो हम दोनों को ही पता है
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे बड़ी
1: और
0: ताकत रही हैं
1: जी हाँ,
0: आपकी।
1: वो मेरी मतलब उस वक्त की सबसे बड़ी हिम्मत, सबसे बड़ी ताकत रही हैं और उनके बगैर वो पॉसिबल ही नहीं होता, और जब मतलब चीज़ें होनी शुरू हुई अच्छी और थैंकफुली मतलब ऊपर वाले ने साथ दिया, तो फिर वो उन्होंने बोला भी कि मैंने सही घोड़े पे पैसा लगाया
0: अभी उस सीरीज की बात करते हैं जिससे आपको सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, द फैमिली मैन।
1: जी
0: इससे जुड़ना कैसे हुआ, और ये जेके का किरदार आपको लगा था उस वक्त कि कुछ तो कमाल कर जाएगा, मुझे लोग जेके के नाम से पुकारने लगेंगे, ज्यादा जानने लगेंगे?
1: जेके जब मतलब हुआ तब मैं जिस पॉइंट पे आया ये किरदार मेरी ज़िंदगी में, उस वक्त मुझे उसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी, बहुत करियर मेरा एक एकदम लो पर था, बहुत डाउन था मैं फाइनेंशियली, कि फिल्मिस्तान हो चुकी थी जब तक जान हो चुकी थी, उसके बावजूद मैं फिर से ऑडिशंस दे रहा था, फिर रिजेक्शंस हो रहे थे, फिर काम नहीं मिल रहा था, एक

0: वो, और जब ऑडिशन दिया तो उन्होंने कहा था कि फिलहाल तुम न्यूट्रल उसमें ही करो, कोई बंगाली एक्सेंट की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से कर दो, बाद में हम देखते हैं। और जब ऑडिशन हुआ तो मुझे लगा कि यार आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है। आपको थोड़ा पता चल जाता है कि अगर कुछ अच्छा हुआ है तो, और अच्छा अगर ऑडिशन होता है तो आप फिर फ़ोन का इंतज़ार भी करने लगते हैं कि यार अब
1: बिल्कुल.
0: घंटी बजेगी, अब घंटी बजेगी। और हफ्ता 10 दिन लग गया और उसके बाद लेकिन फ़ोन आया। और मेरी पहले डीके साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आपका ऑडिशन तो अच्छा था लेकिन ये बंगाली में, मतलब मुझे नहीं लगता है कि आप बंगाली में एज ए बंगाली फिट होंगे। नेचुरली आपको कौन सा कोई एक्सेंट या डायलेक्ट जो है आप में, मतलब नेचुरली आप किस में वो कर सकते हैं, आप अपने आप को
1: कंफर्टेबल है.
0: कंफर्टेबल हैं। तो मैंने बोला मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ, मराठी बोल लेता हूँ। तो उन्होंने बोला कि यार हाँ महाराष्ट्रन कर सकते हैं इसको। फिर नाम की तलाश शुरू हुई कि इसका नाम क्या होगा, घोष हट गया अब। तो फिर बहुत सारे नामों के ऑप्शंस मैंने भी निकाले, तांबे और ये वो, बहुत सारे मात्रे।
1: जी.
0: फाइनली फिर वो जेके जो है, जेके तड़पदे नाम जो है लॉक किया गया। और फिर जब आया, जब हम शूट कर रहे थे तभी भी एक, इनफैक्ट ऑडिशन के वक्त ही मुझे एक इंट्यूशन हुआ था, मतलब मैं उसमें एंटर हो गया, काम मिल गया मुझे, तो लाइफ में कुछ तो एक
1: बड़ा
0: बदलाव
1: होगा
0: आने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है।
1: जी.
0: और वो इंट्यूशन मेरा बिल्कुल करेक्ट था। जैसे ही फैमिली मैन आया सीज़न 1 और वो OTT पर, मतलब एक एक अलग ही किस्म की, मतलब एक्साइटमेंट आई लाइफ में मेरे।
1: बिल्कुल.
0: और लोगों ने बहुत देखा उसे और फैंस बढ़ने लगे, फॉलोअर्स बढ़ने लगे सब जगह। सीज़न 2 आया और रिस्पॉन्स जो है वो डबल हो गया। तो वो मेरे लिए मतलब फैमिली मैन के बाद असुर आया, असुर को भी लोगों ने पसंद किया।
1: बिल्कुल.
0: स्कैम आया, जबकि उसमें मेरा एक सीन था, उसको भी लोगों ने बहुत प्यार दिया।
1: जी.
0: और फिर काम और मिलता गया, लेकिन शुरुआत उसकी फैमिली मैन से हुई। और मतलब वो मेरी ज़िंदगी में बहुत एक अहम जगह रखता है
1: बिल्कुल.
0: फैमिली मैन, और जेके ने मुझे बहुत प्यार दिया है।
1: तो इसकी जो स्क्रिप्ट है, अगर फैमिली मैन की अगर हम बात की करें, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज आप खुद करते हैं वहां पर, क्योंकि बहुत सारे डायलॉग ऐसे सुनने को आते हैं कि ऐसा लगता है इंस्टेंट आ गया है, ये तो कुछ तो अलग आ गया है. तो क्या वो सब लिखा रहता है या?
0: नहीं, तो लिखी भी होती है स्क्रिप्ट पूरी बाकायदा। और सुमन कुमार जो हैं वो हमारे जो राइटर हैं, और फर्स्ट सीजन में सुमित अरोरा ने डायलॉग्स लिखे थे और सेकंड में सुपन और सुमन भी थे। तो वो पूरा सब कुछ लिखा होता है, और लेकिन
1: कहीं
0: राज
1: कहीं
0: एंड
1: वो
0: डीके जो है
1: पंच.
0: ना, हाँ वो
1: हाँ.
0: कभी कट नहीं करते हैं। जब सीन खत्म हो गया जो पेपर पे था उसके बाद भी वो कभी कट नहीं करते। और मनोज सर मतलब इम्प्रोवाइजेशन के किंग हैं एकदम।
1: हाँ
0: तो
1: बिल्कुल.
0: वो कुछ बोलते हैं तो फिर मैं कुछ बोलता हूँ, फिर वो कुछ बोलते हैं तो मैं कुछ बोलता हूँ, और वो जब तक कोई हंसता नहीं तब तक वो कट नहीं होता।
1: मुझे लगता है उनके साथ वो केमिस्ट्री कुछ अलग ही है.
0: हाँ, और उनके साथ बहुत मजा आता है। उनके साथ आपको मतलब आपके एकदम टोज पे रहना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसे एक के बाद एक मतलब कमाल के डायलॉग्स कहाँ से लेकर आते हैं। कमाल, बहुत ही मजा आता है उनके साथ काम करने में। और इम्प्रोवाइजेशंस होती हैं और उसमें से कुछ जमती हैं, कुछ नहीं जमती हैं, वो तो हमारा काम है। मतलब ऐसा
1: बिल्कुल.
0: कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ छूट मिलती है वो करने की।
1: बिल्कुल.
0: राजेंद्री के बहुत हमें मतलब आज़ादी देते हैं, जहाँ पे हम कुछ ज़्यादा ही करने लगते हैं तो बोलते जरा कंट्रोल। फैमिली मैन का जब शूट आता है तो मैं मतलब बहुत एक्साइटेड रहता हूँ लाइफ में। मैं मतलब एकदम आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन द सेट्स कि अरे यार आज फिर से कुछ बढ़िया सा शूट होने वाला है, आज मनोज सर के साथ शूट है, राजेंद्री के हैं और मैं जेके बनूंगा और मज़ेदार कुछ कमाल करेंगे। और हर दिन मैं उसी माइंडसेट में रहता हूँ जब भी फैमिली मैन का शूट आता है। तो अब मैं सीज़न 4 का शूट जल्दी से शुरू हो उसका इंतजार कर
1: हमें भी
0: रहा
1: इंतजार है, बहुत
0: हूँ।
1: बेसब्री से इंतजार है हमें.
0: थैंक यू।
1: अच्छा, इन सीरीज में जहाँ पे एक्शन सीरीज होती है, तो पहले कुछ वर्कशॉप होती है या फिर जैसे स्टंट्स किए जाते हैं वहां पर कैसे हेल्प होती है?
0: नहीं
1: स्टंट्स आप
0: वर्कशॉप
1: करते हैं, कुछ एक स्टंट्स आप करते हैं या फिर
0: नहीं, जो डिफिकल्ट होते हैं तो वो हम खुद ही हाथ उठे उठा लेते
1: उठा
0: हैं, और वो
1: लेते
0: कोई
1: हैं?
0: बोलता भी नहीं है कि
1: जी.
0: आप करो। अगर डिफिकल्ट
1: हाँ.
0: होते हैं तो वो उसके लिए जो स्टंटमैन है वो आपका पूरा वो सीन करते हैं। और जहाँ पे जो हम खुद कर सकते हैं, भागना दौड़ना थोड़ा सा पंच और वो सब होता है, तो वो वहाँ पर आप 3-4 बार प्रैक्टिस करते हैं और रिहर्सल होती है, और उसके बाद में फिर आप भी ग्रूव में आ जाते हैं, वो
1: यूज टू हो जाते
0: यूज़ टू
1: हैं.
0: हो जाते हैं। कहीं पर थोड़ा गिरना पड़ना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जैसे हैवान में था, मतलब मुझे वो टेबल पे जो है वो मतलब

0: फेंकते हैं, और उसी से लुढ़क कर मुझे नीचे गिरना था, और वहीं तो वो पूरा शॉट था, तो मैं टेबल पे गया, फिर वहां से जमीन पे गिरा। लेकिन वो ये भी बहुत बेसिक है
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: वो हम कर लेते हैं, बट अदरवाइज जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं वो तो स्टंटमैन ही कर सकते हैं, हमारे बस की बात भी नहीं है, मेरे
1: और
0: तो नहीं है।
1: और हैवान में आपका किरदार अगर आप कुछ बताना चाहें किस तरह से कुछ अलग है अभी तक के किरदारों से.
0: बिल्कुल, हैवान में मेरा काफी, मैं मतलब एक नेगेटिव शेड है मेरे कैरेक्टर में, लेकिन उसमें मैं ह्यूमर भी है, मस्ती भी है, कॉमेडी भी कर रहा हूँ। दो सीन्स हैं मेरे जो काफी, जिसमें एक असरानी साहब के साथ है, एक राजपाल जी के साथ में। तो असरानी साहब के साथ तो जब शूट हो रहा था, मतलब मेरे लिए, मतलब दोनों ही मेरे बहुत पसंदीदा
1: बिल्कुल.
0: एक्टर्स हैं, और उनके साथ काम करके बहुत मजा आया। असरानी जी का आखिरी सीन था वो, मेरे ख्याल से उसके बाद, उसके 10 दिन बाद उनका देहांत हुआ। तो मैं मतलब अब खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं हैवान का हिस्सा बन पाया, प्रियदर्शन जी के साथ काम किया,
1: जी.
0: सैफ अली खान साहब के साथ, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा वो।
1: कोई गीत जो आप हमारे सुनने वालों को सुनवाना चाहते हैं?
0: किशोरदा का एक और काफी रेयर सॉन्ग है जो लोग कम सुनते हैं, जो कि है सैड सॉन्ग, लेकिन उसमें भी उन्होंने थोड़ा यॉडलिंग का चीज उन्होंने की है, जो आगले लग जा फिल्म से है, ना कोई दिल में समाया, वो मुझे बहुत पसंद है। अगर वो आप प्ले करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: बिल्कुल.

0: दिलचस्प बातों का सिलसिला चला है शारिब जी के साथ, और जैसे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का आपने नाम लिया ही है, अब जुड़े हुए हैं, असुर की बात हुई, स्कैम की बात हुई, हैवान अभी आई है, द फैमिली मैन, बहुत सारी फिल्मों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के पीछे रिजेक्शन भी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो जब कभी ऐसा कुछ हुआ, उससे कैसे आपने अपने ऑडिशन के तरीके को या फिर नए प्रोजेक्ट में जब आप जाते हैं उस तरीके को कुछ बदलाव आया? और ये मैं इसलिए भी जानना चाहती हूँ क्योंकि जो हमारे नए एस्पायरिंग एक्टर्स आना चाहते हैं, बाहर से आते हैं, फिल्मी दुनिया में कदम रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है जब बार बार रिजेक्शन झेलते हैं या एक वक्त लंबा गुजर जाता है कि अब हम यहाँ टिके रहें या बस हमारे लिए ये फिल्मी सफर नहीं है। तो किस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए, आप अपने अनुभव से हमें बता सकते हैं?
1: उसको तो मतलब हैंडल करने के लिए आपको अपनी चमड़ी जो है थोड़ी मोटी करनी चाहिए क्योंकि बहुत इतनी बार ना सुनना ना आप पर वो असर कर सकता है बहुत गलत तरीके से। लेकिन एक ये जो ऑडिशन होता है ना, उसके पीछे बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं सिलेक्ट करने के। अगर आपको वहाँ पर एक तो ऑडिशन पे बुलाया है यानी कि वो समझते हैं कि आप काबिल हैं, लेकिन उसमें आप उसमें फिट भी हो रहे हैं और दूसरे कास्ट में भी वो आप सबके साथ में मैच कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कास्ट करने से पहले, तो आपकी काबिलियत का टेस्ट नहीं हो रहा है, आप उस रोल में कितना फिट बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं उसका टेस्ट लिया जा रहा है। तो अगर रिजेक्शन होता है तो उसको दिल पर नहीं लेना चाहिए और अच्छा करने का सोच कर आगे बढ़ना चाहिए और मेहनत करते रहनी चाहिए, अपने हुनर को, अपने स्किल्स को, नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, नया नया काम लोगों का देखना चाहिए, नाटक करना चाहिए, देखने चाहिए। तो वो उससे मेरे ख्याल से जो है वो जब ये ऑडिशन वाला दौर है ना वो आपका बेहतर होगा। और टिके रहना एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, कोई टिक पाता है, कोई कभी किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी हो जाती है, जैसे मेरी खुद की, मुझे 3 साल बाद फिर से नौकरी करनी पड़ी थी। तो अगर ऐसा भी हुआ तो ठीक है, कर लेनी चाहिए, कोई जिंदगी जो है वो सिर्फ एक काम नहीं होता है आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो आपके साथ में या आपके साथ लोग हैं वो जिम्मेदारियां भी आप ही की हैं और उनको निभाना भी आपका कर्तव्य है। अगर वो है तो करिए, काम करना जरूरी है, आगे बढ़ते रहना जरूरी है। उसके लिए कभी जो है दिल छोटा नहीं करना चाहिए कि मैं इसमें रिजेक्ट हो गया या मैं इसमें हो गया, काम करते रहना चाहिए, टिके रहना चाहिए। मतलब किसी तरीके से आप टिके रहेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप गेम में जमे हुए हैं तभी आप आगे बढ़ेंगे, अगर गेम में है ही नहीं तो आपको आगे कोई मौका मिलेगा ही नहीं।
0: आजकल बायोपिक का जमाना है, कोई ऐसा किरदार जो आप करना चाह रहे हैं या लुकिंग फॉरवर्ड टू, कोई खास एक दो किरदार ऐसे कि ये तो मुझे करने का मन है?
1: मैं तो मतलब वैसे मेरा डील डॉल वैसा है नहीं, ना चेहरा है ना कद है, लेकिन मेरा किशोरदा की बायोपिक तो मेरी बड़ी मतलब क्या कहते हैं इसको?
0: कमाल हो जाएगा
1: बहुत। हाँ, लेकिन वो खाली वो सपना है वो तो मुझे पता है लेकिन हाँ, अगर किशोरदा की बायोपिक बने तो मैं उसमें किसी भी तौर पे किसी न किसी किरदार में उसमें रहना चाहूंगा, जुड़ना चाहूंगा। जैसे अभी आर डी बर्मन जी की लाइफ पर फिल्म बन रही है, मैं जरूर, काश उसमें मुझे कुछ मिले, लेकिन
0: क्या बात है, हम चाहेंगे कि जरूर आपका ये सपना पूरा हो। और बाकी जब शारिब शूटिंग नहीं कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, आपका सुकून जैसे बोलते हैं, मन का सुकून?
1: मैं घर पर रहता हूँ दोस्तों के साथ में वक्त गुजारता हूँ, कि घर पे रहता हूँ, फैमिलीज जो हैं मतलब अपने दोस्त या तो घर पर बुलाता हूँ या दोस्तों के घर पर जाता हूँ और फिल्में देखता हूँ, सीरीज देखता हूँ, गाने सुनता हूँ बहुत, और अगर ज्यादा वक्त है तो फिर परिवार के साथ कहीं घूमने चला जाता हूँ। मुझे ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद है, म्यूजिक बहुत पसंद है,
0: म्यूजिक तो हम जानते ही, आपको
1: फिल्में बहुत पसंद है
0: जी,
1: तो मतलब टाइम तो बहुत कम है एक्चुअली।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपने अपने फिल्मी सफर के साथ साथ जिंदगी के बहुत से अनुभव साझा किए हमारे साथ और बहुत मजा आया बातचीत करके।
1: थैंक यू।
0: हम चाहेंगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं ढेर सारी।
1: thank you, thank you.
0: और आप बार बार आए और हमें बार बार आपसे बातें करने का मौका मिले विविध भारती के जरिए।
1: थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत मजा आया, मेरे लिए मतलब आई एम रियली ऑनर्ड दैट आई एम सिटिंग हियर, और पूरा एक बहुत बड़ा नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है विविध भारती के साथ में। जी मतलब आंख जिससे खुलती थी और सोने से पहले जिसको सुना करते थे, आज मैं वहां बैठा हूं और आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा फिर से
0: जी
1: आएंगे.
0: बहुत बहुत धन्यवाद.
1: थैंक यू.
2: सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेता और लेखक शारिब हाशमी से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत. रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान.

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। चाईबासा में आज कोल्हान विश्वविद्यालय का सातवां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल सह कुलाधिपति ने विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। इस समारोह में 224 उपाधियां और 26 मेधावियों को स्वर्ण पदक दिए गए। विश्वविद्यालय द्वारा इस बार QR कोड युक्त नई सुरक्षित डिग्री भी शुरू की गई। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज रांची स्थित निर्वाचन सदन में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बैठक में विशेष मतदाता पुनरीक्षण के तहत नो मैपिंग और विसंगतियों से जुड़ा बूथवार डेटा राजनीतिक दलों के साथ साझा किया गया। झारखंड में धान कटाई के बाद खाली रहने वाले करीब 5 लाख हेक्टेयर राइस फैलो क्षेत्र में दलहन तिलहन और बागवानी फसलों को बढ़ावा देने की तैयारी है। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में राज्य की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने केंद्र सरकार के सामने इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रस्ताव रखते हुए इसके लिए विशेष वित्तीय और तकनीकी पैकेज की मांग की है। गुमला प्रशासन के प्रयासों से पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदर को मांदर ऑफ झारखंड के नाम से GI टैग मिला है। उपायुक्त ने कहा कि इससे ऐतिहासिक उपलब्धि से राज्य की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण होगा और आर्थिक अवसर पैदा होंगे। साहिबगंज में आज महिला सखी मंडल की दीदियों और महिला उद्यमियों के लिए एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। JSLPS द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय कुटीर उद्योगों से उत्पादित वस्तुओं को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है। और देवघर परिसदन के कमरा नंबर B4 में डुप्लीकेट चाबी से घुसकर चोरी के प्रयास का मामला सामने आया है। VIP सुरक्षा में चूक की इस घटना के बाद देवघर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये जिंदगी अजाब है, हमने चाहा तुझे इस हद तक के तेरे पास ही होगा, जरा फिर से देख मेरे सीने से दिल आखिर गया तो कहाँ।

एक तमन्ना है कि फकत मुझ पे ही मेहरबान रहो, तुम किसी और को चाहो तो बुरा लगता है, मेरी चाहत का तकाजा है कि मेरे साथ रहो, गैर का हाथ जो थामो तो बुरा लगता है, शब वो रोज परवाह है तुम्हारी, तुम किसी और को सोचो तो बुरा लगता है, ये मेरी रूह तरसती है तुम्हारी खुशबू को, तुम कहीं और जो महको तो बुरा लगता है, क्या करूं मैं आदत हूं उसकी वो जरूरत है मेरी, मैं धड़कन हूं उसकी वो जिंदगी है मेरी, वो ख्वाब है मेरा उसकी मोहब्बत

0: दीवाने हो जाएं जिसे पढ़ के हम, कुछ ऐसा तो एक बार लिख। तू बस मोहब्बत लिख, कोई सवाल मत लिख, मेरे नाम के साथ अपनी हर बात लिख, अगर हाथ में हाथ हो तो उसे जिंदगी लिख, मेरे हिस्से में अपनी कायनात लिख, मुझे देखकर जो दिल में आए वो ख्याल लिख, ना फरियाद लिख ना कोई शिकायत लिख, मुझे दिन लिख तो खुद को मेरी रात लिख, लिखना है तो बस इतना लिख, मुझे अपना हमसाया लिख। सुनो मुझसे ये अब नहीं होता, दलीलें दूं मिसालें दूं, तुम देखो ना मेरी आंखों में लिखा है, मुझे तुमसे मोहब्बत है।
1: प्यार सिखा दूं?
2: सिखला।

ऐसा लगता है हर इम्तिहान के लिए जिंदगी को हमारा पता याद है। छाया गीत कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। उसने रुख से हटा के बालों को, रास्ता दे दिया उजालों को, जाते जाते जो मुड़ के देख लिया और उलझा दिया ख्यालों को, एक हल्की सी मुस्कुराहट से उसने हल कर दिया सवालों को। मर गए हम तो देख लेना तुम, बहुत याद आएंगे दिल वालों को।

एक कदम उठ गया रवानी में, दर्द फिर आ गया कहानी में। कोई तो चांद को सिखाता है डूबना रोज रोज पानी में, सिर्फ तूने निगाह फेरी तो मोड़ आ गया कहानी में। उसकी आंखों में हमने डूब कर देखा, तिश्नगी बढ़ गई है पानी में।

चलो आओ मिलकर हम बनाएं एक नई दुनिया मोहब्बत की। तुम अदा बनकर मेरी आँखों में रहना, मैं सुकू बनके तुम में, तुम दवा बनके मेरी सांसों में रहना, मैं शिफा बनके तुम में, तुम वफा बनके मुझ में समा जाना, मैं मोहब्बत बनके तुम में। उसने कहा मंजिल मुश्किल है, हमने कहा चलो साथ चलते हैं। उसने कहा मोहब्बत हो जाएगी, हमने कहा चलो मोहब्बत करके देखते हैं। उसने कहा तुम्हारा क्या भरोसा, हमने कहा मोहब्बत वफा है। उसने कहा छोड़ तो नहीं जाओगे, वादा करो हमसे, हमने कहा जिंदगी बेवफा है।

0: अपन है।
1: परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का, तो आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। सायंकालीन सभा में आप सबों का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं अपनी सभा में प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की।

अब से कुछ ही देर में आने के 5:35 से आप सुनिएगा युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम यू वाणी। शाम 6 बजे आप सुन सकेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

शाम 6:55 पर हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र की प्रसारण सेवा में, जहां ठीक 7:07 आप सुनिएगा प्रादेशिक समाचार 7:10 पर जिले में आजकल। फिल्मी संगीत का कार्यक्रम एक रंग आप सुन सकेंगे 7:15 से।

फिल्मी संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से आप सुनिएगा रात 8:15 पर। देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश गान आप सुन सकेंगे रात 8:30 से। समाचार संध्या रात 8:45 पर, न्यूज एट 9 रात 9 बजे, उर्दू में खबरें रात 9:15 पर। रात 9:30 पर हम शामिल होंगे विविध भारती के कार्यक्रम में।

रात 10 बजे हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुनिएगा रात 8:20 से, हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे, अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर।

युवानी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आराध्या माही। आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए फिल्मी गीतों को भी सुनवाएंगे। तो दोस्तों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के हमारे चर्चा का पहला विषय है स्वस्थ खान पान, स्वस्थ हृदय, यानी कि विश्व हृदय दिवस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे चर्चा के विषय है खान पान स्वस्थ रखें और स्वस्थ हृदय कैसे बनाएं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारा हृदय हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यह लगातार धड़कते हुए पूरे शरीर में रक्त और ऑक्सीजन पहुँचाता है। जब हमारा हृदय स्वस्थ रहता है तो हमारा शरीर भी बेहतर ढंग से काम करता है। इसलिए हृदय की देखभाल केवल उम्र के बढ़ने के बाद नहीं बल्कि बचपन से और युवावस्था से ही शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, हर वर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को हृदय से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है। दोस्तों, स्वस्थ खान पान का महत्व इसमें क्या है, ये इसके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, हमारे हृदय के स्वस्थ में हमारे भोजन की सबसे बड़ी भूमिका होती है। आजकल फास्ट फूड, अधिक तेल मसाले वाले भोजन, बहुत अधिक नमक, मीठे पेयजल, पैकेट्स खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ रहा है। इन चीज़ों का अधिकतम सेवन लंबे समय तक करने से स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, हमें अपने भोजन में हरी सब्जियाँ, मौसमी फल, दाने, साबुत अनाज, अंकुरित अनाज, मेवे और पर्याप्त पानी को शामिल करना चाहिए। भोजन में नमक, चीनी और नींबू, अधिक संतृप्त वसा की मात्रा सीमित ही रखनी चाहिए। दोस्तों, स्वस्थ भोजन का मतलब यह नहीं कि हम स्वादिष्ट भोजन बिल्कुल ना करें। इसका अर्थ है कि हम संतुलित मात्रा और सही विकल्प को अपनी आदत बनाएं। दोस्तों, इसमें क्या ज़रूरी है इसके बारे में भी जानते हैं। इसमें पहली बात है दोस्तों, व्यायाम है ज़रूरी। सिर्फ अच्छा खाना ही नहीं बल्कि स्वस्थ हृदय के लिए नियमित शारीरिक गतिविधि भी आवश्यक है। रोज़ कुछ समय तेज चलना, योग, साइकिलिंग चलाना, खेलना या अन्य व्यायाम करने की आदत बनानी चाहिए। विशेष

कर युवाओं के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वे अपना खाली समय लगातार मोबाइल या कंप्यूटर पर बिताने के बजाय शारीरिक गतिविधियों में भी लगाएं। दोस्तों, दूसरी इसमें ज़रूरत है नशे से दूरी। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए धूम्रपान और तंबाकू से दूरी बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। शराब का सेवन भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए नशे से दूर रहना एक महत्वपूर्ण कदम है। तनाव और नींद का ध्यान। दोस्तों, आज की तेज ज़िंदगी में तनाव भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। पढ़ाई, नौकरी, परिवार, भविष्य की चिंता कारण लोग मानसिक तनाव बहुत महसूस करते हैं, इसलिए हमें पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, आराम के लिए समय निकालना चाहिए और सकारात्मक गतिविधियों से भी जुड़ना चाहिए। दोस्तों, याद रखिए कि स्वस्थ हृदय केवल स्वस्थ शरीर के लिए नहीं बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए भी ज़रूरी है। दोस्तों, युवाओं के लिए विशेष संदेश है कि अक्सर युवा यह सोचते हैं कि हृदय से जुड़ी समस्याएं केवल बुजुर्गों को होती हैं, लेकिन स्वस्थ खान पान, शारीरिक निष्क्रिया, धूम्रपान, तनाव और खराब जीवनशैली जैसी आदतें को लंबे समय तक जारी रखना स्वास्थ्य के लिए जोखिम बड़ा हो सकता है। इस लिहाज से ही छोटी छोटी आदतें अपनाएं, जैसे कि संतुलित भोजन करें, रोज सक्रिय रहें, पर्याप्त नींद लें, तनाव को नियंत्रित करें और नशे से दूर रहें। दोस्तों, विश्व हृदय दिवस हमें याद दिलाता है कि अपने हृदय की देखभाल करना केवल एक दिन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर दिन की आदत होनी चाहिए। दोस्तों, स्वस्थ भोजन अपनाएं, हृदय को स्वस्थ बनाए रखें, नियमित व्यायाम करें और खुशहाल जीवन पाएं। दोस्तों, विश्व हृदय दिवस के अवसर पर हम सभी लोगों को यह संकल्प लेना चाहिए कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे और दूसरों को भी स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। दोस्तों, अभी हम बातें कर रहे थे स्वस्थ खान पान, स्वस्थ हृदय और विश्व हृदय दिवस के बारे में। दोस्तों, इस चर्चा के बाद आइए सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, इस प्यारे से गाने के बाद आइए सुनवाते हैं आपको वार्ता। विषय है शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार। वार्ताकार है आकृति उत्तम।
1: नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वार्ता का विषय है शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति का मूलाधार है। यह केवल ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, कौशल विकास और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम है। जब शिक्षा सुदृढ़ होती है तो रोजगार के अवसर स्वतः विस्तृत हो जाते हैं। आज भारत जैसे युवा देश में शिक्षा का क्षेत्र रोजगार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुका है। सबसे पहले यदि हम पारंपरिक अवसरों की बात करें तो शिक्षक का पद सदैव सम्मानजनक और अस्थायी रोजगार का माध्यम रहा है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की निरंतर आवश्यकता रहती है। उस शिक्षा संस्थानों जैसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में प्राध्यापक, शोधकर्ता और अकादमिक समन्वय के रूप में भी व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। वर्तमान में विभिन्न राज्यों में शिक्षकों की नियुक्तियां समय समय पर आयोजित की जा रही है। उदाहरण स्वरूप बिहार लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जैसे संस्थान शिक्षा विभाग में नियुक्तियों की प्रक्रिया संचालित करते हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकारी स्तर पर भी शिक्षा क्षेत्र में रोजगार की निरंतर मांग बनी हुई है। केवल विद्यालयी शिक्षा ही नहीं, बल्कि उस शिक्षा संस्थान जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और रांची विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शिक्षा, शोध और शिक्षण प्रशासनिक कार्यों के लिए योग्य युवाओं की आवश्यकता रहती है। वर्तमान समय में शिक्षा का स्वरूप तेजी से डिजिटल हो रहा है। ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म शिक्षकों और विषय विशेषज्ञों के लिए नए आयाम खोल दिए हैं। आज युवा

0: शिक्षकों और विषय विशेषज्ञों के लिए नए आयाम खोल दिए हैं। आज युवा घर तकनीकी शिक्षा, इंटर्नशिप और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर बल विशेष बल दिया गया है, जिससे विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ रोजगार उन्मुखी कौशल भी प्राप्त हो सके। हालांकि इस क्षेत्र में कुछ चुनौतियां भी हैं। गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, प्रतिस्पर्धा की बढ़ती संख्या और डिजिटल दक्षता की आवश्यकता आज अनिवार्य हो गई है। एक सफल शिक्षक या शिक्षाकर्मी बनने के लिए विषय ज्ञान के साथ साथ संप्रेषण कौशल, धैर्य और निरंतर सीखते रहने की प्रवृत्ति आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार केवल जीविका का साधन नहीं बल्कि समाज सेवा का अवसर भी है। एक शिक्षक अपने आने वाले पीढ़ी को दिशा देता है, उसके भीतर मूल्य, नैतिकता और आत्मविश्वास का संचार करता है। इस प्रकार वह राष्ट्र निर्माण में प्रत्यक्ष योगदान देता है। अंततः कहा जा सकता है कि शिक्षा का क्षेत्र आज भी उतना ही प्रासंगिक, स्थायी और सम्मानजनक है जितना पहले था, बल्कि डिजिटल युग में इसकी संभावनाएं और भी विस्तृत हो गई है। आवश्यकता है सही योग्यता, समर्पण और सतत प्रयास की। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि आपके अंदर सीखने और सिखाने का जुनून है, धैर्य है और समाज के लिए कुछ करने की इच्छा है, तो शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए एक उज्जवल भविष्य प्रदान कर सकता है। आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद। नमस्कार
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार, वार्ताकार थी आकृति उत्तम। दोस्तों, अब हम आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे देश के वर्तमान और भविष्य दोनों से जुड़ा हुआ है, यानी कि युवा अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें। दोस्तों, किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति उसके युवा ही होते हैं। युवाओं में ऊर्जा, नई सोच, कुछ नया करने का उत्साह और कठिन परिस्थितियों को बदलने की क्षमता भी होती है। दोस्तों, लेकिन केवल अधिकारों की जानकारी होनी ही पर्याप्त नहीं है। एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होना भी आवश्यक है। दोस्तों, हम अक्सर अपने अधिकारों की बात करते हैं। हमें शिक्षा मिले, रोजगार मिले, स्वतंत्रता मिले, सम्मान मिले, ये हमारे अधिकार हैं, लेकिन इनके साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ भी जुड़ी हुई हैं। देश के कानून, संविधान का सम्मान करना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और समाज में शांति एवं भाईचारे बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है। दोस्तों, एक जागरूक युवा सबसे पहले अपने चरित्र और अनुशासन पर ध्यान देता है। समय का सदुपयोग करना, अपने काम की ईमानदारी के प्रति करना, बड़ों का सम्मान करना और अपने छोटों लोगों के प्रति सहयोग की भावना रखना जिम्मेदार नागरिक के गुण होते हैं। छोटी छोटी अच्छी आदतों से ही आगे चलकर बदलाव का आधार बनती है। दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया युवाओं के लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसे डिजिटल माध्यमों का जिम्मेदारी से उपयोग करना भी हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी खबर या संदेश को बिना सत्यापन के आगे भेजना गलत सूचना को बढ़ावा दे सकता है, इसलिए हमें सोच समझकर पोस्ट करना चाहिए, अफवाहों से बचना चाहिए और दूसरों की निजता का सम्मान भी करना चाहिए। दोस्तों, युवाओं का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य अपने पर्यावरण की रक्षा करना भी है। पेड़ पौधे को बचाना, पानी और बिजली की पर्याप्त बर्बादी को रोकना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना ऐसे कार्य हैं जिसमें हर युवा योगदान दे सकता है। दोस्तों, इसी के साथ ही हमें समाज के प्रति संवेदनशीलता होनी भी चाहिए। किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, कमज़ोर वर्ग के लोगों के प्रति सम्मान रखना, लड़कियों और महिलाओं के साथ समानता एवं सम्मान का व्यवहार करना, भेदभाव से दूर रहना एक जागरूक युवा की पहचान होती है। दोस्तों, देश के प्रति जिम्मेदारी केवल सीमा पर जाकर सेवा करने तक ही सीमित नहीं। एक विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ता है, एक शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाता है और एक डॉक्टर अपने मरीजों की सेवा करता है और एक कर्मचारी अपने काम को निष्ठा से करता है। ये सभी अपने अपने तरीके से देश की सेवा ही कर रहे हैं। दोस्तों, युवाओं को यह समझना चाहिए कि देश का भविष्य केवल सरकार या किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। देश का भविष्य हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। जब हम युवा कर्तव्यों को समझते हैं तो समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जागरूकता केवल भाषण सुनने या सोशल मीडिया पर संदेश साझा करने से नहीं होती। जागरूकता तब सार्थक होती है जब हम अपने व्यवहार में दिखाई दें। सड़क पर यातायात नियमों का पालन करना, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना, कानून का सम्मान करना और ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करना, यही वास्तविक जागरूकता है। दोस्तों, युवा केवल देश के भविष्य नहीं बल्कि आज के

समाज की महत्वपूर्ण शक्ति भी हैं, इसलिए हर युवा अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझना चाहिए। दोस्तों, ईमानदारी आज हमें ज़रूरी है कि हम अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहें, समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाए रखें, कानून और संविधान का सम्मान करें तथा अपने देश के प्रति सकारात्मक योगदान दें, क्योंकि जागरूक युवा ही जिम्मेदार नागरिक बनता है और जिम्मेदार नागरिक ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। दोस्तों, अभी हम बातें कर रहे थे युवा अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें। दोस्तों, इस चर्चा के बाद आइए सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों इसी गाने के साथ हमारा आज का युवानी कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दें आपकी दोस्त आराध्या माही को। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेटा। झारखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदर को जीआई टैग मिलने पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने समस्त झारखंड वासियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मांदर को जीआई टैग मिलना पूरे राज्य के लिए गौरव का विषय है। एनएसयूआई ने आज रांची विश्वविद्यालय में लगातार चल रहे सत्र के विलंब और परीक्षाओं में देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने कुलपति सरोज शर्मा के 6 महीने के कार्यकाल के बावजूद सत्र नियमित न होने पर नाराजगी जताई और परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा। जामताड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर आज व्यवहार न्यायालय परिसर से मध्यस्थता जागरूकता रथ को रवाना किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण सहित अन्य न्यायिक अधिकारियों ने इसे हरी झंडी दिखाई। पाकुड़ में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय विशेष रक्तदान शिविर में 306 यूनिट रक्त संग्रह हुआ है। शिविर में सिविल एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों, कर्मियों और आम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। लोहरदगा समाहरणालय में उपायुक्त संदीप कुमार मीणा की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं की समीक्षा बैठक हुई। उपायुक्त ने संस्थाओं को आपसी समन्वय से काम करने तथा कार्यों की पुनरावृत्ति रोकने के निर्देश दिए। साहिबगंज के सिद्धो कान्हू सभागार में आज स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तेजस जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। DPIIT और राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं तथा महिला उद्यमियों को वित्तीय सहयोग, मेंटोरशिप और सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जैविक खाद अपनाऊ उपज बढ़ाऊ।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनो या सब भाई और बहन मन के रोर मन के रेडियो संगे मनोज और
0: मनीष भाई कर जोहार।
1: और ये कार्यक्रम कर प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: हर जोखिम

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: और बताओ मनोज भाई, राउर कर हाल समाचार कैसन है?
7: एकदम बढ़िया है मनीष भाई। देखो नी, हमारे कर खेत बाड़ी बढ़िया चलत है, और एखन धान कर जे बाली मेन है वो निकसत है, तो बेस लागत है हमारे कर खेती बाड़ी करे में।
6: एकदम राउर नगद कहली, देखो चारो बटे जब हरियर दिसेला और धान कर बाली फूटेला से बेरा कर खेत एकदम नगद दिसेला, एकदम देखे में इतना सुंदर, मैं कुछ पूछू।
7: और देखो नी, हरियर दिशे कर एक कारण भी है, हमारे मन रासायनिक खाद के छोड़ के जैविक खाद के इस्तेमाल करीला।
6: एकदम रौरे नगद कहली, जैविक खाद कर जे इस्तेमाल है वो हमरे मन कर काया ले तो बेस सही है, संगे संगे हमरे मन कर माटी ले हूँ बहुत बढ़िया है।
7: और हमरे के देखो किसान भाई मन, हमरे मन के बगरा से बगरा जैविक खाद का इस्तेमाल करे के चाहिए, और अगर ऐसा है तो घर भी जैविक खाद हमरे में बना सकेला, और उकर इस्तेमाल करे से तो माटी बढ़िया रहेला और फसल बढ़िया होवेला। और देखो रासायनिक खाद कर जितना से जितना कोशिश करे के है कि हमरे मन के कम से कम प्रयोग करे के चाहिए कि नहीं।
6: एकदम हमरे मन के जे माटी कर जांच करवाए के कितना मात्रा में खाद चाहिए उकर हिसाब से खाद कर प्रयोग करे के चाहिए, और हमरे मन के खेती बाड़ी कर काम में कोशिश करे के चाहिए कि हरियर खाद जे जैविक खाद है उकर बगरा से बगरा उपयोग करूं।
7: और मनीष भाई देखो नी, आज कर कार्यक्रम में हमरे मन का जुगाड़ कर ही दिन बता दो हमरे कर किसान भाई मन के।
6: एकदम देखो आज कर कार्यक्रम में हमरे आज कर बात में झारखंड में जे माटी कर समस्या है और उकर का समाधान है उकर बारे में जानब बतावे डॉक्टर ताहिरा अर्जुमंद। इकर पाछे एगो कृषि गीत सुनब मेघनाथ महतो और संगी मन कर गावल। उकर पाछे हमरे आज नवा उमर कर नवा फसल में गाय पालक किसान उदय शंकर देव से करल राउर कर गोइट के सुनब।
7: तो भाई देखो आज कर कार्यक्रम के सबसे पहले हमरे मन और करीला, आज कर बात से जैसे कि रोरे कहले कि झारखंड में माटी का जो प्रमुख समस्या है और उकर समाधान है, इकर बारे में हमरे मन सुनब डॉक्टर ताहिरा अर्जुमंद से, और इनकर से गोठिया है हमरे कर संगी कृष्ण जीवन पौराणिक।
6: चलो तब सुन लेविला।
8: किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ताहिरा।

0: अर्जुमंद, कनीय वैज्ञानिक और सहायक प्राध्यापक, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची। आइए हम डॉक्टर ताहिरा से जानते हैं कि झारखंड की मिट्टी में प्रमुख समस्याएं क्या हैं और हम उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। डॉक्टर ताहिरा, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि झारखंड की जो हमारी मिट्टी है, इसमें प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं?
1: जी, झारखंड में मिट्टी की समस्याएं क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ की मिट्टी अपरदन यानी मिट्टी का बह जाना, मिट्टी की अम्लीयता, जैविक पदार्थ की कमी, पोषक तत्वों का असंतुलन और मिट्टी में नमी की कमी प्रमुख समस्याएं हैं। हमारे राज्य में कई जगह वर्षा तेज होती है। अगर खेत में पानी को रोकने की व्यवस्था नहीं है तो पानी के साथ मिट्टी की ऊपरी और उपजाऊ परत भी बह सकती है। इसी तरह लगातार खेती करने और खेत में फसल के अवशेष तथा जैविक पदार्थ वापस न डालने से मिट्टी की गुणवत्ता धीरे धीरे कम हो सकती है।
0: तो मिट्टी का जैविक कार्बन क्या होता है?
1: अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो जैविक कार्बन यानी कि सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी में मौजूद पौधों और जीव जंतुओं से बने जैविक पदार्थ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब पौधों की पत्तियां, जड़ें, फसल के अवशेष, गोबर और दूसरे जैविक पदार्थ मिट्टी में मिलते हैं तो सूक्ष्म जीव उन्हें धीरे धीरे तोड़ने लगते हैं। इस प्रक्रिया से मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ता है और उसमें कार्बन जमा होता है। इसे हम मिट्टी की सेहत का एक अच्छा संकेतक मानते हैं। इसलिए खेत में केवल रासायनिक उर्वरक की मात्रा देखना पर्याप्त नहीं है, मिट्टी में जैविक पदार्थ और जैविक कार्बन की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है।
0: झारखंड के किसानों के लिए इसका क्या महत्व है?
1: झारखंड में खेती का एक बड़ा हिस्सा वर्षा पर निर्भर है। ऐसे में ऐसी मिट्टी बहुत उपयोगी होती है जो पानी को कुछ समय तक रोक सके।
0: जी,
1: मिट्टी में पर्याप्त जैविक पदार्थ होने से उसकी पानी रखने की क्षमता और संरचना को लाभ मिल सकता है। जैविक पदार्थ मिट्टी के कणों को एक साथ जोड़ने में मदद करता है। इससे मिट्टी में हवा और पानी के आने जाने के लिए बेहतर जगह बनती है। और इसके अलावा जैविक पदार्थ कुछ पोषक तत्वों को मिट्टी में रोक कर रखने और धीरे धीरे पौधों को उपलब्ध कराने में भी मदद करता है। इसलिए स्वस्थ मिट्टी का मतलब केवल ज्यादा खाद डालना नहीं है, बल्कि मिट्टी में जैविक पदार्थ बनाए रखना भी है।
0: जी, मिट्टी में जैविक कार्बन, तो इसको कम करने पर क्या समस्याएं हो सकती हैं?
1: जब मिट्टी में जैविक पदार्थ कम होता है तो मिट्टी की संरचना और पानी रोकने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। मिट्टी जल्दी सूख सकती है और भारी बारिश के समय पानी का बहाव तथा मृदा अपरदन बढ़ सकता है। साथ ही मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन का स्रोत भी कम हो जाता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए, जैसे हमारे शरीर के लिए संतुलित भोजन जरूरी है, उसी तरह मिट्टी के लिए भी जैविक पदार्थ, पोषक तत्व, हवा और पानी का संतुलन बहुत जरूरी है।
0: जी, किसान अपने खेत में जैविक पदार्थ को कैसे बढ़ा सकते हैं?
1: जी, इसके लिए किसान कुछ आसान उपाय अपना सकते हैं। सबसे पहले फसल के अवशेष ना जलाएं। धान, मक्का और दूसरी फसलों के डंठल और पत्तियों को खेत में वापस मिलाया जा सकता है या उनसे कंपोस्ट बनाया जा सकता है। फसल के अवशेष मिट्टी के लिए जैविक पदार्थ का स्रोत होते हैं। जब सूक्ष्म जीव इन्हें तोड़ते हैं तो मिट्टी में जैविक पदार्थ और कार्बन बढ़ाने में मदद मिलती है, साथ ही कुछ पोषक तत्व भी वापस मिट्टी में आ जाते हैं। दूसरा, कि अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। तीसरा, फसल चक्र में दलहन फसलें शामिल करें और जहां संभव हो हरी खाद का उपयोग करें। डेंचा जैसी हरी खाद की फसल को उचित समय पर मिट्टी में मिलाने से भी जैविक पदार्थ बढ़ाया जा सकता है। चौथा ये है कि पेड़ पौधों और फसलों को साथ लेकर चलने वाली कृषि वानिकी यानी कि एग्रोफॉरेस्ट्री प्रणाली भी खेत में जैविक पदार्थ लौटाने में मदद करती है।
0: तो क्या जैविक पदार्थ बढ़ाने से रासायनिक खाद की जरूरत खत्म हो जाती है कि जरूरत पड़ती है?
1: नहीं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। जैविक कार्बन बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि रासायनिक उर्वरक पूरी तरह बंद कर दें। किसानों को जैविक खाद और रासायनिक उर्वरक दोनों का संतुलित उपयोग करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है

0: कि पहले मिट्टी की जांच कराइए और फिर फसल की जरूरत के अनुसार पोषक तत्व डालें।
1: जी, क्या केवल गोबर की खाद डालने से मिट्टी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, या तो उसमें कुछ रासायनिक खाद भी डालना पड़ेगा?
0: नहीं, ये बात समझाना और समझना बहुत ज़रूरी है।
1: जी
0: गोबर की खाद, कंपोस्ट और अन्य जैविक पदार्थ मिट्टी के लिए उपयोगी तो हैं, लेकिन केवल जैविक खाद ही हर पोषक तत्व की ज़रूरत पूरी कर दे, ये ज़रूरी नहीं है। मिट्टी की वास्तविक स्थिति जानने के लिए मिट्टी की जांच यानी मृदा परीक्षण सबसे महत्वपूर्ण कदम है। मृदा परीक्षण से हमें उसके पीएच, उसमें उपलब्ध पोषक तत्व और अन्य मृदा गुणों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके आधार पर चूना, उर्वरक और जैविक खाद की मात्रा तय करना अधिक वैज्ञानिक तरीका है। इसलिए नियमित अंतराल पर मिट्टी की जांच कराना बहुत उपयोगी है।
1: अब ये जो झारखंड में मिट्टी की समस्या है, इसके बारे में किसानों को क्या करना चाहिए?
0: जी, झारखंड के कई क्षेत्रों में अम्लीय मिट्टी पाई जाती है। अम्लीय मिट्टी में कुछ पोषक तत्व पौधों को कम उपलब्ध हो सकते हैं और कुछ तत्वों की अधिक उपलब्धता पौधों के लिए समस्या पैदा कर सकती है। लेकिन हर खेत में एक जैसी मात्रा में चूना डालना सही नहीं है, इसलिए सबसे पहले आपको मृदा परीक्षण कराना चाहिए। यदि मिट्टी में अम्लीयता पाई जाती है तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह और मृदा परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर आप कृषि चूना का प्रयोग कर सकते हैं।
1: मृदा अपरदन, जिसको हम मिट्टी कटाव भी कहते हैं, इसको रोकने के लिए किसान क्या-क्या उपाय कर सकते हैं?
0: देखिए, बारिश का पानी खेत की उपजाऊ मिट्टी को बहाकर ना ले जाए, इसके लिए खेत में पानी को रोकना और उसकी गति कम करना बहुत ज़रूरी है। ढाल वाली भूमि पर कंटूर बंडिंग, मेड़ बंदी, घास की पट्टियाँ और कंटूर बेस्ड फार्मिंग उपयोगी हो सकती है। खेत को लंबे समय तक खाली नहीं छोड़ना चाहिए। उचित फसल आवरण बनाए रखना और मल्चिंग करना भी मिट्टी को सीधे बारिश की बूंदों के प्रभाव से बचा सकता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जो मिट्टी खेत से बह गई, उसे वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: इस मिट्टी के बारे में जो अभी आपने बताया, मिट्टी में जो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, इसमें कार्बन बढ़ जाता है, अंत में हमारे किसान भाइयों को संदेश क्या देना चाहेंगे?
0: अंत में मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि मिट्टी केवल हमारी फसल उगाने का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारी खेती की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर मिट्टी स्वस्थ रहेगी, तो हमारी फसल, हमारी आमदनी और हमारी खेती भी लंबे समय तक मजबूत रहेगी। इसलिए अपनी मिट्टी की नियमित जांच जरूर कराएं और जांच के अनुसार ही खाद और उर्वरक का प्रयोग करें। खेत में फसल के अवशेषों को जलाने के बजाय उन्हें मिट्टी में वापस लाने की कोशिश करें। अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद, कंपोस्ट और जहां संभव हो हरी खाद का उपयोग करें। फसल चक्र में दलहन को शामिल जरूर करें और मिट्टी को लंबे समय तक खाली ना छोड़ें। खासकर जैविक कार्बन यानी मिट्टी के जैविक पदार्थ को बनाए रखने पर ध्यान दें। जैविक पदार्थ मिट्टी की संरचना, पानी रोकने की क्षमता और मिट्टी में रहने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही केवल जैविक खाद या केवल रासायनिक खाद पर निर्भर रहने की बजाय मिट्टी की जरूरत के अनुसार दोनों का संतुलित उपयोग करना बेहतर रहेगा। और एक बात हमेशा याद रखें, मिट्टी की सेहत सुधारना एक दिन या एक मौसम का काम नहीं है, ये लगातार किए जाने वाले छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है। आज हम खेत की मिट्टी को जितना संभालेंगे, आने वाले वर्षों में हमारी खेती उतनी ही सुरक्षित और टिकाऊ रहेगी।
1: जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी सलाह दी। आशा करते हैं कि हमारे किसान भाई आपकी बातों को सुनकर मिट्टी में जो अपनी समस्याएं हैं उसको सुधारेंगे और लाभ उठाएंगे। आपको हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: और देखो किसान भाई बहन, हमारे कर जो झारखंड के जो माटी है वो तो बेस है, चूंकि यहाँ पर बहुत सारा खेती बाड़ी करें ना, जेकर में गोबर खाद कर प्रयोग करें ना, जेकर से हमारे कर माटी बढ़िया है। लेकिन बहुत से ऐसे किसान मन है जे की जल्दी उत्पादन का चक्कर में रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, सके चलते माटी में समस्या मनावत है, तो समाधान भी जरूरी है, बारे में हमारे के जानकारी दिले है कि नहीं?
3: एकदम मुरुख नगद जानकारी रहे कि हमारे मन अपन माटी के खातिर बेस रख सकीला। तो मनोज भाई, गीत गोविंद हुए चाहे चलू, तब एगो नागपुरी गीत सुन लेविला मेघनाथ महतो और संगी मनकर गावल।
2: चलो तब।

0: हमरे मने खन गीतकार माध्यम से संदेश भी देले हमरे कर कलाकार मेघनाथ महतो जे की कहले कि खेती बारे निज काम है और जैसे खेती करब उसे ने हमरे मन के दाम भेटाई। तो सही बात है, किसान भाई बहन हमरे कर जे खेती बारे ही अपन खुद कर काम है, हमरे के बगरा से बगरा मेहनत करे के चाहिए और जितना मेहनत करब उतने हमरे मन के फसल हो और उसने हमरे मन के दाम मन भेटाई है कि नहीं।
1: एकदम रौरे नगद कहली। और भाई बहन मन देखो, हमरे मन के खेती बाड़ी कर काम तो करके चाहिए, संगे संगे जे पशुपालन काम है उखे हूँ अपना एक चाहिए। काले की कई धाव खेती बाड़ी से अगर नुकसान हुआ थे तो पशुपालन जैसे दूध बेच के नुकसान है उकर भरपाई कर सकीला, का कहला।
0: सही बात है कहली मनीष भाई। तो हमको लगा थे रोड इशारा कर थे कि आज कर किसान कर बारे में है कि नहीं।
1: एकदम, तो चलो आज हमरे नवा उम्र कर नवा फसल में रावरे मन ले एगो गाय पालक किसान उदय शंकर देव से करल मनोज भाई कर गोइठ के लेके आई ही, तो चलो सुन ले भी लेके।
0: आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: आपका नाम क्या है?
2: उदय शंकर।
0: उदय शंकर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं?
2: गुमला के रहने वाले हैं, रांची सिमलिया में भी घर है।
0: गुमला के रहने वाले हैं, वैसे रांची में भी अपना घर मकान बनाए हुए हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई क्या, कुछ
2: ग्रेजुएशन है?
0: ग्रेजुएशन तक किए थे, फिर आगे क्यों नहीं पढ़ पाए?
2: ये पारिवारिक
0: समस्या
2: के कारण नहीं पढ़ पाए।
0: कोई बात नहीं उदय शंकर भाई, आप नहीं पढ़ पाए पर अभी आप हमको लगता है कि खेती बाड़ी करते हैं, कुछ और भी करते हैं?
2: हाँ, गाय पालन, गाय है
0: तो गाय रखे हैं और साथ में खेती बाड़ी भी करते हैं,
2: भी करते हैं।
0: तो भाई देखिए, खेती बाड़ी करते हैं और साथ में गाय पालन करते हैं, तो दोनों को तो अच्छा से आप चला लेते होंगे। तो गाय पालन करते हैं तो कितने गाय आपके पास?
2: पांच गाय है, जर्सी गाय है।
0: पांच गाय जर्सी गाय रखी है। तो गाय का आपने शुरुआत कैसे किया, आपको कैसा लगा कि गाय पालना चाहिए?
2: गाय पालना चाहिए, अगल बगल मैंने दूध हम खरीद के लाते थे तो मैं भी सोचा कि चलो हम भी गाय पालन करते हैं, कुछ दूसरा का भी सहयोग हो जाएगा और मेरा भी कुछ सहयोग हो जाएगा, इसलिए पांच जर्सी गाय है।
0: हाँ।
2: और एक गाय 10 लीटर देती है दूध।
0: हाँ,
2: अच्छी गाय है, 50 लीटर हो जाता है।
0: अच्छी बात है भाई कि कम से कम दूसरे का देखा देखिए आप अपने गाय पालन कर रहे हैं, और गाय पालना एक बहुत अच्छी बात है,
2: बहुत अच्छी बात है,
0: और साथ में दूध मिल जाता है कि नहीं। तो शुरुआत दौर में जब आपने गाय पालन शुरू किया तो कुछ तो कठिनाई आया होगा?
2: कठिनाई आया था, सारा चीज ये उसका खान पान सारा चीज व्यवस्था करना, गाय को रखने के लिए एक जगह चाहिए, शेड बनाना, ये करना, बहुत सारा कठिनाई हुआ, फिर भी धीरे धीरे करते सारा चीज सब मैनेज हो गया।
0: अच्छी बात है भाई कि ये शुरुआती दौर में परेशानी होते हुए भी आपने आगे बढ़ा और गाय पालन को आगे बढ़ाया। जैसे आप गाय पालन करते हैं तो भाई दाना पानी देने की आवश्यकता होती है?
2: हाँ, दाना पानी देने का आवश्यकता होती है।
0: क्या क्या देते हैं उसमें?
2: कुट्टी देते हैं, घास काट के लाते हैं, उसको कटिंग करके दो मिला के देते हैं, ये दारा देते हैं, भूसी देते हैं, सारा चीज देते हैं।
0: तो और हरा घास नहीं देते हैं?
2: हरा घास देते हैं,
0: देते हैं। तो आप गाय को रखे हैं तो अपने शेड में रखते हैं कि बाहर चराने भी जाते हैं?
2: बाहर चराने भी जाते हैं और शेड भी रखे हैं।
0: तो शेड की बात करें तो आपको सरकारी सहायता कुछ मिला था?
2: नहीं मिला
0: है। नहीं मिला है?
2: नहीं मिला।
0: तो शेड वगैरह सब अपने से बनाया?
2: सारा चीज सब अपने से किया।
0: तो शुरुआत में शेड बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, पक्का का बनाए हैं या फिर ऐसे?
2: उस नीचे रुखड़ा है, ढलैया किया हुआ है, ऊपर से टीन दिया हुआ है करकट का।
0: तो भाई देखिए
2: चारों तरफ से ये घेरा हुआ है।
0: तो अच्छी बात है भाई कि चूंकि गाय पालन करते हैं तो इसका देखभाल करना जरूरी होता है, और समय के हिसाब से देखा जाए तो इसे ठंड के मौसम होता है कि उसको बचाने की आवश्यकता होती है, तो बचाते कैसे हैं ठंड से?
2: बचाते हैं, उसको कंबल ओढ़ाते हैं, चारों तरफ अगर शेड से चारों तरफ अगर घेरा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो फिर बोरा का तिरपाल बांधते हैं,
0: इससे मतलब गाय का सुरक्षा हो जाता है।
2: पुआल जलाते हैं शाम के समय में, हीटर वगैरह भी जलाते
0: हुए हैं,
2: रखे हैं।
0: चलो अच्छी बात है भाई कि आप गाय पालन करते हैं और गाय को देखभाल करना भी आता है, किस तरह देखभाल करते हैं, खाना पीना कैसे देते हैं। इससे बहुत सारे गाय ऐसे होते हैं दूध कम देते हैं, तो पौष्टिकता का हमको बहुत जरूरी होता है, तो पौष्टिक रूप में क्या क्या धारा और देते हैं?
2: धारा देते हैं ये राहड़ का जो दाल जो हम लोग छटाते हैं उसका जो भूसी रहा, फिर है जो आटा का ये भूसी रहा जो हम लोग पिसाते हैं जो बच जाता है, चोकर वगैरह ये सब दे के
0: खिलाते हैं,
2: खिलाते हैं
0: और पानी समय पे देते रहते हैं।
2: हाँ, पानी समय पे देते हैं।
0: जैसे कि बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो गाय पालन तो करते हैं पर समय पे देखभाल नहीं करने कारण दूध नहीं दे पाते हैं, तो बीमारी भी हो जाती है, तो बीमारी के लिए क्या कैसे जानते हैं कि बीमार हो गए हैं, दूध नहीं देते हैं, इस कारण की कुछ और है?
2: वो जब खाना देते हैं तो खाती नहीं है, थोड़ा सा खाती है, मान ले कि शरीर छू के देखते हैं तो इसका पता चलता है कि इसका तबीयत खराब है, गर्म है या कुछ भी है, वो बैठे हुए रहती है। उसके अनुसार पता चलता है कि चलो इसका तबीयत
0: इसकी
2: खराब
0: बीमारी
2: है।
0: हो गया है। जैसे मान लीजिए बीमार हो गए हैं, जैसे खुरचपका, ये सब जो बीमारी होते हैं, थनैला बीमारी वगैरह होते हैं, तो ये सब जब हो जाता है तो फिर अपने से इलाज करते हैं कि डॉक्टर को बुलाते हैं?
2: अपने से भी जितना बनता है उतना करते हैं, फिर डॉक्टर का सलाह लेते हैं, डॉक्टर बुलाते हैं, डॉक्टर दवा देते हैं और उन्हीं का सलाह से है जो दवाई देते हैं।
0: तो समय समय पर आप तो देखभाल करते रहते हैं और साथ में डॉक्टर को भी बुलाते हैं, है कि नहीं?
2: जी
0: तो ये अच्छी बात है कि बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो गाय पालन करते हैं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो देहाती गाय पालते हैं और जर्सी गाय पालते
2: जी
0: हैं, कि नहीं?
2: जी
0: तो देहाती गाय अपने रखे हैं क्या?
2: देहाती गाय नहीं रखे,
0: नहीं रखे हैं, चूंकि दूध कम
2: जर्सी
0: देती
2: गाय।
0: है कि
2: जी
0: नहीं? जैसे कि आप दूध पालन करते हैं, दूध होता है, तो फिर बेचने के लिए कैसे जाते हैं, कहाँ जाते हैं?
2: बेचने के लिए बगल में ही इधर उधर गाड़ी से पहुंचाते हैं,
0: या फिर कुछ लोग घर
2: या
0: भी आके
2: कुछ
0: लेते
2: घर से
0: होंगे।
2: भी, घर भी आता है लेने के लिए, कुछ पहुंचाना भी पड़ता है।
0: जैसे बहुत सारे किसान भाई आपकी बात को सुन रहे हैं, वो चाहते हैं कि गाय पालन करना चाहिए, तो शुरुआत में कैसे करना चाहिए, उसको क्या सुझाव देना चाहेंगे?
2: गाय पालन करना अच्छा बात है, गाय रखना भी जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में हर चीज़ है जो ये हो रहा है, क्या बोलते हैं,
0: महंगाई बढ़ रहा है।
2: महंगाई बढ़ रहा है और थोड़ा गाय पालने मेहनत है, ज़्यादा ये नहीं है। अगर हर व्यक्ति अगर चाहेगा तो वो गाय पाल सकता है।
0: और सबसे बड़ी बात है कि अगर सही टाइम पे हम देखभाल करते हैं तो बहुत अच्छे से हम लोग गाय पालन कर सकते हैं
2: जी
0: और अपना बिजनेस को बढ़ा सकते
2: बढ़ा
0: हैं,
2: सकते हैं।
0: है कि नहीं?
2: जी
0: ये अच्छी बात है उदय शंकर भाई कि आप इतनी अच्छी खेती बाड़ी कर रहे हैं और गाय पालन भी कर रहे हैं और भविष्य में बकरी पालन के बारे में सोच रहे हैं। अच्छी बात है किसान भाइयों, हम लोग को खेती बाड़ी करना चाहिए, साथ में पशुपालन करना चाहिए। पशुपालन करने से हमें गोबर मिल जाता है और गोबर
2: जी
0: से हमारा खेत में खाद आराम से मिल जाता है, कि
2: जी
0: नहीं? उदय शंकर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: तो ये रहे आजकल किसान उदय शंकर देव जी की, गाय पोसेना और संगे संगे खेती बाड़ी भी करे ना, लेकिन बगरा से बगरा गाय पोस के अपन जीवन यापन करते हैं। और सही बात है, किसान भाई बहन हमरे मन के खेती बाड़ी कर संगे गाय मन पोसक चाहिए और संगे संगे पशुपालन कर कार्य जरूर करे चाहिए, जेकर से कि हमरे मन के एक्स्ट्रा आमदनी भेटाई जाएला।
1: एकदम। तो भाई बहन मन देखो, किसान वाणी कार्यक्रम कर बेरा यह जग सिरात है, तो बताए खोजिला ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
0: और कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे प्रभु शरण कर
3: प्रधानमंत्री।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: तो आज जिले बस इतने दोस्तों फिर भेटा तब तक और मन के रेडियो संगे मनोज और
4: मनीष भाई के देव विदा जोहार।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम।

लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं, सिंचाई भी समय पर करते हैं, उसके बावजूद भी उत्पादन बेहतर नहीं हो पाता है। तो किसान भाई, जो उत्पादन आपका जो बेहतर नहीं हो पाता है, तो पहला है कि आप भूमि आपकी किस प्रकार की है, भूमि में कौन से पोषक तत्वों की कमी है, क्या आपने उसका निराकरण किया। तो दो बातों पर आपकी उत्पादन क्षमता निर्भर करती है। पहला है कि जिस भूमि में आप जो फसल लगा रहे हैं, वह फसल उस भूमि के उपयुक्त है या नहीं, पहला चीज। दूसरा चीज, आपकी भूमि में कौन से पोषक तत्वों की कमी है, क्या आपने उसका उपचार किया। अगर आपने उपचार किया तो निश्चित तौर पर आपको बेहतर उत्पादन मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि किसान भाई पोटाश डाल देते हैं, यूरिया डाल देते हैं, सल्फर डाल देते हैं, अंदाज़ा उनको नहीं होता है कि मात्रा क्या होनी चाहिए। एक प्रमुख पोषक तत्व के हम बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम है जिप्सम। किसान भाई, रासायनिक रूप से जिप्सम कैल्शियम सल्फेट है, जिसमें 23.3%

स्थान ग्रहण कर लेते हैं। आयनों का मटियार कणों पर यह परिवर्तन मृदा की रासायनिक एवं भौतिक अवस्था में सुधार कर देता है तथा मृदा फसलों उत्पादन के लिए उपयुक्त हो जाती है। साथ ही जिप्सम भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्वों का अनुपात बनाने में भी सहायता करता है। तो किसान भाई, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके खेतों के लिए जिप्सम। तो जब तक से आप भूमि की जांच नहीं कराएंगे, तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपके भूमि में जिप्सम की कमी है या नहीं। तो सबसे पहले आवश्यक हो जाता है बेहतर उत्पाद लेने के लिए कि आप भूमि की जांच कराएं। जांच कराने से आपको पता चल जाएगा कि वह भूमि किस फसल के लिए उपयुक्त है और उसमें कौन सी चीज़ की कमी है या कौन सी चीज़ की अधिकता है, तो उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर आप खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बेहतर लाभ मिलता है। तो अब सवाल यह उठता है कि किसान हमारे जो है वो जिप्सम क्यों डालें। तो किसान भाई, यह जो जिप्सम है, कैल्शियम और सल्फर की जो कमी होती है जो भूमि में, उसकी आवश्यकता की यह पूर्ति करता है जिप्सम, और फसलों में जड़ों की सामान्य वृद्धि एवं विकास में भी सहायता देता है। जिप्सम का उपयोग फसल संरक्षण में भी किया जा सकता है क्योंकि इसमें सल्फर उचित मात्रा में होता है। तिलहनी फसलों में जिप्सम डालने से सल्फर की पूर्ति होती है, जो बीज उत्पादन तथा पौधे व तेल से आने वाली विशेष गंध के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है। जिप्सम देने से मृदा में पोषक तत्वों, सामान्यतः फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम तथा सल्फर की उपलब्धता में वृद्धि होती है। जिप्सम कैल्शियम का एक मुख्य स्रोत है, जो कार्बनिक पदार्थों को मृदा के कणों में बांधता है, जिससे मृदा कणों में स्थिरता प्रदान होती है तथा मृदा में वायु का आवागमन सुगम बना रहता है। जिप्सम मृदा में कठोर जो परत बनता है उसको बनने से रोकता है और जल प्रवेश को बढ़ाता है। कैल्शियम की कमी के कारण ऊपरी बढ़ती पत्तियों के अग्रभाग का सफ़ेद होना, लिपटना तथा संकुचित होना तय। अत्यधिक कमी की स्थिति में पौधे की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है तथा वर्धन शिखा भी सूख जाती है, जो कि जिप्सम डालने से पूरी की जा सकती है। जिप्सम एक अच्छा भू सुधारक है। यह क्षारीय भूमि को सुधारने का भी कार्य करता है। जिप्सम अम्लीय मृदा में एल्युमिनियम के हानिकारक प्रभाव को भी कम करता है। जिप्सम का उपयोग फसलों में अधिक उपज तथा उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। तो किसान भाई, आपके भूमि में जिप्सम की कमी है या नहीं है, इसकी जांच मिट्टी जांच से ही पता चलता है। तो आप मिट्टी की जांच अवश्य कराएं और बेहतर उत्पादन आप अपने फसल से प्राप्त करें। अब रह गया बात कि भाई, जिप्सम अगर मान लीजिए कमी है, नहीं है तब तो कोई बात नहीं है, अगर कमी है तो इसे कब डालें और कैसे डालें, तो यह भी जानना जरूरी है किसान भाई। क्योंकि जिप्सम को मृदा में फसलों की बुआई से पहले डालते हैं। जिप्सम डालने से पहले खेत को पूर्ण रूप से तैयार करके 2 से 3 गहरी जुताई एवं पाटा लगाकर जिप्सम का भुरकाव करते हैं। इसके पश्चात एक हल्की जुताई करके जिप्सम को मिट्टी में मिला देते हैं। तो जिप्सम डालने का ही तरीका हो गया किसान भाई। क्षारीय भूमि को भी सुधारने का कार्य करता है। तो जिप्सम बहुत उपयोगी है। और ध्यान देने योग्य जो बातें हैं जिप्सम के उपयोग में, वह भी आप जान लें कि जिप्सम को अधिक नमी वाले स्थान पर न रखें तथा जमीन से कुछ ऊपर रखें। मृदा परीक्षण के उपरांत जिप्सम की उचित मात्रा डालें। तेज हवा बहने पर जिप्सम का भुरकाव न करें। जब हवा तेज चल रही हो तो आप अपने खेत में जिप्सम का भुरकाव न करें। जिप्सम डालने से पहले इसको जो ढेला होता है इसको तोड़कर अच्छी तरह से महीन कर लें, उसके बाद डालें।

0: जिप्सम का भुरकाव करते समय हाथ सूखे होने चाहिए। जिप्सम का भुरकाव पूरे खेत में समान रूप से करें। जिप्सम डालने के पश्चात उसको मिट्टी में अच्छी प्रकार मिला दें और जिप्सम को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो किसान भाई, यह बात आप अच्छी तरह जान लें, जिप्सम एक, फायदे अनेक। मृदा के स्वास्थ्य को सुधारना है और फसलों के उत्पादन को बढ़ाना है तो जिप्सम का उपयोग करना है। तो भूमि जांच से ही आपको पता चलेगा कि क्या मात्रा है और आप किसी भी फसल में, भूमि में जो भी फसल आपको लेना है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप तिलहनी फसल लेते हैं तो उसमें भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप दलहनी फसल लेते हैं तो उसमें भी आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो बातें हुई जिप्सम के प्रयोग की। अगर बात हम करें कि आप जिप्सम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो अपने नज़दीक के ब्लॉक कार्यालय से भी आप प्राप्त किया जा सकता है या जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई, ये रही बात खेतों में जिप्सम का प्रयोग की। आइए अब सुनते हैं भेंट वार्ता, रवि की आगात दलहनी फसलों एवं उनकी खेती। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर विनोद कुमार पांडे, कृषि विशेषज्ञ, और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी भाई संतोष कुमार।
1: संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती बाड़ी में। ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे अगेती दलहनी फसल, जो जाड़े की अगेती दलहनी फसल है, इस पर बातें करेंगे। और इससे संबंधित जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार पांडे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार, जोहार हमारे झारखंड के सभी किसान भाइयों को।
1: सर्वप्रथम तो आप हमारे ग्रामीण भाइयों को ये बताइए कि अभी हमारे किसान भाई जाड़े की जो अगेती दलहनी फसलें हैं वे कौन सी हैं और उसके उसकी खेती की तैयारी कैसे करेंगे, उसके प्रभेद क्या होंगे।
2: इस विषय पर हम जो है विस्तार से एक एक करके जो है हम प्रकाश डालेंगे। हमारे झारखंड के किसान भाई जो है इसको ध्यान से सुनेंगे। अभी जो है हमारे झारखंड में जो है कुछ दिनों से, अभी 3-4 दिनों से जो है बारिश जो है बंद हो गई है और हमारे बहुत सारे किसान भाई जो है इसका इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश बंद हो और हम जो है अपनी रबी की फसल की तैयारी में लग जाए। लेकिन बहुत इंतज़ार के बाद जो है बारिश जो है बंद हुई है। लगभग जो है ये 15-16 अगस्त से बारिश हो रही थी, अभी जो है कुछ दिन पहले ही बारिश बंद हुई है। तभी खेत में हमारी पर्याप्त नमी है, अभी इसको जो है किसान भाई जो सूखने दे, और सूखने के बाद जो है जब खेत बिल्कुल माने यूँ लगे कि जुताई के लिए हमारा खेत तैयार हो गया है तो उसकी जो है जुताई शुरू करें। अभी तो खरपतवार घासें जो है खेत में बहुत ज़्यादा होंगी, चूँकि खरीफ का ये हमारा मौसम है, इसमें जो है खरपतवार घास जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए खेतों में बहुत ज़्यादा घासें होंगी। तो इसके लिए इसकी जो है अच्छी तरह से जुताई जो है बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जो क्या करेंगे इसको जो है कि किसान जो है ट्रैक्टर से जो है जो कल्टीवेटर होते हैं 910 कल्टीवेटर, उससे जो है खेत की जो है हम जुताई करें। एक बार उससे जुताई दी हम एक बार करते हैं, यदि रोटावेटर है तो रोटावेटर से भी उसकी जुताई एक बार करें और फिर उसके बाद एक बार और कल्टीवेटर से जुताई करें। इसके बाद जो है पाटा दे करके जो है खेत को जो है छोड़ दें, इसमें जो है इसके बाद भी नमी खेत में बनी रहती है क्योंकि बरसात इतनी इस बार अच्छा हुआ है कि हमारे रबी के फसल के लिए बहुत ही मैंने अच्छा ये समय है और समय पे बंद हो गई है बारिश जो है। हमें अनुमान है कि ये बारिश जो है अब शांत रहेगी और किसान भाइयों को रबी की फसल की तैयारी करने का समय मिलेगा। तो इसमें जो है मुख्य रूप से हमारी फसल है चना है, मटर है, मसूर है और तीसी है।
1: अच्छा,
2: ये जो है 4 मुख्य फसलें हैं जिसको हमारे झारखंड में जो है

0: उगाते हैं हमारे किसान भाई, इसमें जो है जो हमारी चना है वो मुख्य फसल है, और इसमें जो है हमारा जो है हम लोग जो है हमेशा जो है सर्टिफाइड सीड जो है प्रमाणिक बीज जो है लगाने की बात जो है किसानों से करते हैं। हाइब्रिड भी किसान लगाते हैं, लेकिन प्रमाणिक बीज जो होता है उसको जो है आप जो है 3 साल 4 साल तक आप रख सकते हैं उसको जो है उसकी जो है उससे बुआई जो है आप कर सकते हैं। एक बार लगने के बाद जो है खेत जो बीज आपका अनाज होता है उसको बीज के रूप में स्टोरेज करके जो है उसको कर सकते हैं, तो किसान की जो है लागत जो है कम होती है। इससे मार्केट में हाइब्रिड भी है लेकिन उसकी जो है कीमत काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो सर्टिफाइड सीड जो है जो प्रमाणिक बीज है उसको किसान लगाए, उसमें हमारे मुख्य प्रभेद है BG 3043 है, GNG जो है 2207 है, और बिरसा चना 3 है, और एक और जो है अच्छी वैरायटी है स्वर्ण लक्ष्मी DBGC 3।
1: अच्छा, ये किसके प्रभेद है?
0: ये जो है चना के हमारे जो है चिकपी चना जो होता है उसके प्रभेद है, और ये लगभग जो है ये सभी जो है 115 से 120 दिन की हमारी वैरायटी है।
1: अच्छा, उतने दिन में ये तैयार है?
0: हाँ, इसका जो है हमारा जो है दूरी रखना चाहिए वो 30 × 10 सेंटीमीटर, मैं लाइन से लाइन 30 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा
1: 10 सेंटीमीटर
0: जो है। इसका जो है अगेती बुआई हमारी है तो वो जो है मैंने असिंचित क्षेत्र में ही होती है, जैसे कि अब बारिश उसके सिंचाई के उसके पास साधन नहीं है तो उसको और जल्दी लगाना होगा।
1: अच्छा,
0: ताकि एक दो बारिश यदि उसको मिल जाए आगे तो उसकी फसल जो है तैयार हो जाती है। इसका जो समय होता है हमारा 1 अक्टूबर से मध्य अक्टूबर 15 अक्टूबर के आसपास जो है इसमें जो है वो बुआई करें। यदि उसको जो है सिंचित क्षेत्र में करना है उसके सिंचाई के उसके पास साधन है तो 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में वो कर सकता है।
1: अच्छा,
0: यदि धान काटने के बाद उसके पास खेत है कि उसके पास ऐसे खेत में नहीं बचा हुआ है जो परती खेत हो जो रबी की फसल के लिए रखता है किसान जो है, कुछ किसान रखते हैं इसको जो है, तो वो तो उसे लगा सकते हैं आपका उसमें अगेती में, और समय पे जो धान की फसल पे निर्भर है वो धान की फसल कटने के बाद जो है वो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में धान कटने के बाद जो है उस समय भी नमी रहती है खेत में वो लगा सकते हैं। ठीक है, अब रही इसका बीज दर क्या है। इसका बीज जो है 70 से 80 kg जो है किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर में 2.5 एकड़ में, एक एकड़ में करीब 62.5 कट्ठा होता है। तो यदि आप जो है काबली चना लगाते हैं जो बड़े दाने वाला चना है उसका जो 90 से 100 kg इसका बीज दर है और एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ में। और इसका उर्वरक जो है इसमें जो है फास्फोरस की जो है दलहनी फसल में जो है फास्फोरस DAP SSP वगैरह की जो है मात्रा जो है अच्छा खासा रखना चाहिए।
1: अच्छा,
0: इसमें जो नाइट्रोजन कम दीजिए लेकिन उसको जो है फास्फोरस जो है ज़्यादा दीजिए।
1: अच्छा,
0: इसलिए इसका जो है उर्वरक का जो मात्रा होती है 25 50 25 और 20 20 जो है सल्फर होता है और मैंने 25 नाइट्रोजन और 50 फास्फोरस मैंने DAP की मात्रा जो है उससे जो है डबल ही करीब करीब बने रहती है। तो क्योंकि जो दलहन फसल में इसकी ज़रूरत होती है, बोरान का भी मैंने दलहनी फसल में ज़रूरत पड़ती है किसान को जो है वो, हालांकि हमारे पलामू प्रमंडल में देखते हैं कि लोग बोरान का के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है लेकिन दलहनी फसल के लिए बोरान की भी बहुत आवश्यकता है। एक्चुअली बोरान जो होता है ना, जैसे कि फूल जब लगने वाला होता है, फूल जब आता है और दाना जब बनने होता है तो उस समय बोरान की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है पौधों को, तो उसमें बोरान का छिड़काव अति जो है वो खेत में डाले जो है 5 से 8 kg प्रति एकड़ किसान जो है कर सकते हैं। एक एकड़ में यहाँ 27 कट्ठा है। निराई गुड़ाई भी करना है 2 बार निराई गुड़ाई कर सकते हैं, एक बार भी कर दीजिएगा तो उसमें जो है टिल्डिंग अच्छा आ जाएगा जो है सिंचाई 2 बार, एक बार फूल आने से पहले एक बार फली आने के बाद। उपज इसमें जो है देखा गया है कि करीब करीब जो है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है 2.5 एकड़ में जो है उपज जो है
1: ले सकते
0: हैं। दूसरी फसल जो है हमारी जो है मटर है। मटर में हमारा प्रभेद जो है इसकी भी खेत की तैयारी देखिए, जितनी भी दलहनी फसल है उसकी उर्वरक की मात्रा, खेत की तैयारी और उसमें जो है

0: खरपतवार नियंत्रण के लिए भी मैं फिर से मैंने उस चने में बता दे रहा हूँ कि खरपतवार के लिए एनाक्लोर जो है 50 EC जो है 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से आप करेंगे तो मैंने जैसे बुआई के 2-3 दिन के बाद जो है उसका छिड़काव कर दीजिए, तो घास जो है ऐसे तो जुताई से काफ़ी ख़त्म हो जाते हैं लेकिन फिर भी बच गई तो मैंने वो इससे जो है हो जाता है। ये दलहनी फसल सबके लिए
1: जी
0: करीब करीब है, मैंने किसी भी फसल में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक पेंडी मेथिलीन भी आता है उसका भी सेम काम है, उसको भी किसान कर सकते हैं। मटर में जो है हमारा HFP जो है 14-26 है, दांतेवाड़ा मटर एक है, शिखर एक मटर वेराइटी है हमारा। ये सब प्रमाणिक बीज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, हाइब्रिड के बारे में नहीं कर रहे हैं। तो आयुष की जो है दूरी है जो है 30 × 15 मैंने 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 15 सेंटीमीटर
1: कतार से पौधा।
0: और ये 115 से 125 दिन की वैरायटी हमारी है। अच्छा। मटर की जो है किसान जो है इसको जो है बुआई जो है मध्य अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में जो है
1: कर सकते हैं।
0: हाँ, किसान इसकी बुआई कर सकते हैं। इसको जो है
1: मतलब अगेती की जो शुरुआती दौर है वो अक्टूबर से प्रारंभ हो गया।
0: हाँ, अक्टूबर से प्रारंभ हो गया इसका जो है। आप इस सितंबर में खेत जब आप देख लेंगे खेत हमारा सूख गया है, तैयारी जुताई के लायक हो गया है, तो जुताई करके आप जो है यदि जल्दी फसल लेना चाहते हैं
1: तो अक्टूबर से
0: अक्टूबर से आप स्टार्ट कर दीजिए ये सब जो है, तो आपका जो है जल्दी तैयार हो जाएगा। और अच्छा मार्केट, सबसे बड़ी चीज़ मार्केट में दाम इसका मिल जाएगा। मटर वगैरह तो मतलब कि हमारी जो छेमी उसकी जो है अच्छा रेट में बिक जाती है, आगाती आपके तैयार हो गई तो मतलब अच्छा मतलब 50-60 रुपये केजी जो है किसान के यहाँ से लोग लेके चले जाते हैं। इसकी भी बीज दर जो है वही है 70-80 केजी जो है। और उर्वरक की मात्रा इसमें पहले ही बताया, जैसे आप चना में है
1: उसी तरह
0: का सेम मतलब कि इसमें भी है। इसमें भी दलहनी फसल जितनी है उसमें सल्फर भी डालिए और बोरान भी डालिए,
1: फास्फोरस भी।
0: हाँ, फास्फोरस तो आप डालेंगे ही डालेंगे और नाइट्रोजन जो है डालेंगे ही डालेंगे। इसकी भी उपज जो है करीब 15-20 केजी के आसपास जो है इसकी भी उपज होती है। और हमारा अगली फसल है मसूर जो है, इसकी भी तैयारी सेम करेंगे। इसमें भी हमारा उर्वरक की मात्रा सेम रहेगी उसी तरह से जैसे हमारा चना और मटर में आपने देखा। इसके प्रभेद जो है IPL 220 है, WBL 77 है और L जो है 47-27 है।
1: ये मसूर के लिए,
0: ये मसूर के लिए इसकी जो है 115 से 125 दिन की ये भी हमारा वैरायटी है ये हमारा। और खेत की तैयारी उसी तरह से करेंगे जैसे आप उसमें किए हैं
1: चना मटर में।
0: हाँ, इसका भी हमारा मध्य अक्टूबर से जो है 1 नवंबर के बीच में जो है। मसूर भी बहुत अच्छी मतलब कि उपज देने वाली फसल है, इसका बीज दर कम होता है, साइज के ऊपर बीज दर निर्भर करता है।
1: अच्छा।
0: साइज यदि जिस अनाज की बड़ी है उसका उस हिसाब से ज़्यादा बीज दर होगा, छोटा है तो उसका जो है कम होगा। तो ये जो है मसूर उससे छोटा होता है मटर से चना से, तो इसके जो बीज दर है 25-30 केजी प्रति हेक्टेयर है। और बड़ा दाना यदि मसूर में है हाइब्रिड वगैरह जो है तो उसका 35-40 केजी है। इसमें भी निराई गुड़ाई 2 बार आप कीजिए 25 दिन पर 45 दिन पे जो है। पानी के साधन है तो सिंचाई 2 बार ये कर देंगे तो अच्छा रहेगा। फर्टिलाइजर की मात्रा मैं पहले बता दिया, इसमें जो है वही सेम रहेगा। इसमें भी खरपतवार के लिए हमारा जो है आपका वही एलाक्लोर जो है 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से, या पेंडी मेथिलीन जो है वही 2 लीटर प्रति हेक्टेयर से। ये जो भी दलहनी फसल हम लगाएंगे इसमें यदि आप कर देते हैं तो अच्छा है, नहीं भी करते हैं तो आप जुताई बढ़िया से किए रहेंगे तो खरपतवार जो है निराई गुड़ाई आप करेंगे ही एक बार कम से कम,
1: बिल्कुल
0: उससे भी हमारे खरपतवार निकल जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब कि मैंने दवा पर निर्भर नहीं रहना है।
1: और तो ये बातें हो गई जाड़े की जो अगेती दलहनी फसलें हैं विशेषकर चना मटर और मसूर की।
0: एक तीसी का भी थोड़ा सा जल्दी हम जिक्र कर देते हैं। तीसी भी बहुत मुख्य फसल है, इसमें भी तैयारी उसी तरह से करेंगे। तीसी में आपका दिव्या जो है इस सिंचित मतलब कि सिंचाई का साधन है तो आप करें, मतलब कि प्रियम जो है सिंचित के लिए है, बिरसा हमारे कृषि विश्वविद्यालय के लिए द्वारा निकाली हुई वैरायटी है BIRSA TC1 BIRSA TC2।
1: अच्छा।
0: ये सब जो है वैरायटी 125 से 130 दिन के बीच की है। और जो है इसको जो है आप 3:1 हम लोग कहते हैं, मतलब कि इससे कि 3 लाइन यदि आप

0: आपने जो है चना लगाया है या गेहूं लगाया है तो उसमें एक लाइन इसको लगा दीजिए,
1: अच्छा
0: ऐसे करके तीन लाइन ये तो एक लाइन तीसरी।
1: अच्छा
0: चना में भी और ये गेहूं में भी आप लगा सकते हैं या उसके बॉर्डर में भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि गेहूं की आपने बुआई की तो उसके जो है बॉर्डर किनारे किनारे जो है तीन चार लाइन जो है आप तीसरी मतलब
1: इससे
0: कि
1: लाभ क्या है?
0: इससे लाभ जो है कई होता है। जैसे कि इसमें थोड़ा वो कांटे भी होते हैं तो जानवर जो है थोड़ा सा इसको खाने में परहेज करता है, कोई
1: अच्छा
0: खेत में जाता नहीं है और जो है हमारी गेहूं की भी फसल हो जाती है उसके मिश्रित इसको ऐसी वो कहते हैं मैंने और या 3:1।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, रबी की अगात दलहनी फसलें एवं उनकी खेती। भेंट वार्ता कर रहे थे डॉक्टर विनोद कुमार पांडे, कृषि विशेषज्ञ, और इनसे बातचीत कर रहे थे हमारे साथी भाई संतोष कुमार। अब चलते चलते मौसम का हाल आपको बता दें, आज स्थानीय शहर डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह की आर्द्रता रही 86%, जबकि शाम की आर्द्रता 65% दर्ज की गई, वर्षापात शून्य। तो मौसम संबंधी इसी सूचना के साथ ही हमारा आज का ग्रामीण सभा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अपने रेडियो दोस्त प्रदीप को दें इजाज़त, नमस्कार।
0: लगाने की जरूरत, किसान खुद समझदार हैं, थोड़ी सी

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
2: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
1: अरे बहन परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
2: बहन, पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
1: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
3: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले।
6: बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल की IUCD
7: कंडोम,
6: गर्भ निरोधक गोलियाँ,
8: खुशी का मंजर रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद।
9: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। रांची में कल से शुरू होगा 2 दिवसीय झारखंड डिजिटल हेल्थ कॉन्क्लेव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे टेली आईसीयू और टेलीमेडिसिन सेवाओं का उद्घाटन। कोल्हान विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने मेधावियों को सौंपी उपाधियां। कहा, डिग्री केवल प्रमाण नहीं, समाज के प्रति जिम्मेदारी का संकल्प है। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने झारखंड के लिए की विशेष पैकेज की मांग। किसान आईडी को जरूरी योजनाओं के लिए अनिवार्य न बनाने का आग्रह। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड बिहार के 5 बंद निगमों के 2274 कर्मचारियों को 1-1 लाख रुपए देने का दिया आदेश। सरकारों को भुगतान के लिए मिला 1 साल का समय। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजनीतिक दलों के साथ साझा किया बूथवार डेटा। वृद्ध, दिव्यांग और पीवीटीजी मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए लगेंगे विशेष कैंप। और अब समाचार विस्तार से। रांची में कल से 2 दिवसीय झारखंड डिजिटल हेल्थ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे। इस दौरान टेली आईसीयू और टेली मेडिसिन जैसी सेवाएं लॉन्च होंगी, जिससे सरकारी अस्पतालों में मरीजों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जा सकेगा।
1: मेडिकल के क्षेत्र में हमारा जो है हिंदुस्तान का 154वां स्थान है। अब छोटा छोटा जो कंट्री है, पहले मेडिकल वहाँ ठीक ठाक नहीं था, आज वो नंबर वन कर रहा है। मेरा जो डेवलपमेंट है, हम ग्रास रूट में हम चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, सब सारा संसाधन हमारे पास है, तो हम आगे क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसी को लेकर कल का जो 2 दिवसीय हमारा जो सेमिनार है, हमारा टीम वर्क है, एक नया चीज हम झारखंड वासियों को देने जा रहे हैं।
0: चाईबासा में कोल्हान विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मेधावियों को 224 उपाधियां और 26 स्वर्ण पदक प्रदान किए। इस बार क्यूआर कोड युक्त सुरक्षित डिग्री की शुरुआत की गई है। मौके पर राज्यपाल ने कहा कि दीक्षांत केवल डिग्री लेना नहीं बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी का संकल्प है।
2: आज उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपके माता पिता, परिवारजन और शिक्षकों को भी बधाई, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन से आपकी ये शैक्षणिक यात्रा इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंची है। दीक्षांत केवल उपाधि प्राप्त करने का अवसर नहीं बल्कि अपने ज्ञान को समाज के प्रति जिम्मेदारी में बदलने का संकल्प लेने का अवसर भी है।
0: राज्य में धान कटाई के बाद खाली रहने वाले करीब 5 लाख हेक्टेयर राइस फैलो क्षेत्र में दलहन, तिलहन और बागवानी फसलों को बढ़ावा देने की तैयारी है। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने केंद्र सरकार के सामने इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रस्ताव रखते हुए इसके लिए विशेष वित्तीय और तकनीकी पैकेज की मांग की। राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदर को जीआई टैग मिलने पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने समस्त राज्यवासियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मांदर को जीआई टैग मिलना पूरे

0: राज्य के लिए गौरव का विषय है। यह सम्मान उन कलाकारों और कारीगरों का है जिन्होंने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड बिहार के 5 बंद निगमों के 2274 कर्मचारियों को 1-1 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ईपीएफ बकाए पर 12% और अन्य बकाए पर 6% ब्याज भुगतान का निर्देश देते हुए सरकारों को अनुपालन के लिए 1 साल का समय दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र, निरंतर प्रतिबद्धता और सुशासन से प्रेरित होकर सरकार साल 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। देश में हो रहे समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से आज आम लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है। हमारी इस विशेष श्रृंखला में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे स्टार्टअप इंडिया योजना ने राज्य के युवाओं और महिलाओं की सोच बदलकर आत्मनिर्भरता की एक नई और स्वर्णिम इबारत लिखी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन काल में शुरू हुई स्टार्टअप इंडिया योजना आज राज्य के युवाओं और महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का नया माध्यम बन गई है। झारखंड का जामताड़ा जिला अब महिला समूहों और ग्रामीण महिला दुकानदारों की नई उद्यमिता का केंद्र बनकर उभर रहा है। आइए सबसे पहले सुनते हैं युवाओं और महिलाओं के इस नए हुनर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश।
2: सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक रिवॉल्यूशन बन चुका है। भारत आज दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है। 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है।
1: प्रधानमंत्री के इसी आह्वान का व्यापक असर आज जामताड़ा में दिख रहा है, जहां महिला समूहों की दीदियां नए सोशल स्टार्टअप चला रही हैं। समूह से ऋण लेकर अपनी किस्मत बदलने वाली सिलाई कटाई उद्यमी रीना देवी बताती हैं कि कैसे इस योजना ने उनकी आर्थिक स्थिति को संबल दिया है।
3: मेरा नाम रीना देवी, मैं ग्रुप से 25,000 रुपया लोन लेके सिलाई मशीन खरीदे और गाँव का सब कपड़ा सिलाई करते हैं। रोजगार मेरा इसी में चलता। अब मेरा 2 बच्चा है, दोनों बच्चों को हम पढ़ाई लिखा सिखा रही हूँ। मेरा घर संसार भी चल रहा है इसी में। प्रधानमंत्री को धन्यवाद।
1: वहीं इस आत्मनिर्भरता की राह पर कदम बढ़ाते हुए खुद का रिटेल आउटलेट और दुकान चलाने वाली एक अन्य महिला उद्यमी नथुआ देवी बताती हैं कि समूह से मिलने वाले सहयोग से वे मवेशी पालन के साथ साथ अपनी रेहड़ी दुकान का भी सफल संचालन कर रही हैं।
4: मेरा नाम नथुआ देवी है, लोन से जुड़े हुए हैं। लोन से मेरा गाय खरीदे हैं, ठेला भी चलाते हैं, ठेला लगाते हैं, उससे मेरा घर संसार चलता है, मेरा बच्चा। हम मोदी जी बहुत खुश है, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जानते हैं।
1: जामताड़ा की इन महिलाओं का ये सामूहिक और सफल प्रयास गवाह है कि सही नीतियों और दृढ़ इच्छा शक्ति से देश की आधी आबादी भी स्टार्टअप मानचित्र पर मजबूती से चमक सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
0: राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज रांची में राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर विशेष मतदाता पुनरीक्षण SIR का बूथवार डेटा साझा किया। उन्होंने बताया कि छूटे मतदाताओं के लिए विशेष आउटरीच कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से सहयोग करें, ताकि PVTG, दिव्यांग, वृद्ध और जनजातीय समूहों सहित किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से न छूटे। वियतनाम सड़क हादसे में मृत रांची के राजा कुमार बंसी का पार्थिव शरीर लाने की प्रक्रिया जिला प्रशासन ने तेज कर दी है। पीड़ित परिजनों ने आज उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री से मुलाकात की, जिन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर शव जल्द रांची लाने का आश्वासन दिया है।

0: मौसम मौसम केंद्र के अनुसार अगले 5 दिन राज्य के उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी और मध्य भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा या बादल गर्जन की संभावना है। इस दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। 3 अक्टूबर से राज्य भर में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में कल से शुरू होगा 2 दिवसीय झारखंड डिजिटल हेल्थ कॉन्क्लेव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे टेली आईसीयू और टेली मेडिसिन सेवाओं का उद्घाटन। कोल्हान विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने मेधावियों को सौंपी उपाधियां। कहा, डिग्री केवल प्रमाण नहीं, समाज के प्रति जिम्मेदारी का संकल्प है। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने झारखंड के लिए की विशेष पैकेज की मांग। किसान आईडी को जरूरी योजनाओं के लिए अनिवार्य न बनाने का आग्रह। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड बिहार के 5 बंद निगमों के 2274 कर्मचारियों को 1-1 लाख रुपए देने का दिया आदेश। सरकारों को भुगतान के लिए मिला 1 साल का समय। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजनीतिक दलों के साथ साझा किया बूथवार डेटा। वृद्ध, दिव्यांग और पीवीटीजी मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए लगेंगे विशेष कैंप। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मेरा बबलू तो ठीक से खाता पीता ही नहीं है, बार बार बीमारियां उसे घेर लेती हैं। समझ ही नहीं आता क्या करूं, किससे सलाह लूं?
2: अरे बहन, 104 नंबर डायल कर, जहां पर तुझे बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित चिकित्सकों से उचित सलाह मिलेगी।
1: 104 नंबर, वो क्या है बहन?
2: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन।
3: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: माँ, मुझे भी सब्जी दाल दो ना।
6: नहीं, तू ऐसे ही खा, इसे भैया को खाने दे।
7: अरे अरे, आप ये क्या कर रही हैं?
8: बढ़ती बच्ची, किशोरियों के साथ खान पान में भेदभाव ना करें।
7: किशोरावस्था में लड़कियों का विकास तेजी से होता है,
8: उनमें कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं,
7: माहवारी प्रारंभ होती है,
8: उन्हें अच्छा और उचित पोषक आहार की आवश्यकता होती है।
7: याद रखें, स्वस्थ बालिका ही भविष्य में स्वस्थ माँ बन सकती है।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
9: प्रस्तुत है जिले में आज कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पश्चिम सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे चाईबासा संवाददाता।
1: पश्चिमी सिंहभूम जिले के वन ग्रामों में रहने वाले लोगों ने वहां पारंपरिक ग्राम सभाओं के गठन की मांग की है। इस संबंध में लगभग 25 वन ग्राम के लोगों ने जिला प्रशासन से यह मांग करते हुए कहा है कि वन ग्राम अधिसूचित होने के कारण वहां कई तरह के विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जिससे लोग मुख्य धारा से कटे हुए हैं। इनके संयोजक बिरसा मुंडा ने बताया कि वन ग्राम के कारण बुनियादी सुविधाओं से लोग वंचित हैं और वहां पारंपरिक ग्राम सभाएं भी संचालित नहीं होती हैं।
2: किसान नियमावली 2025 के तहत प्रत्येक गांव में पारंपरिक ग्राम सभा गठन किया जा रहा है, तो इसी के साथ ही वनग्राम में भी पारंपरिक ग्राम सभा गठन हो और ताकि उस गांव का विकास हो जो आज तक उस गांव में विकास नहीं हो रहा है, जिस तरह से विकास से वंचित है, जिस तरह से आपका आंगनबाड़ी केंद्र हो, जल सैया हो, सैया हो, तो इसको लेकर के हम लोग डीडीसी को हम लोग ज्ञापन दिए हैं कि इस गांव में भी ग्राम सभा गठन हो ताकि वहां सरकारी योजना चल सके, सरकारी योजना उनको मिल सके। यही हम लोगों को आज ज्ञापन दिए हैं, उसमें हम लोग उनको डिटेल से प्रत्येक गांव का जो संख्या है, फिर बच्चों का संख्या, किस गांव में कितना संख्या है, ये हम लोग टोटल दिए हैं। टोटल आपको ये 25 गांव का हम लोग दिए हैं, उसमें 4180 आसपास है, तो इतना आबादी जो है आज विकास से कुछ 200 दूर में है, तो उस गांव में भी विकास हो, यही हम लोग को मांग करने के लिए है।
1: झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA के तत्वावधान में पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा चाईबासा में T20 लीग की शुरुआत की गई है। यह ऐसा पहला मौका है जब जिले में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, जहां देश के प्रतिष्ठित खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। यहां कुल 6 टीमों की नीलामी की गई है, जिसमें 6 IPL के खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। पहले यह प्रतियोगिता 26 सितंबर से शुरू होनी थी, मगर बारिश की वजह से इसे औपचारिक रूप से सोमवार को शुरू किया गया। मौके पर उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा है कि यह जिले के लिए गौरव की बात है, जब T20 लीग आयोजित करने का प्रयोग जिला क्रिकेट संघ के द्वारा किया गया है।
3: एक अच्छा स्पोर्टिंग चौरित टूर्नामेंट होने की हम लोग उम्मीद करते हैं और ये वॉटरशेड मोमेंट होगा यहाँ के क्रिकेट और बाकी खेलों के लिए भी, विकास के लिए। इस तरह का आयोजन एक जिला अपने लेवल पर कर ले रहा है, बहुत बड़ी बात है और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि पूरी खेल भावना के साथ अगले 10-12 दिन जब भी ये टूर्नामेंट चल रहा है तो इसमें लोग अपनी प्रतिभा भी दिखाएं और यहाँ से जो खिलाड़ी को मंच मिलता है वो आगे चल के झारखंड और अपने भारत को भी रिप्रेजेंट करें।
1: जिला शतरंज संघ के तत्वावधान में 30 सितंबर से अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। अब तक इस प्रतियोगिता के लिए 390 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें नेत्रहीन और दिव्यांग खिलाड़ी भी शामिल हैं। संघ के सचिव बसंत खंडेलवाल ने बताया कि इनामी राशि को इस वर्ष प्रायोजक द्वारा दुगना कर दिया गया है।
4: द्वितीय संस्करण 30 तारीख से चालू होने वाला है और इस प्रतियोगिता में अभी तक कुल 13 स्टेट और 2 राष्ट्र से कुल 390 खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन अभी तक करवा लिया है। आज रजिस्ट्रेशन का अंतिम दिन है और हमें लगता है कि 400 प्लेयर के अराउंड इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे। हम इस प्रतियोगिता में 6 लाख रुपए कुल इनामी राशि और प्रथम पुरस्कार मिलेगा उनको, वो है कि 1 लाख रुपए और ट्रॉफी। इसके अलावा कुल 53 कैश प्राइजेस है और 50 ट्रॉफीज है बच्चों के लिए और प्रतियोगिता 5 दिन की होगी जिसमें कुल 9 राउंड्स होंगे।
1: इस शतरंज प्रतियोगिता में देश के अलावा नेपाल के खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा।
0: अभी आप सुन रहे थे पश्चिमी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे हमारे रांची केंद्र का प्रसारण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग।

एक रंग सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। आज के एक रंग कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सदाबहार फिल्म अभिनेता देवानंद की फिल्मों के गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम खुला आकाश के अंतर्गत काव्य पाठ लीजिए, सुनिए अशरफ जमाल के द्वारा गजलें।
1: डॉक्टर अशरफ जमाल नजमी, गजलें लेकर आपके रूबरू आया हूँ, मुलाजा फरमाएं। अर्ज़ करता हूँ, मतला समात फरमाएं कि लफ्ज़ लफ्ज़ एहसास की आतिश में जलते हैं सुखन, लफ्ज़ लफ्ज़ एहसास की आतिश में जलते हैं सुखन, फिर सुलगते दर्द के पैकर में ढलते हैं सुखन, फिर सुलगते दर्द के पैकर में ढलते हैं सुखन। दर्द व गम की आग में जब दिल सुलगता है कोई, दर्द व गम की आग में जब दिल सुलगता है कोई, तब यकीनन आग ही बनकर पिघलते हैं सुखन। आरजुएं ख्वाब की सूरत निगाहें नाज में, आरजुएं ख्वाब की सूरत निगाहें नाज में, गुंचो गुल की तरह आए तो खिलते हैं सुखन। और ये शेर देखें कि जब जहाने दिल में यूं जज्बात के दरिया बहे, जब जहाने दिल में यूं जज्बात के दरिया बहे, मौज बनकर ज़ात के साहिल से मिलते हैं सुखन, मौज बनकर ज़ात के साहिल से मिलते हैं सुखन। कर्ब जब दहलीज़ दिल पर दस्तकें देने लगे, कर्ब जब दहलीज़ दिल पर दस्तकें देने लगे, आँख से अशकों की सूरत भी सुगलते हैं सुखन, आँख से अशकों की सूरत भी उबलते हैं सुखन। कब तलक दिल की सदाओं को दबाए जाएं हम, कब तलक दिल की सदाओं को दबाए जाएं हम, चुप की हर दीवार से आखिर निकलते हैं सुखन, चुप की हर दीवार से आखिर निकलते हैं सुखन। और तीरगी गम से एक उम्मीद की रोशन सहर, तीरगी गम से एक उम्मीद की रोशन सहर, अर्ज़ दिल पर फैल जाए तब मचलते हैं सुखन, अर्ज़ दिल पर फैल जाए तब मचलते हैं सुखन। ज़हन व दिल को गैब से इल्हाम फ़न मिलता है जब, ज़हन व दिल को गैब से इल्हाम फ़न मिलता है जब, तब कहीं लोहो कलम से आके मिलते हैं सुखन, तब कहीं लोहो कलम से आके मिलते हैं सुखन। और अश्क का सैलाब नजमी थम भी जाता है अगर, अश्क का सैलाब नजमी थम भी जाता है अगर, दर्द के दरिया की रेतों से निकलते हैं सुखन, दर्द के दरिया की रेतों से निकलते हैं सुखन। ये मेरी पहली गज़ल थी। और आपने मुलाहज़ा फरमाया होगा कि एक शायर जब एक तख्लीक की सिचुएशन में होता है, जब एक तख्लीक की के कर्ब से गुज़रता है, तब जाकर के सुखन बनते हैं, शायरी होती है। और ये गज़ल उसी कोशिश और उसी कर्ब के नाम थी। एक दूसरी गज़ल मुलाहज़ा फरमाएं, मतला है इस मौज तलातुम से निकल क्यों नहीं जाते, इस मौज तलातुम से निकल क्यों नहीं जाते, ऐ दिल मेरे नाशाद बहल क्यों नहीं जाते, ऐ दिल मेरे नाशाद बहल क्यों नहीं जाते। कर कर के उन्हें याद तड़पते हो हमा वक्त, कर कर के उन्हें याद तड़पते हो हमा वक्त, मिल जाएं

कहीं पर तो मचल क्यों नहीं जाते, मिल जाए कहीं पर तो मचल क्यों नहीं जाते। और माना कि तेरा गम गमे दौरा से बड़ा है, माना कि तेरा गम गमे दौरा से बड़ा है, गम से ही निभा करके संभल क्यों नहीं जाते, गम से ही निभा करके संभल क्यों नहीं जाते। और तब्दील ये हालात है फितरत का तकाजा, तब्दील ये हालात है फितरत का तकाजा, फिर मौसम आलाम बदल क्यों नहीं जाते, फिर मौसम आलाम बदल क्यों नहीं जाते। और अक्सर शब तन्हाई में दिल कहता है हमसे, अक्सर शब तन्हाई में दिल कहता है हमसे, तुम बज़्म गरीबां से निकल क्यों नहीं जाते, तुम बज़्म गरीबां से निकल क्यों नहीं जाते। एक उम्र पे तुम आए हो जी भर के तो देखूं, एक उम्र पे तुम आए हो जी भर के तो देखूं, कुछ बिगड़े ना अगर आज तो कल क्यों नहीं जाते, कुछ बिगड़े ना अगर आज तो कल क्यों नहीं जाते। एक बज़्म में सुखन उसने सजाया है जी नजमी, मक्ते के शेर है, एक बज़्म में सुखन उसने सजाया है जी नजमी, तुम ले के कोई ताज़ा गज़ल क्यों नहीं जाते, तुम ले के कोई ताज़ा गज़ल क्यों नहीं जाते। इस मौज तला तुम से निकल क्यों नहीं जाते, ऐ दिल मेरे नाशाद बहल क्यों नहीं जाते। ये दो गज़लें आपने समाअत फरमाईं और मेरा दिल चाह रहा है कि अब एक दो गज़ल मैं तरन्नुम से पढूं, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मुलाजा फरमाएं, मतला है

0: अभी आप सुन रहे थे गज़लें अशरफ जमाल के द्वारा, कार्यक्रम खुला आकाश में। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं विशेष भेंटवार्ता। विषय है, दिल को कैसे रखें स्वस्थ। जाने एक्सपर्ट की राय। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सच्चिदानंद, हृदय रोग विशेषज्ञ पलामू। प्रस्तुत करता है प्रशांत गौरव और इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
1: तमाम श्रोता मित्रों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार एवं विश्व हृदय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हां श्रोता मित्रों, प्रतिवर्ष 29 सितंबर को हम विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाते हैं, जिससे लोग हृदय रोग, स्ट्रोक और उनके वैश्विक प्रभावों के प्रति जागरूक हो सकें। बिल्कुल श्रोताओं, आज विश्व हृदय दिवस के अवसर पर दिल को कैसे रखें सेहतमंद, जाने एक्सपर्ट की राय विषय पर विस्तृत बातें होंगी। जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं पलामू जिला के वरीय कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सचिदानंद जी। सर का स्वागत है कार्यक्रम में, नमस्कार।
2: धन्यवाद आपको।
1: सर, सर्वप्रथम तो हमारे श्रोताओं को ये बताया जाए, आज हृदय रोग से जुड़ी तरह तरह की शिकायतें, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, दिल की धड़कन का अनियमित होना, सीने में दर्द सुनने को मिलती हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं?
2: देखिए, आज हमारे भारतवर्ष में ये जो हृदय रोग की बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इसका प्रमुख कारण है लाइफस्टाइल। आजकल के हमारे जितने यंग जनरेशन के हैं, वो शुरू से ही देख रहे हैं कि हॉस्टल में रहना, पढ़ाई के चलते जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेजीनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, देर रात उनको प्रेशर है पढ़ाई का या नौकरी का। तो इस तरह से यंग जनरेशन से आज पहले की अपेक्षा आजकल बहुत ज़्यादा हृदय रोग की मरीज मिल रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण आजकल लाइफस्टाइल आदमी का बहुत ख़राब हो गया है, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ साथ जो मोबाइल आजकल हो गई है, दिन रात आदमी लेटे हुए हैं मोबाइल में देख रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गया है, खान पान में वैसा ही है एकदम। ये पहला प्रमुख कारण है। दूसरा चीज़ है ओबेसिटी। जितने कम एज में आजकल देख रहे हैं बच्चे को, हेल्थ इतना ज़्यादा हो जा रहा है, ये भी एक बहुत प्रमुख कारण है। इसका मेन कारण है खान पान ही। जितने देख रहे हैं आजकल बच्चे लोग एकदम तुरंत ऑर्डर, ये जो जोमेटो और ये जो आज स्विगी आ गया है, कोई अच्छा घर का खाना नहीं खा रहा है, सीधे ऑर्डर कर दे रहा है और उसका कारण ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, डाइजेशन बहुत गड़बड़ हो रही है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रह रहा है। तो ये सब चीज़ आजकल के प्रमुखता से है। तीसरा चीज़ है, बहुत कम एज में आज देखिएगा, जिधर चलिए पान दुकान जहाँ देखिए, बच्चे लोग कम एज में स्मोकिंग करने लग रहे हैं। बहुत हम लोग देखते हैं, बहुत ख़राब लगता है। इसके चलते बहुत कम उम्र में हार्ट अटैक का बहुत आप लोग सुन रहे हैं कि बहुत कम उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है। दूसरा चीज़ है, खान पान वैसा है नहीं और जिम, ये आजकल शौक हो गया है जिम जाने का। जिम में खान पान वैसा है नहीं, जिम का भी एक समय होता है कि हमको इतना टाइम तक जिम करना है, एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, एक्सेस बॉडी में अपना ये दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, जिसके चलते ये हार्ट की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। खान पान बता ही दिए हैं आपको कि बहुत है
1: जी। तनाव कहाँ तक हृदय रोग के लिए जिम्मेवार है?
2: तनाव बहुत बड़ी कारण है, यही तो मैं बता रहा हूँ कि बच्चे को पढ़ाई का बहुत तनाव है, स्ट्रेस तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि स्ट्रेस इतना हो गई है कि हमको, पेरेंट्स का भी इसमें बहुत दोष है, बच्चे को एकदम दे रहे हैं कि नहीं तुमको मेडिकल निकालना है, तुमको इंजीनियरिंग निकालना है, बच्चे लोग पर काफ़ी तनाव है जिसके चलते भी ये बीमारियां बढ़ रही है।
1: किसी भी बीमारी के बढ़ने से पहले हमारा शरीर कुछ शुरुआती लक्षण का संकेत देता है, क्या कहना चाहेंगे?
2: हाँ, लक्षण तो आपको वार्निंग देती है, चलने में आपको सांस फूल रही है या आपको हैवीनेस हो रहा है, चल रहे हैं तो छाती में भारीपन हो रही है या दर्द, देखिएगा किसी किसी को कि बाएं हाथ में दर्द हो रहा है, सोचते हैं कि गैस है लेकिन

0: वो गैस नहीं रहता है, वो हृदय संबंधित है। अगर वैसा लगे चलने में हाँफ हो जाना, चलने में छाती में भारीपन होना या हाथ में दर्द बढ़ जाना, तो आप जरूर किसी कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए।
1: जी हाँ श्रोता मित्रों, इन लक्षणों को पहचान कर अगर सही समय पर डॉक्टर से सलाह ली जाए तो बीमारी को गंभीर होने से रोका जा सकता है। उच्च रक्तचाप की अगर हम बात करें तो क्या कहना चाहेंगे?
0: उच्च रक्तचाप एक प्रमुख कारण है। हार्ट में अगर बीमारी हो रही है तो पहला तो ओबेसिटी बताए हम, फर्स्ट ओबेसिटी है जो मोटापन हुआ, दूसरा स्मोकिंग हुआ, तीसरा उच्च रक्तचाप हुआ, चौथा डायबिटीज हुआ, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा है अगर बढ़ गया, जिसका LDL जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं उसकी मात्रा बढ़ गई, या गुड कोलेस्ट्रॉल HDL बोलते हैं अगर वो घट गया, तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
1: और शुरुआत में इसकी भनक लग जाती है लोगों को?
0: जी मैं तो यही बताया कि शुरुआत में एकदम भनक लग जाती है, आपको हैवीनेस होने लगेगा, आप सोचिएगा कि हमको गैस हो रहा है, लेकिन वो गैस नहीं होता है। भारीपन जहाँ भी लगे, या छत में चढ़ रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने में दौड़ने लगे, तो अगर सांस लेने में दिक्कत हुई या भारीपन लगा, तो आप समझिए कि हमको तुरंत हार्ट की कुछ टेस्ट कराना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए नियमित और संतुलित दिनचर्या कितना असरदार हो सकता है हृदय रोग के मामले में?
0: सबसे पहले यही बताऊंगा कि सबसे पहले मॉर्निंग में उठिए आप, अर्ली मॉर्निंग आप अगर बेड छोड़ देते हैं, सुबह सुबह समय मिले तो जरूर आधा घंटा मॉर्निंग वॉक करिए, मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहे तो घर में जरूर वर्कआउट करिए। जो भी मेडिटेशन होता है वो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग देते हैं कि आप उसको जरूर शरीर के प्रति आप दीजिए। दूसरा चीज़ है खान पान, जो मैं शुरू से बताया, फाइबर चीज़ ज़्यादा यूज करिए, एकदम अवॉइड करिए फास्ट फूड जंक फूड का, और जितने जो तैलीय पदार्थ है चाट समोसा सिंघाड़ा मैगी ये सब चीज़ को अवॉइड करिए, सलाद का ज़्यादा सेवन करिए, ये मैंने प्रमुख मैंने मेरे तरफ से सुझाव है करना चाहिए आदमी।
1: श्रोता मित्रों, हम आपको पुनः आगाह कर दें, आज विश्व हृदय दिवस के अवसर पर दिल को कैसे रखें सेहतमंद, जाने एक्सपर्ट की राय विषय पर विस्तृत बातें हम साझा कर रहे हैं पलामू जिला के वरीय कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सचिदानंद जी से। सर, साधारण सा सेव एक आसान नाश्ता नहीं है। कहा जाता है कि सेव के सेवन से हृदय रोग पर काफ़ी काबू पाया जा सकता है, यह कहां तक सत्य है?
0: जी एकदम सही बात है, सेव बहुत अच्छी चीज़ है स्वास्थ्य के लिए। एक सेव आप प्रतिदिन खाइए, उसके साथ जो मैं बताया कि जितना फाइबर चीज़ होता है, जैसे सलाद हो गया, अकुरा चना हो गया, अकुरा मूंग हो गया, ये सब चीज़ सुबह सुबह में मॉर्निंग वॉक के बाद आप आके उसको लीजिए। हल्का डाइट लीजिए, कोई भी चीज़ हो हल्का लीजिए, स्वास्थ्य के लिए जितना कम भोजन आप चार बार खाइए वो आपको हानि नहीं करेगा, लेकिन एक बार अगर हैवी डाइट ले रहे हैं तो स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, हानिकारक है। दूसरा चीज़ है कॉन्स्टिपेशन, आजकल बहुत बड़ी समस्या कॉन्स्टिपेशन की है। कॉन्स्टिपेशन शरीर में रहने से भी आपको हार्ट संबंधित बीमारियां हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन में लोग क्या करते हैं कि जब बाथरूम में जाते हैं, लैट्रिन में बैठते हैं तो प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डालने से हृदय की जो रक्तकाएँ हैं उस पर भार पड़ती है, जिससे आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए फाइबर चीज़ खाइए, जितना कम खाना एक बार में लीजिए स्वास्थ्य के लिए अच्छी है।
1: अब प्रश्न उठता है कि हमारे श्रोता क्या ना करें जिससे हृदय से जुड़े जोखिम को कम किया जा सके?
0: जी पहला चीज़ तो मैं वही बताया कि एक बार में हैवी डाइट नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा आप चार बार लीजिए, वो हानि नहीं करेगा। लैट्रिन में जोर मत लगाइए, कोलेस्ट्रॉल को कम करिए, शुगर को मेंटेन रखिए, BP को मेंटेन रखिए, स्मोकिंग एकदम अवॉइड करिए, ड्रिंकिंग अवॉइड करिए, ये सब चीज़। और खान पान में तो मैं बताया कि तैलीय चीज़ को जितना कम खाइए, फास्ट फूड एकदम मत खाइए, आपकी हृदय स्वस्थ रहेगी।
1: मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दिल को अस्वस्थ रखने में कोलेस्ट्रॉल,
0: BP, शुगर, मोटापा, स्मोकिंग ये सब एकदम रिस्क फैक्टर है, इसके चलते आपकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको हार्ट की बीमारियां हो सकती है। इसलिए शुगर, BP, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, स्मोकिंग ये सब पर आपको कंट्रोल करना है।
1: कार्यक्रम के शुरुआत में मोबाइल फोन के संबंध में आपने जानकारी दी थी, यह कहां तक घातक हो सकता है?
0: जी एकदम, हम तो यही अभी शुरू में भी मैं बोला था कि मोबाइल आज शरीर को एकदम लेजीनेस बना दे रहा है। रहा है। हर आदमी आजकल YouTube पर रील्स देख रहे हैं, YouTube पर अच्छी चीजें नहीं देख रहे हैं। तो

0: जितना हम कहेंगे मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मोबाइल के लिए उतने उपयोग करिए जो स्वास्थ्य के लिए ठीक है। मोबाइल जिससे आपको बात करनी है 5 मिनट बात करिए, उसके बाद में मोबाइल की जितना कम उपयोग करिए वो स्वास्थ्य के लिए ठीक है। आप
1: और दौड़ना टहलना
0: एकदम अनिवार्य है। मॉर्निंग वॉक मैं इसीलिए बोला कि मॉर्निंग वॉक भी आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, आराम से आप आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग करिए। अगर उसमें भी मैं अगर आपको चलने में दर्द हो या चलने में हाँफ हो रहा है तो आप तुरंत बैठ जाइए और नेक्स्ट डे आप जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करिए।
1: फलों की बातें हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो फलों में मूलतः हृदय के लिए कौन कौन से फल हमारे श्रोता के लिए अच्छे होंगे?
0: तो मैं बताया कि एप्पल तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर डायबिटिक नहीं है तो आप सलाद में गाजर डाल सकते हैं, खीरा डाल सकते हैं, आप अगर डायबिटीज नहीं है तो ग्रेप्स भी ले सकते हैं, ग्रेप्स भी अगर सीजनल है आप ले सकते हैं, का पोमग्रेनेट है, ये सब चीज़ स्वास्थ्य के लिए ठीक है।
1: सर आप चूंकि पलामू जिला के वरीय हृदय रोग विशेषज्ञ, इस नाते हमारे श्रोताओं को आज विश्व हृदय दिवस के अवसर पर क्या सुझाव देना चाहेंगे?
0: मैं सुझाव यही दूंगा कि आप जितनी जो मैंने बातें बताई अगर उस पर आप 10% अमल करेंगे तो आपकी हृदय बहुत अच्छी रहेगी। इसलिए मेरा पलामू के श्रोतागण से ही है कि जो जो चीज़ सावधानियां हम बोले हैं कि शुगर को कंट्रोल करिए, अगर डायबिटीज़ हैं तो बीपी के पेशेंट हैं तो बीपी को कंट्रोल करिए, स्मोकिंग एकदम अवॉइड कर दीजिए, जंक फूड अवॉइड कर दीजिए, मॉर्निंग वॉक करिए, स्ट्रेस कम लीजिए। स्ट्रेस बहुत बड़ी आजकल की समस्या हो गई है, चाहे यंग हो या मिडिल एज के हो, मिडिल एज के लोगों में अपना बिजनेस के प्रति या जॉब के प्रति बहुत सारी टेंशन होती है, बच्चे लोग को पढ़ाई के चलते टेंशन हो रही है, तो ये सब चीज़ को हम तो मेरा सलाह रहेगा कि स्ट्रेस जितना कम करिए स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा रहे,
1: चाहे वो बच्चे हो या चाहे बुजुर्ग महिलाएं,
0: जी जी तीनों के लिए, माताएं बहनें हों, बच्चे हों और हमारे मिडिल एज के भाई हों या ओल्ड एज के भी भाई हों, मैं उन सबको यही सलाह दूंगा कि खान पान परहेज करिए, स्ट्रेस को कम करिए।
1: और सबसे बड़ी बात कि किसी भी तरह की परेशानी हो तो खुद से डॉक्टर से ही बताइए।
0: जी जी, अगर कभी भी आपको किसी तरह की जो जो मैंने बताया कि चलने में सांस लेने में दिक्कत हो या कभी गैस के फेरा मत रहिए, चलने में हाँफ हो जाए या चलने में छाती में भारीपन हो जाए तो एक बार जरूर आप कोई भी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से मिलकर और अपना चेकअप करा लीजिए।
1: जी हाँ श्रोता मित्रों, इस प्रकार दिल को सेहतमंद रखने के लिए खान पान, एक्टिव लाइफस्टाइल और मानसिक शांति सबसे जरूरी है। अपने जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करके आप हार्ट अटैक और अन्य हृदय रोगों के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। श्रोताओं, आज विश्व हृदय दिवस के मौके पर हृदय को कैसे रखें सेहतमंद, जाने एक्सपर्ट की राय विषय पर हम विस्तृत जानकारियां साझा कर रहे थे पलामू जिला के वरीय कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सचिदानंद जी से। सर आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और दिल को सेहतमंद रखने के लिए बहुमूल्य जानकारियां हमारे श्रोताओं तक आपने प्रेषित की, इसके लिए आपको आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार, धन्यवाद। पलामू के जनता स्वस्थ रहिए और अपने दिल को जरूर अच्छे से ढंग से रखिए, जिससे कि हम जो बताएं कुछ तो हमको लगेगा कि हमारी बातों को लोग अमल किए। धन्यवाद।
1: आज विश्व हृदय दिवस के अवसर पर हमारे श्रोता सुन रहे थे विशेष भेंट वार्ता, विषय था दिल को कैसे रखें सेहतमंद, जाने एक्सपर्ट की राय। विशेषज्ञ थे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सचिदानंद, इनसे बातें हो रही थी संतोष कुमार की। कार्यक्रम प्रस्तुत करता थे प्रशांत गौरव।

अभी आप सुन रहे थे विशेष भेंट वार्ता। विषय था दिल को कैसे रखें स्वस्थ। जाने एक्सपर्ट की राय। विशेषज्ञ थे डॉक्टर सजिदानंद, हृदय रोग विशेषज्ञ। प्रस्तुतकर्ता थे प्रशांत कौरव और भेंटकर्ता संतोष कुमार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। चित्रपट से सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। आइए सुनते हैं फिल्मी नगमे।

लैला मजनू, शीरी फरहा, ही रांझा।

की आग में जल मरने वालों के, मगर अफसोस आज की दुनिया में मजनू फरहा रांझा तो है, मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों आशिक फिर भी आशिक है, और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है, एक ही बात कहना चाहता है, बोलिए क्या।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशकान। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अब से कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटका, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिसार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
3: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसमें दोनों व्यवस्था, एक MSP और एक विदाउट MSP, हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों को। ये तय किया, तुअर मसूर उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
1: श्री चौहान ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौतों से उभर रहे नए बाजार अवसरों का लाभ उठाएगा।
3: FTA का जो हमारे कृषि समझौते हुए दुनिया के देश, वो भारत के किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जो 0% इम्पोर्ट ड्यूटी पर दुनिया के बाजारों में जा सकते हैं, हमारे फल, हमारी सब्जी, हमारे अनाज। अगर बाजार से किसान को ठीक कनेक्ट कर दिया तो उसको दाम ठीक मिलने की गारंटी है।
1: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 10 से ज्यादा राज्यों के कृषि मंत्रियों को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय मंजूरी के पत्र भी सौंपे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलें शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों के ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों का उदाहरण बनेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए संशोधित ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल या उससे नीचे के मानक वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध अब सोनीपत में भी लागू होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान की टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
5: इंडिया रिजेक्ट्स द अनवारंटेड रेफरेंसेस।
6: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
5: एंड नो एक्सटर्नल पार्टी हैज एनी लोकस स्टैंडाई ऑन दिस इशू।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी।
7: अमेरिकी कांग्रेस के जो यहाँ पर डेलीगेशन आई हुई है उनकी मुलाकात फॉरेन सेक्रेटरी से हुई और उस मुलाकात में अन्य विषयों के अलावे जो हमारी चिंताएं हैं इसको लेके कि इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है हमारे द्विपक्षीय रिश्तों पर और उसके अलावे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ऊर्जा की स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन चिंताओं के बारे में उनको दोहराया उनसे।
1: फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। इन पर करीब 163 भारतीय नाविक सवार हैं। जहाजरानी मंत्रालय इन जहाजों की आवाजाही पर लगातार नजर रख रहा है। भारत बांग्लादेश गंगा जलसंधि से जुड़े सवाल पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त नदी आयोग है और नदियों से जुड़े सभी मुद्दों पर इसी आयोग के माध्यम से चर्चा की जाएगी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा करेगी और शीतकालीन सत्र 2026 के प्रथम सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से संबंधित है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से मुलाकात की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों पर विशेष रूप से बल दिया गया। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
8: 2014 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में

0: पहुंचाई जा रही है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के लिए भेजे गए हर एक रुपए में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंचते हैं। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए यह सुनिश्चित किया कि डीबीटी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज सैकड़ों सरकारी योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुँच रहा है।
1: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
0: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के किसान दिनेश कुमार राठौर ने बताया कि डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए मिल रहे हैं।
2: अब हमारे खाते में सीधे सरकार द्वारा डायरेक्ट पैसे आ जाता है। साथ ही जब भी हम खाद या बीज लेने जाते हैं तो हमें डीबीटी के माध्यम से काफी छूट मिलता है। वहीं किसान सम्मान निधि के द्वारा अब सालाना 6,000 रुपए मिलता है।
0: इस साल अगस्त तक डीबीटी के माध्यम से 320 सरकारी योजनाओं के तहत 53,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। डीबीटी ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
3: ये आकाशवाणी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज दोहा में एशिया अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की वार्षिक बैठक के दौरान कतर के वित्त मंत्री अली बिन अहमद अल कुवारी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कतर में भारत की UPI भुगतान प्रणाली के विस्तार और दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान कतर की भारत में $10 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के जुड़ाव और द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतिम रूप देने पर विशेष बल दिया गया। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक के भीतरी इलाकों केरलम, माहे, कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। और अब बात एशियाई खेलों की। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। पूजा ने महिलाओं की हाई जंप स्पर्धा में और गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाजी में नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 65 किलोग्राम और अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत 6 स्वर्ण 21 रजत 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
5: मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 243 अंक गिरकर 72,529 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% की गिरावट से 64 अंक गिरकर 22,716 के स्तर पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 95.99 रुपए प्रति डॉलर के पूर्व स्तर पर बरकरार रहा।
3: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटक, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में

बेहतर हैं। न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी की जानिब से मुनक्किद एक तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सरहद पर तातुल के हल के बाद ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए। उन्होंने कहा कि भारत काफी वक्त से चीन से कहता रहा है कि बाहमी ताल्लुकात में किसी भी तरह की कमी किसी भी मुल्क के लिए मददगार नहीं होगी और तवील वक्त से तातुल भी किसी मुल्क के मफाद में नहीं है। इंतखाबी कमीशन ने आज राज्यसभा की 11 सीटों के लिए 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। बीजेपी लीडर और मरकजी वुजरा हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी रहनुमा राम गोपाल यादव, बीएसपी के रामजीत और 6 दीगर की मुद्दतिकार 25 नवंबर को मुकम्मल हो रही है। कमीशन ने मगरबी बंगाल में राज्यसभा की एक सीट पर जिमनी चुनाव के लिए भी नोटिफिकेशन जारी की है। टीएमसी रुकने पार्लियामेंट रुक्मिनी मलिक के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी। आज से कागजात नामजदगी का सिलसिला शुरू हो गया है और पोलिंग 16 अक्टूबर को होगी। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने कहा है कि भारत शहरी हवाबाजी के शोबे में एक अहम आलमी मरकज के तौर पर उभरने और मुतालिका मार्केट में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मरकज बनने की जानिब काम कर रहा है। आज नई दिल्ली में रूट्स एशिया 2027 से मुतालिक एक तारफी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब नायडू ने कहा कि भारत का 2047 तक मुसाफिरों की तादाद में 6 गुना इजाफा करके इसे मौजूदा 24 करोड़ से 130 करोड़ करने का मकसद है। भारतीय हाई कमिश्नर जनाब दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के उमूर खारजा के वजीर ममलिकत जनाब हुमायूं कबीर से एक खैर सगाली मीटिंग की। हाई कमिश्नर ने वजीर ममलिकत का ओहदा संभालने पर जनाब कबीर को मुबारकबाद पेश की। मीटिंग के दौरान फरीकैन ने दोनों मुल्कों के अवाम के लिए बाहमी सूदमंद नतायज पर मरकूज मुसलसल तआवुन के बारे में तबादला ख्याल किया। मुतअद्दिद कश्मीरी सियासी लीडरों, बैनुल अक्वामी हुकूक इंसानी के हामियों, सहाफियों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और समाजी कारकुनों ने जेनेवा प्रेस क्लब में मुनक्किदा एक बैनुल अक्वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इंसानी हुकूक की बढ़ती हुई खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान की सख्त मजम्मत की। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जेनेवा में जारी अक्वामी मुत्तहिदा हुकूक इंसानी कौंसिल के 63वें इजलास के मौके पर यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने किया था। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल अंदरूनी कर्नाटक, केरलम, माहे, क्राइकल और शिमाल मशरकी रियासतों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक अगले 3 से 4 रोज के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु और पुदुचेरी में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने आसाम, मेघालय, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा और त्रिपुरा में भी कल गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। जापान के नागोया में एशियन गेम्स 2026 में आज भारत ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 8 तमगे जीते, जिनमें रिले, शूटिंग, एथलेटिक्स और बॉक्सिंग में सोने के 2, चांदी का 1 और कांसे के 5 तमगे शामिल हैं। भारत ने खवातीन के 4x400 मीटर दौड़ 3:29.69 सेकंड में मुकम्मल करके सोने का तमगा जीता। भारत ने मर्दों की 4x400 मीटर दौड़ और मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में भी कांसे का तमगा जीता। इससे पहले नीरू धांडा ने जापान में खवातीन के इंफरादी ट्रैप मुकाबले में सोने का तमगा हासिल करके पहली भारतीय खातून शूटर बनकर तारीख रकम की। कुल 53 तमगे जीतकर भारत एशियन गेम्स 2026 में 10वें मकाम पर आ गया है। अब तक भारत सोने के 6, चांदी के 21 और कांसे के 26 तमगे जीत चुका है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एशियन गेम्स में खवातीन के ट्रैप टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने पर मनीषा कीर, नीरू धांडा और अशीमा अहलावत को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने उनकी कारकर्दगी की सताइश की। वजीर आजम ने पूरी टीम को मजीद कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिफाई तैयारी के सिलसिले में जोग्राफियाई अहमियत की हामिल सोच और हंगामी सूरत हाल से निमटने की मनसूबाबंदी पर जोर दिया है। ज़राअत के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत एक कसीर रुखी हिकमत अमली पर काम कर रही है ताकि किसानों की पैदावार की माकूल कीमतों को यकीनी बनाया जा सके। प्रगति 50 के तहत इकदामात के नए सिलसिले का आगाज किया गया है, जिसका मकसद मुल्क भर में 50 मिसाली शहर तैयार करना है। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली से अपने खिताब में तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान के जम्मू कश्मीर पर गैर जरूरी तस्करे को मुस्तरद कर दिया है। और एशियन गेम्स 2026 में भारत ने खवातीन की 4x400 मीटर रिले में सोने का तमगा जीता। खवातीन के ट्रैप इनफरादी मुकाबले में नीरू धांडा ने सोने का तमगा जीता। भारत के तमगों की कुल तादाद बढ़कर
53 हो गई है, जिनमें सोने के 6, चांदी के 21

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता महमूद पर।
1: आए हाय सुल्तान इब्ने सुल्तान इब्ने सुल्तान, यानी के भाईजान, मालिक अक्ल ला महदूद, यानी के बादशाह महमूद तशरीफ ला रहे। हाय हाय हाय हाय हाय,
2: मां भाग रही तू मैं काले से डर गए क्या?
3: हमें काले

0: सुनो साहब, सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश से निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी। मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया। लेकिन ऐसे कैसे बने हम?
1: बोल दूं बापू?
0: बोल दे बेटा।

0: या
1: लड़की के कारण मी पागल झाला, प्रेम का फेंका हमने जो भाला, लड़की ने मेरा पॉकेट संभाला, रुपया पैसा लूट के मेरा उसने निकाला मेरा दिवाला। इसलिए हमने ये फिल्म बनाई है लोगों को सिखाने के लिए कि रुपया बचाओ, रुपया है तो तख्त है, रुपया है तो ताज है, रुपया है तो माँ है, रुपया है तो बाप है, रुपया है तो बहन है, रुपया है तो भाई है, रुपया है तो मकान है, रुपया है तो दुकान है, और आखिर में अगर रुपया है तो दुनिया है। रुपये के ही नाम का जहूरा है, बाकी सब घास कूड़ा है ना।

ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता फी न मिलती अगर तू माँ के पोटे के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। तो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे

महमूद की वजह से कॉमेडी को इतनी अहमियत मिली कि उन दिनों फिल्म की मेन कहानी के अलावा कॉमेडी की एक पैरेलल कहानी भी हुआ करती थी, और जिसके नायक होते थे महमूद।

ಯಕ ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಜೋಡಗನ ಜೇ.

0: चतुरा घोड़ा, ये क्या रहा घोड़ा चतुरा, घोड़ा चतुरा एक पैर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला गा।
1: एक पे कैसे रहते जब रिकॉर्डिंग में मौजूद हूँ मन्ना डे, किशोर कुमार और महमूद। तो भाई किस्सा ये है कि इस गाने की शक्ल ऐसी नहीं थी। पहले जो गीत लिखा गया था, जो संगीत रचना की गई थी, रिकॉर्डिंग के वक्त बदल दी गई थी। दरअसल उन दिनों रिकॉर्डिंग के दौरान सारे साजिंदे गायक मौजूद हुआ करते थे। महमूद साहब जो इस फिल्म के निर्माता थे और राहुल देव बर्मन साहब जो कि संगीतकार थे। महमूद साहब ने आर डी बर्मन को पूरी आजादी दे रखी थी। उस पर किशोर कुमार साहब गजब के फनकार, खुद गायक, गीतकार और संगीतकार, उन्हें भी खूब मजा आने लगा और गीत की शक्ल बदलते बदलते ऐसी हो गई। दोस्तों, संगीतकार राहुल देव बर्मन ने महमूद साहब के साथ फिल्म भूत बंगला में अभिनय भी किया है। जी हाँ, सुनते हैं इसे फिल्म का ये गाना, संगीत है राहुल देव बर्मन साहब का।
2: और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ और गाने में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कुछ रहना हो तो मानो मेरी बात।

0: जिंदगी है यही।
1: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं। इन फिल्मों में एक हास्य अभिनेता के अंदर छिपा संजीदा कलाकार पूरी शिद्दत के साथ हमें देखने को मिलता है।
2: हमारी बिटिया बच गई, भगवान आपको सुखी रखे बाबू साहब। गरीब को ऐसी खबर सुनाई, ऐसे लगता है जैसे हमको नया जीवन दे दिया।

0: से खोलो बिटिया, देखो हम तो हर सतिया, देखो बिटिया।
1: सत्या?
0: हाँ बिटिया।
1: तुम इतने दिन से कहाँ थे सत्या?
0: अरे बिटिया वो, तुम हमारी फिक्र छोड़ो बिटिया, तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: तुम आ गए हो, मैं अच्छी हो जाऊंगी।
0: जरूर अच्छी हो जाओगी बिटिया, जरूर अच्छी हो जाओगी। लेकिन बिटिया हमने तुम्हारी मिठाई में जहर नहीं मिलाया।
2: ऐसा कमाल तो सिर्फ महमूद जैसा कलाकार ही कर सकता है दोस्तों, जो एक हास्य कलाकार का लेवल लेकर इंडस्ट्री में हो, लेकिन जब लोगों को रुलाने की ठान ले तो ऐसा रुलाए कि आप रोते रोते भी वाह वाह कर उठे।
0: ही साहब ने बड़े से बड़ी गाली दे ले, पर हमको चोर मत कहो। ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो। आप रानी बिटिया के पिताजी हैं, गरीब के सामने हाथ फैलाकर हमको मिट्टी में न मिलाओ साहब, न मिलाओ।
3: नहीं रे बेटा, भूल गया वादा, मेरी कसम खाया था ना।

दोस्तों, हो गई ना आपकी भी आंखें नम, लेकिन क्या करें हम। महमूद साहब की अदाकारी के हर पहलू पर बात किए बिना ये प्रोग्राम शायद पूरा नहीं होता। हालांकि महमूद साहब के बारे में इतनी सारी बातें करने के बाद भी ये कार्यक्रम पूरा होगा नहीं, क्योंकि महमूद सिर्फ एक कलाकार का नाम नहीं है, महमूद एक पूरी किताब है।

0: हर्रा सुहाना होगा।
1: अच्छा
0: हर्रा
2: 29 सितंबर सन 1932 में मुंबई में जन्म लेकर इसी माया नगरी के फिल्म इंडस्ट्री में महमूद ने अपना फिल्मी करियर बनाया। सही अर्थों में महमूद एक हरफन मौला कलाकार थे। उन्हें हम याद करते रहेंगे जब तक कि ये दुनिया है और इस दुनिया में फिल्मी दुनिया का माया जाल है।

0: तो ये था आज का, आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर महमूद पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दुनिया की भीड़ में कभी कभी सारे चेहरे अजनबी हो जाते हैं, ऐसे में सीधी सादी सड़क टेढ़ी हो जाती है, रास्ते नजर नहीं आते, चेहरे पर घिराई उदासी परेशान करती है, जिंदगी को मुट्ठी में बंद कर उससे बतियाना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी रेत की मानिंद फिसलती जाती है, ऐसे में हम जिंदगी को बुलाते हैं, मनहार करते हैं।

0: एक बार फिर तालियां बजाने के लिए सुनिए पूरा विवरण मुदिता से।
1: शूटिंग में भारत ने एक स्वर्ण और एक रजत के साथ यादगार प्रदर्शन किया। ट्रैप शूटिंग टीम इवेंट में भारतीय महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने कुल 328 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रहीं। चीन ने 346 अंकों के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया, वहीं कुवैत ने 325 के साथ कांस्य पदक जीता। और फिर आया गोल्ड मेडल, जो नीरू ढांडा ने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा के फाइनल में हासिल किया। 26 साल की भारतीय शूटर ने 30 में से 28 शॉट स्कोर किए और टॉप पर रही। उनकी सबसे करीबी प्रतिद्वंदी चीन की सुन युनोंग से वो 2 शॉट आगे रही। उनके स्कोर ने एक नया एशियन रिकॉर्ड और एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। इस जीत के साथ नीरू एशियन गेम्स में इंडिविजुअल ट्रैप शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इसके पहले 2025 में नीरू ने वुमेन ट्रैप इवेंट में अपना पहला एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता। 2026 में नीरू ने इटली के लोनाटो में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में वुमेन ट्रैप में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। आइए सुनते हैं उनके कोच मनशेर सिंह ने नीरू ढांडा के बारे में क्या कहा।
2: शी जॉइंड द एकेडमी एंड देन कोविड हिट, शी वेंट बैक होम एंड शी गॉट कोविड एंड वी लॉस्ट हर इन द हॉस्पिटल। वी कुडंट फाइंड हर फॉर 10 डेज एंड समथिंग हैपेंड टू हर, फाउंड हर लाइंग इन अ बेड समवेयर विद द मोस्ट डिस्ट्रेसफुल कंडीशन। पुल्ड आउट of there, got her support in Chandigarh, then psychologists had to get involved because she was so traumatized. So we did manage all that support, got her back into the academy. Today she's an Asian champion because of her life-changing experiences, become the most strongest shooter in a final in the present group of shooters.
0: एथलेटिक्स के अंतिम दिन हुए सभी फाइनल्स में भारतीय उपस्थिति थी, जो दिखाती है भारतीय एथलीट्स के बढ़ते हुए स्तर को। लेकिन हाँ, अगर पदकों के हिसाब से आंकें तो जरूर पोडियम फिनिश में हम कहीं न कहीं थोड़े ढीले दिखे हैं। पिछले एडिशन में 6 स्वर्ण पदक दिलाने वाले इस खेल में इस बार अंतिम दिन तक पहले स्वर्ण पदक की बाट जोही जा रही थी, और आज ये उम्मीद पूरी हुई। अंतिम से ठीक पहले की स्पर्धा में लड़कियों ने पूरी की 4x400 मीटर रिले में। पहले ही एक पदक जीत चुकी विद्या रामराज ने अंतिम लैप में क्या जबरदस्त एंकर दौड़ लगाई। पूरी ताकत के साथ शानदार फर्राटा और भारतीय राष्ट्रगान की धुन फिजा में गूंज उठी। स्वर्ण पदक 3:01.61 के साथ। आज पूरे समय बारिश की फुहारों के बीच हुई स्पर्धाओं में भारत ने 4 कांस्य पदक और जीते। 4x400 मीटर पुरुषों में डिफेंडिंग चैंपियन था भारत, आज कांस्य पदक आया। लेकिन याद रहेगी तीसरे नंबर पर जय की दौड़, जिसने भारत को लड़ाई की स्थिति में ला दिया, और उसके बाद विशाल थिन्नारसु की अंतिम दौड़ बस देखने ही वाली थी। भारत को तीसरे स्थान पर ले आए वो। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जापान की टीम ने पाया। किसान परिवार में जन्मे, फौज में भर्ती होने का सपना सच करने के लिए अलीगढ़

0: की सड़कों पर दौड़ की तैयारी करते करते फौज में आने के बाद उनका टैलेंट पहचाना गया और आज वो गुलवीर सिंह पिछले एक दो सालों में सबसे उम्दा प्रदर्शन करने वाले भारतीय एथलीट हैं। अपनी पेट 5000 मीटर स्पर्धा में वो 13 मिनट 32.75 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर आए और कांस्य पदक के साथ इन खेलों में अपना तीसरा पदक पाया। 40 साल बाद इन खेलों में 3 या ज्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने वो। ऊंची कूद में पूजा ने अपने पांचवे प्रयास में 1.84 मीटर ऊंचाई पार की जो उन्हें दिला गई कांस्य पदक। स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान की बार्नोखोव ने 1.90 मीटर के साथ जीता। देव कुमार मीणा ने पुरुष पोल वॉल्ट में 7वां स्थान पाया, लेकिन उनकी तारीफ इसलिए कीजिए कि अपना बेस्ट झोंक दिया और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। कुलदीप 10वें स्थान पर रहे तो महिला हैमर थ्रो में तानिया चौधरी ने भी अपना बेस्ट दिया। 65.35 मीटर दूर तार गोला फेंका लेकिन चौथा स्थान ही पाया। महिला 800 मीटर में पूजा 7वें तो पुरुष 800 मीटर में मोहम्मद अफसल अंतिम स्थान पर रहे। एथलेटिक्स में भारत का अभियान 1 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 14 कांस्य पदक। मुक्केबाजों ने रिंग में भारतीय दबदबा आज भी बनाए रखा। पदक तो पहले से ही पक्के थे। आज सेमीफाइनल में 3 मुक्केबाज रिंग में उतरे, 2 के पंच उन्हें ले गए फाइनल्स में, यानी अब दांव स्वर्ण पदक पर रहेगा। वो दृश्य फिर से खींचने की कोशिश प्रेरणा शर्मा द्वारा।
1: इट वॉज एन इनक्रेडिबल डे फॉर इंडिया इन द बॉक्सिंग रिंग एज वेल। टू रिकैप द एक्शन फ्रॉम द मॉर्निंग सेशन, द इंडियन बॉक्सिंग कंटिंजेंट पुट ऑन एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंसेज, लॉकिंग इन 3 मेजर मेडल आउटकम्स। इन द वुमेन्स 65 केजी सेमीफाइनल, परवीन हुडा डिलीवर्ड अ डोमिनेंट डिस्प्ले, डिफीटिंग चाइनाज ली शू 5-0 टू स्टॉर्म इन टू द फाइनल। दैट फर्स्ट हाफ विन गारंटीड हर एटलीस्ट अ सिल्वर मेडल, पुटिंग India within touching distance of another gold. Over in the men's 80 kg semi-final, Ankush Panghal put on a master class, pulling off a brilliant comeback to outpunch Uzbekistan's Fazliddin. His victory secured his place in the final and assured Team India of another confirmed silver medal at minimum. And in the men's plus 90 kg semi-final, heavyweight star Narinder Barwal stood toe-to-toe in a fierce battle against the world champion Ebek Orelbe. Despite a courageous effort, Barwal was edged out, signing off with a hard-earned bronze medal for the nation, his second consecutive Asian Games bronze. 2 spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring. Parveen Hooda delivered a dominant display, defeating China's Li Shu 5-0 to storm into the final. That first half win guaranteed her at least a silver medal, putting India within touching distance of another gold. Over in the men's 80 kg semi-final, Ankush Panghal put on a master class, pulling off a brilliant comeback to outpunch Uzbekistan's Fazliddin. His victory secured his place in the final and assured Team India of another confirmed silver medal at minimum. And in the men's plus 90 kg semi-final, heavyweight star Narinder Barwal stood toe-to-toe in a fierce battle against the world champion Ebek Orelbe. Despite a courageous effort, Barwal was edged out, signing off with a hard-earned bronze medal for the nation, his second consecutive Asian Games bronze. 2 spots booked in the gold medal final and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring.
0: आज रिकर्व की एकल स्पर्धाएं थीं। धीरज देव बोमरा से तो उम्मीदें स्वाभाविक थीं, लेकिन नीरज ने भी शानदार तीर चलाए और कुमकुम ने कमाल कर दिया, यानी तीन धनुर्धर चिड़िया की आंख यानी स्वर्ण पदक की राह में क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए। और माइक की कमान मुदिता के पास आप तक ये विवरण पहुंचाने के लिए।
2: तीरंदाजी में धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान ने पुरुषों की रिकर्व एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नीरज चौहान ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रहे कोरिया के किम जे देओ को 6-4 से पराजित किया। वहीं टॉप सीड और मौजूदा एशियन चैंपियन धीरज बोमदेवरा ने ताइपे के चेंग शियांग हुई पर 6-2 से जबरदस्त जीत दर्ज की। अगले राउंड में सेमीफाइनल स्पॉट के लिए वर्ल्ड कप फाइनल चैंपियन धीरज का मुकाबला उज्बेकिस्तान के अमीर खून सादिकोव से और नीरज चौहान का भूटान के लैम दोर्जी से होगा। वहीं कुमकुम अनिल मोहोद महिलाओं की रिकर्व इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में कुमकुम का मुकाबला रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कांग च्याय यंग से होगा। यंग ने भारत की ही दूसरी तीरंदाज कीर्ति शर्मा को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है।
0: स्क्वाश में महिला टीम पूरे रॉ में दिख रही है, नए स्टार्स पैदा कर रहा है ये गेम्स। 18 बरस की अनहत सिंह तो स्क्वाश की नई पोस्टर गर्ल बन गई हैं। महिलाओं का जलवा आज भी जारी रहा। खुलासे के साथ मुदिता।
2: भारतीय महिला स्क्वाश टीम ने अपने आखिरी पूल सी मैच में ईरान को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। तन्वी खन्ना ने ईरान की नरगिस सुल्तानी के खिलाफ मैच जीता, जो खेल के बीच में ही रिटायर हो गईं। अनाहत सिंह ने फरिश्ते इख्तदारी को सीधे गेमों में 11-5, 11-4, 11-7 से शिकस्त दी। वहीं जोशना चिनप्पा ने भी अपना मैच ईरान के खिलाफ 11-1, 11-3, 11-9 से जीत कर 3-0 का क्लीन स्वीप पूरा किया। पुलसी ने टॉप करने के बाद भारतीय महिला स्क्वाश टीम अब क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर से मुकाबला करेगी।
0: हाल ही में हुए डेविस कप मुकाबले में सुमित नागल दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी से हार गए थे और आज भी विपक्षी कोरिया से ही था, लेकिन सुमित के रैकेट के इरादे कुछ और थे। दूसरे राउंड के मुकाबलों में और भी भारतीय खिलाड़ी कोर्ट पर उतरे। टेनिस पर आज की कहानी अभिनव कुमार झा से।
3: एशियन गेम्स में टेनिस खिलाड़ियों के लिए मंगलवार का दिन अच्छा रहा। पुरुष एकल के दूसरे दौर में डीके सुरेश ने इंडोनेशिया के गुनावान त्रिसमोहन तारा को कड़े मुकाबले में 7-5, 7-6 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं सुमित नागल ने बारिश के कारण दो दिन तक चले मुकाबले में दक्षिण कोरिया के सियोंग चान होंग को 6-4, 6-0 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। उनका अगला मुकाबला उज्बेकिस्तान के सरगेई फोमिन से होगा। आज भारतीय खिलाड़ियों के डबल्स मुकाबले भी कार्यक्रम में थे। पुरुष डबल्स के दूसरे राउंड में यूकी भामरी और डीके सुरेश की जोड़ी का सामना कजाकिस्तान की जोड़ी से हुआ, जहां भारतीय जोड़ी ने 6-1, 7-5 से मैच अपने नाम किया, जबकि अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना नेपाल के अभिषेक बस्तौला और प्रदीप खड़का से होना था, जहां पूरे मुकाबले में एक तरफा तरीके से 6-2, 6-1 के साथ भारतीय जोड़ी ने जीत दर्ज की। अब बात करें मिश्रित डबल्स की, तो मिश्रित डबल्स के पहले राउंड में अंकिता रैना और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना हांगकांग के यूडीस चोंग और कैरन थॉम्पसन से हुआ, जिसमें 4-6 और 4-6 के सीधे सेटों से भारतीय जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा और इस प्रकार मिक्स डबल्स की इस जोड़ी का सफर एशियन गेम्स में यहीं समाप्त हुआ। हालांकि यूकी भामरी और ऋतुजा भोसले के रूप में मिक्स डबल्स में भारतीय चुनौती अभी कायम है।
0: वॉलीबॉल में पूल सी में आज एक सुपर रोमांचक मैच हुआ। भारत कुवैत से पहले दोनों से ठार बैठा, लेकिन उसके बाद वो जुझारूपन और संघर्ष दिखाया कि देखने वालों की सांसें थम जाएं। भारत अपने पूल में टॉप पर और माइक पर प्रेरणा शर्मा।
1: इंडिया हैव प्रोड्यूस्ड अ सेंसेशनल कमबैक टू डिफीट कतर 3-2 इन देयर फाइनल पूल सी एनकाउंटर। इंडिया हैड ऑलरेडी बीटन वियतनाम एंड हांगकांग चाइना 3-0 इन देयर ओपनिंग मैचेस, बट कतर प्रोवाइडेड अ मच टफर चैलेंज। दे एज्ड द ओपनिंग सेट 28-26 आफ्टर इंडिया मिस्ड टू सेट पॉइंट्स एंड देन टुक द सेकंड 27-25 डिस्पाइट इंडिया बिल्डिंग अ 4-point लीड मिडवे थ्रू द सेट। टू सेट्स डाउन इंडिया शोड ट्रेमेंडस कंपोजर टू टर्न द मैच अराउंड। दे केप्ट देयर होप्स अलाइव बाय taking the third set 25-23 before dominating the fourth to win 25-20 and level the contest. That sent the match into a deciding fifth set, which turned into another dramatic battle. India held their nerve in their extended tiebreak to win 24-22 and complete a stunning reverse sweep. With three wins from three matches, India finished unbeaten at the top of Pool C and advanced to the quarterfinals in style.
0: केनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। केनो और कयाक में आज क्या हुआ बता रहे हैं अभिनव कुमार झा। केनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। केनो और कयाक में आज क्या हुआ बता रहे हैं अभिनव कुमार झा।
3: केनो स्लैलम में भारतीय खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ाया है। पुरुष कयाक सिंगल हीट्स में हितेश केवट ने 118.22 सेकंड के साथ आठवां स्थान प्राप्त किया, वहीं प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने 127.70 सेकंड के साथ दसवां स्थान प्राप्त कर सेमीफाइनल राउंड के लिए अपनी जगह पक्की की। बात करें महिला कयाक सिंगल हीट में तो शिखा चौहान ने भी 344.87 सेकंड के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई, जबकि महिला सिंगल में पल्लवी जगताप और रीना सेन ने हिस्सा लिया था, जहां पल्लवी जगताप ने सातवां स्थान प्राप्त करके तो वहीं रीना सेन ने नौवां स्थान प्राप्त करके सेमीफाइनल के लिए अपना नाम दर्ज कराया।
0: बहाव वाले पानी से अब चलते हैं अपेक्षाकृत शांत समंदर की ओर। मौसम और बारिश ने सेलिंग में आज खासा व्यवधान डाला। सर्फिंग में एक ही भारतीय स्पर्धा में बचा था। आज क्वार्टर फाइनल पुरुष शॉर्टबोर्ड में लहरों से उनकी गुफ्तगू कैसी रही, जानते हैं

0: अभिनव से।
1: Looking back at the earlier action from Pacific Long Beach in Tahara, surfing made its official Asian Games debut, a huge milestone for the sport. In the men's shortboard quarterfinals, Heat 4, India's Kishore Kumar Anbarasu went head-to-head against Toby Espejon of the Philippines. Kishore put up a spirited effort on the waves, finishing with a score of 5.37 to Espejon's 8.53, which unfortunately ended India's historic run just shy out of the medal rounds. Even though the campaign came to a close, Kishore's quarterfinal appearance marked a landmark moment for Indian surfing.
0: आज से साइकिलिंग ट्रैक की स्पर्धाएं आरंभ हो गईं। भारतीय दल में कुल 14 सदस्य हैं। कई स्पर्धाओं में भारतीय साइकिल सवार हवा से बातें करने की कोशिश करते दिखे। विवरण के साथ एक बार फिर अभिनव।
2: ट्रैक साइकिलिंग में भारत के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहा। महिला टीम स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में सेलेस्टिना, सरिता कुमारी, कीर्ति रंगास्वामी चिक्का और त्रिशा पॉल की भारतीय टीम छठे स्थान पर रही, जिसकी बदौलत उन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन फर्स्ट राउंड में चाइनीज ताइपे की टीम से हार का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसा ही सूरत हाल पुरुष टीम स्प्रिंट का भी रहा, जहां रोहित सिंह यांगलेम, डेविड बेकहम एल्काटो चोंगो और रोनाल्डो सिंह लेतोन जाम की टीम को चाइना से हार के एशियन गेम से बाहर होना पड़ा। आपको बता दें श्रोताओं की इसी चाइनीज टीम ने इस इवेंट में पुरुष टीम स्प्रिंट में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। हालांकि इस इवेंट में भी क्वालिफिकेशन राउंड में भारतीय टीम ने सातवें स्थान पर रहकर फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया था। वहीं बात करें महिला टीम परशूट में तो हर्षिता झाकर, पूजा बवन डानोले, मीनाक्षी और स्वास्ति सिंह की भारतीय टीम को फर्स्ट राउंड में ज्यादा समय लेने के कारण बाहर कर दिया गया, किंतु दिन की शुरुआत इन्होंने भी क्वालिफिकेशन राउंड में क्वालिफाई करके की थी, जहां इन्होंने पांचवां स्थान हासिल किया था।
0: कुराश में कल एक पदक आया था और आज अंतिम भारतीय एंट्री भी स्पर्धा में थी। हुआ क्या, बता रही हैं मुदिता।
3: कुराश में पुरुषों के 66 किलोग्राम भार वर्ग में विपिन कुमार का अभियान राउंड ऑफ 16 में खत्म हो गया। वे साउथ कोरिया के यून ह्यूनसो से 0-3 से हार गए और इस नतीजे के साथ गेम्स में उनका इंडिविजुअल कैंपेन खत्म हो गया। इसके पहले कुराश में पिंकी वल्हारा ने महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था।
0: स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के बारे में जानते हैं आप, आज की स्पर्धा की जानकारी अभिनव से।
2: स्पोर्ट क्लाइंबिंग की स्पर्धाओं में भारत की नजरें खास तौर पर महिला स्पीड क्लाइंबिंग पर रहीं। भारत की 19 वर्षीय जोगापूर्ति ने अपने एशियाई खेल पदार्पण में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वालिफिकेशन राउंड में 7.28 सेकंड के साथ 9वां स्थान हासिल करके महिला स्पीड क्लाइंबिंग के क्वार्टर फाइनल में तो जगह बनाई ही, साथ ही उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी दोबारा से अपने नाम किया। स्पीड क्लाइंबिंग में खिलाड़ी 15 मीटर की एक समान दीवार पर सबसे तेज समय में ऊपर पहुंचने की कोशिश करते, इसलिए शुरुआत, गति और संतुलन बेहद महत्वपूर्ण होता है। महिला स्पीड का क्वालिफिकेशन नागोया के पोर्ट में आयोजित किया गया। भारत के नजरिए से जोगा का क्वार्टर फाइनल में पहुंचना स्पोर्ट क्लाइंबिंग में देश की बढ़ती मौजूदगी का अहम संकेत है।
1: India has jumped from the 12th position to the 10th position with the courtesy of 2 gold medals today. India's total medal tally now stands at 52 medals, broken down into 6 gold, 21 silver and 25 bronze. China leads the table with 143 gold, 62 silver and 49 bronze, followed by Japan in second with 45 gold, 71 silver and 67 bronze medals, and the Republic of Korea in third with 24 gold, 27 silver and 44 bronze medals.
0: कल कुश्ती आरंभ होगी, जिसमें पदकों की खासी उम्मीद है। निशा और सुनील कुमार मैट पर होंगे। महिला हॉकी सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से भिड़ंत होगी। बॉक्सिंग में प्रिया और लवलीना सेमीफाइनल जीतने के प्रयास करेंगी। शूटिंग में 25 मीटर रैपिड फायर में अनीश होंगे और मिक्स्ड ट्रैप स्पर्धा भी होगी। आर्चरी में कंपाउंड के मुकाबलों में भारतीय पदकों की ओर बढ़ने के प्रयास करेंगे। स्क्वैश में महिला टीम सिंगापुर से भिड़ेगी क्वार्टर फाइनल में। जूडो भी कल शुरू होगा और गोल्फ भी, जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही मैदान पर होंगे। इसके साथ ही ई स्पोर्ट्स, सेलिंग, कैनो स्लालोम और साइकिलिंग में भी भारतीय खिलाड़ी दिखेंगे।
4: एशियन गेम्स 2000

0: सर्जन? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। अब से कुछ ही पलों में कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
1: India rejects the unwarranted references.
2: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: And no external party has any locus standi on this issue.
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
3: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें दोनों व्यवस्था, एक MSP और एक विदाउट MSP हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों। ये तय किया तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में 65वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में पुरस्कार पाने वाले 20 कलाकारों को सम्मानित किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन ललित कला अकादमी ने किया। इस मौके पर श्री शेखावत ने रचनात्मकता और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित सेवा ही संस्कृति पहल इसका अच्छा उदाहरण है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में श्रम संवाद नाम से जिला स्तर पर क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एक निजी कानून फर्म के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नियोक्ताओं और उद्योग से जुड़े लोगों को नए श्रम कानूनों के प्रमुख प्रावधानों और उनके पालन से जुड़ी आवश्यकताओं के बारे में जागरूक करना था। नागालैंड में कोहिमा पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए की 7,740 बोतल भारतीय निर्मित विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने आज जारी एक बयान में बताया कि ये खेप कल दोपहर जुब्बा थाना क्षेत्र में नियमित जांच के दौरान एक ट्रांसपोर्ट वाहन से पकड़ी गई। पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में ले लिया है। मामले की जाँच जारी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली है। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Defense Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amid challenges arising from evolving technology, unpredictability, and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi today, Mr. Singh said the country's goal is clear that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. The minister underlined that the ongoing Operation Urja Suraksha has once again demonstrated the Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interests. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said the government is working on a multidimensional strategy to ensure that farmers receive fair and remunerative prices for their produce. The strategy includes strengthening post-harvest management, scientific warehousing and marketing systems. Addressing the second day of the National Agriculture Conference Rabi Campaign 2026 in New Delhi today, Mr. Chauhan assured 100% government procurement of Toor, Urad and Masoor at minimum support price.
5: It is our collective responsibility to ensure that farmers get a fair price for their produce. We need to connect farmers with the market through both systems, with MSP and without MSP. It has been decided that the government will purchase 100% of Toor, Masoor and Urad. However, whether it is a Kharif or a Rabi crop, the procurement arrangement should be made properly in advance so that farmers receive payment within 48 hours.
4: The minister said India will also leverage the new market opportunities emerging from international free trade agreements and help farmers secure better returns for their produce and enable India to emerge as a major food basket for the world. The Election Commission today issued notification for biennial elections for 11 Rajya Sabha seats. This includes 10 seats in Uttar Pradesh and one seat in Uttarakhand. BJP leaders and union ministers Hardeep Singh Puri, B.L. Verma, Samajwadi Party leader Ram Gopal Yadav, Ramji of BSP and six others are completing their terms on 25th of November. The commission has also issued notification for bipoll in one seat of Rajya Sabha in West Bengal. Finance Minister Nirmala Sitharaman today met her Qatari counterpart Ali bin Ahmed Al Kuwari on the sidelines of the AIIB annual meeting in Doha. Both leaders discussed expanding India's UPI payment system across Qatar and strengthening financial cooperation between the two countries. The talks also focused on the implementation of Qatar's $10 billion investment commitment in India, greater engagement with the National Investment and Infrastructure Fund, and finalization of the bilateral investment treaty. India has rejected the unwarranted references made by Turkish President Tayyip Erdogan on Jammu and Kashmir during his UNGA address. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said this is a matter pertaining to India's territorial integrity and sovereignty and no external party has any locus standi on the issue. On the IBSA statement, Mr. Jaiswal noted that a meeting at the level of foreign ministers was held between India, Brazil and South Africa on the sidelines of the UN General Assembly in New York. On the comments made by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar on cross-border terrorism, Mr. Jaiswal highlighted External Affairs Minister's remarks on cross-border terrorism, terming it a cause of major concern and that countries need to come together to fight the global menace. In the Asian Games 2026, India today delivered a strong performance, adding 8 medals, including 2 gold, 1 silver and 5 bronze medals in relay, shooting, athletics and boxing. India won women's 4x400m relay gold, clocking 3 minutes 29.69 seconds at Nagoya in Japan. India also bagged a bronze in men's 4x400m relay and another bronze in mixed 4x100m relay. Earlier, Neeru Dhanda made history by becoming the first Indian shooter to win gold in the women's trap individual event in Japan. And that is the end of this news bulletin.
6: अभी आप सुन रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। समाप्त होती है हमारी आज की सभा। प्रातःकालीन प्रसारण में 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।